0: शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की होगी, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां घर पर बुलडोजर चलने के बाद एक शख्स फूट फूट कर रोने लगा। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि हाल ही में चीन के दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जासूसी करते कैमरे में कैद हो गए। एक भोज के दौरान वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निजी नोट्स में ताक झांक करते हुए कैमरे में कैद हो गए। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की सरकार के नेतृत्व में अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। सोशल मीडिया पर भी इस कार्रवाई से जोड़ते हुए वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं। अब ऐसा एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें एक शख्स फूट फूट कर रोता नजर आ रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन के बाद घर गंवाने के बाद एक शख्स फूट फूट कर रोया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने के बाद राज्य भर में अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। सरकार का दावा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इसी संदर्भ में ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति फूट फूट कर रोता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में कुछ पुलिस वाले भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा तोड़फोड़ की आवाज भी सुनाई दे रही है। देखने में ये किसी बुलडोजर एक्शन के वक्त का लगता है। कुछ लोग इसे पश्चिम बंगाल का बताकर शेयर कर रहे हैं। फेसबुक पर इस वीडियो के साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े हैशटैग्स लगाकर एक व्यक्ति ने लिखा, इन कंगालुओं को दहाड़े मार मार कर रोता देखकर दिल को बहुत अधिक सुकून मिल रहा है। हैशटैग वेस्ट बंगाल, हैशटैग बंगाल, हैशटैग टीएमसी, हैशटैग ममता बनर्जी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक शख्स फूट फूट कर रोता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां पर बुलडोजर एक्शन में घर गंवाने के बाद ये शख्स फूट फूट कर रोने लगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी था। फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे गौर से सुना तो ये सामने आया कि ये बंगाल का है, यानी कि बंगला में ये लोग बातचीत कर रहे हैं। मतलब वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल का हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने एक बार फिर से वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो में नजर आ रहे पुलिस के जवानों की वर्दी के कलर पर हमारा ध्यान गया। जब हमने इसे देखा तो ये साफ हुआ कि बांग्ला पुलिस की वर्दी का कलर नहीं हो सकता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पुलिस की वर्दी का रंग तो सफेद है। दो तरह की वर्दी वो पहनते हैं। कोलकाता और हावड़ा क्षेत्र की पुलिस सफेद रंग की वर्दी पहनती है, जिस पर नीले रंग की बेल्ट और कंधे पर नीला रंग होता है, जबकि राज्य के अन्य सभी हिस्सों की बात की जाए तो पुलिस की वर्दी खाकी रंग की होती है, जबकि वीडियो में जो जवान दिख रहा है उनकी वर्दी का रंग अलग है। साथ ही सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इस सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को पश्चिम बंगाल का बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। अब देखिए सच्चाई क्या है।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो को गौर से देखा। वीडियो पर एक लोगो नजर आ रहा है। सर्च करने पर पता चला कि ये बांग्लादेश का एक न्यूज आउटलेट है। इस आउटलेट ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर ये वीडियो 21 मई को पोस्ट किया था। पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक ये शख्स अपनी आंखों के सामने अपना घर टूटता देख जोर जोर से रोने लगा। पोस्ट के कैप्शन में कलशी बस्ती हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है। ये बस्ती ढाका के पास मीरपुर जोन के पल्लवी में स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में बीते कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। इस आउटलेट ने कलशी इलाके में हुई बुलडोजर कार्रवाई के और भी कई वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान यहां रहने वाले लोगों और पुलिस वालों के बीच झड़प भी हो गई थी। कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों पर हमला भी कर दिया था। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि बांग्लादेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान का वीडियो है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके जरिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये वायरल वीडियो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान का है, जिसमें वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नोटबुक में झांकते हुए नजर आ रहे हैं। बीजिंग में एक राजकीय भोज के दौरान जब शी जिनपिंग अपनी सीट से उठे तो ट्रंप ने उनकी मेज पर रखी नोटबुक खोलकर उसके पन्ने पलटे, उससे पढ़ने की कोशिश की। लेकिन वायरल दावे की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।

0: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय शिखर वार्ता भी की। ट्रंप ने राष्ट्रपति शी को सितंबर में व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रंप को शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निजी नोटबुक पर चुपके से नजर डालते हुए दिखाया गया है। वीडियो शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, शी जिनपिंग के बीजिंग में एक भोज के दौरान जब वे कुछ देर के लिए दूर चले गए थे, तब ट्रंप को उनकी निजी नोटबुक पर चुपके से नजर डालते हुए पकड़ा गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर गए थे। उस दौरे के दौरान एक दृश्य सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके जरिए कुछ लोग ट्रंप की नीयत पर तंज कसते हुए दावा ये कर रहे हैं कि शी जिनपिंग के बीजिंग में एक भोज के दौरान जब वो कुछ देर के लिए दूर चले गए थे, तब ट्रंप को उनकी निजी नोटबुक पर चुपके से नजर डालते हुए कैमरे में साफ साफ देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान ये नजर आया कि ट्रंप एक फोल्डर को पलटते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने फोल्डर पर नजर आ रहे प्रतीक चिन्ह को जूम करके करीब से देखा, तो सामने आया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की मोहर से मिलता जुलता है। इसके बीचों बीच में चील भी दिख रही है, मतलब ये कि इस फोल्डर का चीनी राष्ट्रपति से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। और हमारा पहला सवाल यही कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें 14 मई को एक न्यूज चैनल पर अपलोड वीडियो का एक लंबा संस्करण मिला। ये बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में आयोजित राजकीय भोज का वीडियो था। लगभग 1:50 पर ट्रंप के बाईं ओर बैठे जिनपिंग उठते हैं और मंच की ओर चलते हैं। इसके बाद वायरल क्लिप में ट्रंप को अपनी बाईं ओर रखे फोल्डर को खोलते और कुछ पन्ने पलटते हुए दिखाया गया है। व्हाइट हाउस ने इस कार्यक्रम का एक अनकट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया था। वीडियो शुरू होने के 2 बाद देखा जा सकता है कि जिनपिंग उठते हैं। इसके तुरंत बाद ट्रंप अपने बाईं ओर रखे फोल्डर को खोलते हैं और कुछ पढ़ते हैं। वीडियो में आगे लगभग 12 पर जब जिनपिंग अपनी सीट पर वापस लौटे तो ट्रंप उठे, फोल्डर अपने साथ ले गए। पोडियम पर रखा, कुछ पन्ने पलटे और उसमें से पढ़ना शुरू किया। यही दृश्य एक और वीडियो में 11:50 पर देखा जा सकता है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि फोल्डर ट्रंप का था और अमेरिकी राष्ट्रपति अपने चीनी समकक्ष की निजी नोटबुक में ताक झांक नहीं कर रहे थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। फोल्डर ट्रंप का है, चीनी राष्ट्रपति का नहीं। अभिषेक पाठक के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
1: सकते हैं। फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
4: इन दिनों ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा तालाब के पानी के ऊपर आराम से खड़ा हुआ दिखाई देता है। बच्चे का बैलेंस और कॉन्फिडेंस देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, जबकि दूसरा बच्चा कुछ वैसा ही करने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। यही फनी मोमेंट सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ गांव जैसा माहौल है और यहाँ तालाब के बीचों बीच एक छोटा बच्चा आराम से खड़ा है। तालाब के बीच बच्चा हाथ जोड़कर और आंखें बंद किए पूरे बैलेंस और कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चे के चेहरे पर जरा भी घबराहट नजर नहीं आती है। यही वजह है कि वीडियो देखने के बाद भी लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वीडियो के आखिरी हिस्से में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है। एक दूसरा लड़का जब उसकी कॉपी करने पहुंचा तो ऐसा मजेदार हादसा हुआ कि इंटरनेट यूजर्स हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दरअसल बच्चे ने पानी के अंदर एक स्टूल के सहारे बैलेंस को बनाया था। युवक ये समझ नहीं पाया और वो पानी में धड़ाम से गिर गया। सोशल मीडिया पर इन दिनों 4 साल 4 महीने के एक बच्चे का क्रिकेट वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पहली नजर में उसकी उम्र देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल लग रहा है कि ये इतनी कम उम्र में बैट संभाल पाएगा, लेकिन जैसे ही गेंदबाज उसकी तरफ तेज गेंद फेंकता है, बच्चा पूरे आत्मविश्वास के साथ शानदार शॉट खेल देता है। खास बात यह है कि वह शॉट सीधे कवर की दिशा में जाता है और गेंद सीमा रेखा के पार पहुंच जाती है। बच्चे का यह शॉट देखकर वहां मौजूद लोग भी दंग रह जाते हैं। वीडियो में देखने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि गेंदबाज खुद बच्चे की बल्लेबाजी से इतना प्रभावित हो जाता है कि दौड़कर उसके पास आता है और उसके पैर छू लेता है। इसके बाद दोनों के बीच मजेदार अंदाज में पंच भी होता है और फिर वीडियो खत्म हो जाता है। हालांकि वीडियो छोटा है, लेकिन कुछ ही सेकंड के इस क्लिप ने लोगों का दिल जीत लिया है। अक्सर माना जाता है कि ढलती उम्र के साथ बुजुर्गों का खान पान सादा और सीमित हो जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम पर वायरल हुई एक क्लिप ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। इस वीडियो में 92 साल की दादी बड़े चाव से पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का लुत्फ उठाती नजर आ रही है। वीडियो में दिख रहा है कि दादी पिज्जा के हर स्लाइस का पूरी शिद्दत से आनंद ले रही है। इस दौरान उनकी बच्चों जैसी खुशी देखने लायक है। पिज्जा खाते हुए उनके थम्स अप ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है। कुल मिलाकर दादी का यह अंदाज बेहद मजेदार और जिंदा दिली से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर यूजर्स दंग है। वीडियो में एक शख्स सड़क पर पड़े गोबर को देखकर रुक जाता है और उसी गोबर पर आर्ट करके एक शानदार मास्टरपीस तैयार कर देता है। साधारण सी चीज को देखकर उसमें छुपी कला को बाहर निकालने वाला यह कलाकार अपनी क्रिएटिविटी के लिए सराहा जा रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि एक व्यस्त सड़क के किनारे गोबर पड़ा हुआ

0: जाती है। गोबर की सूरत ही बदल गई। जो चीज आमतौर पर लोग नाक भौं चढ़ाकर पार करते हैं, उसी को कलाकार ने आर्ट का रूप दे दिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये भावुक वीडियो वायरल हो रहा है, जो इंसानों के दिल को छू रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक छोटा सा मेमना अपनी माँ से बिछड़ गया था। जब उसे अपनी माँ दिखी तो वह खुशी से दौड़कर उसके गले लग गया। माँ भी अपने बच्चे को देखते ही भावुक हो गई और मिलन का यह पल हर किसी को रुला गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि खुले आसमान के नीचे हरे भरे खेत में एक महिला मेमने को लेकर आ रही है। जैसे ही मेमना अपनी माँ को दूर से पहचानता है, वह अपनी छोटी छोटी टांगों से तेजी से दौड़ने लगता है। माँ भी अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर बेचैन हो जाती है और आगे बढ़ती है। दोनों के मिलते ही माँ बेटे का गर्मजोशी भरा मिलन देखकर फिल्माने वाली महिला की आंखें भी नम हो जाती हैं। पास खड़ी गाय भी इस खुशी के पल में शामिल होती नजर आती है। आमतौर पर अगर किसी के घर में चूहा घुस जाए तो लोग उसे पकड़कर तुरंत बाहर छोड़ देते हैं या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार एक शख्स ने जो किया, उसे देखकर इंटरनेट यूजर्स भी हैरान रह गए। उसने चूहे को पकड़ने के बाद उसके लिए मूवी नाइट ही रख दी। दरअसल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक चूहा छोटे से पिंजरे में फंसा हुआ है, लेकिन उसे डराने या परेशान करने के बजाय युवक ने पिंजरे के पास अपना मोबाइल रख दिया। मोबाइल में एनिमेटेड फिल्म बाल गणेशा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चूहे के लिए खास तौर पर धार्मिक फिल्म दिखाई जा रही हो। वीडियो में सबसे मजेदार बात यह थी कि युवक बड़े आराम से चूहे के सामने फिल्म चला रहा था, मानो वह कोई खास मेहमान हो। इंटरनेट पर लोगों को यह पल बेहद मजेदार और दिल छू लेने वाला लगा। गर्मी इन दिनों चरम पर है और इस भयंकर गर्मी ने इंसानों के साथ जानवरों की जिंदगी भी मुश्किल कर दी है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बिल्ली ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह बिल्ली बिना एयर कंडीशनर के एक मिनट भी नहीं रह पाती।
1: बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा कह रहे, रिमोट दे दे चुपचाप, मारा मारी बाद में कर, रिमोट दे दे। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा तेरा।
0: अगर एसी बंद हो जाए तो वह न सिर्फ नखरे दिखाती है, बल्कि एसी का रिमोट छिपा लेती है, और जब कोई रिमोट लेने की कोशिश करता है तो वह सीधा अटैक मोड में आ जाती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मालिक जब एसी बंद करने या रिमोट लेने जाते हैं तो बिल्ली पहले तो घूरती है, फिर रिमोट मुंह में लेकर भागती है और छिपा देती है। अगर कोई उसके पीछे जाता है तो वह नुकीले नाखून दिखाकर हमला करने की तैयारी कर लेती है। आप किसी जंगल सफारी पर गए हो और आपकी गाड़ी के ठीक बगल में एक खूंखार बब्बर शेर बैठा हो, तभी अचानक कुछ लोग आराम से उसके बगल से पैदल और बाइक पर गुजरने लगे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यकीनन यह नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सफारी गाड़ी में बैठा एक पर्यटक वीडियो बना रहा है, तभी सड़क पर एक के बाद एक बाइक सवार गुजरते हैं। हैरान करने वाला मोड़ तब आता है जब कैमरा थोड़ा घूमता है और सड़क के बीच में एक विशाल गाय शेर बैठा दिखाई देता है। हद तो तब हो गई जब बाइकर्स के साथ साथ एक शख्स बड़े आराम से पैदल ही शेर के पास से गुजर जाता है, मानो वहाँ कोई शेर नहीं बल्कि कोई बिल्ली बैठी हो। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि शेर भी उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और शांति से बैठा रहता है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसने फुटबॉल मैच को ही यादगार बना दिया। इस वीडियो को देखकर लोग सिर्फ मुस्कुरा ही नहीं रहे, बल्कि इसे इंटरनेट का सबसे क्यूट फुटबॉल वीडियो भी बता रहे हैं। दरअसल एक फुटबॉल मैच के दौरान ऐसा मजेदार नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खिलाड़ी मैदान में पूरी गंभीरता से मैच खेल रहे थे, तभी अचानक एक छोटा सा बछड़ा मैदान में आ गया। शुरुआत में खिलाड़ियों को लगा कि शायद वह थोड़ी देर में बाहर चला जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने जो किया उसे देखकर मैदान में मौजूद हर व्यक्ति हंसने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही खिलाड़ी फुटबॉल को एक दूसरे की तरफ पास कर रहे थे, वैसे ही वह नन्ना बछड़ा भी पूरी उत्सुकता के साथ गेंद के पीछे दौड़ने लगा। गेंद मैदान के जिस कोने में जाती, बछड़ा भी उसी दिशा में तेजी से भागता दिखाई देता। उसकी मासूम हरकतें और उत्साह देखकर खिलाड़ी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
2: Thank God I get to wake up.
1: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan this on this station. Up. Ready to find your flow?
3: It's your boy,
1: just
3: Jay-Z.
1: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: बात अयोध्या के शक्ति उत्सव की, राम मंदिर परिसर में भगवती मंदिर में ध्वजारोहण समारोह संपन्न हो गया। खास बात यह रही कि राम मंदिर ट्रस्ट ने इस समारोह को मातृ शक्ति को समर्पित किया था, लिहाजा 3500 से ज्यादा महिला संत और कार्यकर्ता इस समारोह का हिस्सा बने। इस समारोह की सुरक्षा का जिम्मा भी सीआरपीएफ की महिला बटालियन ने ही संभाला।

0: के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: शुक्र की कौन सी राशि बहुत जिद्दी मानी जाती है? शुक्र की कौन सी राशि के लोग बहुत उदार होते हैं? और शुक्र की राशि का सूर्य और शनि से क्या संबंध है? कौन सी है शुक्र की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में विशेष नौका विहार उत्सव का आयोजन। भीषण गर्मी में ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए विशेष सजी नौका में किया गया विराजमान। भक्तिमय माहौल में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भारत से मंगोलिया भेजे गए भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेष। उलानबटार के प्रसिद्ध गंडन मठ में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखे जाएंगे पवित्र अवशेष। आईपीएल के फाइनल में पहुंची गुजरात टाइटंस। गिल की 104 रन की शतकीय पारी की बदौलत दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान को 7 विकेट से दीमात। रविवार को आरसीबी से मुकाबला। एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का जलवा। पूजा सिंह ने हाई जंप में जीता गोल्ड, तोड़ा 14 साल पुराना रिकॉर्ड। नितिन गुप्ता ने 5000 मीटर रेस वॉक में हासिल किया स्वर्ण पदक। कश्मीर के सोनमर्ग में सैलानियों की भारी भीड़। पिछले कुछ ही महीनों में 4,00,000 से ज्यादा सैलानी पहुंचे सोनमर्ग। टूरिज्म में जबरदस्त बूम।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों।
5: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
6: एक बात हम आपको रहस्य की बता दें, भगवान कृष्ण ने तो सिर्फ एक ही रास किया है, राम जी ने 999 रास किए। हाँ, 999 रास रचाए राम जी ने। भगवान कृष्ण तो बेचारे एक ही, लेकिन ये कौन कम है? आप राम जी को कम ना मानना। हम 6 दिन जरूर महिमा गा रहे थे, लेकिन आज हम थोड़ा उल्टा बोलेंगे। राम जी को भी आप कम मत मानना, राम जी भी कम गुरु नहीं है। राम जी गुरु हैं तो भगवान कृष्ण उन्हीं के चेला जैसे हैं, हैं तो एक। राम जी भी कम नहीं, राम जी ने तो 999 रास रचाए, बस इतना अंतर है तो इनके एक विवाह हुए, भगवान कृष्ण के अनेक हुए, लेकिन अनेक भी रामई जी के चक्कर में अब है। हाँ, हाँ, ये जितने अनेक विवाह 16108 भगवान कृष्ण के भाई हैं, ये इनकी देन ना ही रामई जी की देन ना है। अच्छा, इसका इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो सुनो, ताप

0: रामचरितमानस, रामचरितमानस में कहीं कहीं माने महाराज दशरथ से वरदान मांगा। वरदान क्या मांगा? राम जी को 14 साल वनवास के लिए भेजो, भेजो पहला वरदान दो। दूसरा वरदान, भरत को राजा बनाओ। राम जी गए, जानकी जी बोली हम भी चलेंगे, लक्ष्मण जी बोले हम भी चलेंगे, ठीक है चलो। तीनों लोग वन को जा रहे हैं, 14 साल के लिए वन को गए। अब हुआ क्या, हम अब देखना भगवान कृष्ण पर कैसी कृपा है राम जी की। वन में गए, चित्रकूट पहुंचे।
1: चित्रकूट रघुनंदन आए।
0: चित्रकूट में राम जी आए, जितने अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा थे सब राम जी के पास स्वागत करने आए। आ हा हा, प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं, वाह वाह वाह। सब महात्मा स्वागत कर रहे, प्रणाम कर रहे, जय जय कर रहे, स्तुति गा रहे, भगवान आए भगवान आए। लेकिन 2-3 दिन तो महात्मा आए, फिर सब गायब हो गए। भगवान ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण जी, महात्मा कहां अब्सेंट हो गए, कहां गायब हो गए, कहां गए? लक्ष्मण जी बोले अभी देख रहे। लक्ष्मण जी गए सो जितने महात्मा थे सब पत्थर ठोक भी लगे, पत्थर बड़ी बड़ी सिलाएं लें और कीला से पत्थर ठोकें। वापस आए लक्ष्मण जी, राम जी बोले कि क्या हुआ लक्ष्मण जी, महात्मा कहां गए? लक्ष्मण जी बोले महात्मा हैं तो वन में, लेकिन वन में नहीं आ। बोले काय में? बोले वन में तो हैं, लेकिन सब पत्थर ठोक रहे, मूर्तियां बना रहे। राम जी बोले ये क्या लफड़ा है? बोले लक्ष्मण जी बोले हमें पता नहीं है, आप ही पूछो चलो। महात्माओं ने अपने अपने आश्रम के बाहर बड़े बड़े पत्थरों की मूर्तियां बनाकर रख ली, छोटे छोटे गोल मटोल पत्थर रख लिए, सफेद बड़े लंबे मोटे पतले। राम जी महात्माओं के पास पहुंचे, बोले महात्माओं ये पत्थरों का काम क्या है? महात्मा बोले सरकार आप ठीक आए वन में। बोले क्यों? बोले एक कृपा। बोले क्या कृपा? महात्मा बोले महाराज हमने सुनी कि आप जिस पत्थर के ऊपर अपना पैर रख देते हो वो नारी बन जाता है, लुगाई बन जा। राम जी हंस के बोले मतलब क्या कहना चाह रहे? बोले महाराज हमने देखो कि आपके संगे भी हैं जानकी माता जी, आपके साथ में भी हैं। हम बेचारे महात्मा जंगल में रहते हैं, अपने हाथों रोटी बनाने पड़ती है, फिर भजन करना पड़ता है, तो हम सोच रहे कि हमारी भी घरवाई आ जाए, कम से कम रोटी बनाने वाली तो हो जाएगी, रोटी बनाएगी, हम बढ़िया जो है भजन करेंगे। राम जी जानकी जी की तरफ देख के बोले जय हो देवी जी, न तुम बनाउती न जे बैरागी महात्मा गृहस्थी बनवे की बात सोचते। अब कोई बात नहीं, राम जी ने समझाया ऐसा नहीं है, बड़ा दुख होता है, गृहस्थ में बड़े झंझट हैं, आप ना पढ़ो। महात्मा मान गए, लेकिन पूर्णतया नहीं माने तो लोगों का मानना है कि जानकी जी का हरण रावण ने किया, हमारा मानना है कि राम जी ने ही जानकी जी का हरण जानबूझकर कराया। जब रावण ने जानकी जी का हरण कर लिया, राम जी ने करवा दिया, तब राम जी जानकी जी के वियोग में रो रहे। ए हा,

राम जी ने जब जानकी जी का हरण करवा दिया तो राम जी रोने लगे, और जहां महात्मा दिखावे सोते ही राम जी और जोर जोर से रोवे, हे सीते पेड़ से लिपट जाए। जानवरों को हिरणों को देखकर पूछे तुमने देखी जानकी जी रोवे। महात्मा बोले भगवान की बड़ी कृपा के हमारो ठीक नहीं ब्याह भाव। तो दूसरे महात्मा बोले मतलब, अरे बोले भगवान ने ठीक नहीं नारी बनाई, अगर नारी बनाई होती हो घर में लुगाई होती तो जैसे भगवान रो रहे अपन को और रोना पड़ता। मन में तो और राक्षस आते ही रहते, पता नहीं कौन हरण करके ले जाए, बे हैं भगवान रो रहे लुगाई के चक्कर में। जब भगवान रो रहे तो हम लोगों को तो रोना ही पड़ता। और भगवान भी बड़े अद्भुत हैं, राम जी भी महात्माओं को देख करके जहां महात्मा दिखावे, जहां महात्माओं के आश्रम हते ऊ तरफ महाराज भगवान मुंह करके और जोर से रोवे सीते। महात्माओं को लगे हे भगवान ऐसा रोने पड़त। सब महात्मा बोले प्रभु बड़ी कृपा हमाओ ब्याह ठीक नहीं करवाओ। लेकिन आगे चले तो कुछ और महात्मा आए, प्रभु हम आपके रूप को देख करके मोहित हो गए, आहा धन्य है आपका रूप और आपकी सुंदरता, सरकार हम आपके रूप को देखकर मोहित हो गए, आप हमको स्वीकार करो। आहा मिथिला में भी कुछ मिथिला की रानियां मिली जो भगवान के रूप को देखकर मोहित हुई और वो कहने लगी सरकार हमें भी स्वीकार करो। राम जी बोले देवी अभी तो हम राम अवतार में हैं, इसलिए एक पत्नी व्रतधारी रहेंगे, लेकिन द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तब अनेक पत्नी व्रत धारण कर लेंगे। तो जो ये 16,108 विवाहें हैं भगवान कृष्ण के, इनकी देन भी राम जी की है, इसमें भगवान कृष्ण की कोई गलती नहीं है। न राम जी ऐसा वचन देते, न भगवान कृष्ण को ऐसा करना पड़ता, इसलिए रोज तो हम बुराई करते रहे भगवान कृष्ण की, लेकिन आज महिमा गा रहे कि जितनी भी भगवान कृष्ण के साथ बीती है वो सब राम जी के कारण बीती है, ये सब रघुनाथ जी ही सब कुछ हैं। और अंत में हम यही कहेंगे राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश। राम और कृष्ण दोनों एक हैं, इसलिए आओ आज के इसी भाव को मानकर, आप लोग मन में ये भाव मत रखना कि कृष्ण छोटे हैं राम बड़े हैं, या राम जी थोड़ा पावरफुल हैं कृष्ण कम पावरफुल हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों समान हैं, सोना सोना होता है, पर आभूषण कोई भी हो सोना सोना होता है। उसी प्रकार राम जी और कृष्ण जी दोनों एक हैं और इसी का सार एक है। क्या? अरे कुछ भी बड़ा ना इस दुनिया में भैया,

0: धरती से आकाश तक भारत की बढ़ रही ताकत, देश में ही तैयार सेना के मॉडर्न हथियार, आत्मनिर्भर भारत का गोल्डन चैप्टर। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for sports, politics, entertainment, tech, and pop culture. Hosted by me, Billy Bush. Get unfiltered takes, A-list guests, real talk, no fluff. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: विकास की तस्वीर, खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: शुक्र की कौन सी राशि बहुत जिद्दी मानी जाती है? शुक्र की कौन सी राशि के लोग बहुत उदार होते हैं? और शुक्र की राशि का सूर्य और शनि से क्या संबंध है? कौन सी है शुक्र की राशियां और क्या है उनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
8: मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में विशेष नौका विहार उत्सव का आयोजन। भीषण गर्मी में ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए विशेष सजी नौका में किया गया विराजमान। भक्ति माहौल में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भारत से मंगोलिया भेजे गए भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेष। उलान बटार के प्रसिद्ध गंडन मठ में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखे जाएंगे ये पवित्र अवशेष। IPL के फाइनल में पहुंचे गुजरात टाइटंस। गिल के 104 रन की शतकीय पारी की बदौलत दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान को 7 विकेट से दी मात। रविवार को RCB से मुकाबला। एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का जलवा। पूजा सिंह ने हाई जंप में जीता गोल्ड, तोड़ा 14 साल पुराना रिकॉर्ड। नितिन गुप्ता ने 5000 मीटर रेस वॉक में हासिल किया स्वर्ण पदक। कश्मीर के सोनमर्ग में सैलानियों की भारी भीड़। पिछले कुछ ही महीनों में 4 लाख से ज्यादा सैलानी पहुंचे सोनमर्ग। टूरिज्म में जबरदस्त बूम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस की शानदार जीत। राजस्थान को हराकर IPL के फाइनल में पहुंची गुजरात। राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट पर बनाए थे 214 रन। गुजरात टाइटंस ने 18.4 ओवर में ही जीता मुकाबला। राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी की 96 रन की पारी पर गिल का शतक भारी। खेली 104 रन की शतकीय पारी। साई सुदर्शन ने महज 32 गेंद में बनाए ताबड़तोड़ 58 रन। बेकार गई राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी की धुआंधार 96 रन की पारी। इनिंग में 7 छक्के और 8 चौके। तीसरी बार IPL के फाइनल में पहुंचे गुजरात टाइटंस। 31 मई को फाइनल में RCB से भिड़ेगी गुजरात टाइटंस। भारत की पूजा सिंह ने हांगकांग में चल रही एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप में देश का नाम किया रोशन। हाई जंप में जीता गोल्ड। 1.93 मीटर की कूद लगाकर हाई जंप में पूजा ने बनाया नया रिकॉर्ड। सहारा कुमारी का 14 साल पुराना 1.92 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एक्स पर पूजा की तारीफ करते हुए किया पोस्ट, उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं। एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एथलीट नितिन गुप्ता ने जीता गोल्ड, पुरुष वर्ग की 5000 मीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम किया रोशन। नितिन ने 5000 मीटर रेस वॉक 19:47.49 में पूरी कर हासिल किया पहला स्थान। दूसरे स्थान पर रहे चीन के खिलाड़ी क्वीन लोन। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता आयोजित, कैलिफोर्निया के 14 साल के भारतीय मूल के श्रेय पारिक बने 2026 के चैंपियन। वॉशिंगटन डीसी में हुआ रोमांचक स्पेल ऑफ फाइनल, 250 प्रतियोगियों ने शुरू की थी एक अठिन स्पेलिंग यात्रा, दिखा जबरदस्त मुकाबला। फाइनल में पहुंचे 9 प्रतिभाशाली स्पेलर्स, टाई ब्रेकर में 90 सेकंड का तेज राउंड हुआ निर्णायक, पारिक ने 32 शब्द सही स्पेल कर जीत दर्ज की। विजेता श्रेय पारिक को मिला $50,000 का बड़ा इनाम, अंतिम स्पेल ऑफ राउंड ने मुकाबले को बनाया बेहद रोमांचक। हर शब्द के साथ बढ़ता रहा दर्शकों का उत्साह, भीड़ में खड़े होकर दोनों फाइनलिस्ट का किया गया सम्मान, मंच पर भावुक पल देखने को मिला। तमिलनाडु के तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर में बेहद भव्य तरीके से मनाया जाता है वैकासी विकासम का उत्सव, भगवान मुरुगन की प्रतिमा और गर्भगृह का होता है ताजे फूलों से श्रृंगार। मंदिर में इस दिन पंचामृत और दूध से किया जाता है भगवान का विशेष अभिषेक, भगवान मुरुगन का जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है वैकासी विकासम उत्सव। मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में मनाया गया नौका विहार, एक अत्यंत मनमोहक और विशेष उत्सव की तरह विशेष रूप से गर्मियों के महीने और अधिक मास के दौरान होता है यह आयोजन। भीषण गर्मी में ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए सजी नौका में किया गया विराजमान, भक्तिमय माहौल में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। इस दौरान जयकारों और भजन कीर्तन से गूंज उठा मंदिर परिसर, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे यहां श्रद्धालु। राम मंदिर स्थित परकोटा में स्थापित मां भगवती मंदिर के शिखर पर हुआ ध्वजारोहण, साध्वी रितंभरा ने विधि विधान से ध्वज पूजन कर किया ध्वजारोहण। ध्वजारोहण समारोह में साध्वी निरंजन ज्योति के साथ 3,500 महिलाएं रही शामिल, राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ की महिला जवानों ने ध्वजारोहण की रस्सी खींचकर कार्यक्रम को किया पूर्ण। कार्यक्रम को लेकर मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया, देश के विभिन्न राज्यों से मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की महिलाएं अयोध्या पहुंची। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को विशेष प्रसाद भी किया गया वितरित, आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक बना यह आयोजन। पूरे आयोजन में महिलाओं की विशेष सहभागिता देखने को मिली, कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने खुशी जताते हुए इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। भारत से मंगोलिया भेजे गए भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेष, बौद्ध धर्म में बुद्ध के अग्रश्रावक या परम शिष्य कहलाते हैं अरहंत सारिपुत्र और अरहंत महामौद्गल्य। मंगोलिया में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखे जाएंगे पवित्र अवशेष, 1 से 10 जून से उबान बटार के प्रसिद्ध गंडन मठ में होगी इनकी धार्मिक प्रदर्शनी। भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान से भेजा गया मंगोलिया, भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए पहल। अमरेली में मॉनसून के दौरान शेरों की सुरक्षा के लिए वन विभाग के पुख्ता इंतजाम, मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए शेरों का स्वास्थ्य परीक्षण और प्रभावित इलाकों की गहन निगरानी। शेरों की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने खोले कुओं के फेसिंग, बाढ़ चौकियों का भी किया गया गठन, साथ ही 24/7 रेस्क्यू टीमें की तैनाती गई। भलाई स्टील प्लांट के मैत्री बाग जू में भीषण गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए किए गए खास इंतजाम, जू प्रबंधन ने कूलिंग और हाइड्रेशन सिस्टम को और मजबूत किया। मैत्री बाग में मौजूद 5 व्हाइट टाइगर के बाड़े में पानी और कृत्रिम झरनों की व्यवस्था की गई, टाइफा चटाई और पानी की फुहारों से तापमान करीब 10 डिग्री तक कम रखा जा रहा है। सांभर, चीतल और ब्लैकबक जैसे वन्य जीवों के एनक्लोजर में स्प्रिंकलर्स और मिस्ट सिस्टम लगाए गए, जानवरों को राहत देने के लिए पानी से भरे मोट सिस्टम भी तैयार किए गए। पक्षियों और बंदरों को गर्मी से बचाने के लिए ग्रीन क्लॉथ और लगातार स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं, इससे वातावरण में नमी बनी रहती है और तापमान रहता है नियंत्रित। मैत्री बाग प्रबंधन बंदरों को तरबूज और तरबूज जैसे पानी वाले फल खिला रहा है। मांसाहारी जानवरों के भोजन में एंटी हीट स्ट्रेस विटामिन भी शामिल किया गया। कश्मीर के सोनमर्ग में सैलानियों की भारी भीड़, पहाड़ों की गर्मी के बीच बड़ी संख्या में पहुंचे हैं पर्यटक। पिछले कुछ ही महीनों में 4 लाख से ज्यादा सैलानी पहुंचे सोनमर्ग, टूरिज्म में जबरदस्त बूम। घाटी पहुंचे दर्जनों टूरिस्ट व्हीकल, स्थानीय कारोबारियों और होटल के मालिकों की चांदी। अगरतला का नीर महल पैलेस बना सैलानियों के आकर्षण का केंद्र, झील में बोटिंग का आनंद लेते हुए महल तक पहुंचते हैं पर्यटक। अपनी अनूठी जल महल वास्तुकला और शानदार प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों में काफी चर्चित, ये भारत का सबसे बड़ा और पूर्वी भारत का एकमात्र जल महल है। दिल्ली एनसीआर में हटाई गई ग्राफ वन की पाबंदियां, हवा की क्वालिटी में काफी सुधार, 123 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मध्यम श्रेणी में आता है। बागेश्वर में नदियां उफान पर, बैराज के गेट खोले गए, प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया। राजस्थान के जयपुर और धौलपुर में तेज बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में जलभराव और बिजली आपूर्ति बाधित। उत्तर प्रदेश के आगरा में आंधी बारिश से बड़ा नुकसान, पेड़ गिरे, टिनशेड उड़े और कई इलाकों में जलभराव। पटना में नाव के परिचालन पर जिला प्रशासन की सख्ती, अब बिना पंजीकरण के नाव चलाना पड़ेगा महंगा, सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के पहले गंगा में नहीं चलेंगी नावें। संजय दत्त की खलनायक रिटर्न्स में कमिश्नर राम के किरदार में नजर आएंगे जैकी श्रॉफ, एक्टर ने किया कन्फर्म। रणवीर पर FWIC के बैन के बाद एक्टर के बचाव में सिनेमा एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी सिंटा संगठन की वाइस प्रेसिडेंट पद्मिनी कोलापुरी बोली, हम रणवीर के साथ। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म है जवानी को, जवानी है तो इश्क होना है को CBFC ने दिया UA 16+ सर्टिफिकेट, रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का रन टाइम, फिल्म 5 जून को होगी रिलीज। अभिनेता अनुपम खेर की फिल्म श्रीराम भूमि की हुई आधिकारिक घोषणा, अयोध्या और राम जन्मभूमि के इतिहास पर आधारित इस फिल्म का मुहूर्त संपन्न, शूटिंग भी शुरू। प्राइम वीडियो की नई वेब सीरीज द पिरामिड स्कीम का ट्रेलर रिलीज, धुरंधर 2 में जस्सी का रोल निभाने वाले एक्टर परमवीर चीमा समेत रणवीर शौरी और शेखर सुमन मुख्य किरदार में। जॉर्जिया में 40,000 बोतलों का ऐतिहासिक वाइन संग्रह सामने आया, टीबिलिसी के पुराने तहखाने में मिला दुर्लभ वाइन खजाना। 19वीं सदी की फ्रेंच और जॉर्जियन वाइन भी शामिल, जॉर्जिया सरकार करेगी इस कलेक्शन की नीलामी, नीलामी से वाइन शिक्षा स्कूल खोलने की योजना। इतिहास और वाइन का अनोखा संगम बना आकर्षण का केंद्र, शाही रोमानो परिवार की दुर्लभ बोतलें भी कलेक्शन में शामिल। रूसी अंतरिक्ष यात्री सर्गेई स्वेर्चकोव ने स्पेस वॉक के दौरान मजेदार संदेश दिखाया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर मां मैनो टोपी पहन ली वाली तख्ती वायरल। अंतरिक्ष में 5 घंटे से अधिक चला स्पेस वॉक मिशन रोम कोस्मोस का पहला, 2024 का पहला स्पेस वॉक, अंतरिक्ष पर लगाए नए सोलर रेडिएशन एक्सपेरिमेंटल उपकरण। केपॉप ग्रुप एस्पा ने रिलीज किया नया एल्बम लेमनेड, 2 साल बाद आया ग्रुप का फुल लेंथ स्टूडियो एल्बम, 10 गानों से सजा एल्बम। एस्पा ने 2022 में किया था कुशेला वैली म्यूजिक एंड आर्ट फेस्टिवल में परफॉर्म, अगस्त में सियोल से शुरू होगी ग्रुप की ग्लोबल म्यूजिक जर्नी। अर्जेंटीना में फीफा वर्ल्ड कप का बड़ा जबरदस्त क्रेज, अर्जेंटीना में फुटबॉल बाजार गर्म, नकली जर्सियों की बिक्री में भारी उछाल दर्ज। ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर जर्सी और झंडों की भरमार, सस्ते विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं ग्राहक, सस्ते नकली प्रोडक्ट ज्यादा लोकप्रिय। वर्ल्ड कप माहौल से शहरों में पर्यटन और खरीदारी बढ़ी, फुटबॉल जुनून से स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी बड़ी हलचल। फ्रांस के बोर्डो में भीषण गर्मी से लोग बेहाल, दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में तापमान 37 डिग्री पहुंचा, गर्मी से बचने के लिए वाटर स्क्वायर पहुंचे लोग। मशहूर मिरोए डीओ बना राहत केंद्र, बड़ी गर्मी के बीच लोग पी रहे हैं ज्यादा पानी, मई में रिकॉर्ड तोड़, गर्मी ने बढ़ाई चिंता। मोटियो फ्रांस ने दर्ज किया मई का सबसे गर्म दिन, लोगों ने मौसम बदलाव को बताया डरावना, जलवायु बदलाव पर फिर गहराई वैश्विक चिंता। इंग्लैंड के वीट सेबल में पानी संकट में लोग परेशान, रिकॉर्ड गर्मी के बीच पानी सप्लाई ठप, 20,000 से ज्यादा लोग जल संकट से प्रभावित। आपातकालीन पानी सप्लाई शुरू करनी पड़ी, स्थानीय कारोबारियों को करनी पड़ी दुकानें बंद, छुट्टियों के बीच बड़ी पानी की मांग ने बढ़ाई मुश्किल। वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों का ऐसा वार्मअप अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय, ब्राजील के रियो में यही खेल अल्टिन्हा के नाम से अलग बना चुका है अपनी पहचान। रियो के बीचों बीच खेला जाने वाला अल्टिन्हा फुटबॉल प्रेमियों का बन रहा है नया जुनून, इसमें खिलाड़ी बिना हाथ लगाए गेंद को हवा में बनाए रखते हैं। 1960 के दशक में शुरू हुआ अल्टिन्हा अब ग्लोबल स्पोर्ट बनता जा रहा है, पूर्व फुटबॉलर और सीनेटर रोमारियो इसे ओलंपिक खेल बनाने की कर रहे हैं मांग। अल्टिन्हा में खिलाड़ियों की ट्रिक्स और टीम वर्क दर्शकों को खूब आकर्षित कर रही है, चैंपियनशिप में गेंद को ज्यादा देर हवा में रखने पर मिलते हैं अंक। ब्राजील की गलियों और बीचों से निकला अल्टिन्हा अब बन रहा इंटरनेशनल पहचान, खेल का मकसद गेंद और खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन तालमेल दिखाना।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
5: शुक्र की कौन सी राशि बहुत जिद्दी मानी जाती है? शुक्र की कौन सी राशि के लोग बहुत उदार होते हैं? और शुक्र की राशि का सूर्य और शनि से क्या संबंध है? कौन सी है शुक्र की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake up. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
10: समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे शुक्र के राजयोगों के बारे में कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र का राजयोग है तो ये जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है और शुक्र के राजयोग होने के फायदे क्या हैं। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 मई 2026 दिन शनिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 30 मई 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है वृषभ राशि में, बुध बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। देखिए आज हम शुक्र के शुभ योगों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शुक्र की विशेषताएं क्या हैं। देखिए शुक्र ग्रहों में कोमल और सौंदर्यवान माना जाता है। शुक्र को ग्रहों में मंत्रणा देने वाला मानते हैं, यानी मंत्री पद प्राप्त है और कुछ अंशों में शुक्र को भी गुरु माना जाता है। शुक्र आपके जीवन की भावनाओं से संबंध रखता है और कुछ लोग कुछ अंशों में शुक्र को गुरु का टीचर का दर्जा भी देते हैं। शुक्र जो है ये विवाह प्रेम और जीवन में सुख प्रदान करने वाला ग्रह है। शुक्र की दो राशियां हैं वृषभ राशि और तुला राशि। ये मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। लेकिन अगर छोटे में समझना चाहें तो आपके जीवन में जो सुख है, जो आनंद है, जो कंफर्ट है, जो लग्जरी है, ये आपको शुक्र से प्राप्त होती है। यानी आप जीवन में कितने सुखी रहेंगे ये बात डिसाइड होती है शुक्र की वजह से, और शुक्र की वजह से जीवन में आनंद और सुख प्राप्त होता है। शुक्र का जो पहला शुभ योग है उसका नाम है मालव्य।
मालवीय योग।

क्या है? मालव्य योग जो है ये शुक्र का पंच महापुरुष योग है। शुक्र जब वृषभ, तुला या मीन राशि में हो तो मालव्य योग बन जाता है, लेकिन शर्त ये है कि इसके लिए शुक्र लग्न से केंद्र में होना चाहिए। शुक्र अगर वृषभ, तुला या मीन राशि में बैठा हो और लग्न से केंद्र में बैठा हुआ हो तब कुंडली में मालव्य योग बन जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति वैभवशाली हो जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति का वैभव और संपन्नता बहुत होती है। जीवन में हर सुख सुविधा और अपार ग्लैमर प्राप्त होता है। ऐसे लोगों के अंदर आकर्षण भी प्रबल होता है। ऐसे लोग बड़े ग्लैमरस होते हैं और लोग उनकी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। शुक्र के दूसरे शुभ योग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। शुक्र का अगला शुभ योग है चतुर्थस्थ शुक्र। शुक्र का चौथे स्थान में बैठना। शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली हो जाता है और चौथे स्थान में बैठ करके शुक्र ऐश्वर्य और वैभव ये तो जीवन में देता ही है, साथ ही साथ व्यक्ति को जीवन में ईमानदार और करुणावान बनाता है। और चौथे स्थान में शुक्र के बैठने पर व्यक्ति को जीवन में उच्च पद भी प्राप्त होता है। चौथे भाव में जिनके शुक्र हो ऐसे लोग वस्त्र के काम में, कॉस्मेटिक्स में, सौंदर्य में या मीडिया के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। जिनकी कुंडली के चौथे भाव में शुक्र बैठा हो उसमें एक गड़बड़ी ये देखी गई है कि वो माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन वो धन के मामले में, वैभव के मामले में और संपन्नता के मामले में बहुत उत्तम माना जाता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र का कोई भी राजयोग है, शुक्र का कोई भी शुभ योग है, आप पुरुष हैं तो स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, और अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष के साथ अच्छा व्यवहार करिए। साथ ही साथ नियमित रूप से पूजा उपासना करिए और साफ सफाई का, अपने वस्त्रों का बहुत ध्यान दीजिए। शुक्र से अधिक लाभ लेना चाहते हैं या शुक्र के राजयोग को फलित करना चाहते हैं तो इसके लिए जितना माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। शुक्र के राजयोगों का शुभ प्रभाव आपको जीवन में ज्यादा मिलेगा। तो आज हमने शुक्र के शुभ योगों के बारे में बात की। अब जान लेते हैं भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अपने घर के पूजा स्थान का रंग अगर आप पीला रखें या अगर आप सफेद रखें
तो ये सबसे ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा करने से आप अपने मन को एकाग्र और शांत बना पाएंगे। अब जान लेते हैं 30 मई 2026 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में विशेष नौका विहार उत्सव का आयोजन। भीषण गर्मी में ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए विशेष सजी नौका में किया गया विराजमान। भक्ति में माहौल में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भारत से मंगोलिया भेजे गए भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेष। उलान बटार के प्रसिद्ध गंडन मठ में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखे जाएंगे पवित्र अवशेष। आईपीएल के फाइनल में पहुंचे गुजरात टाइटंस। गिल के 104 रन की शतकीय पारी की बदौलत दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान को 7 विकेट से दी मात। रविवार को आरसीबी से मुकाबला। एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट का जलवा। पूजा सिंह ने हाई जंप में जीता गोल्ड, तोड़ा 14 साल पुराना रिकॉर्ड। नितिन गुप्ता ने 5000 मीटर रेस वॉक में हासिल किया स्वर्ण पदक। कश्मीर के सोनमर्ग में सैलानियों की भारी भीड़। पिछले कुछ ही महीनों में 4,00,000 से ज्यादा सैलानी पहुंचे सोनमर्ग। टूरिज्म में जबरदस्त बूम।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: देखिए, यूं तो शुक्र यानी कि वीनस खूबसूरती और ऐश्वर्य का ग्रह है, लेकिन आखिर वो कौन सी राशियां हैं जो कि शुक्र की राशियां कहलाती हैं और इन राशियों की क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में आज के कार्यक्रम में पंडित जी से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले उनसे जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आप जीवन में सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो हर शुक्रवार को देवी के मंदिर में, चाहे माँ लक्ष्मी का मंदिर हो, माँ काली का मंदिर हो, माँ दुर्गा का मंदिर हो, वहां पर सफेद मिठाई का दान करिए, खुद भी प्रसाद ग्रहण करिए और लोगों को भी खिलाइए। अगर ऐसा आप हर शुक्रवार के शुक्रवार देवी के मंदिर में जा करके करें तो आपके जीवन में सुख बड़ी आसानी से आएगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 30 मई 2026 यानी कि दिन शनिवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 30 मई 2026 दिन शनिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि आखिरकार शुक्र की राशियां कौन सी होती हैं और उनमें क्या कुछ खास होता है, क्या विशेषताएं होती हैं उनकी।
1: जी देखिए, किसी भी ग्रह का जो रिफ्लेक्शन होता है, किसी भी ग्रह का जो गुण होता है, वो उसकी राशियों के माध्यम से पता चलता है, अभिव्यक्त होता है। हम आज बात कर रहे हैं शुक्र की राशियों के बारे में। शुक्र की राशियों की विशेषता क्या है? देखिए, शुक्र मुख्यतः जल तत्व का प्लेनेट है और इसकी दो राशियां ज्योतिष में मानी जाती हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। वृष राशि जो है ये पृथ्वी तत्व की राशि है और तुला राशि जो है ये वायु तत्व की राशि है, हालांकि दोनों के स्वामी शुक्र हैं। वृष राशि के लिए शुक्र डिसिप्लिन पैदा करता है, सिस्टम पैदा करता है। वृषभ राशि वाले ज्यादातर डिसिप्लिन्ड और सिस्टमेटिक होते हैं। तुला राशि के लिए शुक्र उन्माद जन्य होता है। तुला में शुक्र के अंदर चंचलता आती है। तुला राशि वालों के पास उन्माद, प्रेम, चंचलता, भटकाव ये थोड़ा ज्यादा होता है। वैसे इन दोनों में शुक्र के जो ज्यादा निकट राशि है या जिस राशि के अंदर शुक्र के गुण ज्यादा पाए जाते हैं, वो राशि है लिब्रा यानी तुला। तो देखिए, वैसे तो शुक्र की दोनों ही राशियां हैं, वृषभ भी और तुला भी, लेकिन दोनों का बेसिक नेचर, दोनों का बिहेवियर और दोनों का भाग्य लगभग अलग अलग होता है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि अविवाहित हैं तो इस समय विवाह के मामलों में तेजी आएगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन की स्थितियां ठीक रहेंगी, मानसिक तनाव कम होगा, परिवार में शुभ कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए सबसे पहले शुक्र की पहली राशि यानी वृषभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन जातकों को अपने जीवन में क्या कुछ बाधाएं आती हैं, किन कुछ सावधानियों का इन्हें ध्यान रखना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: तो शुक्र की जो पहली राशि है उसे कहते हैं वृषभ, यानी वृष भी कहते हैं, टॉरस भी कहते हैं। इसकी विशिष्टताएं क्या हैं? एक तो ये पृथ्वी तत्व की राशि है, अर्थियल एलिमेंट की राशि है, बड़ी मजबूत राशि मानते हैं इसको। और इस पृथ्वी तत्व की राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। चंद्रमा की बड़ी प्रिय राशि है वृषभ। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का हो जाता है, तो चंद्रमा के लिए बड़ी प्रिय राशि है, इसलिए चंद्र वाला भी थोड़ा खूबसूरती का पार्ट वृषभ राशि में आ जाता है। इस राशि में बुध की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी की राशि वृषभ है और बुध उसकी कुंडली में थोड़ा भी फेवरेबल है तो वृष वालों को बड़ा फायदा पहुंचाता है। इस राशि को सौंदर्य की राशि, दिखने में अच्छे होते हैं, साहसी राशि और आत्मविश्वास की राशि माना जाता है। वृषभ राशि जो है ये मुख्यतः वाणी की राशि है, बोलने से इसका संबंध है और आपके धन से इसका संबंध है। तो ये राशि वाणी और धन को सीधे तौर से प्रभावित करती है। हालांकि देखिए शुक्र वाले लोग अनुशासित नहीं होते, लेकिन वृषभ के बारे में ये बात ठीक नहीं है। वृषभ राशि शुक्र से प्रभावित होने के बावजूद डिसिप्लिन्ड रहती है। 90% वृषभ राशि के लोग जीवन में सिस्टम से चलते हैं। इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है जिद्दी और क्रोधी स्वभाव। जैसे बैल है ना, सड़क पे बैठ गया आप हॉर्न बजाते रहिए वो हिलेगा नहीं, तो वृषभ का प्रतीक क्या है? बैल। इसीलिए जिद बहुत है, क्रोध बहुत है, ताकत बहुत है, और जिद में क्रोध में आने पर अनियंत्रित हो जाते हैं। जो वृषभ राशि के लोग हैं इनको सलाह लेकर एक पन्ना धारण करना चाहिए और वृषभ वालों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। परिवार में तनाव हो सकता है, यात्रा में सावधानी रखेंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, लेकिन काम के मामले में, व्यापार में, नौकरी में व्यस्तता बहुत रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, थोड़ी सी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी, धन के मामलों में सफलता मिलेगी, ऑफिस की समस्या कम हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न आकाश गुप्ता जी ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखते हैं। 31 मार्च 1998 का जन्म है, 7:40 प्रातः, कानपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं काफी समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, खास तौर से मैं रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। क्या मुझे नौकरी मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? आकाश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अपनी रेलवे की तैयारी जारी रखिए और साथ में यूपी पीसीएस की तैयारी भी करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में उच्च पद प्राप्त करने की, बेहतर नौकरी मिलने की संभावना 2027 के आखिरी तक आते आते दिखाई दे रही है। 27-28 का समय बहुत ही अच्छा है और अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपको बेहतर नौकरी मिलेगी। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद सुबह के समय एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र इसका रोज सुबह पाठ करिएगा, निसंदेह आपको सफलता मिलेगी।
0: तो चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है आज का दूसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई परेशानी, दुख, तकलीफ है, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला यानी कि दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न शुभम खन्ना ने कोलकाता से हमें लिखा है। 11 अप्रैल 1986 का जन्म है, 7:20 प्रातः, कोलकाता पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी चली गई है, मैं नौकरी तलाश कर रहा हूँ, कब तक नौकरी मिलेगी, और एक साल पहले मेरा विवाह हुआ है लेकिन पारिवारिक जीवन में सुख शांति नहीं है, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए। शुभम, सबसे पहले आपको बता दें कि आपको नौकरी 28 सितंबर के पहले मिलेगी, जुलाई अगस्त सितंबर के समय में आपकी नौकरी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखो ये है कि पारिवारिक जीवन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, एडजस्टमेंट करने में समय कहीं भी लगता है, थोड़ा धैर्य रखिए, आपके पारिवारिक जीवन में कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है जिसकी चिंता की जाए। हाँ, आप दो उपाय करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहने, और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात शुक्र की दूसरी राशि यानी कि तुला राशि के बारे में कर लेते हैं। तुला राशि की क्या विशेषताएं होती हैं, क्यों ये राशि इतनी खास मानी जाती है और किन सावधानियों का खास ख्याल तुला राशि वालों को रखना चाहिए, आइए जानते हैं।
1: तो शुक्र की जो दूसरी राशि है उसे कहते हैं तुला, लिब्रा। क्या विशिष्टताएं हैं, देखिए वायु तत्व की राशि है तुला और तुला के स्वामी भी शुक्र हैं। जैसे वृषभ राशि चंद्रमा की बड़ी प्रिय राशि है, वैसे तुला राशि शनि की सबसे प्रिय राशि है, शनि तुला में उच्च के हो जाते हैं। तुला वालों का स्वामी शुक्र जरूर है लेकिन इनका जीवन चलता है शनि की कृपा से। अगर किसी व्यक्ति की राशि तुला है और उसकी कुंडली में शनि बेहतर है तो वो जीवन में सफल अवश्य होगा। तुला राशि ग्लैमरस राशि है, उदार है, जेनरस है और सरल स्वभाव के लोग होते हैं तुला वाले, ज्यादा 3, 5, 56, 55 में नहीं पड़ते, उदारता से, चैन से, आसानी से जीवन जीते हैं। न्याय करना, चीजों को बैलेंस करना, आकर्षण बहुत होता है इनके अंदर और धन भी बहुत होता है इनके पास। तुला वाले जो हैं वो दूसरों को बड़ी सरलता से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कुंडली किसी की भी हो, तुला राशि प्रेम और विवाह के लिए बड़ी महत्वपूर्ण राशि मानी जाती है। तुला राशि के साथ जो सबसे अहम बात है कि कुंडली में अगर तुला राशि में पाप ग्रहों का कॉम्बिनेशन है तो ये मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। तुला वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये पॉम्प एंड शो बहुत करते हैं, दिखावा बहुत करते हैं, थोड़ा भी रहेगा लेकिन दिखावा बहुत करेंगे और दूसरों पर जल्दी भरोसा करते हैं, लोग इनको यूज करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, इनको उल्लू बनाकर लोग अपना काम निकलवा लेते हैं। क्योंकि देखिए दिखावा भले करें लेकिन बेसिकली स्वभाव से सरल होते हैं। तुला राशि वालों को नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, रोज शाम को एक माला शनि मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः इसका जप करें और सलाह लेकर तुला वाले शनि का रत्न यानी नीलम अगर ये पहने तुला वाले सलाह लेकर तो इनको बहुत फायदा होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है।
1: तुला राशि, धन प्राप्ति के मजबूत योग बन रहे हैं, परिवार में व्यस्तता बढ़ी रहेगी, हालांकि रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में मतभेद हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी धर्म स्थान पर जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो अगर आपकी राशि वृषभ है और आपके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं, बाधाओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो क्या कुछ उपाय आपको करने चाहिए? आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए, हर राशि का एक नेचर होता है, उसके अपने ग्रह प्लस माइनस होते हैं, जिसके हिसाब से उसके जीवन में लाभ और हानि होती है, फायदा और नुकसान होता है। अगर आपकी राशि वृषभ है, जीवन में मुश्किल आ रही है, तो क्या करेंगे? वृष राशि वालों को हमेशा बेवजह के संघर्ष से बचना चाहिए। हर जगह प्रेशर बनाने से, हर जगह संघर्ष करने से काम नहीं होगा। और इस राशि के लोग कभी कभी बेवजह मेहनत करते हैं, व्यर्थ की मेहनत करने लगते हैं, तो वो भी मत करिए, मेहनत को व्यर्थ मत करिए। वृषभ राशि वालों को सुबह और शाम दोनों समय माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। श्री सूक्तम पढ़ें, महालक्ष्मी स्तोत्र पढ़ें, इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ें या माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। और वृषभ वालों को चांदी जरूर पहननी चाहिए। एक चांदी का कड़ा अगर वृषभ राशि वाले धारण करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात तुला राशि की कर लेते हैं। अगर आपकी राशि तुला है यानी लीब्रा है और आपके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं, तो क्या कुछ उपाय आपको करने चाहिए? आइए जानते हैं।
1: देखिए, तुला राशि वाले जो है ना, वो चंचलता की वजह से, फोकस सही ना होने की वजह से मार खा जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि अगर आपकी राशि तुला है तो अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखिए, अपनी फैमिली लाइफ का ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि अक्सर तुला वालों को पारिवारिक जीवन को लेकर और वैवाहिक जीवन को लेकर समस्याएं परेशान करती हैं। तुला राशि वालों को रोज शाम को या अर्ली मॉर्निंग शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए, या तो ओम शुं शुक्राय नमः या ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करें। और सलाह लेकर तुला वालों को एक पन्ना पहनना चाहिए ताकि उनके निर्णय सही हों, उनकी बुद्धि सही समय पर उनका साथ दे सके।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपके व्यस्तता रहेगी। विवाह के मामलों में आपके तेजी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, कारोबार में लाभ होगा। स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। पूजा उपासना में थोड़ा समय लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में समस्या के योग हैं। व्यर्थ का मानसिक तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न संगीता जी ने लखनऊ से लिखा है। अपने दोस्त के बारे में जानना चाहती हैं। इनके दोस्त की जन्म तारीख है 24 जनवरी 1989, 7:15 सवेरे, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरे दोस्त का एक विवाह का मुकदमा अपनी पत्नी के साथ चल रहा है। मेंटेनेंस भी मेरा दोस्त दे रहा है। बहुत सारे झूठे आरोप हैं उसके ऊपर। इस मुकदमे से मुक्ति कब तक मिलेगी? संगीता जी, आपके दोस्त की कुंडली है मकर लग्न और सिंह राशि की। महादशा चंद्रमा की और अंतर दशा बुध की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से फरवरी 2027 के बाद इस मुकदमे से आपके मित्र को मुक्ति मिलेगी। फरवरी 2027 के बाद ये मामला आपसी सुलह समझौते से हल हो जाएगा। दूसरा, आप अपने दोस्त को बोलिए कि इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे, चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचाव करेंगे। एक इनको ओपल बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके इनको पहनाएं और इनको बोलिए कि रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये दो उपाय निरंतर करते जाएं, बहुत जल्दी मैरिटल मुकदमे से छुटकारा मिल जाएगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है आज का चौथा सवाल लेने का। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इसी ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला यानी कि चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी अगला प्रश्न नेहा ने हमें लिखा है। नेहा हमें बांदा उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। अपने पिता के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पिता की जन्म तारीख है 2 फरवरी 1955 1:27 मध्य रात्रि को एम। जन्म स्थान है बांदा उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि हमारे पूरे परिवार में संघर्ष बहुत ज्यादा है। मैं और मेरे भाई अभी बेरोजगार हैं। पिता का मकान नहीं है तो पिताजी का मकान कब तक बनेगा? परिवार में सफलता कब तक आएगी? सुख शांति कब तक आएगी? नेहा आपके पिताजी की कुंडली बनती है तुला लग्न की और वृषभ राशि की। महादशा बुध की और अंतर दशा भी बुध की चल रही है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपके परिवार के जो हालात हैं जो स्थितियां हैं वो अक्टूबर 2026 के बाद से धीरे धीरे बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। साल 2027 में जनवरी से लेके और अक्टूबर के बीच में कोई मकान का लाभ किसी संपत्ति का लाभ आपके पिता को हो सकता है। ये संभावना दिखाई दे रही है। एक तो अपने पिताजी को आप ओपल बनवा के पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके पहनाइए और अपने पिताजी को बोलिए कि रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। अगर ऐसा नियमित रूप से करते जाएं तो जैसे जैसे पाठ करते जाएंगे वैसे वैसे परिवार की स्थितियां बेहतर हो जाएंगी।
0: तो पंडित जी आज के कार्यक्रम में हमने वृषभ और तुला राशि के बारे में बात की। आपने बताया कि ये वीनस की राशियां हैं यानी शुक्र की ये राशियां हैं। क्या कोई और ऐसा ग्रह है जिनसे इन राशियों का संबंध है?
1: जी देखिए वृषभ राशि शुक्र की राशि है लेकिन वृषभ राशि चंद्रमा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा अगर वृषभ राशि में बैठेगा तो बहुत ताकतवर बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। तो वृषभ राशि के लिए चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और तुला राशि के लिए सूर्य और शनि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुला राशि में जब शनि जाता है तो वो उच्च का हो जाता है बहुत शक्तिशाली होता है और वहां पर शनि अपनी पूरी योग्यता दिखा देता है। तुला राशि सूर्य की सबसे कमजोर राशि है। जब सूर्य तुला राशि में जाते हैं तो अत्यधिक कमजोर हो जाते हैं और सामान्यतः व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं देते हैं। तो ये बात तो ठीक है कि वृषभ और तुला शुक्र की राशियां हैं लेकिन 3 ग्रहों से इनका कनेक्शन है। वृषभ का संबंध चंद्र से है और तुला का संबंध शनि और सूर्य से भी देखा जाता है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जिनका जन्मदिन 30 मई को है आप सभी को हैप्पी बर्थडे। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 30 मई को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। करियर की स्थिति मध्यम रहेगी। इस साल धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। अगर अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का जप करें। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर होगा।
0: और अब कार्यक्रम के अंत में समय हो गया है पंडित जी से जानने का कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
1: आज की जिज्ञासा है कि क्या कलाई घड़ी रिस्ट वॉच आपके भाग्य पर असर डालती है। देखिए, कलाई घड़ी का रंग और कलाई घड़ी का स्ट्रैप यानी फीता, ये आपके जीवन पर असर डाल देता है। अपने अनुकूल ग्रह के अनुसार अगर घड़ी का डायल और स्ट्रैप रखते हैं आप, तो समय को अपने हिसाब से कंट्रोल करने में लाभ होगा और आपका खराब से खराब समय भी आसानी से बीत जाएगा।
0: तो चलिए अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं 30 मई 2026 यानी कि शनिवार का शुभ पहर कौन सा है।
1: दिनांक 30 मई 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। आपके रोजगार और करियर की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 30 मई शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
0: और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज के भाग्यशाली यानी आज की गुडलक राशि कौन सी है।
1: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करें। आज की गुडलक राशि है कन्या। जीवन की बेहतरी के लिए भगवान विष्णु की उपासना करें और नियमित रूप से अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का, भोजन का दान करते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन की रुकावटें दूर हो जाएंगी।
0: और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का महा उपाय आखिर क्या है।
1: बहुत बार ऐसा समय जिंदगी में आ जाता है कि हमारे रिश्ते सबके साथ बिगड़ने लगते हैं। दोस्त के साथ, परिवार के साथ, पति पत्नी, संतान के साथ रिश्ते रोज रोज खराब हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या उपाय करें। रोज सवेरे पूजा के स्थान पर धूप बत्ती जलाकर प्रार्थना करें कि आपके रिश्ते खराब ना हो। अपने घर से पुरानी और अनुपयोगी चीज जिसका आप प्रयोग नहीं करते उसको हटा दें और हर शुक्रवार को किसी भी देवी के, माता के मंदिर में सफेद मिठाई अर्पित करें। ऐसा निरंतर आप करते जाएं, आपके जो रिश्ते लगातार टूट रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे।
0: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: तो आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: कौन सा शुभ योग जीवन में ऐश्वर्य देता है? शुक्र का कौन सा शुभ योग सुख तो देता है लेकिन माता के सुख में कमी कर देता है? कौन से हैं शुक्र के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar, plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Good news today.
4: Good news today is really good. It's good. उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: धरती से आकाश तक भारत की बढ़ रही ताकत, देश में ही तैयार सेना के मॉडर्न हथियार, आत्मनिर्भर भारत का गोल्डन चैप्टर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: और चलिए अब नजर डाल लेते हैं उन वीडियोस पर जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर देंगे।
3: जिंदगी में खुश रहने के लिए कोई वजह जरूरी नहीं होती। ये नन्हा बच्चा स्टील के बर्तन की थाप पर मासूमियत से झूमता नजर आ रहा है। उसकी मुस्कान और छोटे छोटे कदम दिल को खुशी से भर देते हैं। सच में बचपन की यही सादगी जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। ये महिला नारी शक्ति की सशक्त मिसाल है। एक तरफ भारी कैमरा संभालते हुए वो शादी की फोटोग्राफी कर रही है, तो दूसरी तरफ अपनी छोटी बच्ची का भी ध्यान रख रही है। माँ की ममता से बच्चा परे ना हो, इसलिए ये साहस सिर्फ माँ ही कर सकती है। ये नज़ारा दिखाता है कि महिलाएं जिम्मेदारी के साथ अपने सपनों को भी बखूबी पूरा कर सकती हैं। दोस्ती की ये अनोखी मिसाल दिल को छू लेती है। एक बच्चा अपने खाने को एक तोते के साथ शेयर कर रहा है और दोनों आराम के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ये मासूम दोस्ती इंसानों और प्रकृति के बीच प्यार और अपनापन दिखाती है। चिड़िया हमारी बचपन की साथी हुआ करती थी, लेकिन आज इन्हें देख पाना दुर्लभ हो गया है। ये नज़ारा बचपन की यादें ताज़ा कर देता है, जब हम चिड़ियों को नहाते हुए देखकर मौसम बदलने की उम्मीद करते थे। आज वही मासूम पल बहुत याद आते हैं। ये छोटी बच्ची अपनी मासूमियत और एनर्जी से दिल जीत रही है। दो चोटियों में सजी ये नन्ही परी मस्ती में झूमते हुए अपने हर स्टेप को बेहद क्यूट अंदाज में कर रही है। उसकी खुशी और नटखटपन देखने वालों का मन खुश कर देती है।
2: IIT दिल्ली का सेंट्रल रिजर्व फैसिलिटी यानी CRF देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक रिसर्च सुविधाओं में से एक माना जाता है। यहां पर हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग, बायोमेडिकल रिसर्च, मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में रिसर्च की जा रही है। CRF ने देश में रिसर्च को एक नई दिशा दी है और यहां पर क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समेत कई उपकरणों के माध्यम से अत्याधुनिक रिसर्च किए जा रहे हैं।
4: IIT दिल्ली में मौजूद सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी यानी CRF देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक रिसर्च सुविधाओं में से एक मानी जाती है। यहाँ ऑप्टिकल कैरेक्टराइजेशन, हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग, बायोमेडिकल रिसर्च, मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में रिसर्च की जा रही है। बुधवार को IIT दिल्ली के कैंपस में CRF डे के मौके पर देश की अत्याधुनिक रिसर्च सुविधाओं और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया। इन्हीं में से एक है अत्याधुनिक क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी मदद से वैज्ञानिक प्रोटीन, वायरस और बायोमोलिक्यूल की 3D संरचना को बेहद सूक्ष्म स्तर पर देख सकते हैं। यह तकनीक मेडिकल रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहद अहम मानी जा रही है।
5: क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है हम जानते हैं, किसी भी वायरस की बारीक से बारीक इमेजेस निकालने के लिए, किसी वायरस का या प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर है ये जानने के लिए। एक बार जब रिसर्चर स्ट्रक्चर जान जाते हैं, तो उसके बाद ही उसकी जो दवा है वो तैयार होती है या फिर वैक्सीन जो है वो तैयार किया जाता है। जब कोविड के लिए वैक्सीन बनी तो उसके लिए भी इसी तरह का प्रोसेस अपनाया गया कि पहले उसका वायरस का स्ट्रक्चर जाना गया, उसके हिसाब से फिर उसकी जो वैक्सीन है वो तैयार की गई। ये माइक्रोस्कोप दुनिया के सबसे एडवांस्ड माइक्रोस्कोप में से एक माना जाता है।
4: इस मशीन के जरिए किसी भी वायरस को समझकर उसके लिए वैक्सीन या दवा तैयार की जा सकती है। यह अत्याधुनिक मशीन -190 डिग्री सेल्सियस तापमान पर काम करती है और

0: जैविक नमूनों की हाई रेजोल्यूशन इमेज तैयार करती है। इस तकनीक की मदद से वायरस, प्रोटीन और सेलुलर संरचनाओं को उनकी वास्तविक अवस्था में समझा जा सकता है। इस तकनीक को आधुनिक बायोमेडिकल रिसर्च की रीढ़ माना जा रहा है।
1: इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन, ये हाईली ऑटोमेटेड है, थ्रूपुट ज़्यादा है कि हम एक टाइम पे हम 12 सैम्पल्स लोड कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर काफ़ी एडवांसमेंट है। आप ओवरनाइट डेटा कलेक्शन लगा सकते हैं जो कि मैन पावर को कम करता है।
0: FESEM यानी फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी एक अत्याधुनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल यहाँ के वैज्ञानिक कर रहे हैं। ये एक बेहद हाई मैग्निफिकेशन पर मटेरियल की सतह की विस्तृत इमेज उपलब्ध कराती है। इससे वैज्ञानिक नैनो स्तर की संरचनाओं और बेहद सूक्ष्म खामियों का अध्ययन कर सकते हैं जिन्हें सामान्य माइक्रोस्कोप से देख पाना संभव नहीं होता।
2: आप कभी अस्पताल जाते होंगे तो आपको जो पट्टी किसी घाव पर बांधी जाती होगी वो महज 5-10 रुपए की आती होगी, लेकिन आजकल ऐसे बैंडेज भी आते हैं जो सर्जरी के बाद बांधे जाते हैं, उनकी कीमत लगभग 3,000 रुपए तक होती है। अंतर क्या है? दरअसल ये इसी रिसर्च का हिस्सा था। ये अब एक ऐसे बैंडेजेस बन गए हैं जिनसे कोई भी बैक्टीरिया आपके घाव तक पहुंच ही नहीं सकता। इस तरह की रिसर्च इस माइक्रोस्कोप के जरिए होती है।
0: इस मशीन का इस्तेमाल मौजूदा वक्त में अच्छे क्वालिटी के कपड़े बनाने और सिविल कंस्ट्रक्शन में बेहतर क्वालिटी के लिए किया जा रहा है।
3: पहले हम लोग जो कन्वेंशनल हमारे माइक्रोस्कोप शो होते थे उनका जो मैग्निफिकेशन होता था, जो बड़ा करने की बेसिकली कहते हैं किसी चीज़ को जूम करके देखने की जो पावर थी वो 1000x ज़्यादा से ज़्यादा होती थी, 100x, 200x, 1000x तक हम लोग जाते थे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होते थे। बट इसमें हमारा क्या है कि सोर्स कोड जो सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हम किसी भी सरफेस को, किसी भी सैंपल के सरफेस को 3 लाख या 4 लाख गुना तक देख सकते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि नैनो पे रियल में काम होता है। तो ये मशीन जब से नैनो में काम होना शुरू हुआ तो नैनो के लिए ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी टूल है।
0: इन उपकरणों की मदद से वैज्ञानिक परमाणु स्तर तक रिसर्च और विश्लेषण कर सकते हैं। IIT दिल्ली का यह प्रयास न सिर्फ देश में वैज्ञानिक शोध को नई दिशा देगा बल्कि स्टार्टअप्स, MSMEs और युवा वैज्ञानिकों के लिए भी नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेगा। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
4: उत्तराखंड का नाम सुनते ही दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता है, ठंडी ठंडी वादियों में मन घूमने लगता है। वैसे भी इन दिनों गर्मी ज्यादा है और समर वेकेशंस भी हैं, तो घूमने के लिए उत्तराखंड परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं तो चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जरूर जाएं।
5: ये नज़ारा मात्र मौसम की एक घटना नहीं है बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत मेल है। इन दिनों उत्तराखंड के हिमालय की गोद में बसा पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा इसी अनोखे नज़ारे का गवाह बना हुआ है। मई महीने में जब पहाड़ आमतौर पर हरे भरे हो जाते हैं तब वहां अचानक इतनी बर्फबारी हुई कि पूरा परिसर सफेद चादर ओढ़कर खड़ा हो गया। गुरुद्वारा घुमावदार रास्ते और ऊपर तक फैला आसमान सब कुछ शुद्ध सफेद हो गया। हल्की धुंध और कोहरे की नरम चादर ने इस नजारे को और भी रहस्यमय और दिव्य बना दिया। यहाँ तक कि सरोवर का पानी बर्फ की पतली परत से ढका है और ठंडी हवाएं गुनगुना रही हैं। इस मौसम में भी लोगों की आस्था प्रबल है। हजारों श्रद्धालु इस बर्फीले सफर को पार करते हुए दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ ने तो इस बर्फीले सरोवर में स्नान भी किया। इस बार मई में हुई बर्फबारी ने इस आध्यात्मिक यात्रा को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। साथ ही ये ठंडा और खूबसूरत रूप याद दिला रहा है कि सच्ची आस्था के सामने कोई मौसम रुकावट नहीं बन सकता। ये अनोखी बर्फबारी उत्तराखंड पर्यटन के लिए एक बड़ा आकर्षण भी बन गई है। जो पर्यटक सामान्य रूप से गर्मियों में हिल स्टेशन तक ही सीमित रहते हैं वो अब हेमकुंड साहिब के इस बर्फीले रूप को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। ये मौसम राज्य के एडवेंचर और स्पिरिचुअल टूरिज्म को नई ऊर्जा दे रहा है। यहाँ प्रकृति का रोमांच, साहसिक यात्रा, आस्था की शक्ति एक साथ मिलती है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: तो आप भी अपने देश में सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बना डालिए एक व्लॉग। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
8: After multiple assassination attempts, they can't even get.
9: They're reliable.
10: Always when I need them.
7: To live sports action.
11: One hand jam by LeBron on the break.
12: That's another three, Steph Curry.
7: And your favorite music.
13: Well, the dawn begins to crack.
7: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
16: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
18: और दुर्भाग्य कहता है
19: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है
16: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: का कौन सा शुभ योग जीवन में ऐश्वर्य देता है? शुक्र का कौन सा शुभ योग सुख तो देता है लेकिन माता के सुख में कमी कर देता है? कौन से हैं शुक्र के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: पुणे में एनडीए के ऐतिहासिक 150वीं पासिंग आउट परेड, सेना के तीनों अंगों को मिले नए अफसर, कुल 355 कैडेट्स हुए शामिल। ज्येष्ठ अधिकमास शुक्ल चतुर्दशी पर बाबा महाकाल की भव्य दिव्य भस्म आरती, आज भक्त रख रहे हैं अधिकमास पूर्णिमा का व्रत, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में विशेष नौका विहार उत्सव का आयोजन, ठाकुर जी को विशेष सजी नौका में किया गया विराजमान, भक्तिमय माहौल में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आईपीएल के फाइनल में पहुंची गुजरात टाइटंस, गिल की 104 रन की शतकीय पारी की बदौलत दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान को 7 विकेट से दी मात, कल होगा आरसीबी से मुकाबला। एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट का जलवा, पूजा सिंह ने हाई जंप में जीता गोल्ड, तोड़ा 14 साल पुराना रिकॉर्ड, नितिन ने 5000 मीटर रेस वॉक में हासिल किया स्वर्ण पदक। ग्लाइडर्स की हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, खराब मौसम और तेज हवाओं के बीच उतारना पड़ा पैराग्लाइडर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके पढ़।
3: पुणे के खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी के 150वें कोर्स की पासिंग आउट परेड, सेना के तीनों अंगों को मिले नए अफसर। पासिंग आउट परेड में सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 355 कैडेट शामिल, ट्रेनिंग संपन्न होने के बाद हुई परेड। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया परेड का रिव्यू, ऐतिहासिक खेत्रपाल परेड ग्राउंड में हुई परेड। परेड के दौरान कैडेट्स ने किया शानदार मार्च पास्ट, कठोर सैन्य और शैक्षणिक प्रशिक्षण की दिखी झलक। एनडीए में 3 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद होती है कैडेट्स की पासिंग आउट परेड, साल में 2 बार होता है आयोजन। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पासिंग आउट परेड का निरीक्षण, परेड की ली सलामी।
4: मेजर मोहित शर्मा 95th कोर्स इंडिया स्क्वाड।
3: पासिंग आउट परेड के दौरान कैडेट्स ने शानदार कदमताल से बांधा समा, देश सेवा के लिए जोश और जज्बे का प्रदर्शन। परेड के बाद वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने किया शानदार फ्लाई पास, सेना के शौर्य की
5: नुमाइश।
3: फ्लाई पास में वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी हुए शामिल, आसमान में परवाज भरकर की जाबाजी का प्रदर्शन। परेड के दौरान कैडेट्स ने पेश किए शानदार फॉर्मेशन, पारंपरिक फाइनल स्टेप भी बना खास आकर्षण का केंद्र।
6: सेपरेशन स्टैंड एज अ टेस्टमेंट टू द फर्म कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिसिप्लिन एंड डिटरमिनेशन।
3: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भव्य दिव्य भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। ज्येष्ठ अधिक मां शुक्ल

0: मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के नीलाद्री बीच पर सर के थीम पर रेत से बनाई शानदार कलाकृति, देखने के लिए उमड़े लोग। ओडिशा में वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के अवसर पर सुदर्शन पटनायक ने बनाई कलाकृति, लोगों में जागरूकता पैदा करना इसका मकसद। ओडिशा में वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया के सिलसिले में नीलाद्री बीच पर हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। राम मंदिर स्थित परकोटा में स्थापित मां भगवती मंदिर के शिखर पर हुआ ध्वजारोहण, साध्वी ऋतुम्बरा ने विधि विधान से ध्वज पूजन कर किया ध्वजारोहण। ध्वजारोहण समारोह में साध्वी निरंजन ज्योति के साथ 3,500 महिलाएं यहीं शामिल, राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ की महिला जवानों ने ध्वजारोहण की रस्सी खींचकर कार्यक्रम को किया पूर्ण। कार्यक्रम को लेकर मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया, देश के विभिन्न राज्यों से मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की महिलाएं अयोध्या पहुंची। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को विशेष प्रसाद भी किया गया वितरित, आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक बना यह आयोजन। पूरे आयोजन में महिलाओं की विशेष सहभागिता देखने को मिली, कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने खुशी जताते हुए इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। तमिलनाडु के तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर में बेहद भव्य तरीके से मनाया जाता है वैकासी विकासम का उत्सव, भगवान मुरुगन की प्रतिमा और गर्भगृह का होता है ताजे फूलों से श्रृंगार। मंदिर में इस दिन पंचामृत और दूध से किया जाता है भगवान का विशेष अभिषेक, भगवान मुरुगन का जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है वैकासी विकासम उत्सव। मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में मनाया गया नौका विहार, एक अत्यंत मनमोहक और विशेष उत्सव के तौर पर विशेष रूप से गर्मियों के महीने और अधिक मास के दौरान होता है यह आयोजन। भीषण गर्मी में ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए विशेष सजी नौका में किया गया विराजमान, भक्तिमय माहौल में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। इस दौरान जयकारों और भजन कीर्तन से गूंज उठा मंदिर परिसर, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। भारत से मंगोलिया भेजे गए भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेष, बौद्ध धर्म में बुद्ध के अग्रश्रावक या परम शिष्य कहलाते हैं अरहंत सारिपुत्र और अरहंत महामौदलायन। मंगोलिया में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखे जाएंगे पवित्र अवशेष, 1 से 10 जून से उलान बटार के प्रसिद्ध गंडन मठ में होगी धार्मिक प्रदर्शनी। भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान से भेजा गया मंगोलिया, भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने के लिए पहल। अमरेली में मॉनसून के दौरान शेरों की सुरक्षा के लिए वन विभाग के पुख्ता इंतजाम, मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए शेरों का स्वास्थ्य परीक्षण और प्रभावित इलाकों की गहन निगरानी। शेरों की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने खुले कुओं की फेसिंग की, बाढ़ चौकियों का भी किया गठन, साथ ही 24/7 रेस्क्यू टीम्स की तैनाती की गई। लंदन से लौटे उद्यमी अदनान शाह ने कश्मीर में बनाई खास पहचान, ब्रांडेड गारमेंट्स के कारोबार में हासिल कर रहे हैं बुलंदियां। अदनान शाह के कारोबार की हर तरफ हो रही है सराहना, चला रहे हैं अपने ब्रांड के 20 से अधिक आउटलेट्स, मल्टी ब्रांड परिधान श्रृंखला के क्षेत्र में शानदार कामयाबी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जैविक खेती ने पकड़ा जोर, किसानों को हो रही है शानदार कमाई। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की ओर से जम्मू कश्मीर में जैविक खेती को बढ़ावा, किसानों को लाभ पहुंचाने की पहल। हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में दुर्गम पहाड़ों से शिलाजीत निकालने में जुटे लोग, कई रोगों के लिए मानी जाती है रामबाण औषधि। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता का आयोजन, कैलिफोर्निया के 14 साल के भारतीय मूल के श्रेय पारिक बने 2026 के चैंपियन।
1: यू आर द 2026 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियन।
0: वॉशिंगटन डीसी में हुआ रोमांचक स्पेल ऑफ फाइनल, 250 प्रतिभागियों ने शुरू की कठिन स्पेलिंग यात्रा, दिखा जबरदस्त मुकाबला। फाइनल में पहुंचे 9 प्रतिभाशाली स्पेलर्स, टाई ब्रेकर में 90 सेकेंड का तेज राउंड हुआ निर्णायक, पारिक ने 32 शब्द सही स्पेल कर जीत दर्ज की। विजेता श्रेय पारे को मिला $50,000 का बड़ा इनाम। अंतिम स्पेल ऑफ राउंड में मुकाबले को बनाया बेहद रोमांचक। हर शब्द के साथ बढ़ता रहा दर्शकों का उत्साह। भीड़ ने खड़े होकर दोनों फाइनलिस्ट का किया सम्मान। मंच पर भावुक पल देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में हटाई गई ग्राफ वन की पाबंदियां। हवा की क्वालिटी में काफी सुधार। 123 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मध्यम श्रेणी में आता है। बागेश्वर में नदियां उफान पर। बैराज के गेट खोले गए। प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया। राजस्थान के जयपुर और धौलपुर में तेज बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में जलभराव और बिजली आपूर्ति बाधित। उत्तर प्रदेश के आगरा में आंधी बारिश से बड़ा नुकसान। पेड़ गिरे, टिनशेड उड़े और कई इलाकों में जलभराव। पटना में नावों के परिचालन पर जिला प्रशासन की सख्ती। अब बिना पंजीकरण के नाव चलाना पड़ेगा महंगा। सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के पहले गंगा में नहीं चलेंगी नावें। कश्मीर के सोनभद्र में सैलानियों की भारी भीड़। पहाड़ों की गर्मी के बीच बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। पिछले कुछ ही महीनों में 4,00,000 से ज्यादा सैलानी पहुंचे सोनमर्ग। टूरिज्म में जबरदस्त बूम। घाटी पहुंचे दर्जन टूरिस्ट व्हीकल्स। स्थानीय कारोबारियों और होटल मालिकों की चांदी। अगरतला का नीर महल पैलेस बना सैलानियों को आकर्षण का केंद्र। झील में बोटिंग का आनंद लेते हुए महल तक पहुंचते हैं पर्यटक। अपनी अनूठी जल महल वास्तुकला और शानदार प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों में काफी चर्चित। ये भारत का सबसे बड़ा और पूर्वी भारत का एकमात्र जल महल है। भिलाई स्टील प्लांट के मैत्री बाग जू में भीषण गर्मी से जानवर को बचाने के लिए किए गए खास इंतजाम। जू प्रबंधन ने कूलिंग और हाइड्रेशन सिस्टम को और मजबूत किया। मैत्री बाग में मौजूद 5 व्हाइट टाइगर के बाड़े में पानी और कृत्रिम झरने की व्यवस्था की गई। टाइफा चटाई और पानी की फुहारों से तापमान करीब 10 डिग्री तक कम रखा जा रहा है। सांबर चीतल और ब्लैकबक जैसे वन्य जीवों के एनक्लोजर में स्प्रिंकलर्स और मिस्ट सिस्टम लगाए गए। जानवरों को राहत देने के लिए पानी से भरे मोट सिस्टम भी तैयार किए गए। पक्षियों और बंदरों को गर्मी से बचाने के लिए ग्रीन क्लॉथ और लगातार स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं। इससे वातावरण में नमी बनी रहती है और तापमान रहता है नियंत्रित। मैत्री बाग प्रबंधन बंदरों को तरबूज और खरबूज जैसे फल खिलाए जा रहे हैं। मांसाहारी जानवरों के भोजन में एंटी हीट स्ट्रेस विटामिन भी शामिल किए गए। भारत की पूजा सिंह ने हांगकांग में चल रही एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप में देश का नाम किया रोशन। हाई जंप में जीता गोल्ड। 1.93 मीटर की कूद लगाकर हाई जंप में पूजा ने बनाया रिकॉर्ड। सहाना कुमारी का 14 साल पुराना 1.92 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एक्स पर पूजा की तारीफ करते हुए किया पोस्ट। उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में एथलीट नितिन गुप्ता ने जीता गोल्ड। पुरुष वर्ग की 5,000 मीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। नितिन ने 5,000 मीटर रेस वॉक 19:47.49 में पूरी कर हासिल किया पहला स्थान। दूसरे स्थान पर रहे चीन के खिलाड़ी क्वीन लोन। दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस की शानदार जीत। राजस्थान को हराकर आईपीएल के फाइनल में पहुंची गुजरात। राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट पर बनाए थे 214 रन। गुजरात टाइटंस ने 18.4 ओवर में ही जीता मुकाबला। राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी की 96 रन की पारी पर गिल का शतक भारी। खेली 104 रन की शतकीय पारी। साई सुदर्शन ने महज 32 गेंद में बनाए ताबड़तोड़ 58 रन। बेकार गई राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी की धुआंधार 96 रन की पारी। इनिंग में 7 छक्के और 8 चौके। तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची गुजरात टाइटंस। 31 मई को फाइनल में आरसीबी से भिड़ेगी गुजरात टाइटंस। संजय दत्त की खलनायक रिटर्न्स में कमिश्नर राम के किरदार में नजर आएंगे जैकी श्रॉफ। एक्टर ने किया कंफर्म। रणवीर सिंह पर FWIC के बैन के बाद एक्टर के बचाव में सिनेमा एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी सिंटा संगठन की वाइस प्रेसिडेंट पद्मिनी कोलापुरी बोली, हम रणवीर के साथ। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म है जवानी तो इश्क होना है को CBFC ने दिया UA 16+ सर्टिफिकेट। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का रन टाइम फिल्म 5 जून को होगी रिलीज। अभिनेता अनुपम खेर की फिल्म श्रीराम भूमि की हुई आधिकारिक घोषणा। अयोध्या राम जन्मभूमि के इतिहास पर आधारित इस फिल्म का मुहूर्त संपन्न, शूटिंग भी शुरू। प्राइम वीडियो की नई वेब सीरीज द पिरामिड स्कीम का ट्रेलर रिलीज। धुरंधर 2 में जसी का रोल निभाने वाले एक्टर परमवीर चीमा समेत रणवीर शौरी और शेखर सुमन मुख्य किरदार में। के पॉप ग्रुप एस्पा ने रिलीज किया नया एल्बम लेमनेड। 2 साल बाद आया ग्रुप का फुल लेंथ स्टूडियो एल्बम, 10 गानों से सजाई एल्बम। एस्पा ने 2022 में किया था कोशेला वैली म्यूजिक एंड आर्ट फेस्टिवल में परफॉर्म। अगस्त में सियोल से शुरू होगी ग्रुप की ग्लोबल म्यूजिक जर्नी। अर्जेंटीना में फीफा वर्ल्ड कप का बड़ा जबरदस्त क्रेज। अर्जेंटीना में फुटबॉल बाजार गर्म, नकली जर्सियों की बिक्री में भारी उछाल दर्ज। ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर जर्सी और झंडों की भरमार, सस्ते विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं ग्राहक, सस्ते नकली प्रोडक्ट ज्यादा लोकप्रिय। वर्ल्ड कप माहौल से शहरों में पर्यटन और खरीदारी बढ़ी, फुटबॉल जुनून से स्थानीय अर्थव्यवस्था में बड़ी हलचल। फ्रांस के बोर्डो में भीषण गर्मी से लोग बेहाल, दक्षिण अफ्रीका फ्रांस में तापमान 37 डिग्री पहुंचा, गर्मी से बचने के लिए वाटर स्क्वाड पहुंचे लोग। मशहूर मिरोए डीओ बना रहा है राहत का केंद्र, बढ़ती गर्मी के बीच लोग पी रहे हैं ज्यादा पानी, मई में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने बढ़ाई चिंता। मेट्रो फ्रांस ने दर्ज किया मई का सबसे गर्म दिन, लोगों ने मौसम बदलाव को बताया डरावना, जलवायु बदलाव पर फिर गहराई वैश्विक चिंता। इंग्लैंड के विट्सटेबल में पानी संकट से लोग परेशान, रिकॉर्ड गर्मी के बीच पानी सप्लाई ठप, 20,000 से ज्यादा लोग जल संकट से प्रभावित। आपातकालीन पानी सप्लाई शुरू करनी पड़ी, स्थानीय कारोबारियों को करनी पड़ी दुकानें बंद, छुट्टियों के बीच बड़ी पानी की मांग ने बढ़ाई मुश्किल। वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों का ऐसा वार्म अप पूरी दुनिया में चर्चा का विषय, ब्राजील के रियो में यही खेल अल्टीना के नाम से अलग बना चुका है अपनी पहचान। रियो के बीचों पर खेला जाने वाला अल्टीना फुटबॉल प्रेमियों का बन गया है नया जुनून, इसमें खिलाड़ी बिना हाथ लगाए गेंद को हवा में बनाए रखते हैं। 1960 के दशक में शुरू हुआ अल्टीना ग्लोबल स्पोर्ट्स बनता जा रहा है, पूर्व फुटबॉलर और सीनेटर रोमारियो इसे ओलंपिक खेल बनाने की कर रहे हैं मांग। अल्टीना में खिलाड़ियों की ट्रिक्स और टीमवर्क दर्शकों का खूब अपनी ओर आकर्षण बढ़ा रहे हैं, चैंपियनशिप में गेंद को ज्यादा देर हवा में रखने से मिलते हैं अंक। ब्राजील की गलियों और बीचों से निकला अल्टीना अब बना रहा इंटरनेशनल पहचान, खेल का मकसद गेंद और खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन तालमेल दिखाना। बर्लिन में गर्मी का दिखा असर, लोग झीलों और पार्कों में धूप का आनंद लेते आए नजर। झील में युवाओं ने पैडल बोर्डिंग और तैराकी का लिया मजा। फ्रैंकफर्ट में लोग सुहाने मौसम के बीच जॉगिंग, गर्मी का दिखा असर, लोग झीलों और पार्कों में धूप का आनंद लेते आए नजर। झील में युवाओं ने पैडल बोर्डिंग और तैराकी का लिया मजा। फ्रैंकफर्ट में लोग सुहाने मौसम के बीच जॉगिंग और साइकिलिंग करते आए नजर। बॉन में मौसम वैज्ञानिक कॉस्टन ब्रांड में यूरोप में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी। जर्मनी समेत यूरोप में सामान्य से ज्यादा पड़ सकती है इस बार गर्मी, हालांकि लंबी अवधि के मौसम में पूर्वानुमान पूरी तरह सटीक नहीं माने जाते। ETS ज्यूरिख ने विकसित किया अंडर वाटर रोबोट पोलारिस, जमी हुई झीलों के नीचे से बर्फ की मोटाई मापेगा स्मार्ट सिस्टम। रोबोट बर्फ के नीचे हो रहे पिघलाव का बनाएगा सटीक मैप, अल्पाइन झीलों में जलवायु बदलाव पर शोध को मिलेगी नई दिशा। खतरनाक और कठिन इलाकों में बिना मानव प्रवेश के करेगा काम सोनार, और प्रेशर सेंसर से जुटाएगा सेंटीमीटर स्तर डेटा। वैज्ञानिकों के लिए बर्फ की संरचना समझना होगा आसान, पोलारिस से बर्फ की निगरानी बनेगी अधिक सुरक्षित और सटीक। सेंट मॉरिट्स और फ्योजुल जिलों में चल रहा है शुरुआती परीक्षण, स्थानीय प्रशासन को सर्दियों की सुरक्षा जांच में मिलेगी मदद। चीन में वर्ल्ड इंटेलिजेंट एक्सपो 2026 में रोबोट कार्निवल का धमाकेदार आगाज। रोबोट्स ने मार्शल आर्ट से दिखाया अपना हुनर, ड्रोन लाइट शो ने आसमान को किया रोशन। स्मार्ट रोबोट्स की प्रदर्शनी ने खींचा सबका ध्यान, स्टेज शो में एआई रोबोट्स की शानदार परफॉर्मेंस। 700 से ज्यादा कंपनीज ने टेक्नोलॉजी का किया शोकेस, 7 बड़े प्रदर्शनी क्षेत्रों में दिखी एआई की ताकत। 200 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी लॉन्च, स्मार्ट सिटी और इंडस्ट्री में एआई का तेजी से विस्तार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
3: धरती से आकाश तक भारत की बढ़ रही ताकत, देश में ही तैयार सेना के मॉडर्न हथियार, आत्मनिर्भर भारत का गोल्डन चैप्टर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक शानदार खबर। जी हाँ, अब धर्मशाला में आयोजित ऐसे उत्सव की आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां तिब्बती संस्कृति की महक है, तिब्बती समुदाय की गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत की झांकी दिख रही है। 30 मई तक चलने वाला यह तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन को समर्पित है। इस महोत्सव में पारंपरिक तिब्बती कला, खान पान और कला से जुड़ी गतिविधियां हैं।

बौद्ध मठों के लिए मशहूर धर्मशाला, जिसकी फिजा में तिब्बती संस्कृति की महक है। धौलाधार पर्वतमाला में मौजूद इस इलाके में जीवन का आधार बौद्ध धर्म है, जो तिब्बत संस्कृति के समृद्ध और जीवंत इतिहास को भी दर्शाता है। तिब्बती समुदाय की साझी विरासत, खानपान, लोक कलाओं और सदियों पुरानी परंपराओं की अनूठी सुगंध, जो पीढ़ियों से संजो कर रखा गया है, उसकी झलक धर्मशाला में दिख रही है। धर्मशाला के पुलिस मैदान में पिछले दो दिनों से तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये विशेष महोत्सव आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन को समर्पित है। साथ ही धर्मशाला में उनके निवास के करीब 67 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भी इस कार्यक्रम को बेहद खास माना जा रहा है। मई तक चलने वाले इस महोत्सव में तिब्बती संस्कृति का इतिहास, विरासत और परंपराओं की झांकी दिख रही है। आम लोगों को मठों की वास्तुकला, पारंपरिक कला, हस्तशिल्प को समझने बूझने का मौका मिल रहा है। कलाकारों और स्कूली बच्चों की तरफ से शानदार पारंपरिक गीतों और तिब्बती सर्कल डांस गोरशी को सबके सामने पेश किया जा रहा है।

0: रोडीज का ध्यान अपने ओर आकर्षित किया है। तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव में मेजी खांग की ओर से लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा परामर्श और पारंपरिक तिब्बती दवाइयों की व्यवस्था भी की गई है, ताकि महोत्सव का आनंद लेने वाले लोगों को तिब्बती चिकित्सा पद्धति के बारे में भी जानकारी मिल सके। दो दिन पहले 17वें निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पेपा सेरिंग भी महोत्सव में मौजूद रहे। उन्होंने साफ किया है कि ऐसी सांस्कृतिक प्रदर्शनी और कार्यक्रमों का मकसद देश के आम लोगों को तिब्बत के इतिहास, संस्कृति और उसके भू राजनीतिक महत्व से अवगत कराना है।
1: हम लोगों ने सोचा कि तिब्बत के बारे में, क्योंकि तिब्बत के बारे में भारतीय लोगों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत और तिब्बत का सीमा जो है वो अरुणाचल से लेके जम्मू कश्मीर तक जाते हैं। कल ही हमारे काफी विजिटर्स आए थे, डेलीगेट्स आए थे बाहर से, और एक ने हमको ये बताया कि म्यूजियम जाके पता चला कि तिब्बत कितना बड़ा है। तिब्बत बहुत बड़ा क्षेत्र है। लोगों के मन में ये सोच है कि तिब्बत एक भूटान जैसा छोटा सा देश है, वो नहीं है। तो ये सब समझ में आने से फिर तिब्बत और भारत का संबंध, क्योंकि भारत तिब्बत का भाषा जो है वो भारत से आया।
0: तिब्बती समुदाय की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा ये महोत्सव भारतीय और तिब्बती संस्कृति के संगम का प्रतीक भी है।
2: सांस्कृतिक उत्सव जो है इसका यहाँ पर आयोजन हो रहा है, और जो हिज होलीनेस दलाई लामा जी हैं उनका 90th बर्थडे जो है उसके उपलक्ष पर ये यहाँ पर सेलिब्रेशन है। मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति, तिब्बती संस्कृति जो है, ये दोनों का यहाँ पर एक संगम है।
0: 3 दिनों के तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव के दौरान परम पावन दलाई लामा के जीवन पर आधारित हिंदी फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग भी हो रही है, जिससे लोग उनके जीवन, संघर्ष और विचारों को करीब से समझे और भारत और तिब्बत के बीच सदियों पुराने अटूट संबंधों को और मजबूती मिले। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: शुक्र का कौन सा शुभ योग जीवन में ऐश्वर्य देता है? शुक्र का कौन सा शुभ योग सुख तो देता है, लेकिन माता के सुख में कमी कर देता है। कौन से हैं शुक्र के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है।
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है।
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
16: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: दिल्ली NCR में कूल कूल वीकेंड, आज भी बारिश को लेकर IMD का येलो अलर्ट, अगले 2 दिनों तक गर्मी से रहेगी राहत। मेघालय के उमरोई में सेना का सटीकता, संतुलन और संयम से भरा कठिन युद्धाभ्यास जारी, सैन्य तैयारी के रणनीतिक साझेदारी को भी बढ़ावा, 12 मित्र देशों के जवान ले रहे हैं हिस्सा। पुणे में NDA की ऐतिहासिक 50वीं पासिंग आउट परेड, सेना के तीनों अंगों को मिले नए अफसर, कुल 355 कैडेट्स हुए शामिल। ज्येष्ठ अधिक माह शुक्ल चतुर्दशी पर बाबा महाकाल की भव्य दिव्य भस्म आरती, आज भक्त रख रहे हैं अधिक मास पूर्णिमा का व्रत, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में विशेष नौका विहार उत्सव का आयोजन, ठाकुर जी को विशेष सजी नौका में किया गया विराजमान, भक्तिमय माहौल में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।
17: बदले हुए से लगते हैं मौसमों के रंग, पड़ता है आसमान का साया जमीन पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। हमदम कश्मीरी के इन शब्दों के ही हम मौसमों के बदलने पर बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा गया है। जीएनटी स्पेशल में भी आज बात होगी मौसम के उसी बदलाव पर जिसने वीकेंड से पहले खुश होने का बहाना दे दिया है। यूं तो मई के महीने में अब की बात बेहद गर्मी थी, बेहद तपाया मई के महीने ने, लेकिन जाते जाते मई ने राहत की सौगात भी दे दी है। जी हां, बारिश का दौर पहाड़ों और मैदानी इलाकों के लिए राहत लेकर आया है। पिछले कई दिनों से जो पारा 45 डिग्री के पार चल रहा था, शहर शहर हुई बारिश ने तापमान में थोड़ी राहत दी है। भीषण गर्मी में दिन में निकलना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अब कुछ दिन के लिए मौसम साफ और सुहाना रहने वाला है। कई शहरों में आज सुबह की शुरुआत हल्की ठंडी हवा और खुशनुमा मौसम के साथ हुई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूरे वीकेंड बारिश का ये दौर जारी रह सकता है। आज के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि गर्मी से राहत देने वाली ये बारिश कहाँ कहाँ हुई और क्यों। जहां उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस बारिश का दौर लेकर आया है, वहीं देश के दक्षिणी राज्यों में प्री मॉनसून बारिश हो रही है। दरअसल मॉनसून अब देश की दहलीज पर खड़ा है और दक्षिण के द्वार से उसे भारत के मेन लैंड पर प्रवेश करना है। उसी का संकेत देते हुए झमाझम बारिश के साथ दक्षिण में प्री मॉनसून ने दस्तक दे दी है। प्री मॉनसून में होने वाली बारिश मॉनसूनी बारिश से अलग होती है। देखिए, मॉनसून का फंडा तो सीधा सा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तापमान की वजह से पानी भाप बनकर बादलों के रूप में आगे बढ़ता है और बारिश करता है, यही मॉनसूनी बारिश कहलाती है। लेकिन इससे पहले होती है प्री मॉनसून की बारिश, जो देश के कई राज्यों में इन दिनों हो रही है। अब आपको बताते हैं कि प्री मॉनसून और मॉनसून में अंतर क्या है, दोनों समय होने वाली बारिश का पैटर्न एक दूसरे से अलग कैसे है और ये पूरा सिस्टम कैसे बनता है। जी हाँ, मॉनसून की बारिश की शुरुआत दक्षिणी कोने से होती है, जबकि प्री मॉनसून की बारिश का कोई सेट पैटर्न नहीं है। ये देश के दक्षिण, पश्चिम या उत्तरी हिस्सों में कहीं भी पहले आती है और पहले चली भी जाती है। दोनों बारिशों में बादलों का पैटर्न भी अलग होता है। मॉनसून की बारिश के बादल परतों वाले होते हैं। परतों में मौजूद ज्यादा नमी के चलते बार बार और लंबे समय तक मॉनसून की बारिश होती है। ये बादल एक से दूसरी जगह तक लंबी दूरी भी तय करते हैं, जबकि प्री मॉनसून बारिश के बादलों के साथ ऐसा नहीं होता। इनमें कम नमी होती है और ये काफी ऊपर की तरफ होते हैं। मॉनसून की बारिश कभी तेज होती है तो कभी कई दिनों तक रिमझिम बारिश का सिलसिला भी चलता है, जबकि प्री मॉनसून की बारिश बेहद तेज होती है। मॉनसून की बारिश बार बार और लंबे समय तक होती है, जबकि प्री मॉनसून बारिश एक दो दिन में खत्म हो जाती है, जैसा कि अभी हो रहा है। इसके अलावा मॉनसून की बारिश के दौरान कई बार तेज चक्रवाती हवाएं देखने को मिलती हैं, जबकि प्री मॉनसून बारिश के दौरान झोंकेदार हवा के कारण धूल वाली तूफानी बारिश होती है। साथ ही मॉनसून की बारिश बहुत बड़े इलाके में एक साथ होती है और इस दौरान पूरे क्षेत्र का मौसम एक जैसा रहता है, जबकि प्री मॉनसून बारिश एक सीमित क्षेत्र में होती है, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं। इस बार मई में मैदानी इलाकों में तो प्रचंड गर्मी पड़ी ही, लेकिन साथ ही कई पहाड़ी राज्यों में भी पारा 40 तक पहुंचा। ऐसे में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बाद बदला मौसम पहाड़ी राज्यों के लिए भी बड़ा राहत लेकर आया। कई शहरों में जोरदार बारिश तो कुछ ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी भी देखने को मिली। मसलन उत्तराखंड के चमोली में मौजूद हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के इलाके में जोरदार बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ से ढका नजर आ रहा है।

0: कहां तो मैदान और पहाड़ दोनों ही हीट वेव की मार झेल रहे थे, लेकिन 24 घंटों में सब कुछ बदल गया। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते हवाओं ने कुछ ऐसा रुख बदला कि मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां ताजा बर्फबारी के बाद सिखों का पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए थे। कपाट खुलने के बाद से अब तक यहां 22,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। इसी दौरान इस पूरे हफ्ते यहां कई बार बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने गुरुवार से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई थी। गुरुवार शाम जहां देश के मैदानी इलाकों में जोरदार आंधी बारिश का दौर चला, तब चमोली के इस इलाके में देर रात मौसम बदला और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी शुरू हो गई। हेमकुंड साहिब क्षेत्र में सुबह से लगातार बर्फ गिर रही है। यहां जबरदस्त ठंड के साथ आसमान से बर्फ के फाहे बरस रहे हैं। पवित्र सरोवर का पानी और भी ज्यादा ठंडा हो गया है। बावजूद इसके सिख संगत में अपार उत्साह और श्रद्धा देखने को मिल रही है। भक्त बर्फ को चीरते हुए भी गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर अरदास कर रहे हैं।
1: चमोली में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। सिखों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। आसमान में देख सकते हैं लगातार बादलों का डेरा है। मौसम विभाग ने पहले ही पहाड़ों में बारिश और बर्फ ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया था। ऐसे में हेमकुंड साहिब अत्यधिक ऊंचाई पर है, वहां पे लगातार रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं। सिख संगतें हैं देश और विदेश दोनों ही जगहों से इस समय हेमकुंड साहिब में पहुंच रहे हैं। ऐसे में बर्फबारी के बीच जहां रास्ता फिसलन भरा हो जाता है, वहीं SDRF जो सेवादार है, भारतीय सेना है, इन रास्तों पे लगी हुई है। यात्रियों को रास्ता पार कराने में जो व्यवस्थाएं हैं, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी भी यहां पे लगातार यात्रियों की मदद के लिए खड़ी है। हालांकि सुबह से बर्फबारी देर रात से ही बर्फबारी यहां पे हो रही है। सुबह यहां बर्फ की सफ़ेद चादर हर तरफ दिखाई दी, इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, एक तो कठिन यात्रा होती है 19 किलोमीटर की, दूसरा ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन जो यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु होते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों या बच्चे हों, हर किसी के उत्साह में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बर्फबारी है, कड़ाके की ठंड है, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह अपनी अपार देखने को मिल रहा है।
0: जहां हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हो रही है, वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। गुरुवार शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश ने पहाड़ी राज्य के निचले इलाकों में भी तापमान काफी गिरा दिया है।
2: दो हफ्ते की चिलचिलाती गर्मी के बाद उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में देर रात तेज बारिश हुई और गुरुवार को इस बारिश के बाद कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसके बाद मौसम फिलहाल सुहाना बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं देहरादून समेत जो दूसरे मैदानी क्षेत्र हैं, वहां पर भी तापमान में कमी आई है। हालांकि गर्मी अभी भी बढ़ रही है और देखा जा सकता है कि मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगले दो दिन में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए वार्निंग जारी की गई है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
0: दरअसल मई में पहाड़ों पर हो रही जोरदार बर्फबारी सबको हैरान कर रही है। कश्मीर के गुरेज और हिमाचल के मनाली में भी इस हफ्ते ऐसा ही नजारा दिखा था, तो वहीं लद्दाख के द्रास में भी इस हफ्ते जमकर बर्फ गिरी है। ये हिमालय की गोद में बसे जोजीला दर्रा की तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाले इस इलाके से यूं तो साल भर सर्दी नहीं जाती, लेकिन अब की मई यहां हुई जबरदस्त बर्फबारी ने सबको हैरान कर दिया है। यहां बर्फबारी का आलम ये रहा कि सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ा। इसी तरह ये तस्वीरें कश्मीर के गुरेज सेक्टर में मौजूद तुलैल वैली की है, जहां मई के महीने ने अब की बार दिसंबर की याद दिला दी है। इस हफ्ते नॉर्थ कश्मीर के गुरेज सेक्टर और सोनमर्ग में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। हिमाचल का हाल भी ज्यादा जुदा नहीं रहा। यहाँ कुल्लू मनाली के ऊपरी इलाकों, रोहतांग पास, स्पीति घाटी, सोलंग वैली, केलांग और दूसरी जगहों पर जमकर बर्फ पड़ी है। एक बात अच्छी ये हुई कि इस बर्फबारी ने पहाड़ों पर पहुँचे सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। जाहिर है मई में किसे बर्फबारी की उम्मीद होगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे पर्यटकों के लिए ताज़ा बर्फबारी किसी बोनस से कम नहीं। चमोली से कमल ने अंसिलोड़ी, देहरादून से अंकित शर्मा, मनाली से मनमिंदर अरोड़ा और जोजिला से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: आपको बता दें कि कई शहरों में आज सुबह की शुरुआत हल्की ठंडी हवा और खुशनुमा मौसम के साथ हुई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूरे वीकेंड बारिश का ये दौर जारी रह सकता है। आज के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि गर्मी से राहत देने वाली ये बारिश कहां कहां हुई और क्यों।

0: मई की तपिश में राहत की बौछार हो गई। झमाझम बारिश से धरती गुलजार हो गई। इस बार का वीकेंड देश के कई हिस्सों के लिए तोहफे में सुकून की बौछार लेकर आया है। नौतपों के बीच दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया।
1: चिलचिलाती गर्मी और धूप से परेशान दिल्ली वालों के लिए गुरुवार की शाम राहत लेकर के आई, जब तेज हवाएं चली, धूल भरी आंधी चली और उसके बाद हल्की हल्की बारिश हुई, जिसके चलते मौसम और तापमान में अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल दिल्ली एनसीआर में बने रहने की उम्मीद है। जिस तरीके से कल देर शाम को बारिश हुई, ऐसा ही मौसम आज दिन भर जो है वो मौसम विभाग की माने तो बना रहेगा। कई इलाकों के अंदर हवाएं जो है वो तेज गति के साथ चलेंगी और उसके साथ साथ बादल भी छाए रहेंगे और उसके अलावा कई इलाकों में हल्की हल्की बारिश भी जो है वो हो सकती है। मौसम विभाग अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कई दिनों से लगातार दिल्ली में रहने वाले लोग, खासतौर पर उत्तर भारत के भी लोग जो चिलचिलाती गर्मी और लू से परेशान थे, उनके लिए राहत जरूर लेकर के आई है।
0: कल तक जहां सूरज आग उगल रहा था, वहीं अब बादल झमाझम बरस रहे थे। गुरुवार शाम से ही उत्तर पश्चिम भारत के शहरों में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद देखते ही देखते तापमान में भारी गिरावट आने लगी। दिल्ली एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कहीं तेज

0: लगातार 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहे तापमान ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब बाबा विश्वनाथ की नगरी में मौसम भी मलंग हो गया है।
1: मौसम में बदलाव के चलते वाराणसी में लोगों ने राहत की सांस ली है। तड़के सुबह गरज चमक और तेज हवाओं के बीच हुई बारिश से तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री नीचे बताया जा रहा है।
2: अभी तो कल से तो बढ़िया है, जब से कल से मतलब इतना ज़्यादा अच्छा है, कहने बात नहीं, मतलब बारिश होने के बाद अच्छा मौसम है, ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा ठंडा है।
3: देखिए मौसम का मिजाज तो बहुत अच्छा बदला है, जिस हिसाब से कल रात में बारिश हुई है और तूफान आया था, जिस हिसाब से लोग कह रहे थे कि नौतपा लगने वाला, उस हिसाब से पब्लिक सड़क पर नहीं निकल रही थी उस डर से। तो लेकिन ऊपर वाले की क्या मर्जी थी कि कल मतलब एकाएक मौसम चेंज हुआ, उससे मतलब जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हुआ है, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली है और काफ़ी अच्छा लोग महसूस कर रहे हैं।
4: कल 2 बजे रात से लगातार बारिश हुई, 7 बजे सुबह तक बहुत अच्छी बारिश हुई और इस समय एकदम मौसम बहुत सुहावना हो गया है, क्योंकि एक एग्ज़ाम मैं 25 तारीख को देने आया था, बिटिया का, CUT का ही, पांडेपुर में था सेंटर। इतनी गर्मी थी सर कि लग रहा था चमड़ी जल जाएगी, लेकिन आज तो यहाँ भी और घर पर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम।
5: पहले से तो काफ़ी आराम है, तापमान कुछ गिरा हुआ है, पहले से बहुत ज़्यादा आराम है।
0: इसी तरह यूपी के झांसी में गुरुवार शाम को चली तेज हवा और बारिश ने तस्वीर बदल दी। यहां कुछ इलाकों में ओले भी गिरे, पानी की बौछार पड़ी तो तपती धरती ने राहत की सांस ली। 45 डिग्री टॉर्चर के बाद मौसम का ये यू टर्न हरियाणा के लोगों को भी रास आया। रेवाड़ी में झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिरे। अचानक आए इस मौसम परिवर्तन ने लोगों को हैरान तो किया, लेकिन पिछले कई दिनों से पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो लोग 49 डिग्री टॉर्चर झेल रहे थे। मौसम के बदले अंदाज ने लोगों को बड़ी राहत दी। दोपहर बाद मौसम बदला, आसमान में काले घने बादल छाए, शाम होते होते तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, जमकर ओले भी गिरे। राजस्थान के धौलपुर में भी मौसम के तेवर कुछ ऐसे ही नजर आए। दोपहर बाद आसमान में बादलों ने दस्तक दी और देर शाम तेज हवाओं के साथ बरस पड़े। तपती दोपहरी के बाद बादलों की यह मेहरबानी लोगों को सुकून दे गई। तो वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में इन बादलों ने बड़ा काम किया। यहां हुई बारिश और ओलावृष्टि ने जंगलों की भीषण आग बुझा दी। आसमान से गिरते ओलों ने कुछ देर के लिए बागेश्वर की जमीन को पूरी तरह ढक दिया। पश्चिम से पूर्व तक देश के कई इलाकों में यही मंजर नजर आया। ताजा बारिश सिटी ऑफ जॉय के लिए गर्मी से राहत की खुशखबरी लेकर पहुंची। पश्चिम बंगाल में राजधानी कोलकाता समेत कई इलाकों में शुक्रवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से निजात मिली और मौसम सुहाना हो गया।
6: चिलचिलाती धूप और उमस से आखिरकार कोलकाता के लोगों को राहत मिला। शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच भारी बारिश साथ में तेज हवाओं ने टेम्परेचर को काफी नीचे ला दिया। मौसम विभाग का ये कहना है कि उत्तर बंगाल में इस तरह की बारिश जारी रहेगी और भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। लेकिन
7: इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
8: As a truck driver, I've learned how important road safety is. I know that large trucks need more time and room to stop. That's why I always hang back and follow other vehicles at a safe distance. Everyone can help keep our roads safe. Next time you're driving, try to remember to always give trucks extra space when you merge in front of them. Let's all plan to share the road safely. Learn how at www.sharetheroadsafely.gov.
9: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn, available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
10: So they were disallowed from speaking their language.
9: In-depth conversations with A-list celebrities.
11: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
9: True crime podcasts you just can't stop listening to.

0: Others escape justice to live and die in infamy. These
1: individuals... Plus the news and sports content you crave in podcast form.
2: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
1: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Achi khabar, sachi khabar.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है।
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज़ टुडे।

0: धरती से आकाश तक भारत की बढ़ रही ताकत, देश में ही तैयार सेना के मॉडर्न हथियार, आत्मनिर्भर भारत का गोल्डन चैप्टर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: शुक्र का कौन सा शुभ योग जीवन में ऐश्वर्य देता है? शुक्र का कौन सा शुभ योग सुख तो देता है लेकिन माता के सुख में कमी कर देता है? कौन से हैं शुक्र के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: दिल्ली एनसीआर में कूल वीकेंड, आज भी बारिश को लेकर आईएमडी का येलो अलर्ट, अगले दो दिनों तक गर्मी से रहेगी राहत। मेघालय के उमरोई में सेना का सटीकता, संतुलन और संयम से भरा कठिन युद्धाभ्यास जारी, सैन्य तैयारी के रणनीतिक साझेदारी को भी बढ़ावा, 12 मित्र देशों के जवान ले रहे हैं हिस्सा। पुणे में एनडीए की ऐतिहासिक 150वीं पासिंग आउट परेड, सेना के तीनों अंगों को मिले नए अफसर, कुल 355 कैडेट्स हुए शामिल। ज्येष्ठ अधिक मास शुक्ल चतुर्दशी पर बाबा महाकाल की भव्य दिव्य भस्म आरती, आज भक्त रख रहे हैं अधिक मास पूर्णिमा का व्रत, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में विशेष नौका विहार उत्सव का आयोजन, ठाकुर जी को विशेष सजी नौका में किया गया विराजमान, भक्तिमय माहौल में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे शुक्र के राजयोगों के बारे में कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र का राजयोग है तो ये जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है और शुक्र के राजयोग होने के फायदे क्या हैं। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 मई 2026 दिन शनिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 30 मई 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है वृषभ राशि में, बुध बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम शुक्र के शुभ योगों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शुक्र की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, शुक्र ग्रहों में कोमल और सौंदर्यवान माना जाता है। शुक्र को ग्रहों में मंत्रणा देने वाला मानते हैं, यानी मंत्री पद प्राप्त है और कुछ अंशों में शुक्र को भी गुरु माना जाता है। शुक्र आपके जीवन की भावनाओं से संबंध रखता है और कुछ लोग कुछ अंशों में शुक्र को गुरु का टीचर का दर्जा भी देते हैं। शुक्र जो है ये विवाह प्रेम और जीवन में सुख प्रदान करने वाला ग्रह है। शुक्र की दो राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। ये मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। लेकिन अगर छोटे में समझना चाहें तो आपके जीवन में जो सुख है, जो आनंद है, जो कंफर्ट है, जो लग्जरी है, ये आपको शुक्र से प्राप्त होती है। यानी आप जीवन में कितने सुखी रहेंगे ये बात डिसाइड होती है शुक्र की वजह से, और शुक्र की वजह से जीवन में आनंद और सुख प्राप्त होता है। शुक्र के योगों पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन की स्थितियां ठीक रहेंगी, मानसिक तनाव कम होगा, परिवार में शुभ कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में तनाव हो सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुक्र का जो पहला शुभ योग है उसका नाम है मालव्य। मालव्य योग क्या है? मालव्य योग जो है ये शुक्र का पंच महापुरुष योग है। शुक्र जब वृषभ, तुला या मीन राशि में हो तो मालव्य योग बन जाता है, लेकिन शर्त ये है कि इसके लिए शुक्र लग्न से केंद्र में होना चाहिए। शुक्र अगर वृषभ, तुला या मीन राशि में बैठा हो और लग्न से केंद्र में बैठा हुआ हो तब कुंडली में मालव्य योग बन जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति वैभवशाली हो जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति का वैभव और संपन्नता बहुत होती है। जीवन में हर सुख सुविधा और अपार ग्लैमर प्राप्त होता है। ऐसे लोगों के अंदर आकर्षण भी प्रबल होता है। ऐसे लोग बड़े ग्लैमरस होते हैं और लोग उनकी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। शुक्र के दूसरे शुभ योग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, कारोबार में व्यस्तता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, थोड़ी व्यस्तता बनी रहेगी, धन के मामलों में सफलता मिलेगी, ऑफिस की समस्या कम हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन प्राप्ति के मजबूत योग बन रहे हैं, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में मतभेद हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुक्र का अगला शुभ योग है चतुर्थस्थ शुक्र, शुक्र का चौथे स्थान में बैठना, शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली हो जाता है और चौथे स्थान में बैठ करके शुक्र ऐश्वर्य और वैभव ये तो जीवन में देता ही है, साथ ही साथ व्यक्ति को जीवन में ईमानदार और करुणावान बनाता है। और चौथे स्थान में शुक्र के बैठने पर व्यक्ति को जीवन में उच्च पद भी प्राप्त होता है। चौथे भाव में जिनके शुक्र हो ऐसे लोग वस्त्र के काम में, कॉस्मेटिक्स में, सौंदर्य में या मीडिया के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। जिनकी कुंडली के चौथे भाव में शुक्र बैठा हो उसमें एक गड़बड़ी ये देखी गई है कि वो माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन वो धन के मामले में, वैभव के मामले में और संपन्नता के मामले में बहुत उत्तम माना जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी धर्म स्थान पर जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में व्यस्तता रहेगी, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, कारोबार में लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, पूजा उपासना में समय लगाएं, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में समस्या हो सकती है, व्यर्थ का मानसिक तनाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाइएगा, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र का कोई भी राजयोग है, शुक्र का कोई भी शुभ योग है, आप पुरुष हैं तो स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, और अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष के साथ अच्छा व्यवहार करिए। साथ ही साथ नियमित रूप से पूजा उपासना करिए और साफ सफाई का, अपने वस्त्रों का बहुत ध्यान दीजिए। शुक्र से अधिक लाभ लेना चाहते हैं या शुक्र के राजयोग को फलित करना चाहते हैं तो इसके लिए जितना माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। शुक्र के राजयोगों का शुभ प्रभाव आपको जीवन में ज्यादा मिलेगा। तो आज हमने शुक्र के शुभ योगों के बारे में बात की। अब जान लेते हैं भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अपने घर के पूजा स्थान का रंग अगर आप पीला रखें या अगर आप सफेद रखें तो ये सबसे ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा करने से आप अपने मन को एकाग्र और शांत बना पाएंगे। अब जान लेते हैं 30 मई 2026 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
2: So they were disallowed from speaking their language.
1: In-depth conversations with A-list celebrities.
3: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
1: True crime podcasts you just can't stop listening to.
4: Others escape justice to live and die in infamy. These
1: plus the news and sports content you crave in podcast form.
5: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
1: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
6: all sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
7: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
6: Big 12 Radio.
8: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
6: and
8: down.
6: Talk sports.
9: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
6: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: एक बात हम आपको रहस्य की बता दें, भगवान कृष्ण ने तो सिर्फ एक ही रास किया है, राम जी ने 999 रास किए, 999 रास रचाए राम जी ने। भगवान कृष्ण तो बेचारे एक ही, लेकिन ये कौन कम है? आप राम जी को कम ना मानना, हम 6 दिन जरूर महिमा गा रहे थे, लेकिन आज हम थोड़ा उल्टा बोलेंगे। राम जी को भी आप कम मत मानना, राम जी भी कम गुरु नहीं है, राम जी गुरु हैं तो भगवान कृष्ण उन्हीं के चेला जैसे हैं, हैं तो एक, राम जी भी कम नहीं, राम जी ने तो 999 रास रचाए, बस इतना अंतर है कि इनके एक विवाह हुए, भगवान कृष्ण के अनेक हुए, लेकिन अनेक भी रामई जी के चक्कर में अब है। हाँ, हाँ, ये जितने अनेक विवाह 16,108 भगवान कृष्ण के भाई हैं, ये इनकी देन ना ही रामई जी की देन ना है। अच्छा, इसका इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो सुनो, ताप

0: रामचरितमानस, रामचरितमानस में कहीं माने महाराज दशरथ से वरदान मांगा। वरदान क्या मांगा? राम जी को 14 साल वनवास के लिए भेजो, भेजो पहला वरदान दो। दूसरा वरदान, भरत को राजा बनाओ। राम जी गए, जानकी जी बोली हम भी चलेंगे, लक्ष्मण जी बोले हम भी चलेंगे, ठीक है चलो। तीनों लोग वन को जा रहे हैं, 14 साल के लिए वन को गए। अब हुआ क्या, हम अब देखना भगवान कृष्ण पर कैसी कृपा है राम जी की। वन में गए, चित्रकूट पहुंचे।
1: चित्रकूट रघुनंदन आए,
0: चित्रकूट में राम जी आए। जितने अमलात्मा विमलात्मा महात्मा थे सब राम जी के पास स्वागत करने आए। आ हा, प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं, वाह वाह वाह। सब महात्मा स्वागत कर रहे, प्रणाम कर रहे, जय जय कर रहे, स्तुति गा रहे, भगवान आए भगवान आए। लेकिन 2-3 दिन तो महात्मा आए, फिर सब गायब हो गए। भगवान ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण जी, जे महात्मा कहां अब्सेंट हो गए, कहां गायब हो गए, कहां गए? लक्ष्मण जी बोले अभी देख रहे। लक्ष्मण जी गए सो जितने महात्मा थे सब पत्थर ठोक भी लगे, पत्थर बड़ी बड़ी सिलाएं लें और कीला से पत्थर ठोके। वापस आए लक्ष्मण जी, राम जी बोले कि क्या हुआ लक्ष्मण जी, महात्मा कहां गए? लक्ष्मण जी बोले महात्मा हैं तो वन में, लेकिन बंध में नहीं आ। बोले काय में? बोले वन में तो हैं, लेकिन सब पत्थर ठोक रहे, मूर्तियां बना रहे। राम जी बोले ये क्या लफड़ा है? बोले लक्ष्मण जी बोले हमें पता नहीं है, आप ही पूछो चलो। महात्माओं ने अपने अपने आश्रम के बाहर बड़े बड़े पत्थरों की मूर्तियां बनाकर रख ली, छोटे छोटे गोल मटोल पत्थर रख लिए, सफेद बड़े लंबे मोटे पतले। राम जी महात्माओं के पास पहुंचे, बोले महात्माओं ये पत्थरों का काम क्या है? महात्मा बोले सरकार आप ठीक आए वन में। बोले क्यों? बोले एक कृपा। बोले क्या कृपा? महात्मा बोले महाराज हमने सुनी कि आप जिस पत्थर के ऊपर अपना पैर रख देते हो वो नारी बन जाता है, लुगाई बन जा। राम जी हंस के बोले मतलब क्या कहना चाह रहे? बोले महाराज हमने देखो कि आपके संगे भी हैं, जानकी माता जी आपके साथ में भी हैं। हम बेचारे महात्मा जंगल में रहते हैं, अपने हाथन रोटी बनाने पड़ती है, फिर भजन करना पड़ता है, तो हम सोच रहे कि हमारी भी घरवाई आ जाए, कम से कम रोटी बनाने वाली तो हो जाएगी, रोटी बनाएगी, हम बढ़िया जो है भजन करेंगे। राम जी जानकी जी की तरफ देख के बोले जय हो देवी जी, न तुम बनाउती न जे बैरागी महात्मा गृहस्थी बनवे की बात सोचते। अब कोई बात नहीं, राम जी ने समझाया ऐसा नहीं है, बड़ा दुख होता है गृहस्थ में, बड़े झंझट हैं, आप ना पढ़ो। महात्मा मान गए लेकिन पूर्णतया नहीं माने, तो लोगों का मानना है कि जानकी जी का हरण रावण ने किया, हमारा मानना है कि राम जी ने ही जानकी जी का हरण जानबूझ कर कराया। जब रावण ने जानकी जी का हरण कर लिया, राम जी ने करवा दिया, तब राम जी जानकी जी के वियोग में रो रहे। ए हा।

राम जी ने जब जानकी जी का हरण करवा दिया तो राम जी रोने लगे, और जहां महात्मा दिखावे सोते ही राम जी और जोर जोर से रोवे, हे सीते पेड़ से लिपट जाए। जानवरों को हिरणों को देखकर पूछे, तुमने देखी जानकी जी रोवे? महात्मा बोले, भगवान की बड़ी कृपा के हमारो ठीक नहीं ब्याह भाव। तो दूसरे महात्मा बोले, मतलब? अरे बोले, भगवान ने ठीक नहीं नारी बनाई, अगर नारी बनाई होती हो घर में लुगाई होती तो जैसे भगवान रो रहे अपन को और रोना पड़ता। मन में तो और राक्षस आते ही रहते, पता नहीं कौन हरण करके ले जाए, बे हैं भगवान रो रहे लुगाई के चक्कर में। जब भगवान रो रहे तो हम लोगों को तो रोना ही पड़ता। और भगवान भी बड़े अद्भुत हैं, राम जी भी महात्माओं को देख करके, जहां महात्मा दिखावे जहां महात्माओं के आश्रम हते ऊ तरफ महाराज भगवान मुंह करके और जोर से रोवे, सीते। महात्माओं को लगे, हे भगवान ऐसा रोने पड़त। सब महात्मा बोले, प्रभु बड़ी कृपा हमाओ ब्याह ठीक नहीं करवाओ। लेकिन आगे चले तो कुछ और महात्मा आए, प्रभु हम आपके रूप को देख करके मोहित हो गए, आहा नन्हे है आपका रूप और आपकी सुंदरता, सरकार हम आपके रूप को देखकर मोहित हो गए, आप हमको स्वीकार करो। आहा, मिथिला में भी कुछ मिथिला की रानियां मिली जो भगवान के रूप को देखकर मोहित हुई, और वो कहने लगी, सरकार हमें भी स्वीकार करो। राम जी बोले, देवी अभी तो हम राम अवतार में हैं, इसलिए एक पत्नी व्रतधारी रहेंगे, लेकिन द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तब अनेक पत्नी व्रत धारण कर लेंगे। तो जो ये 16,108 विवाहें हैं भगवान कृष्ण के, इनकी देन भी रामई जी की है। इसमें भगवान कृष्ण की कोई गलती नहीं है, न राम जी ऐसा वचन देते न भगवान कृष्ण को ऐसा करना पड़ता, इसलिए रोज तो हम बुराई करते रहे भगवान कृष्ण की, लेकिन आज महिमा गा रहे कि जितनी भी भगवान कृष्ण के साथ बीती है वो सब राम जी के कारण बीती है, ये सब रघुनाथ जी ही सब कुछ हैं। और अंत में हम यही कहेंगे, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। राम और कृष्ण दोनों एक हैं, इसलिए आओ आज के इसी भाव को मानकर, आप लोग मन में ये भाव मत रखना कि कृष्ण छोटे हैं राम बड़े हैं, या राम जी थोड़ा पावरफुल हैं कृष्ण कम पावरफुल हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों समान हैं, सोना सोना होता है, पर आभूषण कोई भी हो सोना सोना होता है। उसी प्रकार राम जी और कृष्ण जी दोनों एक हैं, और इसी का सार एक है, क्या? अरे कुछ भी बड़ा ना इस दुनिया में, भैया

0: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी। हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
9: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
10: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
8: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
11: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
12: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
8: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
13: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
8: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
14: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
8: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
15: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
16: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
15: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
8: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
17: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
8: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
11: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
8: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई

0: कोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शार्प को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
2: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
3: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
4: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
5: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी, तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
6: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
7: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है।

0: कितना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
1: बिना सहारे के मैं दो कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
2: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
4: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
6: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan this on this station. Up. Ready to find your flow?
10: It's your boy,
9: just
10: Jay-Z.
9: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
11: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay locked into the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as the games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज़ टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
16: दिल्ली एनसीआर में कूल वीकेंड, आज भी बारिश को लेकर आईएमडी का येलो अलर्ट जारी, अगले 2 दिनों तक गर्मी से रहेगी राहत। मैदानी गर्मी से राहत पाने पहाड़ों की ओर उमड़ा जनसैलाब, नैनीताल हाउसफुल, नैनी झील में नौकायन को लंबी कतारें, कैंची धाम में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। मेघालय के अमरोही में सेना की सटीकता, संतुलन और संयम से भरा कठिन युद्धाभ्यास जारी, सैन्य तैयारी की रणनीतिक साझेदारी को भी बढ़ावा, 12 मित्र देशों के जवान ले रहे इसमें हिस्सा। पुणे में एनडीए की ऐतिहासिक 150वीं पासिंग आउट परेड, सेना के तीनों अंगों को मिले नए अफसर, कुल 355 कैडेट्स हुए इसमें शामिल। ज्येष्ठ अधिक मास शुक्ल चतुर्दशी पर बाबा महाकाल की भव्य दिव्य भस्म आरती, आज भक्त रख रहे अधिक मास पूर्णिमा का व्रत, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
17: नमस्कार, मैं
12: हूं आपके साथ गीतिका पंत और फैक्ट चेक में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो को कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल कर दिया जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच के धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। जी हां, तो फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि तीनों वीडियो मध्य प्रदेश के भोपाल के हैं, जहां लव जिहाद के आरोप में एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले शख्स को पीटने के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, ये आगे आपको बताएंगे। तो हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि भारत में सरकारी स्कूल में पढ़ते बच्चों पर पंखा गिरने से हड़कंप मच गया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, ये भी आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
12: सोशल मीडिया पर तीन वीडियो खूब वायरल किए जा रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि हाल ही में भोपाल में एक धर्म विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले शख्स पर हुए हमले से इन तीनों वीडियो का संबंध है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: 10 मई को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले शख्स पर होटल के अंदर हमला किया गया। कुछ लोग होटल में घुस आए और उस पर लव जिहाद का आरोप लगाकर पीटा। हालांकि उस वक्त व्यक्ति के साथ मौजूद महिला ने पुलिस को बताया कि वो लिव इन रिलेशनशिप में थी। हमले का वीडियो वायरल होने के बाद 12 मई को पुराने भोपाल में व्यापक विरोध प्रदर्शन भी हुआ। प्रदर्शनकारी पीर गेट और पुलिस कमिश्नर कार्यालय के पास जमा हुए और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसी मामले से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये 3 वीडियो खूब वायरल किए जा रहे हैं। वायरल हो रहे पहले वीडियो में एक शख्स को कुछ लोग घेर कर खड़े हैं। वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि ये लोग शख्स के बाल पकड़कर सड़क पर खींच कर ले जा रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में एक इमारत में भयानक आग लगी हुई दिख रही है। वहीं तीसरे वायरल वीडियो में कुछ लोगों को प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है।
1: दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले शख्स पर होटल के अंदर हमला किया गया। कुछ लोग होटल में घुस आए और उस पर लव जिहाद का आरोप लगाकर उसको खूब पीटा। हालांकि उस व्यक्ति के साथ मौजूद महिला ने पुलिस को बताया कि वो लिव इन रिलेशनशिप में थी। हमले का वीडियो वायरल होने के बाद 12 मई को पुराने भोपाल में व्यापक विरोध प्रदर्शन भी हुआ। अब इसी से इस घटना को जोड़ते हुए तीनों वीडियो को खूब वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना बेहद जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो को बारी बारी से जांच किया। टीम ने तीनों वीडियो को गौर से देखा। पहले वीडियो में जिस शख्स को घेर कर भीड़ खड़ी है, जब हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की तो सामने आया कि 10 मई को भोपाल में जिस शख्स को लव जिहाद के आरोप में पीटा गया था वो ये शख्स नहीं है। दूसरे वीडियो में एक इमारत में भयानक आग दिख रही है, इसका भी हालिया भोपाल कांड से कोई संबंध नहीं मिला। वहीं तीसरा वीडियो ताज उल मस्जिद का है जो पुराने भोपाल में स्थित है। जी हां, इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच के लिए इंटरनेट और भोपाल के मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन इस दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। साथ ही भोपाल में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 45 लोग मारे गए, इसके बारे में भी कोई आधिकारिक रिपोर्ट देखने को नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। और सबसे पहला सवाल ये कि वायरल हो रहे तीनों वीडियो के पीछे की आखिर असली कहानी क्या है, और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच अफवाह फैलाने की साजिश तो नहीं की जा रही। तो आइए देखते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है।
0: जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें भोपाल में सामूहिक हत्याओं या मस्जिदों में आगजनी की कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली। इसके अलावा भोपाल की अतिरिक्त डीसीपी शालिनी दीक्षित ने गुड न्यूज टुडे के फैक्ट चेक को बताया कि पुलिस ने किसी भी प्रदर्शनकारी पर गोली नहीं चलाई और न ही किसी मस्जिद में आग लगाई गई। यहां से इतना तो साफ हो जाता है कि वायरल हो रहे वीडियो के जरिए गलत जानकारी फैलाई जा रही है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने आग वाले दूसरे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 13 मई की फेसबुक पोस्ट मिली। पोस्ट में बताया गया था कि भोपाल में पीपुल्स हॉस्पिटल के सामने एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। 13 मई को छपी एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 13 मई को भोपाल के करोंद इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम के जनरेटर से आग निकली और देखते ही देखते आसपास के एयर कंडीशनर और फर्नीचर में फैल गई। इस घटना में किसी की जान नहीं गई। इसके बाद हमने तीसरे यानी प्रदर्शन के वीडियो के बारे में पता लगाया। सर्च के दौरान हमें 13 मई को एक रिपोर्ट में एक वीडियो मिला जिसमें कहा गया था कि आरिफ खान पर हमले के बाद भोपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों का है। रिपोर्ट के अनुसार विरोध प्रदर्शन काजियात परिसर में शुरू हुआ था। सर्च के दौरान हमें 13 मई को एक इंस्टाग्राम यूजर का पोस्ट किया गया दूसरा विरोध प्रदर्शन वाला वीडियो मिला। इसका कैप्शन था ताजुल मस्जिद। बता दें 12 मई को पुराने भोपाल में इसी मस्जिद के पास प्रदर्शनकारी जमा हुए थे। हालांकि हम वीडियो के शूट होने की तारीख का पता नहीं लगा सके। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में बच्चे कक्षा में पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखता है कि अचानक छत पर लगा पंखा टूटकर बच्चों के ऊपर गिर जाता है। इस वीडियो को शेयर करके भारत का इसे बताया जा रहा है। वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: सरकारी स्कूल में पढ़ते बच्चों का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं, तभी उनके ऊपर एक पंखा टूटकर गिर जाता है। इस वीडियो को भारत के स्कूल में हुई घटना का बताते हुए शेयर किया जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, सिर्फ पंखा गिरा है वरना तो हवाई जहाज गिर जाता। देश हित में क्या गरीब के 3 बच्चे एक पंखे से चोट भी नहीं खा सकते। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार वायरल किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं, तभी उनके ऊपर एक पंखा टूटकर गिर जाता है। इस वीडियो को भारत के स्कूल में हुई घटना का बताते हुए शेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बेहद जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की जांच की और टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान ग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये काफी हद तक नेपाली जैसा लगा। आप भी सुनिए इन आवाजों को। तो सुना आपने। इसके बाद टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच के लिए इंटरनेट और मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन यहां पर हाल फिलहाल में ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट हमें नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल जो निकल कर आया वो ये कि अगर दावा सही है तो वायरल वीडियो कब का है और कहां का है, और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच भ्रम फैलाने की साजिश तो नहीं की जा रही, लोगों के बीच अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। तो आइए देखते हैं इसके पीछे का सच और झूठ क्या है।
0: फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो से जुड़ी एक रिपोर्ट एक फेसबुक पेज पर मिली। इस पोस्ट को 21 मई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूद जानकारी के अनुसार ये वीडियो नेपाल के एक स्कूल में हुई घटना का है। इस जानकारी के आधार पर हमने पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट्स नेपाली वेबसाइट पर प्रकाशित मिली। इन रिपोर्ट्स को 7 मई 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार वीडियो नेपाल के बीरगंज के एक स्कूल का है। दरअसल सिद्धार्थ स्कूल में जब बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे उसी दौरान उनके ऊपर पंखा टूटकर गिर गया था और 7 बच्चे घायल हो गए थे। घायल बच्चों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। साफ है वायरल दावा गलत है। असल में वायरल वीडियो का भारत से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो नेपाल में हुई एक घटना का है जिसे अब गलत दावे के साथ भारत का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि सासाराम से पटना जा रही ट्रेन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक ट्रेन में आग लगी हुई है और एक महिला गोद में बच्चे को लिए हुए है। वे खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए।
0: आग का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए हुए है। वो खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, सासाराम से चलने वाली ट्रेन में आग लगी है, बहुत ही भयानक, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। वायरल वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर यूजर्स इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसे लगातार वायरल किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए हुए है। ये खुद को और अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर ये दावा भी किया जा रहा है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का ये वीडियो है, जहां एक ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की और जांच पड़ताल के दौरान दावे की सच्चाई जानने के लिए टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसी कई चीजें देखने को मिली जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। वीडियो में एक शख्स ने कैमरा पकड़ा हुआ है और उसके पीछे एक शख्स ने माइक पकड़ा हुआ है। ऐसे में हमें ये किसी शूटिंग के दौरान का वीडियो होने का इस पर संदेह हुआ। 18 मई 2026 को बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के कोच में आग लग गई थी। जब आग लगी थी उस दौरान ट्रेन खाली थी और कोई यात्री उसमें मौजूद नहीं था, जबकि वायरल वीडियो में यात्री नजर आ रहे हैं। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो के सवालों को कसौटी पर कसा और इस वीडियो को देखते हुए ये सवाल निकला कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने अब तक क्यों नहीं आई, और दूसरा सवाल ये कि कहीं शूटिंग के वीडियो को नया एंगल देकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। तो आइए देखते हैं हमारी टीम ने क्या सच खंगाल कर निकाला है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। वीडियो को 9 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक वीडियो गोधरा फिल्म की शूटिंग के बिहाइंड द सीन्स का है। प्राप्त जानकारी के आधार पर हमने YouTube पर फिल्म के ट्रेलर को सर्च किया। हमें ट्रेलर एक आधिकारिक YouTube चैनल पर मिला। ट्रेलर 25 जून 2024 को शेयर किया गया था। वीडियो में 19 सेकंड पर वायरल वीडियो वाली महिला को देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि 18 मई 2026 को बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के कोच में आग लग गई थी। हादसे का पता चलते ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई थी। जब आग लगी उस दौरान ट्रेन खाली थी और कोई यात्री उसमें मौजूद नहीं था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये स्पष्ट हो गया कि सासाराम ट्रेन हादसे के नाम पर वायरल वीडियो किसी असली घटना का नहीं है। असल में वायरल वीडियो साल 2024 में रिलीज हुई गोधरा फिल्म का है। उस फिल्म के एक सीन को गलत दावे के साथ सासाराम स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के आते ही घुसपैठियों पर एक्शन लिया जा रहा है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि राज्य में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स तारों के नीचे से सीमा पार कर रहा था, तभी बीएसएफ के जवानों ने उसे वहीं से पकड़ लिया। कुछ लोग इस वीडियो के जरिए दावा कर रहे हैं कि बंगाल बॉर्डर को अवैध तरीके से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था ये शख्स, लेकिन बीएसएफ के जवानों के आंखों में यह धूल नहीं झोंक पाया। तो वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है, रिपोर्ट जरूर देखिए।
2: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद घुसपैठियों पर सख्ती दिखाई जा रही है। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सेना के दो जवानों को एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का है। वीडियो में देखा जा सकता है तारों के नीचे से सीमा पार कर रहा था, तभी बीएसएफ के जवानों ने उसे वहीं से पकड़ लिया। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि बंगाल बॉर्डर पर एडवल तारों के नीचे से सीमा पार कर रहा था, बीएसएफ ने वहीं पकड़ लिया और फिर बढ़िया खातिरदारी की। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में सेना के दो जवानों को एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो को शेयर कर ये दावा हो रहा है कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स तारों के नीचे से सीमा पार कर रहा था, तभी बीएसएफ के जवानों ने उसे वहीं पकड़ लिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वायरल वीडियो की जांच की और जांच के दौरान सच्चाई जानने के लिए टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से सुना और उसे देखा भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये साफ हो गया कि ये आवाजें बांग्ला में थी, मतलब ये वीडियो पश्चिम बंगाल का हो सकता है। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रहे जवानों के ड्रेस के कलर पर गया। जब हमने इसे जूम करके देखा और ध्यान से देखा तो ये साफ हुआ कि वीडियो में नजर आ रहे ये जवान बीएसएफ के नहीं है। जी हां, सर्च के दौरान ये जानकारी सामने आई कि बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ जवानों की वर्दी का रंग मुख्य रूप से खाकी होता है। हालांकि अब बीएसएफ जवानों को आधुनिक डिजिटल पैटर्न वाली कॉम्बैट ड्रेस भी दी जा रही है। इस नए कॉम्बैट ड्रेस डिजिटल पैटर्न में है और इस नई वर्दी में रंगों का अनुपात 50% खाकी, 45% हरा और 5% ब्राउन है। ये रंग संयोजन जवानों के रेगिस्तानी और सीमावर्ती इलाकों में दुश्मनों की नजरों से छिपाने में मदद करता है। वीडियो में जवान जिस रंग की वर्दी में नजर आ रहे हैं ऐसा बांग्लादेश सेना से जुड़े जवान पहनते हैं। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल ये निकल कर आया कि वायरल हो रहा वीडियो जो है ये कब का है और कहां का है, क्योंकि इस पर कोई डेट मेंशन नहीं है। और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नया एंगल देकर लोगों के बीच गलतफहमी फैलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। तो आइए देखते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है।
2: फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल शुरू की। वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो दो बांग्लादेशी फेसबुक अकाउंट पर मिला। वीडियो को 21 मार्च 2026 को शेयर किया गया था। बांग्ला भाषा में मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो ड्रग डीलर को पकड़ने का है। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो बांग्लादेशी न्यूज के फेसबुक पेज पर 21 मार्च और 22 मार्च 2026 को शेयर किया हुआ मिला। मौजूद जानकारी के मुताबिक चौपाई नवाबगंज जिले में एक कुख्यात ड्रग और बाबा तस्कर को बांग्लादेशी सेना ने यावा के साथ गिरफ्तार किया था। मतलब साफ है वीडियो मार्च में एक ड्रग डीलर के पकड़े जाने का है। हाँ, ये बात सच है कि बंगाल में सीएम बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। बॉर्डर की 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को सौंपी जाएगी ताकि वहाँ पर फेंसिंग लगाई जा सके और सुरक्षा स्ट्रक्चर बनाया जा सके। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। शख्स को गिरफ्तार करने के वायरल वीडियो का भारत से कोई संबंध नहीं है। असल में वायरल वीडियो भारत का नहीं बल्कि बांग्लादेश का। मार्च 2026 में वहां की सेना ने एक ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया था। यह वीडियो उसी घटना का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सड़क पर नारे लगाते मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है और शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि केरलम में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिंदुओं को काटने की धमकी देने वाला वीडियो है। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ निकलकर सामने आया, इस रिपोर्ट में देखिए।
2: किसी सड़क पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर नारे लगाते मुस्लिमों का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। कुछ लोग इसे केरलम का बताकर दावा कर रहे हैं कि नई सरकार बनने के बाद इन मुसलमानों ने खुलेआम हिंदुओं को मारने की धमकी दे डाली। वीडियो में मुस्लिम समुदाय के लोग या हुसैन के नारे लगाते दिखते हैं। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, केरलम में मुसलमानों के समर्थन से सरकार बनने की घोषणा के बाद भड़काऊ बयानबाजी तेज, हिंदुओं के नाम लेकर काटने की धमकी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। केरला में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनते ही इसे धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में इस्लामिक टोपी पहने लोग या हुसैन के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि केरल में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिंदुओं को काटने की धमकी दी गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, लिहाजा फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे दावे की जांच की और जांच के दौरान दावे की सच्चाई जानने के लिए टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में एक बोर्ड नजर आया। जब हमने इसे जूम करके देखा तो इस बोर्ड पर दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर लिखा हुआ दिखाई दिया। अब वीडियो केरलम का है और वहां एक बोर्ड पर दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर लिखा हुआ दिख रहा है, ये कुछ अटपटा सा लगा। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो की जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट और केरलम के लोकल मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन हमें हाल फिलहाल में दावे की पुष्टि करती कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट यहां नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ और हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल जो निकल कर आया वो ये कि अगर दावा सही है तो वायरल हो रहा वीडियो केरलम का किस हिस्से का वीडियो है, क्योंकि कहीं भी कोई जगह या कोई डेट तो मेंशन नहीं है। दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जानबूझकर धार्मिक एंगल देकर वायरल करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। तो आइए देखते हैं टीम ने क्या सच निकाला है।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल दावे की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। यहां इसे 28 अप्रैल को पोस्ट किया गया था। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो राजस्थान के अजमेर का है। अकाउंट पर मौजूद फोन नंबर पर संपर्क करने पर हमारी बात सैयद सिफात अली से हुई। उन्होंने बताया कि ये वीडियो अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर का है और उन्होंने खुद इसे रिकॉर्ड किया है। दरअसल ये भीड़ जायरीन के एक जत्थे की है जो अपने एक पूरे ग्रुप के साथ अजमेर शरीफ दरगाह में दर्शन करने और चादर चढ़ाने आए थे। जायरीन ऐसे लोगों को कहा जाता है जो इस्लाम के पवित्र धार्मिक स्थलों, खासतौर पर सूफी संतों की दरगाहों या मजारों की यात्रा करने जाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो केरल का नहीं बल्कि राजस्थान के अजमेर का है। अभिषेक पाठक के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने हाल ही में शपथ ली। उनकी पार्टी तमिलनाडु की 234 सीटों में से 108 जीतने में सफल रही, लेकिन यह आंकड़ा बहुमत से दूर था। इसके बाद जोसेफ विजय की टीवीके को कांग्रेस समेत कई दूसरी पार्टियों का समर्थन मिला। इसके बाद विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। उनके शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पहुंचे। अब उससे जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में विजय राहुल गांधी के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विजय ने राहुल गांधी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए।

0: तमिलनाडु की राजनीति में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वह है विजय। फिल्मों में थलापति के नाम से पहचाने जाने वाले विजय ने सियासी पारी के जरिए तमिलनाडु की जनता के दिलों में भी जगह बना ली है। विजय ने धमाकेदार जीत के साथ राजनीतिक पारी का आगाज किया और अब वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और लोकसभा विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तस्वीर काफी वायरल हो रही है। इसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री को राहुल गांधी के पैर छूते हुए दिखाया गया है। इसमें राहुल गांधी नए सीएम को आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए कहा, टीवी के चीफ और एक्टर विजय ने तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ ले ली है। गवर्नर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मंच पर मौजूद राहुल गांधी के एक्टर विजय ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये संस्कार देख मंच पर सभी नेताओं ने ताली बजाकर सम्मान किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है। इसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री को राहुल गांधी के पैर छूते हुए दिखाया गया। इसमें राहुल गांधी नए सीएम को आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए यह दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के सीएम विजय ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये संस्कार देख मंच पर सभी नेताओं ने ताली बजाकर सम्मान किया। ऐसे में वायरल हो रही तस्वीर का और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की जांच की और जांच के दौरान दावे की सच्चाई जानने के लिए टीम ने हर जगह इस तस्वीर को खंगाला, लेकिन दोनों में से किसी भी नेता ने या किसी भी ऑफिशियल जगह पर इस तस्वीर को शेयर नहीं किया गया है। क्योंकि अगर यह सही होता तो यह अपने आप में बड़ी खबर होती और हर जगह यह सुर्खियों में होती, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। इसके अलावा टीम ने राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला। राहुल विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। अगर ऐसी कोई भी घटना हुई होती तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर यह जरूर होती, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमें दावे की सच्चाई पर शक हुआ। लिहाजा हमने इस सवालों की कसौटी पर कसा और पहला सवाल ये निकल कर आया कि अगर दावा सही है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अब तक क्यों नहीं मिली। और दूसरा सवाल जो हमारा है वो ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड तस्वीर को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, लोगों के बीच कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट किया जा रहा। तो आइए देखते हैं इसके पीछे का सच और झूठ क्या है।
0: वायरल तस्वीर की सच्चाई जानने के लिए हमने वायरल फोटो को सर्च किया। हमें इस तस्वीर से जुड़ा असली वीडियो राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स के रूप में मौजूद मिला। इसमें कहीं भी सीएम विजय राहुल गांधी के पैर छूते नहीं दिख रहे हैं। इसे 10 मई 2026 को अपलोड किया गया था। हमें यही वीडियो एक और YouTube चैनल पर भी 10 मई 2026 को अपलोड किया मिला। फैक्ट चेक टीम ने पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए वायरल तस्वीर को AI डिटेक्शन टूल के जरिए सर्च किया। सबसे पहले हमने साइट इंजन टूल का इस्तेमाल किया। इस टूल ने 65% तक तस्वीर के AI से बने होने के संकेत दिए। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने एक दूसरे टूल अनडिटेक्टेबल का इस्तेमाल किया और इसके जरिए फोटो के बारे में सर्च किया। इस टूल ने भी फोटो के AI से बने होने की संभावना जताई। अतिरिक्त पुष्टि के लिए हमने इसे एक और डीप फेक डिटेक्शन टूल की मदद से चेक किया। हाई मॉडरेशन की एनालिसिस भी इस तस्वीर के AI से बनाए जाने की 92.9% की पुष्टि करती है। हाई मॉडरेशन के अनुसार इस इमेज के GPT मॉडल की मदद से बनाए जाने की संभावना 75% से ज्यादा है। साफ है हमारी पड़ताल में वायरल तस्वीर AI निर्मित साबित हुई। इसे AI टूल की मदद से बनाया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और राहुल गांधी की वायरल तस्वीर में सच्चाई नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ चल रहा है। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I try to... But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
4: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का, जब हम पेश करने वाले हैं कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
11: सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़े वीडियो लोगों के बीच आए दिन वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों लोगों के बीच सामने आया है जिसने हर किसी का ध्यान खींचा है। इसमें एक छोटी सी बच्ची बेहद मासूम अंदाज में पीएम मोदी से अपने मम्मी पापा की शिकायत करती नजर आ रही है। उसकी प्यारी आवाज, भोले चेहरे के एक्सप्रेशन और बात करने का तरीका लोगों को इतना पसंद आया कि ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। शिकायत के साथ बच्चे के चेहरे पर है मुस्कान। उसकी ये मासूम शिकायत लोगों के चेहरे पर मुस्कान ही आई। वीडियो में बच्ची जिस तरह से हाथ जोड़कर और प्यारे एक्सप्रेशन के साथ अपनी बात कहती है वो हर किसी को बेहद क्यूट लगा। एक तरफ जहां लोग जिम जाने के लिए समय और पैसे दोनों खर्च करते हैं, वहीं एक शख्स ने फिट रहने के लिए अपने ही घर की छत पर बहुत ही आसान और सस्ता सा समाधान ढूंढ लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी छत पर टहल रहा है। उसने अपने छत पर कुछ ऐसे वॉक किया कि उस पर आठ के आकार का एक निशान बन गया जो कि पूरे छत से अलग ही हाईलाइट हो रहा है। इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि शख्स ने छत पर ही वॉकिंग ट्रैक बना लिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि व्यक्ति लगातार इसी आठ के आकार पर चलते हुए वॉक कर रहा है। वीडियो को ऊपर से शूट किया गया जिससे पूरा पैटर्न साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शख्स के इस वीडियो को देख ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने घर की छत को ही छोटा सा पार्क बना दिया हो। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये प्रैंक वीडियो लोगों के बीच तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स अपने ऑफिस के साथियों के साथ ऐसा मजाक करता है जिसे देखकर इंटरनेट यूजर्स भी खूब मनोरंजन कर रहे हैं। क्लिप की शुरुआत में एक व्यक्ति बेहद नॉर्मल तरीके से अपने साथ काम करने वाले लोगों के पास जाता है और उन्हें प्रसाद देने के लिए कहता है। ऑफिस का माहौल भी बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, इसीलिए किसी को उस पर शक नहीं होता। लोग भी बिना ज्यादा सोचे समझे प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब लोगों को पता चलता है कि वो कोई मिठाई या धार्मिक प्रसाद नहीं बल्कि खट्टा नींबू का रस है। जैसे ही लोग उसका स्वाद चखते हैं उनके चेहरे अचानक बदल जाते हैं। किसी की आंखें सिकुड़ जाती हैं तो कोई तुरंत मुंह बना लेता है, तो कोई अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता नजर आता है। कुछ लोग तो ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे उन्हें भरोसा ही न हो कि उनके साथ ऐसा मजाक हुआ है। वीडियो की सबसे मजेदार बात यह है कि हर व्यक्ति का रिएक्शन अलग अलग है। कोई धीरे धीरे समझ पाता है कि स्वाद इतना अजीब क्यों है, जबकि कुछ लोग तुरंत झटका महसूस करते हैं। एक दो कर्मचारी तो ऐसे भी दिखते हैं जो खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके चेहरे साफ बता देते हैं कि नींबू की खटास ने उन्हें पूरी तरह चौंका दिया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है। ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह से सब्जी मंडी में बदल गई, जहां महिलाएं बैठकर ताजी सब्जियां बेच रही थी और यात्री उनसे खरीदारी करते नजर आ रहे थे। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ट्रेन तेज रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही है। इसी दौरान बोगी के फर्श पर कुछ महिलाएं अलग अलग तरह की सब्जियां सजा कर बैठी हुई हैं। किसी के सामने आलू और प्याज रखे हैं, तो कहीं टमाटर, गोभी, बैंगन और हरी सब्जियों का ढेर नजर आ रहा है। महिलाएं बेहद सहज तरीके से ग्राहकों से बात करती दिख रही हैं। यात्री भी बिना किसी झिझक के उनसे सब्जियां खरीद रहे हैं। कोई दाम पूछ रहा है तो कोई थैली में सब्जियां भरवा रहा है। कुछ महिलाएं पैसे गिनती नजर आती हैं, तो कुछ ग्राहकों को सामान पकड़ा रही हैं। पूरा माहौल बिल्कुल किसी छोटे बाजार जैसा लग रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि ये मंडी सड़क पर नहीं बल्कि ट्रेन के अंदर लगी हुई थी। घर की दीवारों पर लगी हाथ से बनाई गई पेंटिंग्स अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। जब कोई मेहमान उन्हें देखकर तारीफ करता है तो कलाकार को अलग ही खुशी मिलती है, लेकिन कई बार कुछ तारीफें इसलिए भी खास बन जाती हैं क्योंकि वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लोगों की तरफ से आती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला आर्टिस्ट की पेंटिंग्स की तारीफ करने वाले लोग कोई आर्ट एक्सपर्ट नहीं बल्कि एसी ठीक करने आए टेक्नीशियन थे। यही बात इस वीडियो को बेहद दिलचस्प और भावुक बना देती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टेक्नीशियन कमरे में लगी हर पेंटिंग को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। वो किसी जल्दी में नहीं दिखते बल्कि हर तस्वीर के सामने रुककर उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। उनके चेहरे के हाव भाव ये बता रहे थे कि वो सचमुच उन कलाकृतियों से प्रभावित थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी आर्ट गैलरी में खड़े होकर लोग कलाकार की मेहनत को महसूस कर रहे हों। सबसे खास बात ये रही कि उन लोगों की प्रतिक्रियाएं बनावटी नहीं लग रही थी। सोशल मीडिया पर फौजी का ये शानदार डांस इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जवान पूरे जोश और मस्ती के साथ डांस करता नजर आ रहा है, जिसे देखकर आसपास बैठे लोग भी तालियां बजाने लगते हैं। फौजी का देसी अंदाज और चेहरे की खुशी इंटरनेट यूजर्स को खूब पसंद आ रही है।

गांव के एक खास समारोह में उस समय माहौल पूरी तरह बदल गया जब एक लड़की ने एक पॉपुलर गाने पर शानदार डांस किया। रंग बिरंगा लहंगा पहनकर जब वो मंच पर उतरी तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की नजर उसी पर टिक गई। उसकी जबरदस्त एनर्जी, आत्मविश्वास और बेहतरीन डांस स्टेप्स ने लोगों को इतना इम्प्रेस किया कि पूरा कार्यक्रम तालियों और उत्साह से गूंज उठा। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इंटरनेट यूजर्स इसे खूब पसंद कर रहे हैं।

0: वायरल हो रहे इस वीडियो में एक हाथी और एक छोटे से डॉगी की जबरदस्त बॉन्डिंग और मस्ती साफ नजर आती है। वीडियो में दिखता है कि एक बड़ा हाथी तालाब के किनारे खड़ा है और अपनी लंबी सूंड से पानी उछालकर उसे नन्हे डॉगी पर गिरा रहा था। हाथी का अंदाज ऐसा लगता है जैसे वो डॉगी को बारिश या झरने जैसा मजा दिला रहा हो। हाथी की इस हरकत से डॉगी भी काफी खुश दिखता है। पानी की बौछारों के बीच वो उछल कूद करता रहता है जैसे उसे कोई नेचुरल शावर मिल गया हो। वीडियो में उसकी पूंछ लगातार हिलती रहती है जिससे साफ पता चलता है कि वो इस मस्ती को दिल से एंजॉय कर रहा है। साथ ही वो कई बार हाथी को फिर से पानी डालने का इशारा भी करता नजर आता है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली
2: होने जा रहा है। बृहस्पति का राशि परिवर्तन, बृहस्पति के राशि परिवर्तन से कौन होने वाला है कंगाल, देव गुरु बृहस्पति किसको बनाने वाले हैं माला माल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
3: धरती से आकाश तक भारत की बढ़ रही ताकत, देश में ही तैयार सेना के मॉडर्न हथियार, आत्मनिर्भर भारत का गोल्डन चैप्टर देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तो गुड न्यूज टुडे भी आपसे अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है, ताकि हम आपकी उन वीडियोस को गुड न्यूज टुडे पर दिखाएं। तो चलिए आज आपको पिथौरागढ़ की खूबसूरत

0: दीदार कराते हैं। यहाँ तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो को हमारे एक दर्शक ने भेजा है।
1: स्वागत है आपका गुड न्यूज चैनल में। मैं शीला कापड़ी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज मुनाकोट पिथौरागढ़ में साइंस अध्यापिका आपको ले चलती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर पिथौरागढ़ की ओर। यूं तो पिथौरागढ़ सांस्कृतिक विरासत से भरपूर फलता फूलता शहर हर आम आदमी की बेसिक जरूरत को पूरा करता है। वैसे तो यहाँ वर्ष भर मौसम बहुत ही सुहाना होता है, पर कुछ खास महीने मार्च से नवंबर तक घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत होते हैं। यहाँ शहर के आसपास कई खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं, जैसे कामाख्या मंदिर, ध्वज मंदिर, थल केदार और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ चंडाक। कामाख्या मंदिर से तो पूरे शहर का नजारा देखते ही बनता है। पिथौरागढ़ शहर से कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की सुंदर पर्वतमालाएं देखने को मिलती हैं, जैसे नंदा देवी, पंचाचुली, कामेट आदि। शहर से लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पर कई सुंदर सुंदर वैलीज हैं, जैसे चौदास वैली, दारमा वैली, व्यास वैली, जौहर वैली।
2: अक्टूबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आने से इस वैली को बहुत प्रसिद्धि मिली।
1: आदि कैलाश यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाला अंतिम गांव कुटी अपनी बेजोड़ संस्कृति और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ आदि कैलाश ओम पर्वत में आध्यात्मिक अनुभूति भी होती है। दूसरी वैली है चौदास वैली, जहां पर नारायण आश्रम में हाई एल्टीट्यूड पर भी बहुत ही खूबसूरत लकड़ी की नक्काशीदार कारीगरी देखने को मिलती है। तीसरी वैली है दारमा वैली, जो ट्रैक प्रेमियों के लिए बहुत ही सुंदर और सरल ट्रैक है, जहां तक पहुंचना काफी आसान है। चौथी वैली है जौहर वैली, जहां पर चारों तरफ फैली हुई हरी भरी खूबसूरत पहाड़ियां और पंचाचुली के सफेद बर्फ से ढके पहाड़ अनायास ही पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। साहसिक यात्रा के शौकीन लोगों के लिए
2: जौहर वैली में अनगिनत ट्रैक्स हैं,
1: जैसे बनकटिया ट्रैक, रंथन खडक ट्रैक। रंथन खडक ट्रैक में तो बहुत ही सुंदर सुंदर बुग्याल और बैगनी, गुलाबी कई तरह के रोडोडेंड्रोन देखे जा सकते हैं। इस शहर का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह शहर हवाई मार्ग से भी जुड़ा है। नैनी सैनी एयरपोर्ट से सप्ताह में 2 या 3 बार दिल्ली और देहरादून के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। तो आइए क्यों ना इस बार की जाए इस नए शहर पिथौरागढ़ की सैर।
0: और चलिए अब नजर डाल लेते हैं उन वीडियोस पर जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर देंगे।
3: नवजात भाई को पहली बार देखकर छोटी बहन की खुशी देखने लायक है। ठुमक ठुमक कर चलते हुए वो मासूमियत से जमीन पर बैठ गई और अपने नन्हे भाई को गोद में लेने के लिए हाथ फैला दिए। उसकी चमकती आंखों और खिलखिलाती मुस्कान ने पूरे घर के माहौल में खुशियां भर दी। भाई को सीने से लगाने की उसकी मासूम चाहत ने सभी का दिल जीत लिया। ये खूबसूरत पल सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि भाई बहन के अनमोल रिश्ते और निश्चल प्रेम की प्यारी शुरुआत बन गया। जहां लोग छोटी छोटी परेशानियों में हार मान लेते हैं, किस्मत को कोसने लगते हैं, वहीं ये शख्स हौसले की नई मिसाल बनकर सामने आया है। एक हाथ न होने के बावजूद अपने हुनर से लोगों के चेहरों पर मुस्कान और आत्मविश्वास दोनों सजा रहा है। इनका काम सिर्फ हेयर कटिंग का नहीं है, बल्कि ये साबित करना है कि मेहनत, जज्बा और आत्मविश्वास के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। अपने हौसले से ये अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं। माँ और बच्चे का ये प्यारा सा अंदाज किसी का भी दिल जीत लेगा। माँ जैसे

0: मस्ती में झूमती है, बच्चा भी उनकी नकल करने लगता है, फिर अपनी मासूम अदाओं पर खिलखिलाकर हंस पड़ता है। ये नजारा सिर्फ हंसी का नहीं बल्कि माँ बेटे के खूबसूरत रिश्ते और बेफिक्र बचपन की प्यारी झलक है। ऐसी मासूम खुशियाँ ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास दौलत है, बल्कि वो है जिसके घर लौटने पर परिवार खुशियों से झूम उठे। ये प्यारी बच्चियां अपनी माँ के साथ डांस करते हुए पिता का स्वागत कर रही हैं। बेटियों की मुस्कान और अपनापन देख पिता भी खुद को झूमने से रोक नहीं पाए। ये नजारा सिर्फ स्वागत का नहीं बल्कि परिवार के प्यार, अपनेपन और रिश्तों की असली दौलत की खूबसूरती का है। इतना नन्हा किसान शायद ही किसी ने देखा होगा जो अपनी मासूम उम्र में भी जिम्मेदारी निभा रहा है। ये छोटा सा बच्चा होटल के कर्मचारियों के साथ बागवानी में मदद कर रहा है। उनकी क्यूट हरकतें देखकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। बच्चे की मासूम कोशिशों से माहौल और भी खुशनुमा हो गया। उसकी ये लगन और सादगी ये सिखाती है कि सीखने और मदद करने की कोई उम्र नहीं होती।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop

0: Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: रही होती खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: सास बहु और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में होगा नए रिश्तों का शुभारंभ। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहु और बेटियां में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: दिल्ली एनसीआर में कूल वीकेंड, आज भी बारिश को लेकर आईएमडी का येलो अलर्ट जारी। अगले 2 दिनों तक गर्मी से रहेगी राहत। पंजाब के कई जिलों में बादल मेहरबान, पठानकोट में बारिश के साथ गिरे ओले, तेज गर्मी से लोगों को मिली राहत। मैदानी गर्मी से राहत पाने पहाड़ों की ओर उमड़ा जन सैलाब। नैनीताल हाउसफुल, नैनी झील में नौकायन को लंबी कतारें, कैंची धाम में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। पुणे में एनडीए की ऐतिहासिक 150वीं पासिंग आउट परेड, सेना के तीनों अंगों को मिले नए अवसर, कुल 355 कैडेट्स हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को मिली 538 नए अग्निवीरों की ताकत, 24 महीने के कठोर प्रशिक्षण के बाद 7वें बैच ने ली शपथ। लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट सेंटर में पासिंग आउट परेड। कांचीपुरम के वरदराज पेरुमल मंदिर से निकाली गई भगवान की शानदार शोभा यात्रा, वैकासी ब्रह्मोत्सवम के अवसर पर भव्य आयोजन, जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल। नागपुर में वन संपदा को बचाने की अनोखी मुहिम, दुर्लभ पेड़ों की प्रजातियों के लिए बनाया गया सीड बैंक, लोगों को किया जा रहा है इसके लिए जागरूक।
2: NECC, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में जीवन में जो बड़े परिवर्तन होते हैं वो 2 ग्रहों पर निर्भर करते हैं, शनि का साथ और बृहस्पति की कृपा। यानी ज्योतिष चलता है 2 ग्रहों की ताकत से, बृहस्पति और शनि। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बृहस्पति की राशि बदलने वाली है, बृहस्पति अपनी चाल में परिवर्तन करने वाले हैं और ये परिवर्तन महापरिवर्तन है। इस परिवर्तन का देश दुनिया पर और आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति का बड़ा साधारण और बड़ा सरल मंत्र है ये, लेकिन ये मंत्र है बहुत प्रभावशाली। अगर आपके जीवन में बृहस्पति की वजह से कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, या आप बृहस्पति को अनुकूल करना चाहते हो, तो रोज सवेरे 108 बार इस मंत्र का जप करिएगा रुद्राक्ष की माला पर। और अगर आप देव गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा चाहते हैं तो इस मंत्र का जप करिएगा हल्दी की माला पर। अगर नित्य प्रातः हल्दी की माला पर ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप किया जाए तो देव गुरु बृहस्पति की कृपा मिलती है और बृहस्पति से संबंधित पीड़ा समाप्त हो जाती है। देखिए आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति देव के होने वाले परिवर्तन के बारे में। ये परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये परिवर्तन कैसा होने जा रहा है, इसकी पूरी स्थिति क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए बृहस्पति देव अभी तक मिथुन राशि में विद्यमान हैं, 3 नंबर की राशि में। अब बृहस्पति 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि जो है वो मामूली राशि नहीं है, बृहस्पति के लिहाज से ये बृहस्पति की सबसे मजबूत राशि है। तो बृहस्पति कर्क में प्रवेश करके सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और इसीलिए इस परिवर्तन को महापरिवर्तन कहा जा रहा है, क्योंकि अब बृहस्पति अपने सबसे मजबूत स्थिति में रहेंगे। बृहस्पति वैसे तो एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन अतिचारी होने की वजह से बृहस्पति 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में विद्यमान रहेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे और बृहस्पति के इस परिवर्तन का 2 जगह पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। 1 प्रकृति पर, बेमौसम की बारिश, प्रचंड गर्मी, बेवजह की आग लगना, प्रकृति में उपद्रव होना, भूकंप आना, ये सब स्थितियां अब दिखेंगी। और बृहस्पति हैं वित्त के कोष के स्वामी, तो बृहस्पति के इस परिवर्तन का प्रभाव बाजार पर, शेयर मार्केट पर, फाइनेंशियल मार्केट पर ज्यादा पड़ सकता है, ये संभावना भी दिखाई देगी। यानी अगर आप गंभीरता से देखें तो 2 जून से लेकर और 31 अक्टूबर तक का जो समय है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत विशेष समय होगा और इस समय में पूरी दुनिया में भयंकर और बड़े बड़े परिवर्तन और बदलाव होंगे, दुनिया में हलचल होगी, इसके लिए तैयार हो जाइए। आपकी राशियों के लिए बृहस्पति का ये परिवर्तन कैसा रहेगा, किस राशि पर क्या असर दिखाएंगे बृहस्पति, ये आपको आगे हम बताएंगे। लेकिन अभी आपको बताते हैं मोटे तौर पर कि इस परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा असर पड़ने वाला है। देखिए बृहस्पति की चाल 2 जून से बदल जाएगी। 1 और 2 की दरमियानी रात में, मिडनाइट में, 2 की अर्ली मॉर्निंग में बृहस्पति की चाल बदलेगी। और याद रखिए बृहस्पति अभी अतिचारी हैं, अभी मार्गी स्थिति में नहीं हैं, उनकी गति सामान्य से ज्यादा है। अब दुनिया भर में अशांति फैलेगी, उपद्रव की स्थिति बनेगी, लोग एक तरफ शांति वार्ता की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ युद्ध भी करेंगे, यानी अशांति और उपद्रव की स्थितियां बढ़ेंगी, अभी शांति आने के संकेत नहीं हैं। सबसे ज्यादा जो जबरदस्त प्रभाव दिखाई देगा वो जलवायु में दिखेगा। कभी तो भयंकर गर्मी पड़ेगी और कभी एकदम भयंकर मूसलाधार बारिश होगी और चीजें बिगड़ेंगी। जलवायु में और मौसम में बड़े परिवर्तन होंगे। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव होंगे, दुनिया भर के बाजार हिलेंगे और अलग अलग देश की सरकारें अपनी नीतियां बदलेंगी ताकि मंदी से और आर्थिक मुश्किलों से छुटकारा मिले। जैसा आपको हम बार बार बता रहे हैं कि बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, बड़ी सावधानी की और बड़े ध्यान देने की जरूरत होगी। महंगाई काफी ज्यादा बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ने की संभावना इस समय में दिखाई दे रही है और बृहस्पति हैं धर्म के स्वामी, इसीलिए धार्मिक मामले तेजी पकड़ेंगे भारत में भी और दुनिया में भी। और धार्मिक मामलों को लेकर के बेवजह के विवाद, बेवजह के झगड़े लड़ाइयां भी बढ़ेंगे, यानी धर्म को लेकर के विवाद और उपद्रव बढ़ेगा और जून से अक्टूबर तक इसको संभाल पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। तो देश दुनिया के लिए बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन उतना ताकतवर नहीं दिख रहा है। अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के लोग जून से अक्टूबर के समय में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। सेहत की समस्या आपको काफी परेशान कर सकती है, छाती में दिक्कत, लंग्स में प्रॉब्लम या महिलाओं को लिम्फ जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। स्वास्थ्य की समस्या का ध्यान रखें और बेवजह के अपयश की नौबत आ सकती है, बेवजह के अपयश की स्थिति बन सकती है। मेष वाले सेहत को लेकर सतर्क रहें। इनके जीवन में ये दिख रहा है कि अगले 4-5 महीनों के अंदर संपत्ति का लाभ हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं ऐसा लग रहा है, और छोटी मोटी विदेश यात्रा की संभावना भी इनके लिए बन सकती है। देखिए, मेष वालों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, मेष वाले थोड़ा सतर्क रहें और इस समय अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में, अपने महत्वपूर्ण डिसीजंस में मेष वालों को सावधानी बनाए रखना है। इस समय कोई ऐसा निर्णय खास तौर से करियर के मामले में मत लीजिएगा जिसमें आपको बड़ा नुकसान हो या जिसमें आप मुश्किल में पड़ जाएं। वृषभ राशि, स्वास्थ्य के लिए आपकी लापरवाहियां अगर अभी भी चलती रही ना तो परिणाम गंभीर होंगे। सेहत के मामले में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। स्वास्थ्य एकदम से काफी ज्यादा आपका बिगड़ सकता है। कान नाक गले को लेके, डाइजेशन को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है जो आपको करना पड़ेगा, उसको रोक पाना इस समय संभव नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने जा रहे हैं, किसी को भी पैसा देने जा रहे हैं, जल्दबाजी में मूर्खता मत करिएगा, वरना इस समय पैसे का इन्वेस्टमेंट और पैसा देना आपको मुसीबत में डाल सकता है। ये जो अगले 4-5 महीने हैं, ये जीवन में बड़े सारे परिवर्तन कराएंगे। आपको शांति पूर्वक सतर्क रह करके सावधानी से उन परिवर्तनों को हैंडल करना होगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, परिवर्तनों से झगड़े करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी। इसीलिए जो परिवर्तन होता है उसको स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा है। और बार बार मैं कह रहा हूं कि सेहत को लेकर और अपनी फैमिली लाइफ को लेकर के आपको सावधानी बनाए रखना होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये परिवर्तन अच्छे परिणाम दिखा रहा है। तो मिथुन वालों को सबसे पहले धन का लाभ होगा, पैसे रुपए की प्राप्ति होगी, पारिवारिक सुख जीवन में मिलेगा, आपका नाम और यश बढ़ेगा, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यानी मिथुन वालों के लिए कठिनाइयां बहुत रही हैं, लेकिन अब देव गुरु बृहस्पति आपके ऊपर गंगा जल छिड़केंगे और पैसे से लेकर परिवार तक करियर और पद प्रतिष्ठा का फायदा होगा। आपके वाणी की शक्ति बढ़ेगी, आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छे काम करेंगे और करियर में आपका प्रभाव बढ़ेगा। जीवन में बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी ताकत आपको मिल सकती है। आपको किसी बड़ी बीमारी के होने से बचना होगा। सब कुछ बहुत अच्छा है मिथुन वालों के लिए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की समस्या और लीवर की समस्या, कोलेस्ट्रॉल और लीवर की समस्या पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यहां पर समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अगर मिथुन वाले अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे तो हर बड़ा काम इस समय कर सकते हैं, बड़े निर्णय ले सकते हैं, जीवन में लाभ उठा सकते हैं। कर्क राशि, देखिए कर्क वालों को ऐसा लग रहा होगा कि बृहस्पति कर्क में आ रहा है तो सब कुछ बड़ा अच्छा होगा। ये जरूरी नहीं है कि कर्क में गुरु आएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ अच्छा होगा और कुछ के लिए आपको अलर्ट रहना होगा। तो कर्क पे बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक स्थिरता जीवन में आ जाएगी, फाइनेंशियली थोड़ा बेहतर होंगे और करियर में आपके थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिख रहा है। पैसे बढ़ेंगे, काम थोड़ा इंप्रूव होगा तो मन की चिंताएं थोड़ी कम होंगी। अगर अविवाहित हैं तो आपके विवाह में तेजी आ सकती है, विवाह तय हो सकता है और संतान प्राप्ति के योग आपके लिए इस साल बन सकते हैं। तो जिनको विवाह करना है या जिनको संतान की कामना है, अगर कर्क राशि है तो आपकी ये इच्छा इस साल पूरी हो सकती है। कर्क वाले इस समय में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, लीवर की, मोटापे की, हार्मोन्स की समस्या परेशान कर सकती है और कर्क वालों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम, चक्कर आना, ऐसी मुश्किलें भी आ सकती हैं, सतर्क रहिए। परिवार में बेवजह के विवादों से बचिएगा। जीवन साथी के साथ आपके बेवजह के झगड़े झंझट हो सकते हैं, उसको लेकर के आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो कर्क वाले स्वास्थ्य और बेवजह के विवादों से बचें तो उनके लिए बेहतर है। करियर के मामले में, पैसे के मामले में, विवाह के मामले में इस समय कोशिश करने पर लाभ होगा। सिंह राशि, बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपकी लंबी लंबी यात्राएं करवा सकता है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, संतान को लेकर और जीवन साथी को लेकर के जीवन में समस्याएं दिखाई दे रही हैं जिसका ध्यान बनाए रखना चाहिए। आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण काम, विवाह का काम, पैसे का काम, जीवन में बड़े परिवर्तन का काम इस समय रुक सकता है, प्रमोशन होते होते रुक सकता है, किसी कोर्ट केस में, कचहरी मुकदमे में फंस सकते हैं, बड़ा पैसा फंस सकता है, यानी महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं। ये जो समय आपका चल रहा है इसमें एक ही फायदा दिखाई देता है कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है, आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और आपके करियर में बदलाव हो सकता है। देखिए, सिंह वाले संतान पक्ष को लेकर और वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत सतर्क रहें। पैसा रुपया लगाने में, जीवन में एकदम से कोई बड़ा निर्णय लेने में बड़ी सावधानी रखिएगा। 2 जून से 31 अक्टूबर का समय आपके लिए कठिन दिख रहा है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों को बृहस्पति अपना आशीर्वाद देने को तैयार हैं, तो इस साल संतान की उन्नति भी दिख रही है। अगर संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो वो भी बढ़िया है। इस साल संतान की उन्नति होगी और आर्थिक रूप से सुधार होगा। धन की जो मुश्किलें हैं, पैसे रुपए की जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हल होती चली जाएंगी। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से कोई लाभ हो जाए ऐसा चाहते हैं तो आपके लिए लाभ का समय है। करियर में बड़े बदलाव के योग आपके लिए बनेंगे और ये बदलाव आपको पैसे का फायदा ज्यादा देगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन संतान और करियर के लिए बहुत ही अच्छा है। कन्या राशि वाले जून से लेके अक्टूबर के बीच में बढ़िया पैसा कमाएंगे, बढ़िया लाभ होगा इनको और नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। अगर नए काम का आरंभ करते हैं तो उसमें भी फायदा होगा। तो कन्या वालों को एफर्ट करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, इस समय का सदुपयोग करना चाहिए ताकि आगे चल करके ज्यादा से ज्यादा फायदा इनको हो सके। तो हमने आपको बताया मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों पर देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। उसमें आपने जाना कि मिथुन वालों के लिए और कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन अच्छा है। अब जानते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों को धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है। तुला राशि वालों को बृहस्पति के राशि परिवर्तन से पैसे रुपए का, धन का अच्छा लाभ होगा। करियर में बड़ी सफलता इनको मिल सकती है, करियर में बड़ा फायदा इनको हो सकता है और इस समय आप आध्यात्म के और धर्म के रास्ते पर चलेंगे और उसकी वजह से आपको जीवन में ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा। बड़ा बेहतरीन समय है। अगर तुला वाले भौतिक सफलता चाहते हैं तो पैसा मिलेगा और अगर आध्यात्मिक सफलता चाहते हैं तो ईश्वर की कृपा मिलेगी। संतान की प्राप्ति हो सकती है आपको। संतान के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी आपके लिए। और अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह भी तय हो सकता है, फाइनल हो सकता है, ये संभावना बनेगी। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है और अगर बहुत दिनों से किसी ट्रांसफर के लिए या स्थान परिवर्तन की कोशिश कर रहे थे तो इस समय आपको लाभ हो सकता है। तुला वाले किसी बड़ी बीमारी को लेकर सतर्क रहें। डाइजेशन, मोटापा, आंखों की समस्या और चोट चपेट, इन चीजों को लेकर के तुला वालों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और बेवजह की दवाइयां अपने मन से ट्राई मत करिएगा, डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, नहीं तो छोटी सी बीमारी बड़े बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है। इस समय पूरा ध्यान अपने करियर पर दीजिए और थोड़ा सा समय ईश्वर की साधना उपासना में लगाइए तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, भाग्य स्थान में बृहस्पति जा रहे हैं भाई, तो आपके लिए तो सबसे बढ़िया है। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। पिछले कुछ दिनों से सेहत को लेकर के परेशान थे, दवाइयां अब काम करेंगी, आपकी सेहत बेहतर होगी, आपके मन की चिंताएं दूर होंगी और पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक मामले आपके बेहतर होंगे। करियर की और धन की स्थिति लगातार आपकी बेहतर होती चली जाएगी। करियर का मामला और धन का मामला आपका अब अच्छा होने लगेगा। आपके

0: बिगड़ी स्थितियों को इस समय आप संभाल ले जाएंगे। कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, करियर में या परिवार में कोई पुरानी इच्छा अगर चली आ रही थी तो इस समय पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह होने के योग भी आपके बनेंगे। इस समय संतान प्राप्ति का प्रयास भी कर सकते हैं और अविवाहित हैं तो विवाह होने की कोशिश भी की जा सकती है। धनु राशि, आठवें स्थान का बृहस्पति नकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है, मोस्ट निगेटिव, सतर्क रहें। कर्क राशि पहले नंबर पे, अब आ गई धनु राशि। करियर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है और अगर लापरवाही करेंगे, रिस्क लेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। पारिवारिक जीवन में एकदम से दिक्कतें आ सकती हैं, परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, परिवार का माहौल, परिवार के लोग इस समय डिस्टर्बेंसेस पैदा कर सकते हैं। करियर में ऐसा बदलाव भी हो सकता है कि आप दिल्ली से निकल के मुंबई चले जाएं या देश से निकल के विदेश चले जाएं, ये सब संभावना भी बन सकती है। हालांकि देखिए, करियर में जो परिवर्तन होगा उसमें पैसे अच्छे मिलेंगे और आप अपनी मेहनत से हमेशा सफल होते हैं, मेहनत बढ़िया करेंगे तो करियर में सफल भी होंगे। स्वास्थ्य के मामले में बड़ी सावधानी रखिएगा, किडनी, यूरिन, डाइजेशन और हड्डियां, इन मामलों में सतर्क रहेंगे। देखिए, धनु पर शनि की ढैया भी है और अब बृहस्पति आठवें स्थान में, तो इस वजह से सेहत को लेके आप लापरवाही मत करिएगा। और अगर पारिवारिक जीवन में कोई उपद्रव होता है या रिश्तों में कोई दिक्कत आती है, बड़ी शांति से, बड़ी सावधानी से उसको हैंडल करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। मकर राशि, फरवरी के बाद से जो मुश्किलें शुरू हुई मकर वालों की, कहीं ना कहीं चीजें हो तो रही हैं लेकिन परेशानी मन में बनी हुई है। अब आप खुश हो जाइए क्योंकि बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी लगातार हल होती चली जाएंगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मुश्किलें हल होंगी। करियर में इस समय प्रमोशन होगा, अगर प्रमोशन नहीं होता तो ऑफिस में आपको सफलता मिलेगी और ऑफिस में जिनकी वजह से दिक्कतें थीं वो सब आपके जीवन से गायब हो जाएंगे। तो करियर और सेहत का मामला बिल्कुल आपके लिए फिट हो जाएगा, आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। अब आपको आने वाले समय में चिंता की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल शांति पूर्वक समय बदलने का इंतजार करिए। धन का लाभ होगा, विवाह हो सकता है, संतान प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन सकते हैं। तो मकर वाले स्वास्थ्य को लेकर, करियर को लेके, तमाम चिंताओं को लेके जो परेशानियां थीं, अब उनकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। कुंभ राशि, कर्क, धनु और इसके बाद नंबर है कुंभ का, जिनको ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। स्वास्थ्य की समस्या से बचिएगा, डाइजेशन को लेकर, लीवर को लेकर, खान पान को लेकर आप मुश्किल में आ सकते हैं, स्वास्थ्य की समस्या से बचाव करिएगा। करियर में बिल्कुल शांति से, ईमानदारी से काम करिए, वरना करियर की स्थिति में उतार चढ़ाव हो सकता है, करियर में अप्स एंड डाउन्स की नौबत आ सकती है। इस समय कुंभ वालों को केवल आध्यात्मिक मामले में फायदा हो सकता है, स्पिरिचुअल मैटर में, आध्यात्मिक मामलों में कुंभ वालों को फायदा हो सकता है, लेकिन इस समय जोश में आके करियर में गलत निर्णय ले लें, प्रॉपर्टी बेच दें, चेंज ऑफ प्लेस कर लें, कोई गलत और बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा। इस समय को बीत जाने दीजिए, उसके बाद बुद्धिमानी से निर्णय लीजिएगा। हाँ, लेकिन इस समय में जून से अक्टूबर में अगर आप गहरी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसमें आपको लाभ होने की संभावना जरूर बनती है। मीन राशि, तो देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, आप खुद कर सकते हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा। ध्यान रखिएगा कि जो भी परिवर्तन का निर्णय लें वो 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में लीजिएगा। किसी धर्म स्थान की यात्रा हो सकती है, पूजा पाठ हो सकता है, धार्मिक झुकाव हो सकता है, ये संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। मीन वालों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, चिंताएं कम होंगी, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आने लगेंगी, और आपका दिलो दिमाग जो बेचैन और अशांत रह रहा था वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। चीजें आपकी बेहतर रास्ते पे चलेंगी, आर्थिक मामले आपके बेहतर होंगे, परिवार के सपोर्ट से, मित्रों के सपोर्ट से, करियर के डेवलपमेंट से आपको निरंतर पैसे मिलते रहेंगे, पैसों रुपयों के हालात बेहतर होंगे, और आपके जीवन में पारिवारिक स्थिरता आएगी, फैमिली लाइफ आपकी बेहतर होगी। मीन वालों ने बहुत काम बीच में लगा रखे हैं जो अब तक नहीं हो पा रहे थे, अब मीन वालों के काम पूरे होंगे और मीन वालों की चिंताएं ठीक होंगी, जो बिगड़े हुए रिश्ते थे वो रास्ते पे आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, अगर हम 12 राशियों में देखें, मिथुन राशि, कन्या राशि, वृश्चिक, तुला और मीन, इनके लिए, मकर के लिए भी अच्छा है, इन लोगों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन अच्छा है। कर्क, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए और कुछ मात्रा में सिंह राशि वालों के लिए ये परिवर्तन अच्छा नहीं है। तो अगर बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है, आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक। सुबह और शाम बृहस्पति मंत्र का जप करिए। मंत्र आपको कार्यक्रम के शुरुआत में बताया था, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, सुबह शाम 108 बार। नियमित रूप से किसी धर्म स्थान में जा करके प्रार्थना करिएगा, कोई भी मंदिर हो, किसी भी देवी देवता का हो, जब समय मिले, रविवार को मिले तो रविवार को जाइए, या बृहस्पतिवार को केवल जाके मंदिर में कोने में बैठिए और आंख मूंद करके भगवान से अपने मन की सारी बात कहिए और अपनी प्रार्थना करिए। सात्विकता और पवित्रता बनाए रखिएगा। इस समय नॉनवेज खाना, मांस मदिरा का सेवन करना बहुत नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति उच्च राशि में जा रहे हैं। नॉनवेज और अल्कोहल से बचिएगा, नहीं तो जीवन में मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अनुकूल है तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की संभावना नहीं है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति निगेटिव है, खराब स्थिति में है, तो इस समय उच्च के बृहस्पति होने से आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और 2 जून के बाद जिन लोगों को भी अपने स्वास्थ्य में या अपनी मानसिक स्थिति में दिक्कत महसूस हो रही है, ऐसे लोगों को निरंतर मंदिर जाकर प्रार्थना करने से लाभ होगा। तो देव गुरु बृहस्पति की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
3: साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
9: धरती से आकाश तक भारत की बढ़ रही ताकत। देश में ही तैयार सेना के मॉडर्न हथियार। आत्मनिर्भर भारत का गोल्डन चैप्टर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
10: सास बहु और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में होगा नए रिश्तों का शुभारंभ। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहु और बेटियां में।
11: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
12: Thank God I get to wake up.
1: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: देखिए, हर साल 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस डे मनाया जाता है, ताकि लोगों में इस बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सके। ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हर ब्रेन ट्यूमर देखिए कैंसर नहीं होता, और समय पर पहचान होने पर इसका सफल इलाज भी संभव है। इन सभी पहलुओं पर जानकारी दे रहे हैं देश के प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन डॉक्टर आदित्य गुप्ता। देखिए,
14: वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस डे, जिसमें आप सारे लोगों को ये सतर्क और सजग रहना चाहिए, खबरदार रहना चाहिए और इस बारे में जागरूक रहना चाहिए कि अगर ब्रेन ट्यूमर है तो उसके माने क्या है, उसके इलाज क्या है और आधुनिक तकनीक कहां तक पहुंच गई है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। क्या मिथ है और सच्चाई क्या है?
15: तो देखिए, दो सबसे बड़े मिथ जो मैं रोज डील करता हूं वो ये है कि ट्यूमर और कैंसर में कंफ्यूजन। अब जैसे जब भी उनकी एमआरआई या सीटी स्कैन में रिपोर्ट में लिखा होता है सजेस्टिव ऑफ ट्यूमर, सबसे पहले पैनिक बटन दबता है कि भाई अब तो गए, अब तो लाइफ खत्म है, पता नहीं क्या होने वाला है, उल्टी गिनती शुरू होगी, टाइम बम है, अब वो कब फटेगा पता नहीं कब फटेगा। तो देखिए, ट्यूमर और कैंसर सेम चीज नहीं है। ट्यूमर जो हम वर्ड यूज करते हैं वो हम तब यूज करते हैं जबकि एक कोशिका बन जाती है, सेल्स मल्टीप्लाई करके गांठ बना देते हैं। तो पुराने जमाने में कहा जाता था जी ये सिंपल वाली गांठ है, खराब वाली नहीं है। तो उस पर ध्यान दें, वो जो बुजुर्ग कहते थे वो बिल्कुल सही कहते थे, एक होती है सिंपल गांठ और एक होता है कैंसर। तो सिंपल गांठ होती है, वहीं पे सीमित है, वो भी बढ़ेगी नेचुरली, ग्रो करेगी, बट वो सिंपल गांठ है। सिंपल गांठ का क्या मतलब है? उसका इलाज सिंपल है, अगर उसको आप ठीक कर दें तो सब कुछ बढ़िया है।
14: सिंपल माने क्या, कैसे पता लगाएंगे कि सिंपल है या
15: तो
14: उसमें दर्द होगा, उसमें सेंसेशन होगा, क्या होगा?
15: तो जो सिंपल गांठ को हम टेक्निकल भाषा में बोलेंगे, हम इसको कहते हैं बिनाइन ट्यूमर या नॉन कैंसरस ट्यूमर। अब ये जो गांठ है शरीर के जिस हिस्से में है वहां पे वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो सिम्टम बनाएगी। अगर पेट में है, छाती में है, अकॉर्डिंगली उसका सिम्टम आएगा। ब्रेन के किस पार्ट में है स्पेसिफिक, उस पार्ट का सिम्टम आएगा। अब जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की गांठ है, हमें मालूम है पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ये है तो दोनों आंख की नसें उसके जस्ट ऊपर लोकेटेड हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जब ट्यूमर बढ़ता है, एक या दोनों आंख की नसों को दबाता है, पेशेंट कहता है जी मुझे बीच की चीज तो दिख रही है, साइड की चीज बिल्कुल नहीं दिख रही। तो इस तरह का फील्ड इफेक्ट आता है। जब ये डॉक्टर सुनता है बात, डॉक्टर को पता है ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देते हैं जी, पेशेंट कहता है अभी पिछले 3 महीने से मैं चलता हूं तो मैं डगमगा रहा हूं और हमेशा राइट साइड में गिरने का चांस रहता है। और एक तरफ उसी तरफ की मेरी सुनाई भी चली गई है। तो ये मुझे पता है पेशेंट की बात सुन के कि इनकी जो सुनाई की नस है उससे एक बिना कैंसर की गांठ पैदा होती है जिसको अकुस्टिक न्यूरोमा कहते हैं, उसमें यही दो सिम्टम आते हैं। तो जो सिम्टम है वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि गांठ कहां पे है, बट वो सिम्टम ये नहीं बता सकता कि ये गांठ अच्छी वाली है या खराब वाली है।
14: वो तो आप ही लोग डिसाइड करेंगे।
15: बिल्कुल। तो सिंपल गांठ और कैंसर दो अलग अलग बीमारियां हैं, इनको आपस में हमको कंफ्यूज नहीं करना है। अब इनकी डायग्नोसिस में दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर वन, अच्छी क्वालिटी की इमेजिंग। तो सबसे बढ़िया बात क्या है, हमारी कंट्री में सबसे छोटे शहर में आज की डेट में हाई क्वालिटी का एमआरआई मौजूद है। ब्रेन के लिए एमआरआई सीटी स्कैन से कहीं ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि सीटी स्कैन में, क्योंकि दिमाग में हड्डी मोटी होती है और दिमाग के बेस में बहुत मोटी हड्डी होती है जो कि हमारे दिमाग को सुरक्षित रखती है,

0: कहां पे है, कितने साइज की है, एक अंदाजा दे सकता है कि ये सिंपल वाली गांठ है या कैंसर है। अभी भी 100 में से 60-70 का रेशियो अगर हम लें, 60-70 में हम गांठ देख के बता देते हैं जी ये तो बिना कैंसर वाली गांठ है, इस लोकेशन की बहुत ही टिपिकल एमआरआई में दिख रही है, ये तो वही चीज है और हमें बायोप्सी की जरूरत नहीं पड़ती। बट जो बाकी 30% है जिसमें जो गांठ दिख रही है उसमें हम कहते हैं जी या तो गांठ को निकालना ही चाहिए एक बार में, क्योंकि शेप और साइज को देखते हुए एग्जैक्टली, या उसमें हमें एक बायोप्सी करना है, बिकॉज बायोप्सी ही है जो उसको सिद्ध कर सकती है कि ये गांठ किस तरह की है।
1: यानी आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि ये बड़ी राहत की बात है। आमतौर से डॉक्टर डराते हैं और ये बताते हैं ये हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर आदित्य गुप्ता ने हमें बताया कि अगर कोई भी ट्यूमर है, खास करके ब्रेन ट्यूमर, तो उस समय पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। ट्यूमर की जांच कराई जाए, किस स्थिति में है उसकी जांच कराई जाए, सिचुएटेड कहां पर है उसकी जांच कराई जाए, और उसके बाद तो सारा मामला डॉक्टर साहब की कोर्ट में ही होगा, यानी गेंद इनके पाले में होगी और ये आपका बेहतर से बेहतर इलाज करेंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: धरती से आकाश तक भारत की बढ़ रही ताकत, देश में ही तैयार सेना के मॉडर्न हथियार, आत्मनिर्भर भारत का गोल्डन चैप्टर। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: दिल्ली एनसीआर में कूल वीकेंड, आज भी बारिश को लेकर आईएमडी का येलो अलर्ट जारी।

0: अगले दो दिनों तक गर्मी से रहेगी राहत। पंजाब के कई जिलों में बादल मेहरबान, पठानकोट में बारिश के साथ गिरे ओले, तेज गर्मी से लोगों को मिली राहत। मैदानी गर्मी से राहत पाने पहाड़ों की ओर उमड़ा जन सैलाब, नैनीताल हाउसफुल, नैनी झील में नौकायन को लंबी कतारें, कैंची धाम में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। पुणे में एनडीए की ऐतिहासिक 150वीं पासिंग आउट परेड, सेना के तीनों अंगों को मिले नए अवसर, कुल 355 कैडेट्स हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को मिली 538 नए अग्निवीरों की ताकत, 24 महीने के कठोर प्रशिक्षण के बाद सातवें बैच ने ली शपथ, लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट सेंटर में पासिंग आउट परेड। कांचीपुरम के वरदराज पेरुमल मंदिर से निकाली गई भगवान की शानदार शोभा यात्रा, वैकासी ब्रह्मोत्सवम के अवसर पर भव्य आयोजन, जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल। नागपुर में वन संपदा को बचाने की अनोखी मुहिम, दुर्लभ पेड़ों की प्रजातियों के लिए बनाया गया सीड बैंक, लोगों को किया जा रहा है इसके लिए जागरूक।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: मेघालय की उमरोई में भारतीय सेना के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन, 12 मित्र देशों की सेनाओं के जवान शामिल। 20 मई से उमरोई में शुरू हुआ था अभ्यास प्रगति, 400 से ज्यादा जवान ले रहे हैं भाग। मिले जुले पहाड़ी और जंगली इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्र है अभ्यास प्रगति, संयुक्त योजना अभ्यास, सामरिक सर्वे के अभ्यास और समन्वित अभियान की ट्रेनिंग ले रहे हैं जवान। क्षेत्रीय शांति सुरक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है अभ्यास प्रगति का मकसद, आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर। अभ्यास में सभी देशों की संयुक्त टीमों को साझा मिशन के तहत एक साथ प्रशिक्षण, रॉक क्राफ्ट, एम्बुश और काउंटर एम्बुश ड्रिल, स्टिल थ्रिलिंग, जंगल लेन शूटिंग सहित कई तरह की ट्रेनिंग का आयोजन। पुणे के खड़गवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी के 150वें कोर्स की पासिंग आउट परेड, सेना के तीनों अंगों को मिले नए अवसर। पासिंग आउट परेड में सेना, नौसेना, वायुसेना के कुल 355 कैडेट शामिल, ट्रेनिंग संपन्न होने के बाद हुई परेड। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया परेड का रिव्यू, ऐतिहासिक खेत्रपाल परेड ग्राउंड में हुई परेड। परेड के दौरान कैडेट्स ने किया शानदार मार्च पास, कठोर सैन्य और शैक्षणिक प्रशिक्षण की दिखी झलक। एनडीए में 3 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद होती है कैडेट्स की पासिंग आउट परेड, साल में 2 बार होता है आयोजन। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पासिंग आउट परेड का निरीक्षण, परेड की ली सलामी। पासिंग आउट परेड के दौरान कैडेट्स ने शानदार कदम ताल से बांधा समा, देश सेवा के लिए जोश और जज्बे का प्रदर्शन। परेड के बाद वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने किया शानदार फ्लाई पास, सेना के शौर्य की नुमाइश। फ्लाई पास में वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स भी हुए शामिल, आसमान में परवाज भरकर किया जाबाजी का प्रदर्शन। परेड के दौरान कैडेट्स ने पेश किए शानदार फॉर्मेशन, पारंपरिक फाइनल स्टेप भी बना खास आकर्षण का केंद्र। एनडीए में पासिंग आउट परेड के बाद कैडेट्स के परिजनों से मिले सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कैडेट्स को प्रदान किए मेडल और पुरस्कार, ट्रेनिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए की सराहना। अध्यक्ष ने कैडेट्स के साथ खिंचवाई तस्वीरें, उनके परिजनों के साथ भी फोटो सेशन में हुए शामिल। श्रीनगर में हुई अग्निवीरों के सातवें बैच की पासिंग आउट परेड, रेजिमेंटल सेंटर में 538 अग्निवीरों ने किया मार्च पास। पासिंग आउट परेड के बाद परिजनों से मिले अग्निवीर, भावुक कर देने वाला दिखा पल, सेना में काम करने के लिए अपने जज्बे का किया इजहार। बेंगलुरु में हुई मद्रास इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर के अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड, 2315 अग्निवीर हुए शामिल। ब्रिगेडियर अजय सिंह ठाकुर ने की अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड की समीक्षा, परेड की ली सलामी। नौसेना की पश्चिमी कमान में बदलाव के मौके पर मुंबई में शानदार परेड, नौसेना के जवानों ने लिया हिस्सा। नौसेना के वाइस एडमिरल संजय बात्स्यायन ने संभाला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फेस्ट का पदभार, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन की जगह संभाली कमान। निवर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को दिया गया औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर, विदाई से पहले दी गई सलामी। देहरादून में टपकेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, भक्तिभाव से की पूजा अर्चना। मदुरई के थिरुपरान कुंदरम मुरुगन मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, वैकासी विकासम उत्सव का भव्य आयोजन। भगवान मुरुगन को समर्पित है वैकासी विकासम उत्सव, उत्सव में किया गया भगवान का विशेष अभिषेक। कांचीपुरम के वरदराज पेरुमल मंदिर से निकाली गई भगवान की शानदार शोभा यात्रा, वैकासी ब्रह्मोत्सवम के उत्सव पर भव्य आयोजन। शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु, मंदिर परिसर में जय घोष करते हुए भगवान के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। तमिलनाडु के तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर में बेहद भव्य तरीके से मनाया जाता है वैकासी विकासम का उत्सव, भगवान मुरुगन की प्रतिमा और गर्भगृह का होता है ताजे फूलों से श्रृंगार। मंदिर में इस दिन पंचामृत और दूध से किया जाता है भगवान का विशेष अभिषेक, भगवान मुरुगन का जन्मदिवस के रूप में माना जाता है वैकासी विकासम का उत्सव।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
4: Thank God I get to wait.
3: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC. Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: Step into the heart of the American zeitgeist with me, Billy Bush. My new show, Hot Mics, is now streaming on TuneIn. It's the radio talk show that's going to redefine what it means to be in the know. From sports and politics to entertainment, tech, pop culture, and everything in between. You'll hear from A-list stars, athletes, politicians, and more. No filter, no fluff, just the real talk. Because when the mic is hot, the conversations are even hotter. Live Mondays and Wednesdays at 5 p.m. Eastern, 2 Pacific. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूँ, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं, मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा, जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, यह आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियस की दुनिया में होगा नए रिश्तों का शुभारंभ।
8: दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
9: This is radio reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
10: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
9: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: विश्वास बसता है जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम
13: सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: धरती से आकाश तक भारत की बढ़ रही ताकत, देश में ही तैयार सेना के मॉडर्न हथियार, आत्मनिर्भर भारत का गोल्डन चैप्टर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: दिल्ली NCR में कूल वीकेंड, आज भी बारिश को लेकर IMD का येलो अलर्ट, अगले दो दिनों तक गर्मी से रहेगी राहत। पंजाब के कई जिलों में बादल मेहरबान, पठानकोट में बारिश के साथ गिरे ओले, तेज गर्मी से लोगों को मिली राहत। मैदानी गर्मी से राहत पाने पहाड़ों की ओर उमड़ा जन सैलाब, नैनीताल हाउसफुल, नैनी झील में नौकायन को लंबी कतारें, कैंची धाम में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। पुणे में NDA की ऐतिहासिक 150वीं पासिंग आउट परेड, सेना के तीनों अंगों को मिले नए अफसर, कुल 355 कैडेट्स हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को मिली 538 नए अग्निवीरों की ताकत, 24 महीने के कठोर प्रशिक्षण के बाद 7वें बैच ने ली शपथ, लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में पासिंग आउट परेड। कांचीपुरम के वरदराज पेरुमल मंदिर से निकाली गई भगवान की शानदार शोभा यात्रा, वैकासी ब्रह्मोत्सवम के उत्सव पर भव्य आयोजन, जयकारों से भक्ति में हुआ माहौल।
2: वाडीलाल आइसक्रीम, जरा मुस्कुराइए, वाडीलाल खाइए।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल चुकी।

0: सैटरडे, सैटरडे का मतलब है फुल ऑन पार्टी मोड। अब पूरे हफ्ते मेहनत करने के बाद इट्स टाइम टू डांस, टाइम टू एंजॉय द म्यूजिक एंड ऑफ कोर्स ढेर सारी मस्ती और सेलिब्रेशन। आज तो हम हैं फुल ऑन पार्टी मोड में, तो आप भी शामिल हो जाइए हमारी इस पार्टी में जहां पर है आपके लिए एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। आज तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा ये सैटरडे पार्टी स्पेशल हेडलाइंस के साथ।
1: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटियां के वीकेंड स्पेशल एपिसोड में आज देखिए, शादी से पहले अरमान अभीरा के बीच होगा रोमांस।

स्टार परिवार के स्पेशल शो फैशन के रंग रिश्तों के संग में लगेगा फैशन का तड़का, वो भी रोमांस के साथ। दिखेगी देसी तड़के में ग्लैमरस की चमक।

0: तेजस्वी साधेंगे रूहानी पर निशाना। क्या खतरे में है रूहानी? वसुधा ने शुरू किया अपना नया बिजनेस, परिवार ने दिया वसुधा का साथ। राध्या के थप्पड़ शो से घर में मचा बवाल, प्रथम देगा राध्या को तलाक। और साथ ही नए किरदार में ढलेंगे जय सोनी, बनेगी छवि पांडे संग इनकी जोड़ी, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: यहाँ तो सैटरडे वाली पार्टी में होनी चाहिए फैमिली बॉन्डिंग और सेलिब्रेशंस, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एग्जैक्टली उससे उल्टा ही होता है वसुधा की इस कहानी में। तो क्या कुछ हो रहा है आज? क्या फिर से आया है कोई नया ट्विस्ट, कोई नया कंफ्यूजन या फिर कोई नई सिचुएशन? चलिए पता करके आते हैं, लेकर चलते हैं आपको बिहाइंड द सीन्स सीधा वसुधा के पास।
0: शुरू हुआ वसुधा का नया बिजनेस। समर हुआ नाकाम।
2: हर एक दिल में छुपा कहीं प्यार है, बस पहचाने दो।
0: दादी ने समर को सिखाया सबक।
2: ना जाने किस पर कहा।
0: जी टीवी के सीरियल वसुधा में समर ने पूरा प्लान तो बना लिया था कि वो दादी की नजरों के सामने वसुधा को नीचे गिरा दे। इसीलिए उसने ऐसा खेल खेला कि जिसके चलते वसुधा ने शूटिंग पर ब्रेक लगा दी और फिर समर ने सारा इल्जाम वसुधा पर लगा दिया और दादी को बातें बढ़ा चढ़ाकर बता दी ताकि दादी वसुधा को खरी खोटी सुनाए। और समर को लगता भी यही है कि ऐसा ही होगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दादी ने वसुधा पर चिल्लाने के बजाय वसुधा को अपने गले लगा लिया।

0: क्या करेगा दादा, इसको समझाने की बजाय इसे गले लगा रही हो।
1: हारो तो मन करे कि अपनी पोत बहू की आरती उतारू। पता था हमारे को कि ये अपने घर वालों का साथ ना छोड़ेगी। अगर भगवान की आज आ रहे ना जमीन पे, और इसने आके बोले कि अपने घर से बाहर काम कर, ये उनको भी ना बोल देगी। आज वसुनी ने फिर से साबित कर दियो है कि या इस घर की बहू बनने योग्य है। अरे इसने आज अपने बहू होने का धर्म और फर्ज दोनों निभाए, अपने परिवार की मर्यादा ने इतना ऊंचा उठा दियो है। पर कुछ लोग हैं जो आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, जो इस हीरे ने अपना ना रहे, बार बार इसका तिरस्कार करें, इसने नकारे हैं।
2: कैंसिल इसलिए करना पड़ा क्योंकि वसुधा पे प्रेशर था दादी का कि आपको ये करना ही पड़ेगा, लेकिन वसुधा नहीं करना चाहती थी। बट आज जब वक्त आ गया था वो करने का, तो वसुधा ने जब देवी हुकुम का चेहरा देखा, शी वॉज सो सैड, तो वसुधा ने स्टैंड लिया अपनी देवी हुकुम के लिए। और वो कहती है कि मैंने आज दिन तक जो भी किया है अपनी देवी हुकुम के लिए किया है, तो मैं किसी और के लिए नहीं करूँगी। और वो ऐलान कर देती है कि आज शूट नहीं होगा।
3: भाई दादी तो जमकर वसुधा की बड़ाई कर रही हैं और चंद्रिका को जाहिर कर रही हैं कि उसे बहू के तौर पर हीरा मिला है, लेकिन अपने आप को नाकाम होता देख समर अपना खेल खेलना शुरू कर देता है और सारी गलती दादी की बताता है। इतना ही नहीं, वो तो अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए तक कहता है, लेकिन दादी समर को सिखा देती है सबक।
1: अरे
2: एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है ऐसे यूनिक लुक, और सबसे अच्छी ये ग्रीन बैंगल्स जो मेरे रेड लहंगा पर है, और ये लुक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं फ़ोटोशूट के लिए रेडी हुई हूँ। और फ़ोटोशूट समर ने प्लान किया था इसलिए वो कैंसिल करना पड़ा क्योंकि वसुधा नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ काम करे। बट अच्छे बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं, आई थिंक एवरीथिंग इज़ ऑन प्लेस।
3: भाई शूट आज के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया है, वो भी वसुधा ने। इतना ही नहीं, अब तो वसुधा ने अपना नया बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया है और उसके इस बिजनेस में उसका पूरा परिवार उसका साथ दे रहा है। वैसे वसुधा बढ़िया अचार बनाती है और इससे अच्छा बिजनेस वसुधा के लिए हो ही नहीं सकता।
2: दादी सा का था कि तू अपना काम शुरू कर, लेकिन बुआ ने बहुत सपोर्ट किया और अचार बनाने का आइडिया दिया। एक्चुअली प्रोमो में ये दिखाया जा रहा है कि वसुधा अपने एक नया बिजनेस शुरू कर रही है जिसमें सब लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो अचार का बिजनेस शुरू किया है वसुधा ने और बस वो अचार के बड़े बड़े ट्रक लोड होके जा रहे हैं और सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बस इतना ही था।
3: फिलहाल तो वसुधा की इस नई उड़ान में पूरा परिवार उसका साथ दे रहा है, केवल चंद्रिका ही है जो नदारद है। अब देखना होगा कि कब चंद्रिका का दिल वसुधा के लिए पिघलेगा और चंद्रिका वसुधा को अपनी बहू मानेगी।

0: एक कोत बहु मिली है मन्ने। अपने दम पे एक दिन में इतनो कमा लिए उसने कि पूरे परिवार ने खिला रही।
1: नहीं चाहिए।
2: मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: कमाल हमारे देवी हुकुम ने हमारे हाथों की बनी खिचड़ी चखी तक न।
4: बेचारी किशोरी कहाँ ही सेलिब्रेट करेंगे कोई सैटरडे वाली पार्टी। फिलहाल तो इनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है पार्टी जैसा, क्योंकि देखिए अब ना ये सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है वो तो हर मोड़ पर देंगी अपने पति लाला का साथ। तो क्या कुछ हो रहा है इस कहानी में, आज क्या मंजरी लेकर आनी है इस कहानी में, फिर से कोई नया ट्विस्ट? ओप्स, लेकर चलते हैं आप सबको पति अनाड़ी के सेट पर।
2: किशोरी की रसोई में लग रहा है स्वाद का तड़का।
5: तू है तो टेढ़ी मेढ़ी राय, उल्टी पुल्टी बातें सीधी लगती है।
2: बढ़ रही है किशोरी और लाला की दोस्ती।
5: दुश्मन के इरादे सच्चे लगते हैं, दिल में तारे वारे दे जगा वो तू ही है।
2: कुल्फी बनाते बनाते किशोरी और लाला का फन अनलिमिटेड।

के सीरियल पति अनाड़ी में लाला की खुशी के लिए किशोरी कुछ भी करने के लिए तैयार है और आज तो वो रसोई में पहुंच गई है लाला के लिए कुल्फी बनाने। असल में लाला को कुल्फी खानी है। ऐसे में लाला की फरमाइश पर देखिए कैसे आज किशोरी ने अपनी कमर कस ली है और अपने हाथों से मीठी मीठी स्वादिष्ट कुल्फी बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। और तो और लाला भी किशोरी का बराबर साथ दे रहा है, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स को कूटना हो या फिर किशोरी के साथ टाइम पास करना हो। कुल्फी बनाते बनाते दोनों खूब एंजॉय कर रहे हैं।

0: Măscu joare!
1: Soare, strânge.
0: Tu mă ții parte că râveați până abiniul.
2: किचन में कुल्फी बन रहा है जो मैं बनाती हूँ बिकॉज लाला को कुल्फी खानी थी तो वो मंजरी जीजी का वेट कर रहा था कि मंजरी जीजी कब आएंगी और कुल्फी खिलाएंगी हमें. देन मैं पहुँची और मैंने बोला कि अच्छा कुल्फी खानी है आपको, तो बोला हाँ हम बना सकते हैं कुल्फी की रेसिपी. एक्चुअली मैंने बनाई है, मैंने अभी रिसेंटली बनाई थी. मैंने आम कुल्फी बनाई थी, बहुत रील्स पे वायरल हो रहा था कि आम लो उसको ऊपर से काटो, ऊपर से उसकी अंदर की गुठली निकालो, गुठली निकाल के उसके अंदर जो कुल्फी की स्टफिंग होती है, जैसे दूध को हम मलाई पहले वो क्या बोलते हैं उसको बनाते हैं, नहीं जलाकर नहीं, उसको बहुत ज़्यादा पकाते हैं और इतनी क्वांटिटी को इतना बना देते हैं. उसके बाद ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, थोड़ी सी शक्कर भी डाली थी मैंने और इलायची डालते हैं और ये सब ये सारी चीज़ें डालकर मैंने बनाई थी. और उसके बाद मैंने उस आम के अंदर स्टफ़ कर दिया था और फ्रिज में रख दिया था. फ्रिज में रखने के बाद बाहर से वो उसका निकाल के और फिर मैंने कट कट कट कट कर आम ने खाया, बहुत टेस्टी लगा था.
3: भाई आज तो किशोरी नहीं बल्कि वृंदा दहल ने भी अपनी पाक कला दिखा दी, तभी तो पूरे मन से इन्होंने कुल्फी बनाई है. और तो और दोनों ने मिलकर इसमें मिठास भी डाली, वो भी रिश्ते की. खैर कुल्फी का मसाला बन गया है, ऐसे में किशोरी ने सारे मसाले को कुल्फी के ढांचे में डालना शुरू कर दिया और ये देखकर लाला के मुंह से पानी आ रहा है. वो तो तैयार है फटाफट कुल्फी खाने के लिए, लेकिन कुल्फी बनने में अभी समय लगेगा. इसीलिए किशोरी ने सारे ढांचों में कुल्फी का मसाला भर रख दिया है फ्रिज में. लेकिन ये देखकर लाला बेहद परेशान है क्योंकि उसे तो कुल्फी अभी के अभी ही खानी है.
2: अब हमको वेट करना पड़ेगा ना, कुल्फी तो इतनी जल्दी बनेगी नहीं, 2 घंटे हमें फ्रिज में रखना पड़ेगा. तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं और वेट करते करते हम गेम्स खेल रहे हैं क्योंकि वो बोर ना हो जाए. वो बार बार बोल रहा था कि खोल लेते हैं खा लेते हैं ये वो, तो मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गेम्स खिला रही हूँ, चिड़िया उड़. तो वही सीक्वेंस और बड़ा मजा आया.
3: नाराज लाला आगे आगे और किशोरी पीछे पीछे जो उसे मनाने में लगी हुई है. खैर कुल्फी बनने में तो अभी इंतजार है, ऐसे में किशोरी ने तय किया है कि वो लाला के साथ बैठकर गेम्स खेलेगी. तभी तो देखिए कैसे किशोरी और लाला दोनों मिलकर रसोई में एक से बढ़कर एक खेल खेल रहे हैं.
0: चिड़िया उड़, कमा उड़, मैना उड़, तोता उड़, पानी उड़, फ्रिज उड़, वो आ गई, लाला जीत गया.

0: क्यूट मोमेंट्स, अरे बहुत पसंद है फैंस को. मैं एडिट्स देखती हूँ, जैसे अभी आ चुके हैं, टेलीकास्ट हो चुके हैं बहुत सारे क्यूट मोमेंट्स, तो वो मैं देखती हूँ जो एडिट्स बना के डालते हैं, एंड मैं शेयर भी करती हूँ उसको, बहुत सारे एडिट्स को तो मैं देखती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब वो क्यूट जितना होता है ना, उससे क्यूटर क्यूटेस्ट हो जाता है जब वो एडिट बना के डालते हैं. तो
1: इंतजार की घड़ी हुई खत्म, अब कुल्फी करेंगे खत्म.
2: अब खेल खेल में इनका समय निकल गया है और कुल्फी भी बन गई है. ऐसे में किशोरी फिर से कुल्फी निकाल कर ले भी आती है. अब देखना होगा कि लाला को किशोरी के हाथों की कुल्फी पसंद आएगी या नहीं. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
3: इस जुनूनी की इस कहानी में जब होगी सैटरडे वाली पार्टी, तो हमारे गुरु और रूहानी क्या करेंगे? ऑफ कोर्स दे विल पुट ऑन देयर डांसिंग शूज. और कुछ देर के लिए आप दोनों ना सब कुछ भूल जाइएगा. देखिएगा यू मिनटों में आप दोनों हो जाएंगे रिफ्रेश और रीसेट, जिसकी आप दोनों को बहुत जरूरत है, क्योंकि हाल ही में चल रहा है यहाँ पर अनलिमिटेड ड्रामा. लेकर चलते हैं आप सबको इन दोनों के पास.
2: गुरु तेजस्वी की निशानेबाजी,

क्या खतरे में है रूहानी? रूहानी ने गुरु को याद दिलाई नानी। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज गुरु तेजस्वी को दिखा रहा है अपनी निशानेबाजी, लेकिन तभी सामने आ जाता है बब्बन और रख लेता है अपने सिर पर एप्पल, ताकि गुरु अपने निशानेबाजी की कला दिखा सके और बता सके कि वो पक्का निशानेबाज है। लेकिन तभी तेजस्वी गुरु के साथ आ जाती है निशाना साधने के लिए। ऐसे में बब्बन की हालत हो जाती है।

0: कि तभी रूहानी बब्बन की जगह खड़ी हो जाती है अपने सिर पर एप्पल रखकर। बस फिर क्या, शुरू हो जाता है डर और निशानेबाजी का खेल, क्योंकि गुरु को डर लग रहा है। असल में गुरु को पता है कि नर्स के लिबास में उसकी कंपाउंडर है।
1: बच्चों खेल रही है, हटो यहाँ से।
2: कचरों के खिलाड़ी हम भी हैं सर जी, चलाइए गोली हम पे, अपनी मैडम जी के साथ में। क्या हुआ, डर गए?
3: Come on गुरु, जब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी पप्पा ने कहा ना कि तुम्हारा निशाना नहीं छूटता।
4: हाँ हाँ बिल्कुल, उन्होंने सिखाया मुझे, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं किसी इंसान के सर पे भी एप्पल रख के यू नो निशाना साध सकती हूँ। सो उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दिलाया, अब देखते हैं, हो सकता है मैं भी आगे ये कर सकूँ अकेले उनके हेल्प के बिना, शायद मे बी, यू नेवर नो।
0: अब तेजस्वी क्या करेगी क्या नहीं, ये तो आगे की बात है। फिलहाल तो आज गुरु का निशाना चूका नहीं और रूहानी की जान बाल बाल बच गई। वैसे गोली चलाने की वजह से गुरु और तेजस्वी दोनों नीचे गिर गए। ऐसे में गुरु तेजस्वी के हाथ साफ कर रहा है, उसकी केयर कर रहा है और ये देख रूहानी चिढ़ रही है।

0: वैसे गुरु ये सब जानबूझकर कर रहा है ताकि रूहानी को जलन हो। तभी तो देखिए कैसे वो तेजस्वी का हाथ साफ कर रहा है, तो नजरों से सिर्फ और सिर्फ रूहानी को देख रहा है। खैर गुरु को क्या पता कि रूहानी भी कम नहीं, उसने भी इसका बदला ले ही लिया।
1: ऑफकोर्स मुझे गुंडागर्दी, बाहुबली एंड ये सारी चीज़ों से, जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ, तो जब उनको ये सज़ा मिली थी कि अपनी गुनाहों के लिए कि उन्होंने मुझे बीच रास्ते आकर छोड़ दिया था, तो मैंने उन्हें ये सज़ा दी थी कि उनको ये सारी चीज़ें मुझे सिखानी होगी, चाहे वो कार चलानी चीज़ हो या फिर बंदूक चलाना हो या फिर सुल्तानपुर घुमाना हो। सो एज अ गाइड वो मेरे को पूरा घुमाएंगे, ये उनकी सजा है। सो बस वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं और मैं अपनी स्किल सीख रही हूँ उनसे।
0: रूहानी तो चली गई, लेकिन गुरु ने जो तेजस्वी से वादा किया है शहर घुमाने का, इसीलिए वो उसके साथ जा रहा है। ये बात सिकंदर और बब्बन दोनों को ही रास नहीं आ रही। अब उन्हें क्या पता कि गुरु क्या करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर गुरु रूहानी के कमरे के बाहर ताका झांकी कर रहा है। ऐसे में वहाँ पर तेजस्वी आ जाती है, जिसके चलते गुरु घबरा जाता है।
2: ओ मिस्टर बाहुबली, तुम इतनी रात को इस नर्स के रूम के बाहर क्या कर रहे हो?
3: वो हमारे सर में दर्द है तो दवा लेने आए थे।
2: सुल्तानपुर बहुत बोरिंग जगह है ना, तो बहुत जल्दी सो जाते हैं। मुझे तो देर तक जगने की आदत है, और ये फोन पर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, वरना मैं कुछ फोन पे ही टाइम पास कर लेती।

0: पास ले जाकर के मार देगा। और शहर में खत्म किया लोगों को पता चल जाएगा जो हम उन्होंने नहीं देखे। फिर भी तुम कुछ भी करो उस चीटी की वीडियो बना सुबह तक मार के खत्म कर दो।
1: सबके लिए यही फायदे का बात है।
2: हम जिस जगह पे रहते हैं सुल्तानपुर में उसके भीतर तो नहीं ही मारा जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, सुल्तानपुर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाहुबली का वर्चस्व इतना है कि यहाँ पर अंदर रहते हुए सुल्तानपुर में रहते हुए तो हम इतने बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये ताना बाना बुनना पड़ेगा और ऐसी सोच रखी गई है त्रिपुरारी जी की तरफ से। अब हम कितना कामयाब होते हैं वो आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा।
3: जी जी, किलर को बुलाए, बाकायदा बुलाए, और ये होशियारी रखिए कि किलर को भी बाहर से बुलाए और यहाँ से बाहर लेकर जाकर ही मारना है, नहीं तो गुरु को तो आराम से पता चल जाएगा अगर शहर में मारा तो। और ये रिस्क भी नहीं ले सकते क्योंकि अब तो बात एकदम गले तक आ चुकी है, तो अब पकड़े गए तो या तो हमारा गेम खत्म होगा या उनका गेम खत्म होगा। तो अब ये तो इट इज़ अ गेम ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
4: अब देखना होगा क्या मामा और मामी अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे रूहानी को मारने में। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: कोई डांस फ्लोर पे धमाल मचाएगा तो कोई करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ कोई कोजी हाउस पार्टी, या फिर कोई करेगा अपने दोस्तों के साथ पजामा पार्टी। माय ऑल टाइम फेवरेट, द मोस्ट चिल मोड, बट ये पार्टी कर देती है आपको कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री और ऊपर से दोस्तों का साथ। और बिल्कुल ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट जिसमें है आपके लिए एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, थ्रिल और ड्रामा सब कुछ एक साथ। यानी यहाँ तो है आपके लिए एंटरटेनमेंट का हर रंग। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देख लीजिए ऐसे।
4: बन गई छवि पांडे और जय सोनी की जोड़ी, हो रही है नव्या वेद की शादी। दो कदम शादी में दूल्हे राजा की बेइज्जती,

0: स्टोरी टीवी लेकर आ रहा है एक नया वर्टिकल ड्रामा जिसका नाम है आधा सच पूरा इश्क, जिसमें नजर आएंगे जय सोनी और छवि पांडे। जय सोनी के किरदार का नाम है वेद और छवि पांडे निभा रही हैं नव्या का किरदार। और आज फिल्माया जा रहा है इनकी शादी का ड्रामा, जहां पर नव्या एक अमीर खानदान की लड़की है और तो और CEO भी है। उसका एक भाई है जो अपनी बहन से बिल्कुल प्यार नहीं करता और जलता है, इसलिए देखिए कैसे भरी महफिल में वो अपनी बहन के होने वाले पति वेद यानी कि अपने जीजा जी की बेइज्जती कर रहा है।
1: पहले तो आप सिर्फ चॉइस देखिए, अपनी एक्टिंग CEO के होने वाले पति की शक्ल देखिए आप एक बार।
0: फिलहाल तो वेद अपने साले की बदसलूकी का जवाब नहीं दे रहे, उल्टा वो सभी के सामने अपना टशन दिखाते हुए जैकेट उतार कर पहुँच जाते हैं पंचिंग बैग को मारने और दिखाते हैं अपना दम। इस पर भी चैतन्य कसर नहीं छोड़ता अपने जीजा जी की बेइज्जती करने में।
1: वैसे बॉडीगार्ड या बाउंसर बनने लायक तो है तू, दम है
0: भाई। वेद ने तो यहाँ पर शांत रहना ही ठीक समझा है, लेकिन चैतन्य उसने तो शांत होना लगता है सीखा ही नहीं। तभी तो सभी के सामने बेइज्जती पर बेइज्जती कर रहा है। और तो और उसने ह्यूमन स्कैनिंग मशीन भी मंगा ली है जो स्कैन करती है और लोगों की औकात बताती है। जरा देखिए कैसे उसने अपने घर में आए अमीर से अमीर लोगों की स्कैनिंग की, उनका औदा बताया और तो और अपनी बहन और जीजा जी को बुलाकर उनकी भी स्कैनिंग की।
1: तो अब उसकी चेक कर लेते हैं जिससे ये पहलवान शादी करने आया है, मेरी प्यारी बहन।
2: ₹550 करोड़।
1: तो क्यों ना प्लान बी प्ले का भी चेक कर दिया जाए, क्या बोलते हैं आप सब?
2: हाँ हाँ

0: आप सबने, आपकी एक्टिंग सीईओ का पति एक टीचर है, एक फूटी कौड़ी नहीं है इसके पास। ध्यान से देख, एरर दिखा रहा है, जीरो नहीं, मशीन बॉर्न कर रही है कि दूल्हा नहीं है, एरर।
1: भाई जीजा और साले के बीच चश्मेबाजी तो देखते ही बनती है, लेकिन एक और टशन दिखाने के लिए वहाँ पहुँच गई है चैतन्य की बीवी, जो वेद को देखकर ना सिर्फ हैरान है बल्कि उसे तो गुस्सा भी आ रहा है। इसलिए देखिए कैसे वो पहुँच गई है भरी महफिल में नव्या और वेद की बेइज्जती करने के लिए।
2: सिक्योरिटी अभी का भी निकालो से यहाँ से बाहर। भाभी से क्या बोल रही ना? मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
0: मेरी बीवी को छेड़ पा रहा हूँ सबसे।
3: जो भी हुआ गलतफहमी थी, चलिए माफी मांग चुका हूँ मैं।
2: गलती के पीछे गलत हरकत करते तुम जैसे नीच।
1: नव्या के भैया भाभी ही नहीं बल्कि नव्या के पापा भी वेद की बेइज्जती करते हैं और तो और इस शादी से इनकार कर देते हैं। अब इन सबको क्या पता कि वेद कितनी पहुंची हुई चीज है, सिर्फ और सिर्फ नव्या ही जानती है और वेद वो तो सिर्फ नव्या से प्यार करता है।
3: पूरी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या सोचती हो उससे फर्क पड़ता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ?
2: चाहे जो हो जाए मैंने भी डिसाइड कर लिया। देख लिया आपने अपनी बेटी को, एक बेशरम हल्सी दो टके के ड्राइवर का साथ दे रही है ये।
1: अब नव्या ने तो अपना फैसला सुना दिया और चैतन्य उसने भी सिक्योरिटी को वेद को बाहर निकालने के लिए कह दिया, लेकिन नव्या से ये बर्दाश्त ना हुआ और देखिए कैसे शादी के मंडप से सिंदूर की डिबिया लाकर वेद के सामने रख दी और वेद ने नव्या की मांग भर दी और उसे अपना हमसफर बना लिया। अब देखना होगा क्या घर वालों को इस बात का पता चल पाएगा कि वेद कितना अमीर और कितनी ऊंची पोजीशन पर है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस कहानी में फैमिली फंक्शन हमेशा ग्रैंड होते हैं। सच में इनकी शादी, इनका हर फेस्टिवल देता है हमें कितनी सारी स्टाइलिंग इंस्पिरेशन। और उसके साथ साथ देखिए कहानी में आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा। तो क्या कुछ हो रहा है अभीरा और अरमान की जिंदगी में आज, चलिए पता कर कर आते हैं। लेकर चलते हैं आप सबको सीधा यहाँ।
5: मैं तनु समझावा की ना तेरे बिना लग दाजी।
1: अरमान की आशिकी
5: की ना तेरे बिना लग,
1: अभीरा की दिल लगी।

0: फोकस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज अरमान और अभिरा के सिर पर रोमांस चढ़कर बोल रहा है। असल में दोनों की जल्द ही फिर से शादी होने वाली है, ऐसे में शादी की तैयारियां भी इन्हीं दोनों को करनी है। इसलिए देखिए कैसे अभिरा पहुंच जाती है अरमान के कमरे में उसका माप लेने के लिए, क्योंकि उसकी शेरवानी जो बननी है। लेकिन अरमान उसे लगता है कि बेयर बॉडी देखकर अभिरा उस पर डोरे डाल रही है, तभी तो देखिए कैसे वो अपने डोले शोले दिखा रहा है, वो भी अभिरा को।
1: अपनी फ्रेंड्स के सामने मेरी मसल्स फ्लेक्स करने वाली हूँ, फिर तो अच्छे से फ्लॉन्ट करना पड़ेगा।
2: तुम और तुम्हारी सीरियल है, दो मिनट रुक जाओ प्लीज। कल हमारी शादी है और अब तक हमारे कपड़े नहीं बने, मेजरमेंट्स तो लेने पड़ेंगे ना।
1: अच्छा तो तुम इस बहाने मुझे ताड़ने आई हो।
2: तुम ना सेल्फ इम्पोर्टेंस की दुकान हो
1: और तुम मेरी
2: ये क्या हो रहा
1: है बता।
2: अभी बाद में बताना, अभी बहुत काम है घर उस्मान।
1: तुम हमारी शादी की तैयारियों को काम बोल रही हो, तुम्हें पता है शादी करने वाले कपल्स के लिए टाइम कितना स्पेशल होता है?
2: उनके लिए स्पेशल होता है जो पहली बार शादी कर रहे होते हैं, हम तीसरी बार शादी करने जा रहे हैं। मुझे तो घर में भी कसम से किसी को काम बताने में शर्म सी आ रही है, इसलिए शादी के जो भी काम है तुम्हें और मुझे ही करने पड़ेंगे बस।
3: मजाक नहीं करता, मुझे लगता है कि इतनी बार वो बोल चुका है तो शायद उसको जेन्युइनली लगता होगा। ये वाला तो छेड़ने के लिए था ऑब्वियसली, क्योंकि
4: नहीं अरमान सेल्फ ऑब्सेस्ड है जैसा ऑलरेडी रोहित ने बोला।
3: हाँ क्योंकि बातें तो उसकी ऐसी लगती है, वो अभिरा उसके कपड़ों की नाप लेने के लिए आई है, वो बोल रहा है तुम मुझे अपनी फ्रेंड्स के सामने फ्लॉन्ट करना चाहती हो क्या, तो कहीं ना कहीं एक टिंच ऑफ सेल्फ ऑब्सेशन तो होगा, इसलिए वो पोज वोज भी करने लगता है, पूरा फ्लेक्स करने लगता है।
4: हाँ शादी भी आपस में ही हो रही है हमारी दोनों की, तो रस्में भी आपस में ही कर लेते हैं तो क्या है। और वैसे भी जैसे अभिरा ने बोला तीसरी बार है, तो आपस में आई थिंक इनको रूम में भी शादी करनी होती तो कर लेते, इनको अपने लिए शादी करनी है इस बार, तीसरी बार है
3: पहले तो इनको करनी ही नहीं थी। अरमान तो बोलता है ना कि शादी करने की जरूरत क्या है, हमारे बच्चे हैं, किसको फर्क पड़ता है, कौन पूछ रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा, तभी तो अरमान के अंदाज में शादी की परवाह नजर ही नहीं आ रही, वो तो सारा काम बाजू में रखते हुए सिर्फ अभिरा से रोमांस फरमाना चाहता है, और अभिरा वो भी उसके करीब जा रही है।

0: लेकिन तभी इनके रोमांस पर ब्रेक लगता है क्योंकि बाहर से इनका बुलावा जो आ जाता है। इसी बीच दोनों हल्दी की रस्म भी अपने कमरे में ही एक दूसरे के साथ करते हैं कि तभी उसमें भी ट्विस्ट आता है क्योंकि अरमान को आता है कॉल, जिसके चलते अरमान फोन पर बिजी है। और तो और आर्यन भी आ जाता है जो उनसे शादी की तैयारियों के बारे में पूछ रहा है, लेकिन अरमान बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है और अभीरा ये देखकर हैरान है।
1: डेकोरेट कर रहे, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं तो तेरे बेरे की नहीं
2: रहा। अरमान, मैं टॉप स्पीड में कहाँ भाग गया? तुम्हें पता है? आर्यन, तुम्हें आइडिया है अरमान कहाँ गया
1: है? नहीं बाबी, सॉरी।
2: ठीक है, मैं ही उससे पूछ लूँ।
1: भाभी भाभी, आप पहले रेडी हो जाओ ना।
3: तो उसमें वही, क्योंकि शादी है तो ऑब्वियसली हल्दी की रस्म भी होगी और घर में चाहे हो या ना हो, लेकिन अरमान अभीरा तो अपनी सारी रस्में निभाएंगे।
4: बहुत अच्छी रोमांटिक मोमेंट्स है, अभिमान सेंट्रिक सीन एंड हाँ, एंड बहुत अच्छा चल रहा था, फिर उसके बाद में फोन आ जाता है। ऑलवेज आपने देखा ही होगा कोई ना कोई हिंडरेंस आ ही जाती है, जैसे आर्यन, कभी बच्चे, कभी दादी सा, अरमान्स फेवरेट दादी सा, एंड तो ये सारी चीजें होती रहती है। इस बार फोन कॉल था एंड फिर आर्यन भी आ गया।
3: आता है हर बार फोन कॉल, भी एक ऐसी अजनबी भी परेशान करते हैं, बट इस बार मुझे जाना पड़ता है।
0: अभीरा तो अनजान है कि अरमान किस मुश्किल से जूझने वाला है, लेकिन आर्यन उसकी सांस में सांस आती है क्योंकि आज वो बाल बाल बच गया है। असल में आर्यन को पता है कि अरमान को ब्रेन ट्यूमर है और ये बात दोनों ही अभीरा और परिवार वालों से छिपा रहे हैं। इसी बीच अरमान और आर्यन भी इसी सिलसिले में एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर दादी भी आ जाती है आरती की थाल लेकर। ऐसे में दादी को लगता है कि अरमान आर्यन को सिखा पढ़ा रहा है, इसलिए दादी अरमान पर अपना गुस्सा दिखाती है।
5: लड़की अपनी बेटी को लापरवाह बना रही और तुम आर्यन को बदतमीज।
1: तो क्या करें दादी, घर के बड़ों ने तो झूठी घर शांति के लिए झूठ और दर्द का साथ देना शुरू कर दिया, तो बच्चों से जो कर पा रहा है।
5: अरमान, बदतमीज बनते जा रहे हैं, मेरी तमीज नहीं।
6: अभीरा और अरमान बहुत नाराज है कि दादी सा ने FIR दर्ज करने नहीं दिया, और दादी सा ने इसीलिए नहीं दिया क्योंकि दादी सा यही बोल रही हैं कि पहले कोई सबूत ढूंढो फिर FIR दर्ज करो, क्योंकि FIR दर्ज करने से घर की बदनामी होगी और वैसे भी मायरा का अभी ये रिमांड होम की गॉसिप अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और उन्हें नई गॉसिप दे रहे हो, तो इट्स नॉट राइट। तो पहले सब अच्छी तरह पता जांच पड़ताल करके तुम्हें जो करना है करो, लेकिन उससे पहले FIR दर्ज नहीं होगा। तो वो क्या है, वो नाराज है, दादी सा इज ऑल्सो नॉट हैप्पी, तो इसीलिए ये नाराजगी है।
0: भाई दादी सा तो गलतफहमी की शिकार है, असल बात तो उन्हें पता ही नहीं है। ऐसे में बिना जाने ही वो अरमान पर नाराजगी जता रही हैं और अरमान उसे अचानक परेशानी शुरू हो जाती है और अनजाने में ही सही वो वहाँ से निकल जाता है। और ये देखकर दादी सा को लगता है कि अरमान बदतमीज हो गया है।

0: ये दादी साहब को पता नहीं है. सो दैट इज वाई दादी साहब इज अनअवेयर कि अरमान को क्या प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए अरमान वहां से चला गया. दादी साहब बस यही सोचती है कि उसने हमारी बात अनसुनी कर दी. दैट इज वाई शी गेट्स अ लिटिल एंग्री एंड एजिटेटेड. बहुत अच्छा ड्रामा आने वाला है, बहुत अच्छा. आई एम सुपर एक्साइटेड और वी जस्ट होप कि इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट.
1: बिल्कुल सही कहा, अरमान और अभीरा फिर से एक हो ही रहे हैं कि तभी इस ब्रेन ट्यूमर ने कहानी में ट्विस्ट ला दिया है. देखना होगा कि अब क्या अभीरा अपने सुहाग को बचा पाएगी. मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
2: राधे और प्रथम, वैसे आप दोनों को भी करनी चाहिए आज शाम को एक सैटरडे वाली पार्टी, लेकिन सिर्फ एक दूसरे के साथ, क्योंकि आपको चाहिए एक ब्रेक अपने फैमिली ड्रामा से, क्योंकि जब भी वो होता है ना तो आपकी जिंदगी में आ जाता है क्योस और आपको जरूरत है यहाँ पर शांति की. तो एक पार्टी ही कर देगी आपको कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री. देखिए, मानिए मेरे सुझाव को, आप ना कल मुझे थैंक यू बोलने वाले हैं. चलिए लेकर चलते हैं आप सबको मन अति सुंदर के सेट पर.
1: प्रथम पर कामिनी की नजर, राध्या ने ढाया कामिनी के गालों पर कहर. घर में मचा बवाल, क्या होगा राध्या और प्रथम का तलाक.
3: हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें इस रिश्ते से छुटकारा पाना है.
4: तुम्हें तलाक देता हूँ.
1: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में प्रथम को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इन दिनों राध्या उससे अच्छे से बात नहीं कर रही. वो अपना गुस्सा उतार ही रहा था कि तभी कमरे में कॉफी लेकर पहुंच जाती है कामिनी. ऐसे में कामिनी को देखकर प्रथम न सिर्फ कामिनी को सॉरी बोलता है, बल्कि बिखरी चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है और तो और कॉफी के लिए धन्यवाद भी करता है. लेकिन जैसे ही प्रथम वो कॉफी पीता है तो उसे पता चल जाता है कि ये कॉफी राध्या ने बनाई है. कामिनी तो यही चाहती है कि दोनों के बीच दूरियां बढ़ें और ऐसे में वो मौके का फायदा उठाकर प्रथम की ओर करीब जाने की कोशिश भी करती है. लेकिन तभी कमरे में आ जाती है राध्या और गुस्से के मारे वो लगा देती है कामिनी के गालों पर जोरदार तमाचा, जिसके चलते न सिर्फ कामिनी हैरान है बल्कि प्रथम भी ये सारा नजारा देखकर हैरान हो रहा है.

0: कैसी हरकत कर रही हो?
1: प्रथम सर, हमारी हरकत से पहले पूछे कि कामिनी जी क्या कर रही थी।
2: क्या है, क्या हो रहा है ये सब?
1: कामिनी जी जानती हैं कि प्रथम सर शादीशुदा है, फिर भी उन पर डोरे डालने की कोशिश कर रही थी, इसलिए हमने इन्हें थप्पड़ मार दिया।
3: नहीं राधे जी, आप गलत समझ रही हैं, हम इन पर डोरे डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्रथम जी आप ही बताइए, आपको ऐसा लगा क्या?
4: हाँ राधे, मैं गलत फहमी है, कामिनी जी सही है, वो मुझसे बस बातें कर रही है।
1: प्रथम सर आपको रहने दीजिए, हम ऐसी लड़कियों को ना बहुत अच्छे से जानते हैं, और तुम अगर आज के बाद हमारे प्रथम सर के पास आने की कोशिश की ना, तो इससे भी ज्यादा जोरदार का थप्पड़ मार।
5: भाई राध्या ने तो इल्जाम लगाने के साथ साथ कामिनी को अल्टीमेटम भी दे दिया, लेकिन दादी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने राध्या को खरी खोटी सुना दी। इतना ही नहीं, राध्या पर तो ये भी इल्जाम लगा दिया कि वो अपने पति पर ध्यान भी नहीं दे रही, और तो और इसमें दादी ने रजनी को भी घसीट लिया। ऐसे में रजनी को ना चाहते हुए भी राध्या को कहना पड़ा,
6: छोटी सी बात पे तुमने कामिनी पे हाथ उठा दिया, क्या तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है कि प्रथम ऐसा कुछ नहीं करेगा?
1: माफ कीजिएगा, पर आदमियों का कोई भरोसा नहीं होता।
0: अच्छा, तुम्हें मुझे पर भरोसा नहीं?
1: हम वो सब नहीं चाहते प्रथम, हमें बस इतना पता है कि हमने जो किया बिल्कुल सही किया।
7: बस करो राधा, बस तो आप सब कीजिए।
1: कोई इस घर में हमें ज्ञान तो ऐसे देता है जैसे हम दुनिया में सबसे ज्यादा ना समझे। अरे दिमाग खराब कर दिया आप लोगों ने हमारा, हमने सोचा था अमीर घर में शादी होगी तो आराम से रहेंगे, महारानी की तरह जिएंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ तो गुलाम बनकर रह गए हम, बस दिन भर घर के काम करते रहते। पहले आप लोग हमें किचन में घुसा देते, कभी प्रथम सर के कमरे की सफाई कर रहे होते, महारानी नहीं नौकरानी जैसा महसूस होता है हमें। लेकिन अब बस, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें इस रिश्ते से छुटकारा पाना है।
5: भाई राध्या की ये बातें सुनकर तो प्रथम हैरान है, वो तो राध्या से सवाल भी कर रहा है, लेकिन राध्या ने ना सिर्फ अलग होने की बात कही बल्कि प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा भी मांग लिया, जिसके चलते प्रथम और भी परेशान हो गया है। ऐसे में दादी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी प्रथम के कान भरने में, लेकिन प्रथम वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि राध्या ऐसा कुछ चाहती है, इसलिए वो बार बार राध्या से सवाल पर सवाल कर रहा है, पर राध्या टस से मस नहीं हो रही।
1: हम इस घर से आपकी जिंदगी से जाना चाहते हैं, वो भी अपना हिस्सा लेकर।
0: राध्या, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, अलग होने का मतलब जानती हो तुम? पति पत्नी के अलग होने का मतलब पता भी है तुम्हें? डिवोर्स होता है मतलब। राध्या, क्या तुम्हें तलाक चाहिए?
8: हाँ
0: बोलो राध्या।
8: अरे हाँ बेटा, इसका यही तो मतलब है, तलाक ही चाहिए इसे, यही मतलब है ना तुम्हारा?
5: राध्या का जवाब सुनकर तो प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक गई। रजनी प्रथम को संभाल रही है, लेकिन दादी वो खुश हो रही है क्योंकि वो तो यही चाहती थी, और एकता उसने भी राध्या के सामने सवाल रख दिए, लेकिन राध्या अपना फैसला बदल नहीं रही। ऐसे में प्रथम ने भी फैसला ले लिया है अलग होने का।
4: अगर तुम डाइवोर्स करना चाहती हो
0: तो मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा।
4: मैं अभी लॉयर को बोल के डिवोर्स की पेपर्स दूंगा
0: और तुम्हें तलाक देता हूँ।
5: भाई प्रथम के फैसले ने राध्या का दिल तोड़ दिया, उसके आंसू ना निकले इसलिए वो वहाँ से चली गई। और दादी उन्होंने फिर से प्रथम के कान भरने शुरू कर दिए, और तो और प्रथम के सामने अच्छा बनने के लिए कामिनी से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। खैर प्रथम को क्या पता कि दादी ये सारा खेल कामिनी के साथ मिलकर कर रही है ताकि राध्या प्रथम की जिंदगी से और इस घर से जा सके। अब देखना होगा कि ये बात प्रथम को पता चल पाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
9: ऐसे कितना मजा आएगा ना जब लक्ष्मी निवास का पूरा परिवार आएगा एक साथ और करेगा सैटरडे वाली पार्टी। एक्चुअली इनिशियली तो पार्टी का मूड होगा फुल ऑन हाई, लेकिन धीरे धीरे शुरू हो जाएगी नोकझोंक और बस फिर आएगा कहानी में कोई नया ट्विस्ट और हमारे लिए अनलिमिटेड ड्रामा। तो चलिए फिर पता कर आते हैं इस कहानी का अपडेट, लेकर चलते हैं आपको लक्ष्मी निवास के सेट पर।
5: राधिका का चप्पल शो। पिट गए नए नवेले पतिदेव। राधिका का ये रूप देख उड़े वीर के होश। जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में आ गया है ट्विस्ट, क्योंकि घर में हो गई है एंट्री राधिका के सुहाग यानी कि नए नवेले पति देव पीयूष की एंट्री। जरा देखिए कैसे उनको देखकर आज सभी घर वाले हैरान हैं, क्योंकि अचानक घर में प्रकट जो हो गए हैं। ऐसे में राधिका के पापा को तो गुस्सा आ गया, उन्होंने तो पीयूष का कॉलर तक पकड़ लिया, लेकिन राधिका के भाई ने उन्हें रोक लिया। वरना आज तो बिन बुलाए नए नवेले दामाद जी की तो पिटाई हो जाती, वो भी ससुर जी के हाथों। खैर पीयूष ससुर जी से तो बच गया, लेकिन राधिका से बच नहीं पाया। जैसे ही उसने राधिका को साथ चलने के लिए कहा तो राधिका ने जड़ दिया जोरदार तमाचा।
10: क्या कर रहे हो? पति को वैसे मारते हैं क्या कोई? ये संस्कार दिए क्या मारे तुम्हें? ऐसे मत कर।
11: बिल्कुल ठीक किया राधिका, ऐसा फ्रॉड लड़का थप्पड़ नहीं लाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आके ये सब ड्रामा करने की?
10: तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, गले में सीधा मंगलसूत्र डाल दिया, ऐसे बनते हैं रिश्ते? हाँ, और बैंड बाजा लेकर आ गए।
5: भाई पीयूष तो हैरान है ये देखकर कि घर में दामाद की ऐसी खुशामद की जाती है। इतना ही नहीं, पीयूष के खिलाफ तो राधिका का पूरा परिवार खड़ा है, क्योंकि वो नाराज है इस बात को लेकर कि आखिर पीयूष ने ऐसे कैसे राधिका को बिना बताए ही राधिका के गले में मंगलसूत्र पहना दिया, वो भी तब जब वो आँख बंद किए माता रानी की पूजा में लीन थी। खैर पीयूष ने अपनी ये बात सभी के सामने रखी, लेकिन ये बात राधिका को रास नहीं आई। और देखिए कैसे उसे आ गया और भी जोरदार गुस्सा, और वो घर के बाहर जाकर उठा लाई चप्पल और करने लगी पीयूष की धमाधम पिटाई, जिसे देखकर सभी घर वाले हैरान और परेशान हैं।
12: मैं क्या ही बताऊं, ये जो मंगलसूत्र वाला जो फसाद है ना, वो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले हमें था कि किसने पहनाया, राधिका की जिंदगी किसने खराब की, हम सारे लोग कंसर्न थे। और आज एकदम से ना मिस्टीरियसली एक आदमी अपेयर हो जाता है जो कहता है कि मैंने मंगलसूत्र बांधा था, मैंने शादी की है, राधिका मेरे साथ जाएगी। और हम एज फैमिली मेम्बर्स काफी कंफ्यूज हैं कि ऑल ऑफ अ सडन ये बंदा क्यों आया। अगर बांधा ही था तो उसी टाइम आ जाता, कह देता कि मुझे शादी करके जाना है क्या।
5: भाई राधिका तो पीयूष को चप्पलों से मारते मारते घर के बाहर ले गई, जहां पर आ गया है वीर भी, और वो ये देखकर हैरान है। ऐसे में पीयूष वीर के पैरों में भी गिर जाता है, लेकिन राधिका नहीं रुकती, वो पीयूष को वापस उठाती है और मारते हुए वहां से ले जाती है। ये देखकर वीर और भी डरा हुआ है।
13: बड़ा मेजर ड्रामा है एंड काफ़ी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। यहाँ पे वीर की टेंशन बढ़ती जा रही है कि घर वालों को धीरे धीरे सब पता चल गया तो फिर उसकी लाइफ तो और ख़राब तो ख़राब, राधिका जी के बारे में तो जो ये लोग सोचते थे वो तो और एक्सकेलेट हो जाएगा। तो बहुत ही हाई ड्रामा है, बहुत ही अमेजिंग सा सीक्वेंस है, आप लोगों को देखने बहुत मज़ा आएगा।
5: भाई मजा तो आएगा ही, क्योंकि राधिका के गले में मंगलसूत्र किसी और ने नहीं बल्कि वीर ने ही पहनाया है। और वीर ये सोच रहा है इस पीयूष का ये हाल है तो उसका क्या हाल होगा। खैर घर में अब सभी इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर इस मंगलसूत्र का क्या किया जाए। ऐसे में सभी मंगलसूत्र उतारने के लिए कहते हैं, लेकिन वीर मना कर देता है, जिस पर राधिका की भाभी को हो जाता है शक।
13: राधिका जी मंगलसूत्र नहीं उतारे।
10: हेलो हेलो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला गया ना? तुम्हें क्या हो गया? अच्छा ना, अब तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? गजब है भाई, ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसी ने राधिका के गले में मंगलसूत्र डाला। राधिका के मंगलसूत्र से तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या लेना देना है?
5: खैर वीर कैसे सभी घर वालों को बताए कि असल में ये वही है जिसने राधिका के गले में मंगलसूत्र डाला है। अब देखना होगा कि कैसे घर वाले इस मंगलसूत्र से निपटेंगे और कैसे वीर धीरे धीरे अपना सच सभी को बताएगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
9: फुल ऑन पार्टी मूड के बीच जब ड्रामा और इमोशंस का तड़का लग जाता है तो फिर बस होता है यहाँ पर कंप्लीट एंटरटेनमेंट। और देखिए हमारी हर कहानी में जब भी कोई पार्टी या फिर सेलिब्रेशन चल रहा हो तब आता ही है उसमें कोई ना कोई बड़ा धमाका जो लेकर आता है हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का ड्रामा। तो चलिए इस पार्टी को बना देते हैं हम और भी रंगीन और पता कर आते हैं आज किसके सैटरडे सेलिब्रेशन में आया है कौन सा तिरंगी ट्विस्ट। दिखा देते हैं आपको ट्विस्ट का ये सिलसिला वो भी एक साथ।
14: तुम देना साथ मेरा
5: स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में अपराजिता को साड़ी पहनने में हो रही है मुश्किल। असल में अपराजिता का हाथ घायल है और उल्टा अपराजिता को अपना अतीत भी याद आ रहा है और तो और उसकी मॉडल भी नहीं आई है जो उसकी साड़ी पहनकर रैंप वॉक करने वाली थी। इसलिए घबराई अपराजिता कोशिश तो कर रही है कि तभी ग्रीन रूम में पहुंच जाता है रक्षित जो अपराजिता की परेशानी में देता है उसका साथ। और देखिए कैसे आंखों में पट्टी बांधकर वो अपराजिता को साड़ी पहना रहा है और साड़ी की खूबियां बता रहा है।
15: साड़ी पहनकर औरत शक्ति बन जाती है, दिव्य शक्ति जो तुम हो अपराजिता शक्ति।

0: और ये आंचल तो कमाल होता है। ये सर पर ओढ़ लेने से श्रद्धा बन जाता है, भगवान के सामने सर झुक जाता है, कमजोरी में नहीं समर्पण में।
1: एक तरफ अपराजिता का पति है जो उस पर अत्याचार ढाता है और दूसरी तरफ रक्षित जो उसकी खूबसूरती बढ़ा रहा है। यही देखकर अपराजिता कश्मकश में है क्योंकि उसका दिल कहीं न कहीं रक्षित की ओर खींचा चला जा रहा है। खैर, रक्षित तो यहाँ अपराजिता का साथ देने आया है, तभी तो देखिए कैसे उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और अपराजिता का हाथ थाम कर उसे ले गया है फैशन के मंच पर। और वहाँ पर अपराजिता ने की है एंट्री, वो भी अपनी चप्पलें उतार कर। ये देखकर गुरुजी हैरान है और गुरुजी ने भी अपराजिता से सवाल कर लिया। ऐसे में अपराजिता ने बताया कि उसकी मॉडल कहीं चली गई है।
2: मेरी मॉडल कहीं चली गई, मैं हार मान चुकी थी। किसी ने मुझे समझाया कि मेरे और मेरे सपनों के बीच सिर्फ एक कदम की दूरी है। और अगर मैं ये साड़ी बुन सकती हूँ तो इसे पहनकर दिखा भी तो सकती हूँ। मेरी कला मेरी साधना है शास्त्री जी, और जिस जगह पे लोग मेरी कला को देखने आएंगे वो मेरा मंदिर है।

अपराजिता के इस जवाब ने सभी का दिल जीत लिया और अपराजिता ने रक्षित का साथ पाते हुए अपने हाथों से बुनी हुई साड़ी सभी के सामने शो कर दी। अब देखना होगा क्या इसमें अपराजिता की जीत होगी।

0: प्रत्याशा। मैं श्रद्धालु।
1: स्टार प्लस के सीरियल उड़ने की आशा में आज सचिन और साइली के घर पहुंच गई है संकेता और दे रही है सभी घर वालों को संकेत, क्योंकि घर में रेणुका ने रखी है पूजा और उसमें संकेता सभी को बता रही है कि इस घर की बहू यानी कि साइली इस घर में मुसीबत लाने वाली है। ऐसे में साइली अपनी सासू माँ रेणुका को इस अंधविश्वास से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है कि तभी रेणुका ने उसे धक्का दे दिया, जिसके चलते थाली में रखा सिंदूर उड़ गया और उससे परेश को नुकसान होने लगा। ये देखकर सभी डर से गए हैं। ऐसे में संकेता ने एक और संकेत दे दिया कि किसी के सुहाग पर खतरा मंडरा रहा है, वो भी साइली के चलते।
2: परेश,
3: बाबा,
2: क्या हो गया परेश?
3: बाबा,
2: परेश,

0: डॉक्टर को फोन करता है। बाबा फिकर मत कर, मैं डॉक्टर को बुला रहे। हेलो हेलो डॉक्टर।
1: इस बार इस घर से सिंदूर उड़ेगा नहीं, लेकिन किसी का सिंदूर उछड़ेगा। इसे घर से बाहर निकालिए रेणुका जी, वरना ऐसा ना हो कि कहीं आप ही विधवा हो जाए।
2: भाई संकेता के ऐसा कहने पर रेणुका को लगा है जोरदार झटका और घर वाले ये सुनकर हैरान है। सचिन वो तो इस पर विश्वास ही नहीं करता, वो तो उसे घर से बाहर निकालने की धमकी देता है। ऐसे में संकेता फिर से साहिली के बारे में अनाप शनाप बकने लगती है। बस फिर क्या, सचिन अपना आपा खोता है और सचिन का साथ देते हैं उसके पापा।
0: तेरे को ना इस घर से बाहर ही निकालता है, मैं घर से बाहर क्या, देखो तो शहर से बाहर निकालेगा मैं।
3: सचिन प्लीज रुक जाओ। रुक सचिन रुक।
1: ए लड़के, मेरी वाणी हमेशा सही होती है, इसीलिए मैं गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करती हूँ।
0: अरे चल रे, पर मैं तो करता है ना, तेरे को ना अभी सबक सिखा के छोड़ेगा मैं।
1: होनी को कौन टाल सकता है, जब मिटेगा इस घर का सिंदूर तब मैं नहीं मिलूंगी दूर दूर।
0: अरे दूर दूर क्या, तेरा अब भी जंप करता है मैं, टेंशन ही खत्म।
3: सचिन प्लीज नहीं।
4: साइली छोड़ दे, साइली छोड़ उसे, सचिन जा।
0: अब तो बाबा भी बोला तेरी वाट है।
3: सचिन

0: ਬਾਵੀ ਸ਼ੇ ਦੇਗੀ ਸਰ ਫੋੜਤਾ ਤਾਂ ਅਭੀ ਵੀ
1: यहाँ तो है फैशन के रंग रिश्तों के संग। मैं तो बात कर रही हूँ स्टार परिवार के इस ग्रैंड फैशन इवेंट की, जहाँ पहुंचा है आपका फेवरेट स्टार परिवार। और आज लेकर चल रहे हैं हम आपको बैक स्टेज, दिखा रहे हैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग मेकओवर स्टोरीज। आइए दिखाते हैं आपको आपके फेवरेट सितारे अप क्लोज एंड पर्सनल।
2: दिखा स्टाइल का स्वैग, बिखरे प्यार के रंग, मेट गाला की शाइन देसी ग्लैमर के संग, हुआ फैशन रिश्तों और इमोशंस का महासंगम।

0: पर इस सोमवार आपके चहीते सितारे एक अलग रंग में। Are you guys ready? जोड़ियों में होगी टक्कर, कौन जीतेगा रोमांस का ताज? लाइव वोटिंग से डिसाइड करेंगे आप।
1: अनुपमा का रॉयल ग्लैम हो या अरमान अभीरा का ड्रीमी स्पार्कल, अंगद वृंदा का देसी एलिगेंस हो या रक्षित अपराजिता की चार्म का तड़का, शिव शालिनी का शाही अंदाज हो या सचिन साइली का पारंपरिक लिबास, सभी किरदार रैंप वॉक पर उतरेंगे एक नए फैशनेबल अवतार में। फैशन नंबर वन, अनुपमा का ग्लैमरस स्वैग।
2: राय बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी।
1: भाई यूं तो सीरियल में अनुपमा साड़ी पहनती है, सीधे सादे अंदाज में रहती है और फिर भी खूबसूरत लगती है, लेकिन आज फैशन के रंग रिश्तों के संग में अनुपमा ने पहना है पिंक कलर का स्पार्कलिंग गाउन और सिर पर पहना है टियारा, जिसे पहनकर ये लग रही है बिल्कुल प्रिंसेस, और प्रिंसेस है तो अपनी अदाएं दिखाना तो बनता है।

0: मेरा पहला रिएक्शन ये था कि मैं क्या कर रही हूँ वहाँ पर, व्हाई एम आई देयर, एंड बिकॉज सारे कपल्स का है, इट्स अ रोमांटिक थिंग, इट्स मेट गाला. सो अनुपमा, अगर मैं रूपाली पर से मेट गाला में गई तो मैं आई थिंक अनुपमा बन कर जाऊँगी, क्योंकि वो अलग ही होगा ना उनके लिए देखना. वहाँ पर कोई सूती साड़ी में आता नहीं है, और हमारी भारत की सबसे बड़ी यू नो रिप्रेजेंटेशन जो है वो है हमारी सूती साड़ी, और हमारी देश की हर माँ सूती साड़ी में होती है, हर गृहिणी सूती साड़ी पहनने में कंफर्टेबल होती है, साड़ी पहनने में तो कंफर्टेबल होती हैं. सो आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन मेट गाला, है ना. तो स्टापलस ये मेट गाला यहाँ पर हम पूरे देश के लिए लेकर आया है, और स्टापलस की बहुओं को उन्होंने सजाया है. एंड थैंक यू सो मच कि मुझे भी इसका हिस्सा बनाया इन्होंने, कि जबकि आई हैव माय कपल, सो उसके तो या ओके फाइन, तो इसलिए इवन आई हैव कम एज अ कपल.
1: फैशन नंबर टू, अरमान अभीरा का ड्रीमी लुक. भाई मानना पड़ेगा अरमान और अभीरा को, इन्हें चाहे कोई सा भी लुक दे दे, ये हर लुक में बड़े ही ग्लैमरस लगते हैं, और आज तो इनके ग्लैमरस लुक में ड्रीमी और शाही टच भी दिया है, और इस टच में भरपूर रोमांस भी है, क्योंकि ये टीवी की सबसे रोमांटिक जोड़ी जो है.

0: So Harshal has really aced this costume also. Last time bhi bahut hi acha laga tha mujhe apna look, is time bhi bahut acha hai. And overall also sabki costumes bahut unique thi, very different from each other. Sabka I think jis state se wo belong karte hain jo bhi shows mein, तो उसकी कुछ कुछ झलक थी, जैसे हमारा थोड़ा सा राजस्थानी फ्लेवर है. सो इट वाज ओवरऑल लुकिंग वेरी नाइस.
1: लड़कों का आजकल ज्यादा फर्क रहा नहीं है लड़के और लड़कियों में फैशन के मामले में. आजकल लड़के भी कम नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि क्या अलग होगा. आप देखिए ये अलग है, ये अलग है, फिर अब आप पैंट्स देखिए हमारी. तीन चार लड़कों की मिला के इसमें पैंट बन सकती थी, बट ये फैशन ही है जो अलग अलग अपने आप को चेंज करता रहता है. तो चलो अच्छा, हम लड़कों के लिए भी कोई नेक पीस
0: भी नहीं रहा
1: अब बताइए
0: सिर्फ.
1: तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कों को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता. लड़कों की चॉइस होती है, वो कम से कम पहनते हैं, लेकिन जब लड़कों को कोई और कपड़े पहनाता है तो इस तरह से पहना देता है.

भाई यूँ तो गुजराती लुक में मल्टीपल कलर्स आते हैं, लेकिन आज अंगद वृंदा के इस लुक में मल्टीपल कलर के साथ साथ क्लासी और ग्लैमरस अंदाज भी है, और तो और साथ में है चमचमाते तारे भी। इतना ही नहीं, वृंदा का साज श्रृंगार ऐसा कि अंगद भी अपने आप को रोक नहीं पाए वृंदा का दीवाना बनने में।

0: हमने कोई रिहर्सल नहीं करी है, हमने कोई प्रैक्टिस नहीं.
1: वी आर दोस पीपल, गो विद द फ्लो.
0: वी डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ऑन स्टेज, बट इट्स गोइंग टू बी नाइस.
1: या
0: इट्स गोना टर्न आउट रियली नाइस,
1: होपफुली.
0: गरबा करूंगी तो ये सबको लगेगा.
1: नहीं नहीं नहीं, गरबा इसमें खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है.
2: गुजराती
1: गुजराती हैं हम, तो गरबा के लिए एनी टाइम रेडी, चाहे कपड़े हो चाहे ना हो चाहे कुछ भी पहना हो, गरबा के लिए ऑलवेज रेडी. बट ये टिपिकल गरबा आउटफिट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये खेल सकती
0: है. वेस्टर्न फ्यूजन.
1: या तू बाद में घुटने क्यों दिखा रही है?
0: गरबा के साथ हिप हॉप भी करूंगी मैं.
1: या दैट्स लाइक अ गुड फ्यूजन.
3: फैशन नंबर 4, रक्षित अपराजिता हुए एलिगेंट.
4: जन्म जन्म जन्म साथ चलना यूनी, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही.
3: यूँ तो सीरियल में रक्षित और अपराजिता की दोस्ती बढ़ रही है, लेकिन आज फैशन के रंग रिश्तों के संग में इन पर प्यार का रंग भी चढ़ा है, और चढ़े भी क्यों ना. भाई अपराजिता, उन्हें कपड़ों के मटेरियल का सेंस है, और रक्षित वो है फैशनेबल,

0: very beautiful.
1: Yeah, yeah, I really like it. It's very interesting. The hair style. आज मैंने इतना सब कुछ कभी नहीं किया जितना मैंने आज किया है. मेकअप, हेयर एंड लाइक इवन द क्लोथ्स आर क्वाइट
0: dramatic. आज एक्चुअली इवेंट ही वैसा है इसके लिए वी हैड टू, बट शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी.
1: सो आर यू.
0: थैंक यू.
2: हाँ, एक बहुत डिफरेंट टेक था स्टार परिवार का और इसमें कुछ सरप्राइजेस हैं और पहली बार मैं स्टार परिवार के साथ जुड़ रहा हूँ इस नए शो के साथ. सो बहुत मज़ा है नए कपल्स के साथ मिलकर. दे आर ऑल वेरी फन पीपल टू बी विद एंड यू विल सी दैट ऑन स्क्रीन.
3: आई एम वेयरिंग दिस एंसेंबल. हेयर एंड एवरीथिंग लुक्स लाइक एंशिएंट ग्रीक स्टफ एंड इट्स ड्रामेटिक. नोबडी गोज क्वाइटली.
4: फैशन नंबर 5. शिव शालिनी का फैशन टू मच.

में शिव हमेशा चेक शॉर्ट्स पहनते हैं और शालिनी कॉटन साड़ी, लेकिन आज इन्होंने गजब ढा दिया क्योंकि आज इनका ये अंदाज देखने लायक है, एकदम पारंपरिक अंदाज में। शालिनी और शिव दोनों ही सजे सवरे हैं और ऐसे में जब स्टाइल इतना ग्लैमरस हो तो रैंप वॉक पर अपनी चमक बिखेरना तो लाजमी है।

0: आई थिंक दोनों ही कलर्स सेम रेड है एंड आई इट्स माय पर्सनल फेवरेट. ये रेड वाला जोन जो है, ये जो टोन है, ये आई रियली लाइक दिस. सो आई मीन
1: आप कहीं के राजकुमार लग रहे हैं.
0: कुमार
1: तो राजा महाराजा टाइप, उनका लुक भी वैसा ही है, काफी रॉयल है. सो लुकिंग स्टनिंग.
0: मिसेस आप भी कहीं कम नहीं लग रही हैं.
1: शुक्रिया, थैंक यू. सो दिस इज अ गाउन विद अ स्लिट एंड देयर इज दिस ब्रोकेड जैकेट, काफी सुंदर है एंड इंडो वेस्टर्न लुक है बेसिकली. तो इंडियन के साथ वेस्टर्न को भी सम अप किया है. चूड़ियां है, दिस इज दिस हैंड कफ इज देयर, स्टड इज देयर एंड माय छोटी सुंदर से एंड गुलाब एंड दिस गजरा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, बाय गॉड मुझे परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ रही है अभी. सो थैंक्स टू द हर्षल, थैंक्स टू हर्षल एंड हिज टीम, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपने आप को कभी ऐसे देखा नहीं है. तो इट्स आई एम गोइंग टू ट्राई समथिंग न्यू इन दिस कैटेगरी. सो या मैं तो बहुत ही सुंदर लगी, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लुक.
0: तो माई फॉर माई सेल्फ आई थिंक ये जो पूरा थीम है मेट गाला हैविंग अ क्रॉस ओवर विथ अ वेरी रॉयल लुक, तो क्योंकि एक महाराष्ट्रन मराठा बैकड्रॉप है तो उस हिसाब से एक एकदम पेशवा लुक है मेरा. उसके साथ एक ब्लेजर दे दिया है एंड द कलर्स आर मैचिंग, देयर इज अ नाइस पीस ऑफ ज्वेलरी ओवर हियर, आई थिंक आई एम रियली हैप्पी विद द लुक.
2: बिल्कुल सही कहा, शालिनी और शिव को अपना लुक इतना खास लगा है कि इन्होंने अपना फोटो शूट तक करवा लिया.

0: Hi, I'm Shambhvi Singh. My character is Shalini Deshmukh. आप जानते होंगे from Mr. and Mrs. Parshuram. And मुझे अपना personally मुझे लोग बहुत अच्छा लगा because this is something मैंने कभी अभी तक experiment नहीं किया, try नहीं किया. Indo-Western है, bridal है, with the touch of glam. So I'm very excited. बहुत कुछ fun होने वाला है. I'm really, really looking forward.
1: Fashion number 6, सचिन सायली का देसी टच. सीरियल उड़ने की आशा में सचिन सायली का सादगी भरा अंदाज है, लेकिन आज जब फैशन की बारी आई तो ये अपनी परंपरा को आगे ले आए. जरा देखिए कैसे सचिन और सायली दोनों ने ही पैठनी लिबास को धारण किया है.

0: जो लोग जिस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन सबके अलग अलग आउटफिट्स हैं, एंड इतनी आसान बात नहीं होती कि सबके बारे में अलग अलग कुछ क्रिएट करना. इट्स अ मैसिव वर्क. मतलब मेरे लिए तो आपने सोचना, ये करना, वो करना, एंड सबके आर्ट, सब आर्टिस्ट की ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब कुछ भी दिमाग में रखते हुए एक डिज़ाइनर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये हम सबको पता है. तो बट थैंक्स टू यू हर्षल जी, इतना अच्छा, इतना प्यारा आउटफिट देने के लिए, जिसके लिए मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ. मतलब मुझे अपना लुक बहुत पसंद आया, एंड स्पेशली फॉर दिस थिंग हेयर स्टाइल. मुझे हेयर बहुत स्लिक बर्न ऐसे नॉर्मल, एंड विद दिस फ्लावर कलरफुल रोजेस पिंक एंड रोज बेबी पिंक है ना ये, एंड येलो. तो या आई एम लविंग इट.
1: फिलहाल तो रैंप वॉक पर सभी जोड़ियों के फैशन के ट्रेंड का जादू चला है और हर रिश्ते में प्यार की चमक दिखी है. लेकिन फैशन, फीलिंग्स और स्टार परिवार के मिलन का धमाकेदार सेलिब्रेशन अभी भी बाकी है. तो देखते रहिए सास बहू और बेटियां, क्योंकि ये एक छोटा सा ट्रेलर है, असली धमाल जल्द ही आएगा. मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
2: सैटरडे वाली पार्टी के चलते कुछ रॉकिंग सेलिब्रेशंस और शॉकिंग रेवलेशंस ने बदल दिया है पार्टी का मूड. तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको कुछ ऐसे ही मोमेंट्स. जी हाँ, हमारा अगला सेगमेंट जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग, जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज.
1: सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें. देख लीजिए रॉकिंग नजारे दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और विवेक दहिया के, जो अस्पताल के बाहर अपने बच्चों को लिए खड़े हैं और मम्मी पापा बनने की उनके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई पड़ रही है. सास बहू और बेटिया की तरफ से उन्हें ढेर सारी बधाइयां.

शॉकिंग खबर आ रही है कलर्स के सीरियल शहर से। खबरें हैं कि सीरियल शहर में शहर का किरदार निभाने वाले रिशिता कोठारी रिप्लेस होने वाली हैं और इस किरदार के रिप्लेसमेंट में दो अभिनेत्रियों का नाम आ रहा है, शिवांगी जोशी और आशी सिंह। अब देखना होगा कि इन दोनों में से कौन बनेगी नई शहर।

रॉकिंग खबर जुड़ी हुई है यशराज फिल्म की पहली फीमेल स्पाई यूनिवर्स फिल्म अल्फा से। भाई ये फिल्म 10 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फैंस को यशराज फिल्म ने दे दी है गुड न्यूज कि ये फिल्म 10 जुलाई को नहीं बल्कि 3 जुलाई को रिलीज होगी। और इसी फिल्म से जुड़ी हुई दूसरी खबर ये है कि उसके अगले 2 हफ्ते कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होगी, यानी इस फिल्म को लगातार 2 हफ्तों का मौका मिलेगा अपने फैंस को एंटरटेन करने का।

ईशान खत्तर की सीरीज द रॉयल से आ रही है शॉकिंग न्यूज। खबरों की माने द रॉयल सीजन 1 को डायरेक्ट करने वाली नुपुर अस्थाना ने बैकआउट कर लिया है, जिसके चलते द रॉयल्स सीजन 2 की शूटिंग करेंगी जसमीत केदीन, जिन्होंने फिल्म डार्लिंग बनाई है।

आदि तिथिल और उनकी बीवी अनुष्का रंजन कपूर ने अपने फैंस को दे दी है गुड न्यूज कि जल्द ही दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने तस्वीरों और वीडियो के जरिए अपने फैंस तक पहुंचाई है।

0: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि करण मेहरा और अश्नूर कौर अचानक एक दूसरे से फिर मिल गए हैं, वो भी फ्लाइट में। देख लीजिए ये नज़ारे, कैसे 10 साल बाद ऑन स्क्रीन पापा बेटी का फिर से मिलन हुआ है।
1: So today I'm gonna tell you what is more important, a friend, a good friend, जो जरूरत में आपके काम आए, या फिर ये 500 का नोट मतलब पैसा।
0: देख लीजिए रॉकिंग बीटीएस नजारे सीरियल गंगा माई की बेटिया के, जहाँ पर सभी कलाकार मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
1: It's not moving, right? शिजान आ गया, पीछे जा, फिर से आ गया, फिर से पीछे जा। तो इसका मतलब ये है, दोस्त तो आते जाते रहेंगे लेकिन पैसा कहीं नहीं जाएगा। So always choose money over friends.
0: इसी के साथ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का भी एक बीटीएस वीडियो सामने आया है, जहां पर अरमान अभिरसन उनकी बिटिया मायरा मस्ती कर रही हैं।
2: ऑलरेडी

हो गई है ईशा सिंह और श्रुति का अर्जुन के बीच लड़ाई, वो भी रेस्टोरेंट के बिल को लेकर। वैसे ये लड़ाई बहुत ही मजेदार है।

सुरभि ज्योति के जन्मदिन के मौके पर अनीता हसनंदानी ने सुरभि ज्योति के बर्थडे का एक वीडियो अपने फैंस को शेयर किया है, ये दिखाते हुए कि कैसे इस बर्थडे गर्ल का चेहरा ग्लो कर रहा है, क्योंकि जल्द ही ये माँ जो बनने वाली है।

अनूप पड्डा की आने वाली फिल्म शक्तिशालिनी की शूटिंग खत्म हो गई है। इस बात की जानकारी अनूप पड्डा ने नहीं बल्कि क्रिएटिव टीम में से किसी ने एक पोस्ट के जरिए दी है, क्योंकि अब इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हो गया है। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर जल्द ही एक नए अवतार में नजर आएंगे। खबरों की माने तो उनकी आने वाली फिल्म होगी श्रीराम भूमि। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे कामाख्या नारायण सिंह, जिन्होंने द केरला स्टोरी 2 बनाई है।

0: देख लीजिए करीना कपूर का ये स्पोर्टिव लुक। भाई अपने आप को फिट कैसे रखना है कोई करीना कपूर से सीखे। जिम हो या हो कोई भी स्पोर्ट्स, वो सब में सबसे आगे रहती हैं।
1: तो कैसा रहा मस्ती और सेलिब्रेशन से भरपूर हमारा ये एपिसोड? आज तो हमने भी आपको घर बैठे बैठे करवा दी ना सैटरडे वाली पार्टी। देखिए हम तो रहेंगे इस वीकेंड पर फुल ऑन पार्टी मोड में और आपको रखेंगे फुल ऑन एंटरटेनमेंट मोड में। लेकिन क्या करें, अब तो घड़ी कर रही है इशारा कि वक्त आ गया है आपको बाय बाय कहने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां, जहां फिर एक बार लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय योर वीकेंड, बी गुड, बाय बाय।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
5: Gone! Home run!
4: NHL. College basketball.
6: He shoots it immediately. He makes it in!
4: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
7: One lap to go.
4: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: धरती से आकाश तक भारत की बढ़ रही ताकत, देश में ही तैयार सेना के मॉडर्न हथियार, आत्मनिर्भर भारत का गोल्डन चैप्टर। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
0: चंडीगढ़ में रिमझिम बारिश से बदला नजारा, तापमान में दर्ज की गई कमी, मौसम का लुत्फ लेते नजर आए लोग। मैदानी गर्मी से राहत पाने पहाड़ों की ओर उमड़ा जन सैलाब, नैनीताल हाउसफुल, नैनी झील में नौकायन के लिए लंबी कतारें, कैंची धाम में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को मिली 538 नए अग्निवीरों की ताकत, 24 महीने के कठोर प्रशिक्षण के बाद सातवें बैच ने ली शपथ, लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर में पासिंग आउट करे। कांचीपुरम के वरदराज पेरुमल मंदिर से निकाली गई भगवान की शानदार शोभा यात्रा, विकासी ब्रह्मोत्सवम के अवसर पर भव्य आयोजन, जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल। नागपुर में वन संपदा को बचाने की अनोखी मुहिम, दुर्लभ पेड़ों की प्रजातियों के लिए बनाया गया सीड बैंक, लोगों को किया जा रहा है इसके लिए जागरूक।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
0: उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का आज 42वां दिन, अभी तक लगभग 25 लाख श्रद्धालुओं ने किए चारों धाम के दर्शन। उत्तराखंड के चमोली में जोर शोर से जारी है बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा, बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह बरकरार। अब तक करीब 7.5 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम, देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं लोग। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का दौर है जारी, पुलिस एसडीआरएफ और सहायता दलों की मदद से गुरुद्वारे तक पहुंच रहे श्रद्धालु। मैदानी इलाकों की गर्मी से भी राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं सैलानी, पहाड़ों में बारिश और बर्फीला माहौल कर रहा है सभी को अपनी ओर आकर्षित। राजधानी दिल्ली में खिली धूप के बीच आज भी मौसम बना हुआ है सुहाना, वीकेंड पर लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने रविवार तक मौसम में बदलाव जारी रहने की जताई है संभावना, आंधी के साथ बारिश के भी आसार, येलो अलर्ट कर दिया गया है जारी। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार, 23 डिग्री तक रह सकता है न्यूनतम तापमान। शुक्रवार को दिल्ली में 38.6 डिग्री दर्ज किया गया अधिकतम तापमान, 8 मई के बाद 21 दिनों में दिखी पारे में सबसे बड़ी गिरावट। पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजस्थान और आसपास के इलाकों में बना है साइक्लोनिक सर्कुलेशन, बंगाल की खाड़ी से आ रही हवाओं से बड़ी नमी। देश के कई भागों में मौसम हुआ सुहाना, चंडीगढ़ में छाए बादल, कई इलाकों में बारिश के बाद गिरा तापमान। पंजाब के कई जिलों में बारिश की खबर, पठानकोट में बारिश के साथ गिरे ओले, हीट वेव और तेज गर्मी से लोगों को मिली काफी राहत। गुजरात के भी कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, अरावली जिले में मुदासा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में हुई बारिश। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश और आंधी तूफान का अनुमान, आने वाले दिनों में भी दिख सकता है मौसम में बदलाव। गिर सोमनाथ, दीव, दमन और दादर नागर हवेली में भी हो सकती है छिटपुट बारिश, अगले 7 दिनों में गुजरात में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना। गुजरात के दाहोद जिले में सुबह से ही छाए बादल, दाहोद, झालोद, लिमडी, फतेहपुरा और संजेली समेत कई इलाकों में बारिश। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से मिली राहत, तापमान में आई गिरावट। गुजरात के साबरकांठा में भी सुबह से ही जारी है रिमझिम बारिश, लोगों में खुशी के लिए है। साबरकांठा के हिम्मतनगर इलाके में बारिश के बाद गर्मी से मिला छुटकारा, इलाके में अभी और बरसात की उम्मीद। साबरकांठा में खेतों में बुआई के लिए अभी और बारिश है जरूरी, आने वाले दिनों में रहेगा बारिश का इंतजार। भारत यात्रा पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी टिफनी अपने पति माइकल के साथ पहुंची दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर। टिफनी ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की अक्षरधाम मंदिर की यात्रा की तस्वीरें, मंदिर परिसर के सुंदर वास्तुकला, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक माहौल का लिया अनुभव। ताजमहल का दीदार करने आगरा भी पहुंची टिफनी ट्रंप, पति के साथ खिंचवाई तस्वीरें।
8: टिफनी ट्रंप ने अलग अलग पोज में ताजमहल के सामने खिंचवाई तस्वीरें, यात्रा को बनाया यादगार। भारतीय संस्कृति से प्रभावित दिखी टिफनी ट्रंप, बस सिंपल लुक और ड्रेस ने खींचा सभी का ध्यान। कश्मीर के सोनमर्ग में सैलानियों की भारी भीड़, पहाड़ों की गर्मी के बीच बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। पिछले कुछ ही महीनों में 4 लाख से ज्यादा सैलानी पहुंचे सोनमर्ग, टूरिज्म में जबरदस्त बूम। घाटी पहुंचे दर्जनों टूरिस्ट व्हीकल, स्थानीय कारोबारी और होटल मालिकों की चांदी ही चांदी। अगरतला का नीर महल पैलेस बना सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र, झील में बोटिंग का आनंद लेते हुए महल तक पहुंचते हैं पर्यटक। अपनी अनूठी जल महल, वास्तुकला और शानदार प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों में काफी चर्चित है। ये भारत का सबसे बड़ा और पूर्वी भारत का एकमात्र जल महल है। मेघालय के उमरोई में भारतीय सेना के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन, 12 मित्र देशों की सेनाओं के जवान शामिल। 20 मई से उमरोई में शुरू हुआ था अभ्यास प्रगति, 400 से ज्यादा जवान ले रहे हैं भाग। मिले जुले पहाड़ी और जंगली इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित है अभ्यास प्रगति, संयुक्त योजना अभ्यास, सामरिक स्तर के अभ्यास और समन्वित अभियान की ट्रेनिंग ले रहे हैं जवान। क्षेत्र शांति सुरक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है अभ्यास प्रगति का मकसद, आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर। अभ्यास में सभी देशों की संयुक्त टीमों को साझा मिशन के तहत एक साथ प्रशिक्षण, रॉक क्राफ्ट, एम्ब्यूश, काउंटर एम्ब्यूश, ड्रिल, स्लिथरिंग, जंगल लेन शूटिंग सहित कई तरह की ट्रेनिंग का आयोजन। पुणे के खड़गवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी के 150वें कोर्स के पासिंग आउट परेड, सेना के तीनों अंगों को मिले नए अवसर। पासिंग आउट परेड में सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 355 कैडेट शामिल, ट्रेनिंग संपन्न होने के बाद हुई परेड। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया परेड का रिव्यू, ऐतिहासिक खेत्रपाल परेड ग्राउंड में हुई है परेड। परेड के दौरान कैडेट्स ने किया शानदार मार्च पास्ट, कठोर सैन्य और शैक्षणिक प्रशिक्षण की दिखी झलक। एनडीए में 3 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद होती है कैडेट्स की पासिंग आउट परेड, साल में 2 बार होता है इसका आयोजन। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पासिंग आउट परेड का निरीक्षण, परेड के लिए सलामी। पासिंग आउट परेड के दौरान कैडेट्स ने शानदार कदमताल से बांधा समा, देश सेवा के लिए जोश और जज्बे का प्रदर्शन। परेड के बाद वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने किया शानदार फ्लाई पास, सेना के शौर्य की नुमाइश। फ्लाई पास्ट में वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी हुए शामिल, आसमान में परवाज भरकर किया जाबाजी का प्रदर्शन। परेड के दौरान कैडेट्स ने पेश किया शानदार फॉर्मेशन, पारंपरिक फाइनल स्टेप भी बना खास आकर्षण का केंद्र। एनडीए में पासिंग आउट परेड के बाद कैडेट्स के परिजनों से मिले सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कैडेट्स को प्रदान किए मेडल और पुरस्कार, ट्रेनिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए की उनकी सराहना। सेनाध्यक्ष ने कैडेट्स के साथ खिंचवाई तस्वीरें, उनके परिजनों के साथ भी फोटो सेशन में हुए शामिल। श्रीनगर में हुई अग्निवीरों के 7वें बैच की पासिंग आउट परेड, रेजिमेंटल सेंटर में 538 अग्निवीरों ने किया मार्च पास्ट। पासिंग आउट परेड के बाद परिजनों से मिले अग्निवीर, भावुक कर देने वाला दिखा पल, सेना में काम करने के लिए अपने जज्बे का किया इजहार। बेंगलुरु में हुई मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर के अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड, 2315 अग्निवीर हुए इसमें शामिल। ब्रिगेडियर अजय सिंह ठाकुर ने की अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड की समीक्षा, परेड के लिए सलामी। नौसेना के पश्चिमी कमान में बदलाव के मौके पर मुंबई में शानदार परेड का हुआ आयोजन, नौसेना के जवानों ने लिया इसमें हिस्सा। नौसेना के वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने संभाला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्ट का पदभार, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन की जगह संभाली कमान। निवर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को दिया गया औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर, विदाई से पहले दी गई सलामी। देहरादून में टपकेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन, भक्ति भाव से की पूजा अर्चना। मदुरई के थिरुपरान कुंदरम मुरुगन मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, वैकासी विकासम उत्सव का भव्य आयोजन। भगवान मुरुगन को समर्पित है वैकासी विकासम उत्सव, मंदिर में किया गया भगवान का विशेष अभिषेक। कांचीपुरम के वरदराज पेरुमल मंदिर से निकाली गई भगवान की शानदार शोभा यात्रा, वैकासी ब्रह्मोत्सवम के अवसर पर भव्य आयोजन। शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु, मंदिर परिसर में जयघोष करते हुए भगवान के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। तमिलनाडु के तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर में बेहद भव्य तरीके से मनाया जाता है विकासी विकासम का उत्सव, भगवान मुरुगन की प्रतिमा और गर्भगृह का होता है ताजे फूलों से श्रृंगार। मंदिर में इस दिन पंचामृत और दूध से किया जाता है भगवान का विशेष अभिषेक, भगवान मुरुगन का जन्म दिवस के रूप में माना जाता है विकासी विकासम उत्सव। मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में मनाया गया नौका विहार, एक अत्यंत मनमोहक और विशेष उत्सव, विशेष रूप से गर्मियों के महीने और अधिक मास के दौरान होता है इसका आयोजन। भीषण गर्मी में ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए विशेष नौका में उन्हें किया गया विराजमान, भक्तिमय माहौल में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। इस दौरान जयकारों और भजन कीर्तन से गूंज उठा मंदिर परिसर, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
9: आईपीएल का सबसे बड़ा धुरंधर वैभव के बल्ले ने मचाया बवंडर, उम्र 15 साल बना गेंदबाजों का काल, सिक्सर का बेमिसाल बेबी बॉस, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
10: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game, from all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
12: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद। यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, ख्यार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जर्नल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है। ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
13: धरती से आकाश तक भारत की बढ़ रही ताकत, देश में ही तैयार सेना के मॉडर्न हथियार, आत्मनिर्भर भारत का गोल्डन चैप्टर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
14: Tune In is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
15: I have no idea how this election is going to play out,
14: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen. Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I try to. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
17: का कौन सा राजयोग बड़ी मेहनत के बाद बहुत बड़ी सफलता देता है? शनि का कौन सा राजयोग विवाह के बाद भाग्य चमका देता है? कौन से हैं शनि के राजयोग और क्या है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
18: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
8: चंडीगढ़ में रिमझिम बारिश से बदला नजारा, तापमान में दर्ज की गई कमी, मौसम का लुत्फ लेते नजर आएगी। मैदानी गर्मी से राहत पाने पहाड़ों की ओर उमड़ा जन सैलाब, नैनीताल हाउसफुल, नैनी झील में नौकायन को लंबी कतारें, कैंची धाम में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को मिली 538 नए अग्निवीरों की ताकत, 24 महीने के कठोर प्रशिक्षण के बाद 7वें बैच ने ली शपथ, लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर में पासिंग आउट परेड। कांचीपुरम के वरदराज पेरुमल मंदिर से निकाली गई भगवान की शानदार शोभा यात्रा, विकासी ब्रह्मोत्सवम के अवसर पर भव्य आयोजन, जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल। नागपुर में वन संपदा को बचाने की अनोखी मुहिम, दुर्लभ पेड़ों की प्रजातियों के लिए बनाया गया सीड बैंक, लोगों को किया जा रहा है इसके लिए जागरूक।

नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। ईश्वर की आराधना है प्रार्थना। ईश्वर को याद तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी उपासना करने के लिए समय का निर्धारण किया गया है। शास्त्रों के अनुसार मंदिरों में भगवान की आरती दिन में 1 से लेकर 5 बार तक की जाती है, लेकिन घरों में सुबह और शाम ही भगवान की वंदना की जाती है। सनातन संस्कृति में जितना महत्व सुबह की आरती का बताया गया है, उतना ही महत्व संध्या आरती का भी है। तो आज हम आपको संध्या पूजन के महत्व के बारे में बताएंगे और जानेंगे संध्या पूजन से जुड़ी कुछ खास बातें।

संध्या की पूजा से होगा कल्याण। मन कर्म वचन से दूर होंगे विकार। सनातन धर्म का संस्कार है सांझ की उपासना। भक्ति की शक्ति से पूरी होगी मनोकामना। ईश्वर से साक्षात्कार है संध्या की पूजा।

0: संध्या पूजन से दूर होगा जीवन का अंधियारा। संध्या पूजन करने से जीवन में अपार सुख, शांति और संपन्नता का आगमन होता है। नियमित संध्या उपासना करने से तमाम रोग दोष स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं।
1: शास्त्रों में संध्या पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। संध्या पूजा करने से मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षमता का विकास होता है। व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावना का प्रवाह बढ़ जाता है, आत्मबल में वृद्धि होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाने के कारण रोगों से मुक्ति भी मिलती है, जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। संध्या पूजा में गायत्री की उपासना से आध्यात्मिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। हनुमान जी महाराज की आराधना करने से, शनि के मंत्रों का जप करने से शनि से संबंधित जो नकारात्मक प्रभाव है उसका नकारात्मकता दूर होता है, जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि हो जाती है, शत्रुओं एवं कष्टों का नाश होता है।
0: धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी संध्या पूजन का वर्णन किया गया है, तो आइए जानते हैं कि धार्मिक परंपराओं में संध्या उपासना क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। संध्या पूजन की महिमा। हिंदू धर्म में तीन वेला पूजा करने का विशेष महत्व है, सुबह, दोपहर और शाम की पूजा। शाम के समय की पूजा सूर्यास्त के समय की जाती है, इसे संध्या पूजन कहते हैं। संध्या पूजा करने से विशेष तरह के शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। कुछ विशेष पूजा और प्रयोग ऐसे हैं जो केवल संध्या पूजन में ही फलदायी होते हैं।
2: संध्या वो समय है जिस समय पर दो समय मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि विशेष संयोग बनाता है। और वैसे भी संध्या सूर्य की पत्नी का नाम है, तो सूर्य इनसे बहुत प्रेम करते हैं और इन्हीं के संतान इस धरती, इस लोक के अंदर विशेष पुण्यदायी और विशेष प्रभाव डालने वाली प्राप्त हुई है। इनकी पूजा, इनके समय पे व्रत पूजन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में आनंद से भर उठता है।
0: ज्योतिष के जानकारों की माने तो शाम के समय की जाने वाली पूजा जीवन में शांति और समृद्धि लाती है, तमाम तरह की मानसिक परेशानियों से छुटकारा भी दिलाती है संध्या पूजा और उपासना।
1: सनातन धर्म एवं संस्कृति में तीन बेला का समय पूजन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरा मध्यान्ह काल में और तीसरा सायंकाल में, प्रदोष काल में। उगते समय सूर्य की उपासना, जब सूर्य अपने तीव्रतम स्वरूप में हो, दोपहर में एवं सायंकाल जब सूर्य अस्तांचल की स्थिति में होते हैं, अस्त होने की स्थिति में होते हैं, तो जो तीनों समयों में जो प्रदोष काल होता है, संधि काल होता है, उसमें संध्या पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा करने से, तीन बेला की उपासना करने से, तीन बेला की पूजन करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता का प्रवाह तीव्रता के साथ बढ़ता है और व्यक्ति का आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाता है।
0: इस पूजन के और भी कई लाभ हैं, आइए हम आपको बताते हैं। संध्या पूजा करने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती। शनिदेव और हनुमान जी की पूजा संध्या के समय विशेष प्रभावशाली होती है। शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए संध्या को पूजा जरूर करनी चाहिए। कर्ज, रोग और शत्रु मुक्ति के लिए संध्या पूजन ज्यादा कारगर होती है। वैदिक परंपरा में हर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं, जिनका ध्यान रखकर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से की गई पूजा आपको लाभ के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो नियमित संध्या पूजन जीवन के तमाम कष्टों और बाधाओं से मुक्ति देने के साथ साथ जीवन में अपार सुख समृद्धि और संपन्नता भी ले आती है। लेकिन इसके लिए आपको संध्या उपासना की सही विधि जानना जरूरी है। तो क्या है वो खास विधि जिससे संध्या पूजन का विशेष लाभ मिलता है? संध्या पूजा सूर्यास्त के समय करनी चाहिए। संध्या पूजा से पहले स्नान करना उत्तम होगा। अच्छी तरह से हाथ पैर धोकर भी पूजन कर सकते हैं। इस समय की पूजा में घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करें, फिर जो भी मंत्र आप रोज जपते हो उसका जाप करें, शंख बजाएं, धूप जलाएं, आरती करें।
2: संध्या तीन बार गिनी जाती है, एक सूर्योदय के समय जब दो समय मिल रहे हो, रात्रि समाप्त हो रही हो और रोशनी आने लगे, एक संध्या का समय जिसे गौधूली की वेला भी कहते हैं हम, जब गायें घर वापस लौट रही होती है, जब रोशनी जा रही होती है और अंधकार आने लगता है, और एक मध्यान्ह काल होता है जिस समय पर सूर्य ढलने लगता है, बिल्कुल 12 से 3 बजे के बीच का समय होता है ये, इसको भी संध्या कहते हैं।
0: वैदिक परंपरा से हर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखकर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से की गई पूजा आपको लाभ की बजाय हानि पहुंचा सकती है। तो आखिर संध्या पूजन के लिए वो कौन सी सावधानियां और नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है, बताएंगे हम आपको। बस आप बने रहिए हमारे साथ।
3: ईश्वर की आराधना के कुछ नियम और सावधानियां भी होती हैं जो पूजा को संपूर्ण और सफल बनाते हैं, और उन नियमों का पालन ना करने से पूजा का असर कम हो जाता है। तो चलिए अब आपको संध्या पूजन करने की सबसे उत्तम विधि बताते हैं और जानते हैं कि इससे आपको क्या लाभ हो सकते हैं।

0: संध्या की भक्ति कराएगी पाप से मुक्ति। गोधूली वेला की उपासना में है चमत्कारी शक्ति। घर में होगा सकारात्मक ऊर्जा का संचार। दूर होगा जीवन का हर अंधकार। ईश्वर का ध्यान कभी भी और किसी भी वक्त लाभकारी और शुभकारी होता है। संध्या वेला में ईश्वर की आराधना का अलग ही महत्व है। लेकिन संध्या पूजन ही क्यों, ये सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका भी जवाब। नियम पूर्वक संध्या पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। रात या दिन में जो विकर्म होते हैं वे त्रिकाल संध्या से नष्ट हो जाते हैं। समय पर की गई संध्या पूजन इच्छा अनुसार फल देती है। शिव के समीप संध्या वंदन से अनंत गुणा फल मिलता है।
1: संध्या के लिए सबसे पहली चीज दीपदान है। सूर्य को जल है और सूर्यार्घ के साथ साथ सूर्य को दोनों हाथ उठाकर सूर्य को प्रणाम है। जो व्यक्ति संध्या पूजन करता है, एक तो सबसे पहले सूर्य की कृपा प्राप्त करता है। जीवन में जिस व्यक्ति को सूर्य की कृपा मिली है, उसको मान सम्मान, आरोग्यता, धन वैभव सब प्राप्त होता है।
0: संध्या पूजन से संवर सकता है आपका भाग्य। संध्या पूजन में है अपार शक्ति। कहते हैं संध्या पूजन करने से जीवन में पूजा का लाभ कई गुणा बढ़ जाता है। प्रभु की आराधना में अद्भुत शक्ति है। ईश्वर की भक्ति में अनंत शक्ति है। लेकिन संध्या काल का पूजन सबसे अलग और प्रभावी माना गया है। संध्या पूजन में कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं, तो गौर से देखिए।
2: संध्या पूजन का अनेक लाभ शास्त्रों में बताया गया है। व्यक्ति मानसिक स्तर पर मजबूत होता है। व्यक्ति के अंदर शांत प्रियता की वृद्धि होती है। व्यक्ति के अंदर जो एक व्याकुलता है उससे मुक्ति मिलती है। व्यक्ति का जो चित्त है, मन है, वह शांत होता है। क्रोध पर नियंत्रण होता है। व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक विकास होता है। अपने इष्ट देव के प्रति लगाव बढ़ता है। एक तेज का विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ ग्रहों से संबंधित कोई नकारात्मक प्रभाव है तो वह दूर होता है। व्यक्ति के चेहरे पर एक तेज का विकास होता है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। व्यक्ति रोग मुक्त होने लगता है। साहस बढ़ता है।
0: संध्या पूजा के पहले कुछ न खाए। संध्या पूजा में घर के जितने लोग शामिल होंगे उतना ही अच्छा होगा। संध्या पूजा बिना दीपक के नहीं करनी चाहिए। संध्या पूजा के बाद घर में बनने वाले भोजन को भगवान को जरूर अर्पित करें।
1: संध्या पूजन के समय सबसे पहले सुबह के उसमें तो सूर्यार्घ और सूर्य का उपस्थान अर्थात दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान को अर्पण करने के लिए कहा गया है। संध्या के समय उपस्थान न भी करें, परंतु सूर्यार्घ न भी करें। सूर्यार्घ करना चाहिए, लेकिन उपस्थान और उनके प्रति गायत्री जप और दीप दान अत्यावश्यक होता है। संध्या के समय तो विशेष तौर पर किया जाता है। मध्यान्ह काल में दोनों कार्य किए जाते हैं।
0: ईश्वर की सच्ची साधना से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। कहते हैं प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति और पूजा उपासना से उनकी विशेष कृपा बरसती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। संध्या पूजन में किन बातों का रखे ध्यान, ये तो आपने जाना। लेकिन पूजा उपासना में ध्यान रखने योग्य और भी कल्याणकारी बातें हैं।
2: संध्या पूजन के दौरान घंटी नहीं बजाना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। संध्या पूजन के दौरान माता तुलसी को दीपक जरूर जलाना चाहिए। संध्या पूजन के दौरान फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि संध्या पूजन में मन को एकाग्र रखना चाहिए और जिस भी ईश्वर की आप आराधना करते हैं अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं उसमें आप एकदम अपने ध्यान को केंद्रित करके उनका स्मरण करते हुए मंत्रों का जप करिए।
0: पूजा में दीपक, शिवलिंग, शालिग्राम जमीन पर न रखें। मणि, देवी देवताओं की मूर्तियां, यज्ञोपवीत और शंख जमीन पर कभी न रखें। एक कपड़ा बिछाएं या किसी ऊंचे स्थान पर इन चीजों को रखना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर की भागा दौड़ी के बाद शाम को जब आप उपासना करने बैठेंगे तो मन खुद ब खुद शांत और निर्मल होने लगेगा। नींद अच्छी आएगी और आपके व्यवहार में भी मधुरता आएगी। तो देर किस बात की, आप भी संध्या पूजा कीजिए और दीजिए अपने जीवन को एक नई दिशा।
3: चलिए जानते हैं कि घर की चौखट का दिया न सिर्फ अंधकार दूर करता है बल्कि आपके जीवन में भी उजियारा फैला सकता है। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक दीपक का दान करना या फिर दीप को जलाकर देव स्थान पर रखना ही दीप दान कहलाता है।

वैसे हम जानते हैं कि किसी दीपक को उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। कहा तो ये भी जाता है कि ये प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक धार्मिक तरीका होता है। पद्म पुराण से लेकर अग्नि पुराण में दीपदान का बखान किया गया है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में दीपदान करता है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। पद्म पुराण के मुताबिक मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। कहा जाता है कि दीपदान करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता।

0: फिर सूर्यास्त के बाद दीपक, तेल, गाय का घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाएं। घी के दीपक में रुई की बत्ती का प्रयोग करें। तेल के दीपक में लाल धागे या फिर कलावा का प्रयोग करें। दीपक को हमेशा चावल, गेहूं, सप्तधान्य का आसन दें। उसके बाद तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें। दूसरा, गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। हिंदू धर्म में हर मांगलिक कार्य के लिए मंत्र है। कोई भी शुभ कार्य करने के दौरान इन मंत्रों का उच्चारण बेहद अनिवार्य है। उसी प्रकार शाम के समय घर पर दीपक जलाते समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कल्याण होगा और लाभ मिलेगा। तो आप ये भी जान लीजिए कि वो मंत्र कौन से हैं। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योतिर जनार्दन, दीपो हरित मा पाप, संध्या दीप नमोस्तुते। शुभ करोत कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते।
1: तो सार्जम चवर्तिष्ठ नियुक्तम वहनिना ज्योतिषमया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम भक्त्या दीपम प्रयक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि माम निर्यात घोरात दीपत ज्योतिर नमोस्तुते। इन मंत्रों से आजकल ये मंत्र बड़ा हो जाता है, तो आप वहां पर बस भगवान के सामने दीपम दर्शयामि, जिस देवता को हम दीपक दिखा रहे हैं उनके सामने अर्पण कर जैसे ओम नमः शिवाय दीपम दर्शयामि, ओम विष्णवे नमः दीपम दर्शयामि, ओम नमः शिवाय, जो भी देवता का वहां पर हम पूजन करते हैं उन देवता का नाम लेके दीपम दर्शयामि का शब्द का उच्चारण कर देते हैं तो उतना ही लाभ मिलता है जितना वैदिक मंत्रों से मिलता है।
0: दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करने से पुण्य कर्मों में बढ़ोतरी होती है, हमारे सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो आप भी शास्त्रीय विधान से कीजिए दीपदान और अपने जीवन से बाधाओं का अंत कर लीजिए।
2: प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।
3: धरती से आकाश तक भारत की बढ़ रही ताकत, देश में ही तैयार सेना के मॉडर्न हथियार, आत्मनिर्भर भारत का गोल्डन चैप्टर देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: डिस्कवर योर न्यू फेवरेट्स ऑन ट्यून इन विद ओवर 100,000 म्यूजिक, न्यूज एंड स्पोर्ट्स स्टेशंस टू चूज फ्रॉम। There's always something to listen to, even podcasts and audiobooks for you to enjoy. Stay connected for all new recommendations and follow us on social media at TuneIn on Facebook, Instagram, and X. And start listening today. Just ask your device to play TuneIn.
5: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव

0: खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में आप भी भागीदार बने। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बनाइए व्लॉग। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दे, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर जरूर दिखाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अब कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इसमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हैरान कर देंगे तो कुछ आपको भावुक भी कर सकते हैं।
7: जिंदगी में खुश रहने के लिए कोई वजह जरूरी नहीं होती। ये नन्हा बच्चा स्टील के बर्तन की थाप पर मासूमियत से झूमता नजर आ रहा है। उसकी मुस्कान और छोटे छोटे कदम दिल को खुशी से भर देते हैं। सच में बचपन की यही सादगी जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। ये महिला नारी शक्ति की सशक्त मिसाल है। एक तरफ भारी कैमरा संभालते हुए वो शादी की फोटोग्राफी कर रही है तो दूसरी तरफ अपनी छोटी बच्ची का भी ध्यान रख रही है। माँ की ममता से बच्चा परे ना हो, इसलिए ये साहस सिर्फ माँ ही कर सकती है। ये नज़ारा दिखाता है कि महिलाएं जिम्मेदारी के साथ अपने सपनों को भी बखूबी पूरा कर सकती हैं। दोस्ती की ये अनोखी मिसाल दिल को छू लेती है। एक बच्चा अपने खाने को एक तोते के साथ शेयर कर रहा है और दोनों आराम के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ये मासूम दोस्ती इंसानों और प्रकृति के बीच प्यार और अपनापन दिखाती है। चिड़िया हमारी बचपन की साथी हुआ करती थी, लेकिन आज इन्हें देख पाना दुर्लभ हो गया है। ये नज़ारा बचपन की यादें ताज़ा कर देता है, जब हम चिड़ियों को नहाते हुए देखकर मौसम बदलने की उम्मीद करते थे। आज वही मासूम पल बहुत याद आते हैं। ये छोटी बच्ची अपनी मासूमियत और एनर्जी से दिल जीत रही है। दो चोटियों में सजी ये नन्ही परी मस्ती में झूमते हुए अपने हर स्टेप को बेहद क्यूट अंदाज में कर रही है। उसकी खुशी और नटखटपन देखने वालों का मन खुश कर देती है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: शनि का कौन सा राजयोग बड़ी मेहनत के बाद बहुत बड़ी सफलता देता है? शनि का कौन सा राजयोग विवाह के बाद भाग्य चमका देता है? कौन से हैं शनि के राजयोग और क्या है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
9: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
11: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
4: It's your boy,
11: just
4: Jay-Z.
11: Search Classic Hip-Hop or tell your device to play Classic Hip-Hop on TuneIn to listen.
12: IPL का सबसे बड़ा धुरंधर वैभव के बल्ले ने मचाया बवंडर, उम्र 15 साल बना गेंदबाजों का काल, सिक्सर का बेमिसाल बेबी बॉस, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
15: Sage University, transforming your passion into profession.
16: चंडीगढ़ में रिमझिम बारिश से खुशनुमा हुआ मौसम, तापमान में आई कमी, शहर की खूबसूरती का लुत्फ उठाते नजर आए लोग। मैदानी गर्मी से राहत पाने पहाड़ों की ओर उमड़ा जनसैलाब, नैनीताल हाउसफुल, नैनी झील में नौकायन को लंबी कतारें, कैची धाम में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को मिली 538 नए अग्निवीरों की ताकत, 24 महीने के कठोर प्रशिक्षण के बाद सातवीं बैच ने ली शपथ, लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में पासिंग आउट परेड। कांचीपुरम के वरदराज पेरुमल मंदिर से निकाली गई भगवान की शानदार शोभा यात्रा, वैकासी ब्रह्मोत्सवम के अवसर पर भव्य आयोजन, जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल। नागपुर में वन संपदा को बचाने की अनोखी मुहिम, दुर्लभ पेड़ों की प्रजातियों के लिए बनाया गया सीड बैंक, लोगों को किया जा रहा जागरूक।

0: शादी नहीं कॉन्ट्रैक्ट है बराबरी का रिश्ता, आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत चंदावा। शादी तलाक और रिश्तों की आज बात होगी, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुना है। अदालत ने कहा है कि शादी बराबरी का रिश्ता है, ऐसा नहीं होता है कि पत्नी ही घर के सारे काम करे। हाई कोर्ट ने साफ किया है कि अगर पत्नी खाना नहीं बनाती है या फिर घर के काम ठीक से नहीं करती है तो इसे क्रूरता नहीं माना जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिलाओं पर सुनाया है एक बड़ा फैसला। क्या घर में महिलाओं को नहीं मिलता जायज हक? शादी नहीं है हाई कॉन्ट्रैक्ट है बराबरी का रिश्ता, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कानून विशेषज्ञ भी होंगे, साथ ही साथ समाज सेवी भी मौजूद रहेंगे। तो देश में चर्चा बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को लेकर हो रही है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या है तलाक का ये पूरा केस। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तलाक का केस रद्द कर दिया है। पहले बांद्रा फैमिली कोर्ट ने तलाक मंजूर किया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी का खाना न बनाना क्रूरता नहीं है, क्योंकि जो दलील उसमें दी गई थी पति की तरफ से वो यही दी गई थी। हाई कोर्ट के मुताबिक शादी बराबरी की साझेदारी है, शादी कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। साथ ही साथ अदालत ने यह भी बताया कि पत्नियों को घर के काम करने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, यानी कि घर के काम का जिम्मा केवल पत्नियों का नहीं है, केवल महिलाओं का नहीं है। वैसे इस मामले में पति ने पत्नी पर माता पिता की बात नहीं सुनने का भी आरोप लगाया था और पत्नी पर घर के काम नहीं करने का भी दावा किया था। पूरा मामला दरअसल साल 2002 का है, जब शादी के कुछ ही दिनों बाद पति और पत्नी में विवाद उभर कर सामने आया था। शादी बताते चले कि 2002 में ही हुई थी। फिर ये कहा जा रहा था कि कुछ महीनों बाद पत्नी अपने मायके चले गए, यानी 2002 में शादी हुई, शादी के कुछ महीनों बाद विवाद बढ़ा जिसके बाद पत्नी अपने मायके चली गई। बाद में पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। साल 2004 में फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी मंजूर कर ली गई। अब यहां पर यह गौर करने वाली बात है कि 2002 में शादी होती है, कुछ ही दिनों बाद अनबन होती है, पत्नी वापस अपने मायके चली जाती है और 2004 की बात यानी ठीक 2 साल बाद फैमिली कोर्ट ने तलाक की अर्जी को मंजूर कर लिया था। साल 2010 में फैमिली कोर्ट ने पत्नी के गुजारे भत्ते की अर्जी खारिज की थी। 2010 में पत्नी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, गुजारे भत्ते की अपील की, साथ ही पत्नी ने पति के आरोपों को भी गलत बताया था। अब मई 2026 हाई कोर्ट ने पत्नी के गुजारे भत्ते के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा कि इस विवादित शादी की शुरुआत तब हुई थी जब दोनों कपल तालमेल बिठा रहे होते हैं, यानी कि शादी के शुरुआती दिनों में। तो क्या यह फैसला एक नजीर बनेगा, क्योंकि तलाक हर समस्या का हल नहीं होता है बल्कि बातचीत से भी मामले सुलझाए जा सकते हैं। तो चलिए इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ है मनीषा सिंगल, साइकोलॉजिस्ट हैं और मैरिटल काउंसलर भी हैं। हमारे साथ रेखा अग्रवाल जी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की। हमारे साथ इस वक्त रुक्मणी सिंह, वुमेन राइट एक्टिविस्ट, और साथ ही साथ बरखा त्रिहान, मेन राइट एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीषा जी, अगर मैं इस पूरे मामले पर आपके पास आऊं, देखिए बहुत से मामले आपने देखे होंगे और इस केस में अब आप देखिए कि 2002 में शादी होती है, यानी वो समय है जब महिला की उम्र थी 23 साल। 23 साल में महिला की शादी हो गई, 25वें साल में, यानी कि ठीक 2 साल बाद की अगर हम बात करें तो उनकी तलाक की अर्जी मंजूर हो जाती है और 2010 में यह कहा जाता है कि ठीक है गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। लेकिन अब देखिए पूरा जो ट्रायल चला है वो 24 साल तक चला है, 2026 में हाईकोर्ट ने फैसला सुना है। अब किस तरीके से इसको देखते हैं, 23 साल की उम्र और वहीं 24 साल उसको लग गए इंसाफ मिलने में।
1: देखिए मैरिज है क्या? मैरिज एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो हमारी फैमिली सिस्टम थ्योरी जो होती है वो क्या कहती है, वो भी यही कहती है कि मैरिज एक ऐसा डिफरेंट बॉन्ड है, एक ऐसा स्पेशल बॉन्ड है जिसमें जो एक नया मेंबर आ रहा है केवल उसे नहीं बल्कि जो मेंबर्स ऑलरेडी उस फैमिली में मौजूद हैं, जिस घर में वो लड़की जा रही है शादी होके, उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस नए मेंबर के लिए वो एक कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उसको घर जैसा फील कराएं। अब अगर दोनों ही जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों वर्किंग हैं, या अगर एक वर्किंग है, वाइफ यूजुअली होम मेकर जो हमारे इंडिया में जनरली होता है, बाहर भी कुछ देशों में होता है, अगर ये केस है तो उस सिनेरियो में डेफिनेटली जो एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर होम मेकर है वाइफ तो वो घर में आराम कर रही है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर दोनों वर्किंग है उस केस में भी दोनों की ही बराबर बराबर जिम्मेदारी होती है। और ये बिल्कुल सही अपील की गई कि हाँ, अगर वो घर में काम कर रही हैं, सो डेफिनेटली उनको एक एक ऑनेस्ट एक उनके साथ एक उन्हें एक कोर्ट की तरफ से उनके फेवर में ये होना चाहिए था फैसला, जो हुआ भी है। और इसमें जो बच्चे, ये एक मैसेज है, ये बेसिकली एक इस तरह की डायनेमिक्स है, बहुत ही डिफरेंट डायनेमिक्स है, जिसमें जो हमारी हमारी जो फैमिली थ्योरी है उसमें भी एक गॉटमैन थ्योरी आती है, जो ये कहती है कि गॉटमैन थ्योरी बेसिकली होती है कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आप किस तरह से इस सिस्टम को बेहतर तरीके से आगे ले जा सकते हैं, जिसमें एक मैनेजर या हेल्पर ये वाला रिलेशन ना दिख के, या मास्टर एंड मेड ये वाला रिलेशन ना दिख के, मास्टर
0: ठीक
1: या
0: है।
1: सर्वेंट ये कह सकते हैं, बराबरी का एक रिलेशन सामने हम प्रेजेंट करें।
0: ठीक है।
1: और जो आगे अगर हमारे बच्चे होने वाले हैं तो उन बच्चों के लिए भी एक साइलेंट एक पॉजिटिव मैसेज जाए, प्लस जो बाकी घर के फैमिली मेंबर्स हैं जिस घर में शादी हुई है, सो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक प्रैक्टिकल तरीके से जो नया मेंबर है उसके
0: उसका वेलकम करें, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ। एक बार रेखा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेखा जी, किस मामले में कैसे इस पूरे मामले को पहली बात तो आप देखती हैं, और कोर्ट के इस फैसले को थोड़ा सा डिटेल में हमारे दर्शकों के लिए समझाइए, क्योंकि सवाल बहुत से हैं। 23 की उम्र में शादी हो जाना, कुछ ही महीनों बाद दोनों अलग हो जाते हैं, गुजारे भत्ते की बात होती है, अब जाके 24 साल बाद कोर्ट ये कह रहा है कि ये कोई दलील नहीं बनती है तलाक की।
2: देखिए, आजकल एक जो कोर्ट्स का जो एटीट्यूड आ गया है वो एक बहुत अलग तरह का प्रोग्रेसिव तरीके का एटीट्यूड आ गया है। और जैसे कि अभी साइकोलॉजिस्ट ने भी कहा कि शादी को चलाना दोनों की जिम्मेदारी होती है, पति की भी और पत्नी की भी, किसी एक पक्ष को टोटली जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं। और कोर्ट के सामने क्या तथ्य पेश करे गए थे दोनों साइड्स के अंदर, ये कहना कि जी पति के फेवर के अंदर ये केस को जाना चाहिए था या पत्नी की फेवर के अंदर जाना चाहिए था, दोनों बातें कहना बहुत मुश्किल है जब तक हमारे सामने फाइल नहीं हो और हम सारे फैक्ट्स को ना पढ़े कि कोर्ट ने जो अपने फैसला दिया किस आधार के ऊपर जाके दिया। आफ्टर ऑल इतना लंबा जो समय निकल गया इस शादी को भी, तो उसके अंदर जो एक ह्यूमन एलिमेंट जो है जिसको हम कहते हैं कि जिंदगी निकल गई, पति की भी निकल गई पत्नी की भी निकल गई, और आखिर के अंदर आज कोर्ट ने एक अपना अपने विवेक के अंदर जो फैसला करा, तो इसके अंदर कोई भी किसी पक्ष के साइड लेना बहुत मुश्किल होगा कि भी पति के हक के अंदर होना चाहिए था, पत्नी के हक के अंदर होना चाहिए था। कोर्ट ने हमारा जो लीगल प्रोसीजर है, अगेन यही बात को बताता है कि हमारा जो लीगल प्रोसीजर लंबा बहुत है, बहुत इसके अंदर टाइम लगता है, और उस लंबे टाइम के अंदर बहुत सारी जो जो डेवलपमेंट्स लाइफ की जो होती हैं वो आपकी लाइफ को मोड़ देती हैं। उस जब तक अगर आपका समय से फैसला नहीं आए, अगर कोर्ट अब समय से फैसला नहीं देती है किसी भी चीज का, तो बहुत ज्यादा ह्यूमन एलिमेंट जो होता है, लाइफ जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, उनको बहुत तकलीफ होती है। परंतु अभी कोई भी इस पक्ष को कहना मुश्किल होगा, फॉर मी एज अ लॉयर, अग जिम्मेदारी के साथ इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना, जब तक मैं सारी बॉम्बे बॉम्बे हाईकोर्ट के जो जजमेंट है, पहली बात तो मैं उसको डिटेल में ना पढ़ लूं, और क्या इस नतीजे पे पहुंचने के लिए कोर्ट के सामने क्या एविडेंस थे, क्या तथ्य थे, उनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, परंतु जरूर ये मैं कह सकती हूँ कि दो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो एक बराबरी का रिश्ता है,
0: ठीक है।
2: और कोर्ट्स
0: देखा
2: भी
0: जी।
2: उसको इसी बात से नतीजे को देखती हैं कि इस बराबरी को रिश्ते से कैसे चलाया जाए, और अगर कोई भी पार्टी इसके अंदर उस बराबरी के रिश्ते को इज्जत के साथ पे रिस्पेक्ट और प्यार के साथ अगर नहीं चलाती तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो हम अपने सामने देख ही रहे हैं कि जो इसके अंदर जिंदगियां जो खराब होती हैं आपके
0: ठीक है,
2: साथ साथ आपके जो परिवार इन्वॉल्व होते हैं उनकी कितनी कितनी प्रॉब्लम सबको आती है।
0: एक बार रेखा जी, मैं चाहूंगी कि जो जो कोर्ट में या फिर इस पूरे केस को जिस तरीके से चला पूरा, एक बार जरा मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता देती हूँ। बरखा जी, फिर मैं आपके पास आती हूँ। रेखा जी, साल 2002 में दोनों की शादी होती है, कुछ ही महीनों बाद पत्नी अपने घर चली जाती है। मामला ये होता है कि पति और पत्नी के बीच में अनबन होती है। ये आधार कोर्ट ने बनाया कि देखिए ये वो समय होता है जब पति और पत्नी दोनों सेटल हो रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, लेकिन तब वो पत्नी पर एलिगेशन लगाते हैं कि आप घर का काम नहीं करते हैं, सीनियर्स या एल्डर्स की आप रिस्पेक्ट नहीं करते। फिर उसके बाद पत्नी चली जाती है। 2004 में फैमिली कोर्ट एक्सेप्ट करती है, इस तलाक की अर्जी को मंजूरी देती है। 2010 में फैमिली कोर्ट ने पत्नी के गुजारे भत्ते की अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसको लेकर 2010 में ही महिला हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। 2026 हाईकोर्ट ने पत्नी के गुजारे भत्ते के पक्ष में फैसला सुनाया, ये कहते हुए कि विवाद शादी की शुरुआत में हुआ और जब दोनों तालमेल बिठा रहे थे। ये पूरा एक तरीके से, इस पूरे फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं?
2: देखिए, जो फॉर्मेटिव इयर्स शादी के होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब जो बुनियाद शादी की जो रखनी होती है, बिकॉज दोनों अपने अपने अपने अपने जो जिन परिवारों से आए हैं उनकी क्या इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, क्या सोशल बैकग्राउंड है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, और क्या इमोशनली और जो इमोशनल क्वोशेंट जो हर शादी के अंदर इन्वॉल्व होता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है पति पत्नी के रिश्ते को बना के रखने के अंदर, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शादी को बच्चों का खेल नहीं है कि आज करा, और जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं या हम बचपन में देखते थे कि गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि शादी हुई और उसके बाद है ना दोनों हमेशा के लिए हैप्पी एंड दे विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ये शादी के अंदर एंड दे विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर की थ्योरी जो थी वो सिर्फ बचपन के अंदर सुनते हुए अच्छी लगती थी कि शादी हो और उसके अंदर ना जो थे वो लव वर्ड्स की तरह उन्होंने अपनी जिंदगी निकाल दी। हकीकत जो होती है वो बहुत बहुत डिफरेंट होती है। फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ मैरिज होते हैं, उसी के अंदर रिश्ता जो है बनता है या बिगड़ता है। और अगर कोर्ट ने ये कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये जो प्रॉब्लम्स आई थी उनके फॉर्मेटिव इयर्स ऑफ मैरिज के अंदर थी, शुरू शुरू के अंदर आई थी, तो मैं उसका एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ ये बहुत बहुत करेक्ट फैसला है टू दैट एक्सटेंड कि यस, बिगनिंग ऑफ मैरिड लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी से आगे दोनों के रिश्ते की जो जो बुनियाद है जो और कहाँ पे उनका रिश्ता उनका लिया जाएगा ये उसी के फॉर्मेटिव इयर्स के ऊपर ही डिपेंड
0: बिल्कुल,
2: करता
0: उसी
2: है।
0: अब बरखा जी, आपको इंक्लूड करती हूँ। देखिए, 2026 में ये फैसला आता है, 2010, 2004 में जब मामला फैमिली कोर्ट में जाता है। देखिए, फैमिली कोर्ट में बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं, मनीषा जी भी यहाँ पर बैठी हैं, फैमिली काउंसलर रही हैं, बरखा जी आप भी ऐसे मामलों से जुड़ी हुई हैं। आज कोर्ट ये कह रहा है कि ये फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, क्या फैमिली कोर्ट को ये बात समझ में नहीं आई थी कि फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं? अगर तब दोनों की काउंसलिंग कर दी जाती तो आज जो 24 साल कोर्ट के चक्कर लगाते झगड़े में बीत गए दोनों के, तो हो सकता है कि शुरू में दोनों की अनबन होती, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाते, लेकिन बाद में हो सकता है दोनों सेटल होते। आज कोर्ट का फैसला देखिए कितना बढ़िया है कि आधार नहीं है, और ये वाजिब भी है, ये हर कोई इस बात को जानता है कि शुरुआत में चाहे वो दो दोस्त हो, चाहे वो दोनों पति पत्नी ही क्यों ना हो, वक्त लगता है, समय लगता है किसी रिश्ते को बनाने में, दोनों को समझने में, और कुछ ही महीनों बाद अगर पत्नी चली जाती है, फैमिली कोर्ट में मामला जाता है, क्या वहीं पर काउंसलिंग करके दोनों को समझाया नहीं जा सकता था? 24 साल लगते ही नहीं।
3: नवज्योति, मेरी आवाज आ रही है?
0: बिल्कुल
3: जी, मैंने अनगिनत बार एक बात कही है आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले शादी वो दो लोग करें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक है। अपनी मेच्योरिटी जब आपको आ जाए तब आप शादी के बंधन में बंधिए, कोई जल्दी नहीं है। इंडिपेंडेंट वुमेन, मॉडर्न वुमेन बहुत अच्छा कर रही है, वो चांद तारों तक पहुंच चुकी है। दूसरी बात, 6 करोड़ केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में, तो कोर्ट में तो सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है और कुछ नहीं मिलता। तो कम से कम अगर आप बड़े बुजुर्गों के साथ नहीं बैठना चाहते, उनकी कोई राय नहीं सुनना चाहते, उनके साथ अपनी बात शेयर नहीं करना चाहते, जो भी आपकी लाइफ में इनिशियल डेज में प्रॉब्लम आती है मैरिज में, तो आप ऐसा तो कर सकते हैं कि आप इस पूरे मुद्दे पर आपस में बैठ करके बात करें, और अगर बात ना बने, आपको लग रहा है कि नहीं हम नहीं चल सकते, कोई जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग लोग एक जगह शादी के बंधन में बंधने के बाद भी अच्छा करें, आपको लगे तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाएं, जिससे कि आपकी जिंदगी का गोल्डन पीरियड, जो कि आप हम सब यहाँ बैठे हैं इस बात को बहस करने के लिए, लेकिन गोल्डन पीरियड तो निकल गया, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों का गोल्डन पीरियड निकल गया लिटिगेशन में, तो हम इससे बेहतर हैं म्यूचुअल डाइवोर्स में जाए, उसमें आप जल्द से जल्द आपको डाइवोर्स मिल जाता है, आप सेकेंड मैरिज करना चाहें या ना करना चाहें ये आपकी इच्छा है। अगर मैं इसके के लिए भी बोलूं तो अगर पत्नी घर की मेड नहीं है तो पति भी कोई लाइफ टाइम एटीएम या कोई पेचेक नहीं है, शादी एक पार्टनरशिप है और दोनों को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी थी कि बहुत ज्यादा है कि एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें। कानून जब एक तरफा चश्मा पहन लेता है तो पुरुषों को मानसिक क्रूरता के बारे में कहते हैं और ये बातें बहुत उठती हैं, लेकिन त्विशा जैसे भी केसेस हैं जहां पे लड़की आज मर चुकी है जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनिशियल डेज में हमने काउंसलिंग क्यों नहीं करी, और अगर नहीं रह पा रही तो हमने अलग अलग क्यों नहीं कर दिया, हम म्यूचुअल डाइवोर्स की तरफ क्यों नहीं पढ़ते। डाइवोर्स को टैबू ना बनाएं, और ऑलरेडी डाइवोर्स केसेस बहुत हैं, कोर्ट के लाखों कोर्ट के अंदर है, लाखों कोर्ट के बाहर है। मैं ऐसे कपल्स को जानती हूँ जो जबरदस्ती मजबूरी में रह रहे हैं क्योंकि उनको समाज का डर है या कोई और डर है या अपनी उनकी जॉब चली जाएगी, कई ऐसे डर है जिसकी वजह से वो एक साथ रह रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को तूल दिया जा रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया जाए। जब हम कोई भी लड़की या लड़का बॉस के साथ काम करता है ऑफिस में, तभी तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहां तो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्योंकि वहां पर आपको लगता है कि हमने अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। तो ऐसे ही विवाह के नाम की संस्था में भी दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए और अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहिए, टाइम देना चाहिए और गिव एंड टेक नहीं करना चाहिए। गिव करो पहले, पहले गिव सम टाइम टू द रिलेशनशिप, उसके बाद एक्सपेक्ट करना शुरू करना चाहिए, जबकि हमारा डे वन से एक्सपेक्टेशन मोड में होते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए हमारे साथ, तो ये चीजों को हमें बदलना होगा।
0: इसीलिए देखिए, इसीलिए आप देखिए बरखा जी, 2002 में शादी हुई जब इस तरह का कंसेप्ट नहीं था कि आप बच्चों की काउंसलिंग कर सके, तब ये वो समय था जब देख लिया या फिर अगर आपस में भी आपने पसंद कर लिया तो नॉर्मल शादी हो जाती थी, लेकिन आज की तारीख में, इतने सालों बाद आज की तारीख में आप जैसे तमाम काउंसलर्स मौजूद हैं, हम बार बार इसको लेकर चर्चा करते हैं कि जब भी शादी दो परिवारों का भी बंधन होता है, पहले दोनों परिवारों की काउंसलिंग हो, लड़के लड़की की काउंसलिंग हो, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आप जा रहे हैं, आप शादी कर सकते नहीं कर सकते। कोर्ट का ये फैसला बहुत सही है, जिस तरीके से कहा कि कोई आधार ही नहीं बनता है। एक बार रुक्मिणी सिंह, मैं आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं, 16 साल बाद तलाक का फैसला रद्द, अब वापस से पति पत्नी के तौर पर रहना होगा। आप ये सोचिए कि मुश्किल से 2002 में शादी हुई, शायद 2-3 महीने भी साथ नहीं रहे होंगे, इतनी उम्र 24 साल बीत गए, कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए, आज कोर्ट कह रहा है कि जिस जिस आधार पर आप कोर्ट में आए थे तलाक लेने के लिए वो तो कोई आधार ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आज की डेट में हम चारों भी यहां पर बैठकर हम सब बात कर रहे हैं तो वाकई ये आधार नहीं बन रहा है। क्यों नहीं परिवार ने इसमें इंटरफेयर किया, क्यों नहीं फैमिली कोर्ट ने, शुरू में जब वो फैमिली कोर्ट में गए थे क्यों नहीं वहीं पर काउंसलिंग हो गई?
4: देखिए मैं माया सिंह हूँ, रुक्मणी सिंह नहीं, मैं माया सिंह
0: हूँ।
4: ये बात सही बात है, देखिए जिस तरह से मैंने बरखा जी को भी सुना, काफी हद तक मैं देखिए बहुत सारे, क्योंकि हम सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं और चूंकि ये एक अलग तरह का मसला है, मैं हमेशा जैसे कुछ हद तक मैं बरखा जी से भी सहमत होती हूँ क्या इतने मसलों पे, क्योंकि आप ये समझिए शादी एक बहुत एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है जिसे दो महिला और पुरुष मिलकर एक सक्सेसफुल रिश्ते की बुनियाद रख के उसको चलाते हैं, घर परिवार को चलाते हैं। अगर लेकिन हमारे समाज में यही टैबू क्यों बना हुआ है कि अगर महिला की शादी हो गई तो वो जाके सास ससुर का खाना ही क्यों नहीं बनाएगी, उसी की यही ड्यूटी रह गई है, वो नौकरी भी करे, आप देखिए नौकरी भी करती है और उसको शाम को ही वेट करती है सास बैठ के कि बहू आएगी और मेरे लिए खाना बनाएगी और सर्व करेगी, तो ये टैबू अब हट जाना चाहिए। देखिए जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, अगर महिला पुरुष एक समान है, तो मैं कहती हूँ ये बिल्कुल सुप्रीम जो कोर्ट है, हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया बिल्कुल सही दिया है कि आप जिस तरह से अब बात बात देखिए मसला बहुत 20-22 साल 24 साल पुराना है और इस मसले से अगर वो एक अच्छी तरीके से साथ रहती तो इतना मसले से उसको इतने लंबा पीरियड नहीं निकलना पड़ता, तो बेहतर है वो एक सक्सेसफुल शादी करती, इंजॉय भी करती, घर परिवार बनाती, सब कुछ करती, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के लिए बराबर है, मैं हमेशा से कहती हूँ कि देखिए, हर व्यक्ति अपना अपना अधिकार की मांग करता है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, लेकिन अपने कर्तव्यों से हमेशा इति शर्ल कर लेता है। अरे भाई, तुम अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी प्रॉपर कीजिए, तो जब आप ड्यूटी और प्रॉपर करेंगी तो आपको अधिकार मिल जाएंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, ये दोनों के लिए मायने रखती है बातें। अब चूंकि ये मसला बात कर, अब मरखा जी ने तो पुरुष वर्ग की रख दी, मैं महिला की वर्ग की बात रखने पर बढ़ती हूँ कि यही टैबू क्यों है हमारे समाज में कि नहीं, रसोई संभालना सिर्फ एक महिला का ही हक है, रसोई में खाना बनाना ये है। पुरुष अपनी तोहिन क्यों मानता है रसोई में बराबर में हाथ बटाने? बहुत सारे पुरुष हाथ नहीं लगाते रसोई में, बहुत सारे पुरुष बराबर बात करते हैं। आप अगर चाइना में जाइए, देखिए वहां पे इतना अच्छा सिस्टम है, वहां महिलाएं पुरुषों के बराबर इतने भारी भारी काम करती हैं, पुरुष दिन में रात में एक दोनों अलग अलग शिफ्ट बांटी, अगर महिला काम कर रही है दिन में तो पुरुष रात में बच्चे संभालता है, ऐसे ऐसे दोनों मिलकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं कि महिला अगर बाहर है तो पुरुष घर संभालता है क्योंकि छोटा परिवार है, एक बच्चा। तो ये भारतीय समाज की जो सोच है कि महिला अगर रहेगी और महिला के लिए रसोई एक निर्धारित कर दी गई है, ये गलत बात है कि वो सास ससुर को भी पाले करे, नौकरी भी करके लाए, पैसे भी कमाए, बच्चे भी पाले और घर के बाहर के काम करें।
0: नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सही, आज आप ये जो तमाम बातें कह रही हैं ये आज की तारीख में बहुत अच्छी हैं, बहुत सही भी हैं, जिसको लेकर चर्चा हम करी है। लेकिन मनीषा जी, बड़ी बात ये है कि आप देखिए, शादी कब हुई थी? क्या 2002 में हमारे समाज में या फिर फैमिलीज में इस तरह की सोच आई थी कि काउंसलिंग जैसा भी कोई शब्द होता है, साइकोलॉजिस्ट भी कोई होता है जिसके पास जाके हम अपनी बात करें? क्योंकि उस दौर में अगर हम 2002 वाले पूरे एरा की बात करें, वहां तो यही होता था कि ठीक है, शादी हो गई तो महिला की जिम्मेदारी, प्रायोरिटी महिला की घर होनी चाहिए, भले ही वो वर्किंग है। यहां पर क्योंकि समय बदला, जमाना बदला, इतने साल बाद ये फैसला, आज की तारीख में दोनों मियां बीवी दोनों बराबर ही घर का सारा काम करते हैं, इक्वल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए कोर्ट ने आधार बनाया फैसले का।
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 2002 तक काउंसलिंग वगैरह तो सब कुछ चल रहा था, पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन इतनी ज्यादा अवेयरनेस देखिए नहीं थी और लोग भी इतने ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं थे कि अगर शादी हुई है और तभी घर का मसला है तो बाहर किसी और अनजान व्यक्ति के साथ में डिस्कस करना कितना हद तक सही है, कितना नहीं, पब्लिक हो जाएंगी चीजें, बातें बनेंगी और इस तरह के जो सोशल टैबूज होते हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत स्ट्रांगली रहते हैं, बहुत डीपली रहते हैं। और आज भी ऐसा है, आज भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि अब ये चीजें खत्म हो गई हैं, खत्म नहीं हुई हैं, हाँ कम हो गई हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो एक ऑफिशियल जो डिवोर्स है उनका, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के डेमोग्राफिक्स आप चेक करिएगा तो इंडिया में 1% भी शायद ऑफिशियल डिवोर्स 1% भी नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल सेपरेशन बहुत है। और ये केवल इसीलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक सोशल प्रेशर है और लोग चाहते नहीं है कि हाँ ये सब चीजें लोग बातें बनाएं और ये सब हो। और 2002 से लेके अब 2026 है तो इतने सालों में काफी परिवर्तन आया है, लेकिन स्टिल जो मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक वैसे ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, करना चाहते भी हैं, क्योंकि एक ये बहुत ही पवित्र एक ये रिश्ता है। लेकिन इसमें कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करते हैं तो वो उस तरह के रूल्स में थोड़े से चेंजेस आने चाहिए।
0: नहीं, लेकिन उसमें काफी बदलाव आया भी है। चलिए आगे माया जी और बरखा जी से बात करेंगे, लेकिन एक बार रेखा जी आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। 16 साल बाद तलाक का फैसला रद्द हो गया है, अब ये कहा जा रहा है कि 25 साल बाद पति पत्नी दोनों एक साथ रहें, कितना प्रैक्टिकल होगा ये दोनों के लिए? क्या हम ये माने, हालांकि कोर्ट ने फैसला तो सही सुना है, क्या हम ये माने कि अब दोनों में मैच्योरिटी आ गई होगी? और एक सबसे बड़ी बात ये कि कोर्ट ने इस आधार को ही कैंसिल कर दिया है कि शुरुआती दिनों में अगर आप में अनबन हुई है तो आप उसको आधार बनाकर तलाक ले लीजिए। ये एक, क्या ये फैसला एक तरीके से नजीर बनेगा? रेखा जी
2: देखिए, मैं यहाँ पर यही कह सकती हूँ कि एक पुराना एक लीगल कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपियर टू बी डन, मतलब न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय लगना भी चाहिए कि हुआ है। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पर एक और कानूनी बात जो कहूंगी, जो हम कोर्ट में जुमला कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर आपको बहुत समय के बाद के अंदर आपको कोई न्याय मिला तो क्या वो न्याय वाकई में अब आपके लिए कुछ मायने रखता है? तो अभी मैं बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से मैं अगर आपसे बात करूं इसके ऊपर, तो कोर्ट का जो फैसला है वो सर आंखों पर है, कोर्ट की बात को रिस्पेक्ट करते हैं। परंतु जो समय जो निकल गया, जो सिर्फ मुझे इस फैसले से थोड़ा सा जो मेरे मन के अंदर जो खटक रही है बात, मैं इस बात को मानती हूँ कि शुरू के सिर्फ फैसले जो शुरू की अनबन होती है वो एक आधार नहीं बनना चाहिए किसी शादी को तोड़ने के लिए, या किसी भी साइड को, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, कि उस बात के ऊपर तलाक ले ले, वो बहुत बचपने की और बहुत जल्दबाजी की बात होगी। और हर एक रिश्ते के अंदर टीयरिंग प्रॉब्लम्स आती है, दोनों को कोशिश करनी चाहिए। पर जितना जो समय निकल चुका है, आपने मुझे पूछा कि क्या कितना प्रैक्टिकल होगा उनके लिए रहने के लिए, मैच्योर तो जरूर हो गए होंगे। कहते हैं कि एक अगेन इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस लीड्स टू एंचांटमेंट, दूर दूर रहते शायद प्यार बढ़ा होगा, पर कई बार जब दूर दूर रहते तो बहुत दूरियां भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि दोनों को इतने सालों के अंदर अपना अपना जीवन, मतलब उस समय वो बहुत यंग थे, आज इतने सालों के बाद जो है अपनी अपनी सोच और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है।
0: लड़की की उम्र 23 साल थी उस वक्त, 2002 में लड़की की उम्र 23 साल थी,
2: तो अब वो इतने, अब वो मिडिल एज के हो गए हैं, दे आर नो लॉन्गर यंग, सो नाउ विल इट बी प्रैक्टिकली इजी फॉर देम टू लिव टुगेदर। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके अंदर बहुत बड़ी एडजस्टमेंट चाहिए होगी दोनों को।
0: रेखा जी एक चीज और
2: यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, माफ करिए बस इतना इतना सा कंप्लीट करना चाहूंगी कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो पावर है आर्टिकल 142 के अंदर, जो पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, वो हाई कोर्ट को नहीं है, और वो है कि जहां पर जब तलाक की बात होती है, कि इस केस के अंदर जरूर जो जो तलाक का जो केस फाइल किया था पति ने, वो ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रूएल्टी किया होगा कि वो मेरी माँ बाप को ध्यान नहीं रखती, खाना नहीं बनाती
0: वगैरह वगैरह, ये भी था बीच में,
2: तो है ना, तो इस तरह की चीजें कीजिए जिसको कहते हैं कि मेंटल क्रूएल्टी, तो मेंटल क्रूएल्टी के आधार के ऊपर करी, जो एक हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक ग्राउंड है जिसके ऊपर आप डाइवोर्स को क्लेम कर सकते हो,
0: ठीक है,
2: परंतु एक एक ग्राउंड ऐसा भी है जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, हमारे किसी भी कानून में नहीं है, वो है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। वो अभी तक हमारे कानून में नहीं है, वो एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है जहां पर अमेरिका के अंदर शादियों को इस बात पे खत्म रद्द कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं नो फॉल्ट, किसी की गलती नहीं है, ना तुम्हारी गलती है, ना पति की गलती है, ना पत्नी की गलती है। अब इतने सालों के बाद क्योंकि समय इतना निकल चुका है, तो इस शादी को ये कह के खत्म कर दिया जाता है कि इसमें कुछ बचाने लायक नहीं बचा है, और ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और इसीलिए कई सारे केसेस मेरे सामने मेरे एक्सपीरियंस के अंदर ऐसे आए हैं जहां पे इसी जैसे अब मुझे लगता है कि फर्ज करिए कि पति इस बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये तो अभी सिर्फ हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं,
0: हाँ।
2: अभी सुप्रीम कोर्ट बची है, अगर पति सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि जी इतना लंबा समय निकल गया और आज इतने लंबा समय के बाद में मेरी डाइवोर्स का जो जो रिलीफ था वो रद्द कर दिया गया, तो क्या प्रैक्टिकली अब मेरे को इसी पत्नी के साथ में रहना मेरे लिए शायद और भी ज्यादा मेंटल क्रूएल्टी मेरे ऊपर होगी,
0: ठीक है।
2: तो कोर्ट ऐसे केसेस के अंदर और दोनों तरह के फैसले हुए हैं,
0: हाँ।
2: कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 142 के अंदर पावर को एक्सरसाइज करते हुए शादियों को सेटिसाइड भी किया हुआ, ये कह के कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, हम ना तो कह रहे कि लोअर कोर्ट का फैसला सही था, ना हम कह रहे कि गलत था, हम इसको इस नए नई जो आधार है डाइवोर्स का, उस आधार के ऊपर हम डाइवोर्स ग्रांट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले भी आए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किया है और कहा है कि नहीं, इस केस में इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज नहीं है और मेंटल क्रूएल्टी नहीं है, पत्नी ने मेंटल क्रूएल्टी करी है, कितना भी समय निकल गया।
0: रेखा जी एक ब्रेक लेना है, ये बहुत अहम सवाल है कि इतने साल बाद कितना प्रैक्टिकल होगा कि दोनों साथ रह पाए, और आप अभी कह रहे हैं कि ऑप्शन अभी सुप्रीम कोर्ट का भी रहता है, तो ऐसे में एक और चीज जो आप सभी से समझना चाहेंगे, इसमें गुजारे भत्ते का प्रावधान कहाँ आता है, कितना आता है, यही से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake up. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
3: After multiple assassination attempts, they can't even get...
4: They're reliable.
5: Always when I need them.
2: To live sports action.
6: One-hand jam by LeBron on the break.
7: That's another three, Steph Curry.
2: And your favorite music.
8: Well, the dawn begins to crack.
2: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: का स्वागत है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और ये फैसला किस तरीके से बाकी दूसरे मामलों में नजीर बनेगा, इसी को लेकर बातचीत हो रही है। क्योंकि 25 साल बाद कोर्ट ने कहा है कि तलाक के जिस ग्राउंड को लेकर तलाक फाइल किया गया था वो आधार ही नहीं बनता, इसलिए दोनों को साथ रहने का फरमान सुनाया गया है। चर्चा हो रही है इस पर। हालांकि 16 साल तक तलाक का ये पूरा फैसला चला है, पूरा मामला कोर्ट में चला है, पहले फैमिली कोर्ट में फिर उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में। एक बार बरखा जी आपके पास आना चाहूंगी। अब कोर्ट ये कहती, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले रेखा जी ने इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है कि हालांकि ऑप्शन है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देखेगा, लेकिन अगर हम बॉम्बे हाई कोर्ट के इसी फैसले को देखें, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल हो पाएगा कि 25 साल बाद 24 साल दोनों एक दूसरे के सामने कोर्ट रूम में खड़े रहे और अब कोर्ट कहता है कि नहीं, ये आधार ही नहीं है तलाक का, इसलिए आप दोनों को साथ रहना है। अगर कोर्ट के इस फैसले को ये दोनों मानते हैं, पहले तो प्रैक्टिकल कितना पॉसिबल है कि ये दोनों साथ रह पाएंगे?
1: नो, मेरे पास ऐसे तमाम केसेस हैं, हजारों की संख्या में, जहां पर जब दूरियां बन जाती है नहीं रह पाते। लड़का सुप्रीम कोर्ट जाएगा और अगर नहीं जा पाएगा तो भी ये रह नहीं पाएंगे। उसके पास लीगल रेमेडीज हैं बहुत, लेकिन रह नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत दूरियां बढ़ चुकी होती हैं। और मैं एक बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगी, जो कि मैंने हजारों बार कही है, टू मच ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लॉज इज ब्रेकिंग द होल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। और कोर्ट में सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है, कुछ नहीं मिलता। मेरे पास इतने केसेस हैं जहां पर वो एक लॉयर से दूसरे लॉयर, दूसरे लॉयर से तीसरे, चौथे, पांचवे हॉप करते रहते हैं, कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता, कई तो मर जाते हैं। और तभी एनसीआरबी का डेटा जो है बहुत भयावह है, लेकिन वो डिस्कशन कभी और करेंगे। लेकिन थक हार करके जब उन्हें पता चलता है कि हमने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, एक समाज में हमारे को बैड नेम भी मिल गया, तो वो अपने आप को बड़ा अनसक्सेसफुल समझते हैं और ये समझते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। कई तो अपने, कई माँ बाप भी कोसना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि भाई बहन भी अलग हो जाते हैं जब इस तरीके का कोई मसला आता है। और जो छोटी बहनें होती हैं उनकी शादियों बहुत मुश्किल आ जाती है, चाहे वो लड़की वापस आ जाए घर में, चाहे लड़के का डिवोर्स हो। दोनों केसेस में जो छोटी लड़की होती है घर में, उसके लिए रिश्ते नहीं आते हैं, उस खानदान को बोला जाता है कि इसमें लड़की डाइवोर्सी है, इसमें शादी नहीं करेंगे हम, तो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
0: मैं भी आपसे इसका एक आपसे जवाब चाहूंगी, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, सोसाइटी में सबको पता होता है कि दोनों का केस कोर्ट में चल रहा है और उसके बाद कोर्ट ये फैसला दे दे, पहले तो क्या आपस की बात, चलो एक है कि पत्नी और पत्नी क्या वाकई दोनों रहेंगे, दूसरा फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, कितना प्रैक्टिकल होगा ये?
2: देखिए, प्रैक्टिकल डिसीजन पे अगर हम बात करें, मैं जैसे बरखा जी ने कहा केस बहुत होते हैं और हम लोग ये आए दिन केसेस देखते हैं, बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं कि जो कोर्ट से बाहर जाके सेटलमेंट हो जाता है और दोनों लोग साथ में भी रह जाते हैं और कोर्ट फिर बाद में एग्रीड कर देता है दोनों का साथ रहना भी। ये बहुत सारे केसेस में हुआ है क्योंकि उनका मेच्योरिटी लेवल या सारी चीजें या सामाजिक दबाव या परिवारों का दबाव इसमें बहुत बड़ा काम करता है, बहुत मायने रखता है परिवार को चलाने के लिए। लेकिन चूंकि अब 24-25 साल से अब ये लोग अलग रह रहे हैं, तो ये दोनों, कोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन दोनों की मानसिक जो पीड़ा है या मानसिक स्थिति है वो दोनों खुद समझ सकते हैं और दोनों खुद ही डिसाइड करेंगे कि उनके लिए रहना साथ बेहतर है या फिर आगे, जब 24 साल से लड़ाई लड़ेंगे आगे 10 साल और लड़नी है। तो ये मैं समझती हूँ कि ये दोनों को साथ में, ये फैसला इन दोनों के ऊपर छोड़ना चाहिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, कि इन दोनों की मानसिक पीड़ा को झेलते हुए लोग साथ रहना चाहेंगे या नहीं रहना चाहेंगे। देखिए, सच रहना होता तो अब तक रह लिए होते, हाई कोर्ट की जरूरत ही नहीं होती, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट ही नहीं जाता मसला, और अब नहीं रहना तो चाहे सुप्रीम कोर्ट चला जाए, कहीं चला जाए, दोनों मसले देखने वाली बात है। हम इस कपल की बात कर रहे हैं। और रही दूसरे मसले, मैंने कहा ना बहुत सारे मसले शुरू के, जो देखिए लड़का लड़की की शादी होती है, क्योंकि लड़का अपने परिवार में रहता है, लड़की वहां जाके एडजस्ट करती है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लमों में एडजस्टमेंट होती है। ये दोनों का मेच्योरिटी लेवल होता है कि उस सिचुएशन से कैसे निकले, ये सबकी शादियों में होता है। इवन मैं अपना भी एक्सपीरियंस रखू शादी के, इसलिए हर लड़की को नए परिवार में जाके सामंजस्य से बिठाना पड़ता है और वो उसके लिए थोड़ी स्थिति अलग होती है। और वो 2 साल अगर वो शादी निप जाती है तो वो ताम उम्र शादी निपती है और बहुत खुशहाल पूर्वक निपती है, लेकिन वो 2 साल का पीरियड जो होता है जिसके लिए फैमिली कोर्ट बने हैं, फैमिली काउंसिलिंग बनी है, जिसके लिए दोनों तरफ से बात उठी है बैठ के, अगर वो वहीं से बेटर चीजें समझ जाए तो समझ जाती है, वरना 24 साल सुप्रीम कोर्ट बोल दे, 10-34 साल बाद हाई कोर्ट भी जो भी बोले, कोई कुछ नहीं कर सकता इस मसले में। लेकिन अब इस टैबू से हमें बाहर आना चाहिएगा। हाँ। कि नहीं,
0: नहीं अब तो समय काफी बदल गया माया जी। अब देखिए आज की तारीख में, पहली बात तो लड़का लड़की, आज की तारीख में साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स की बहुत बड़ी भूमिका हो गई है।
2: नहीं अभी भी है, देखिए मैं अभी भी ऐसे बहुत सारे केसेस में और बहुत सारे परिवारों को जानती हूँ, बहु वर्किंग है, सास बैठती है, सुबह का मैं करूंगी, शाम का तुम आगे करना, ये आज भी है। मैं बहुत सारे परिवारों को दिखा दूंगी, हाँ ये अभी भी है, आज की डेट, करंट आज की डेट तो बताती हूँ कि अगर बहू वर्क करने जा रही है तो सुबह कहती है शायद सुबह का मैं संभाल लूं, बच्चे को शाम का तुम करना,
0: एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि वो आके करे। जी बर्खा जी जल्दी से, फिर मैं मनीषा जी के पास जाऊंगी।
1: बस नवजोत जी मैं एक सोल्यूशन बताना चाह रही थी, तब तक आपने बदल दिया। मैं ये कह रही हूँ कि एक सबसे बढ़िया सोल्यूशन है कि जो जजेस है ना, जो इतना जो अंतराल आ गया समय का, तो जजेस जो है वो ट्रेन होने चाहिए मैरिजेस को डील करने के लिए, ऐसे स्पेसिफाइड जजेस होते। अब जजेस कभी तो मैरिज वाले ये केसेस देख रहे होते, कभी क्रिमिनल, कभी सिविल, तो मैं चाहती हूँ कि ट्रेन जजेस जो,
0: चलिए इसको लेकर मैं रेखा जी से बात करूंगी बिल्कुल। और उन्होंने शुरू में रेखा जी ने कहा भी था कि आजकल ऐसे बहुत से फैसले आ रहे हैं जो वाकई एक नजीर बन रहे। जी जल्दी से माया जी बताइए।
2: मैं कहती अरे आप जज की बात करें, बेचारे एक दिल्ली के एक जज बेचारे चले गए फैमिली कोर्ट से, परिवार से परेशान हो गए, तो आप ये मत कीजिए। जज और वकील और सब रहते हैं, होते तो इंसान ही है हम, हमारी स्थितियां हमें पता है। जज अमन शर्मा
1: को मत, अभी अमन शर्मा जी पत्नी की प्रताड़ना से, मेंटल ट्रॉमा से मर गए। कल भी उनके पिताजी का फोन आया था मुझे कि मेरे बेटे के केस में कुछ नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नहीं ले रहा, विशा शर्मा वाले केस में सुओ मोटो ले लिया, बहुत अच्छा, लेकिन मेरे वाला बेटा उतना ही इम्पोर्टेंट था, उतना ही प्यारा था, मेरा बेटा सिर्फ 30 साल का था, वो बेचारा मर गया।
0: ठीक है,
1: लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैं तो चाहूंगी
0: मनीषा जी, मैं आती हूँ एक मिनट वापस से इसी मामले पर रहते हैं। मनीषा जी देखिए, सबकी राय यहाँ पर यही है कि अगर शुरू में काउंसलिंग कर दी जाती, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो शायद मामला 24 साल तक ना चलता। शायद ये भी होता कि बिल्कुल टोटली दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर देते और म्यूचुअली दोनों का ब्रेकअप हो जाता या तलाक हो जाता, या ये भी होता कि दोनों समझ जाते और आज की तारीख में दोनों साथ रहते। जो एक फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, कि एक बार अगर लड़की घर आ गई तो उसके बाद सोसाइटी में पता चलता है, परिवार में, और फिर उसके बाद मामला अगर कोर्ट पहुंच गया, अच्छा डिवोर्स का केस शुरू हो चुका है या फैमिली कोर्ट में चला गया, ये कितना ज्यादा प्रेशराइज करता है परिवार को?
3: काफी ज्यादा प्रेशराइज करता है डेफिनेटली। और यहाँ पे जो पॉइंट आपने बोला है कि इतने साल बाद अब आगे क्या होना चाहिए, जो सवाल आपने पूछा था, तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि पर्सनालिटीज का कुछ पता नहीं होता है। सो वो जो दो पर्सनालिटीज हैं और जो उनकी फैमिलीज हैं, सो सबसे पहले हम उन दो लोगों की अगर बात करें, तो वो ये डेफिनेटली डिसीजन उनका है। और इतने साल के बाद भी अगर ये ऐसा हो रहा है, तो वो दोनों आफ्टर ऑल चाहते क्यों हैं, वापस से इस शादी में आना क्यों चाहते हैं, तो यू नेवर नो कि वो उनका पर्पस क्या है, उनका इंटेंशन क्या है। तो कई बार ऐसे सरप्राइजेस मिलते हैं जो हमने सोचे भी नहीं होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ये दोनों का डिसीजन बेटर होगा, और परिवारों का जहां तक एक जो जनरल साइकोलॉजी होती है, वो परिवार मैक्सिमम परिवार ऐसे होते हैं जो लड़का और लड़की जो चाहते हैं उसको फेवर करते हैं, अनलेस कोई कुछ इस तरह का केस ना हो कि भाई जो आजकल डिफरेंट रिलीजन में शादी हो जाती है, या कुछ और वजह ना हो। तो अगर इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं है, अगर कुछ और रीजन नहीं है, सो डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट करती है। और वही जो मैंने पहली बात करी थी, फैमिली सिस्टम थ्योरी जो होती है, उसमें अगर एक मेंबर फैमिली का किसी भी तरह के डिस्ट्रेस से गुजर रहा है या किसी भी तरह की चैलेंजेस उसको आ रहे हैं, यहाँ पे तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, तो बाकी फैमिली मेंबर्स की ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको एडजस्ट कराने की। और उसको कुछ जो काउंसलिंग होती है, फर्स्ट काउंसलिंग हमारी घर में ही होनी चाहिए अगर फैमिली एक दूसरे के क्लोज है। और डेफिनेटली अब अगर ऐसा लग रहा है उन दोनों ही लड़का और लड़की को कि वो लोग कंफ्यूज्ड हैं, तो एक अगर अनबायस्ड ओपिनियन वो ले लेते हैं, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। एंड उनको क्यों वो वापस आना चाहते हैं और क्या वो आगे आने वाले 10 सालों में एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत
0: इम्पोर्टेंट है। अब रेखा जी आपके पास आऊंगी। देखिए दो चीजें, अब मान लीजिए कोर्ट ने तो कहा कि वो आधार नहीं बनता, इसलिए आप साथ रहिए, और जाहिर सी बात है कि दोनों का आपसी बातचीत होगी, ये दोनों आपस में तय करेंगे, और हो सकता है कि इसके बाद म्यूचुअली दोनों डिसाइड करें कि ठीक है हम नहीं रहते। अगर ऐसा होता है और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो कोर्ट ने यहां पर, क्योंकि देखिए गुजारा भत्ता नहीं फैमिली कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था इसलिए हाई कोर्ट में गए थे, बात गुजारा भत्ते की हो रही थी, तो इसमें उसका क्या प्रावधान फिर ऐसे में रहता है?
3: देखिए जो अगर लड़की ने 125 धारा 125 सीआरपीसी के अंदर भी अगर वो मेंटेनेंस का केस उसने फाइल किया है तो मुझे ये आपकी जो आपने जो बताए हैं फैक्ट्स उसे ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो गुजारा भत्ता उसने कौन से केस के अंदर मांगा था। उसने इसी तलाक के मुद्दे के अंदर मांगा था कि क्या उसने कोई सेपरेट केस फाइल किया था। तो जो गुजारा भत्ता जो अगर डाइवोर्स का केस खत्म हो गया है जैसे अब सेट असाइड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने तो पुराने जो ऑर्डर्स है वो भी सारे खत्म हो जाते हैं, तो जो गुजारा भत्ता है उसको वो तो पति की जिम्मेदारी बनती ही है कि गुजारा भत्ता तो देना ही पड़ेगा। मेंटेनेंस जो तीन बेसिक राइट्स है रोटी कपड़ा और मकान ये तो पति की जिम्मेदारी है। जो गुजारा भत्ता क्या अगर पत्नी ने कोई सेपरेट केस के अंदर किया था
0: उसी के लिए पत्नी ने कहा था कि जब वो फैमिली कोर्ट का फैसला आया तो पत्नी ने कहा था कि गुजारा भत्ता मिले जिसमें कोर्ट ने कहा कि नहीं मिल सकता है। उसके बाद जब वो हाईकोर्ट गई तो हाईकोर्ट ने उसमें फिर गुजारे भत्ते को एड ऑन किया था,
3: एड ऑन कर दिया। तो जो गुजारा भत्ता अगर कोर्ट ने मेंटेन किया है कि उसको देना है पति को तो अगर जब उनका डाइवोर्स भी सेट असाइड हो गया तो जो मेंटेनेंस का प्रावधान है वो तो बरकरार रहेगा, वो ऑर्डर सेट असाइड नहीं हुआ है। जब तक मेंटेनेंस का ऑर्डर सेट असाइड नहीं होता तो वो ऑर्डर बरकरार रहेगा और पति को उस ऑर्डर को मानना पड़ेगा, उसको अपना चाहे वो पत्नी उसके साथ रहे या ना रहे। पर यहाँ पर मैं नवजोत जी एक बात जरूर कहना चाहूंगी जो बाकी पैनलिस्ट को भी सुना और उन्हीं बात को आगे रखते हुए जो अब मैं इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि ये जो आज बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला है नो डाउट ये बहुत अच्छी बात है कि भाई हर शादी के अंदर टीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, समय देना चाहिए और इसीलिए शायद हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये प्रावधान है सेक्शन 14 के अंदर कि आप शादी के एक साल के अंदर अंदर आप केस डाइवोर्स का फाइल भी नहीं करता कर सकते, आपको एक साल रुकना ही पड़ेगा जिससे आप देख सके कि क्या आप दोनों की एडजस्टमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती। परंतु जो इस पर्टिकुलर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को जरूर मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, कोर्ट का फैसला है सर माथे के ऊपर जब तक वो सुप्रीम कोर्ट से सेटिसफाइड ना हो जाए, परंतु जो काउंसलिंग की आपने अभी बात करी थी काउंसलिंग तो हर स्टेज के ऊपर होती है, लोअर कोर्ट के अंदर हुई या ना हुई 2002 के अंदर, आज हाईकोर्ट के अंदर भी है। मुझे सिर्फ अपने एक मुझे बहुत कौतूहल है, बहुत क्यूरियोसिटी है इस बात के यहाँ पर कि क्या बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों पार्टीज की अब भी 2026 के अंदर जब ये फैसला आया है क्या कोर्ट ने एक एकेडमिक एक्सरसाइज तो जरूर कर दी कि डाइवोर्स के ऑर्डर को सेट असाइड कर दी और ये कहा कि भाई शुरू के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं ये डाइवोर्स लेने का कोई आधार नहीं बनता। पर क्या कोर्ट ने, और मुझे लगता है जरूर किया होगा विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू बॉम्बे हाईकोर्ट, कोर्ट ने ये जरूर पूछा होगा कि भाई चलो अगर हम आज इस ऑर्डर को सेट असाइड भी कर देते हैं फर्ज करिए तो आज दोनों पार्टी से बचा क्या है रिश्ते के अंदर? कोई भी कोर्ट दिलों को नहीं जोड़ सकती है। आज हुआ क्या है, डाइवोर्स का ऑर्डर सेट असाइड हो गया, यानी कि कानूनी तौर के ऊपर वो दोनों पति पत्नी हैं।
0: हाँ।
3: पर क्या पति पत्नी और कोई कोर्ट ये भी नहीं बोल सकती
0: वो एक दूसरे का सम्मान उस तरीके से कर पाएंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल जल्दी से, वक्त बहुत कम है, कोर्ट के इस फैसले के बाद बरखा जी आप ही से शुरू करूंगी, क्या समान साझेदारी की सोच बढ़ेगी पति पत्नी में और परिवारों में?
1: देखिए सबसे पहले आपको बता दूं इस केस में भी मेंटेनेंस मिली थी लड़की को, वाइफ को 20,000। अब इस फैसला हो या दूसरे कोई भी फैसले हो मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूं और बताती भी हूं सबको कि पहले तो शादी सोच समझ के करिए, अगर कर ली है आपने तो एडजस्ट करिए, हर हालत में एडजस्ट करने की शुरुआत में दिक्कत आती है और कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर रखेंगे तो सब कुछ सही है,
0: ठीक है माया जी,
1: अच्छा खूबसूरत रिश्ता है। और अगर नहीं हो
0: बरखा जी, वक्त की कमी है, सबसे एक एक रिएक्शन लेना है। माया जी, समान साझेदारी की सोच बढ़ेगी क्या?
2: या बिल्कुल, मैं कहती हूँ शादी एक बहुत खूबसूरत बंधन है, हर व्यक्ति को शादी करना चाहिए, बरखा जी से डिफर इस बात पे, हर व्यक्ति को शादी करना चाहिए और आपसी समन्वय और प्यार के साथ इसे आगे ले जाना चाहिए, हम सब इसका एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ी बात देखिए, बात अधिकारों की अगर करते हैं तो आपको अपनी ड्यूटीज पूरी करनी चाहिए, चाहे वो पति के प्रति हो, उसके परिवार के प्रति हो,
0: मनीषा जी
2: की हो, तो कहने का मतलब अगर आप
0: मनीषा जी का एक रिएक्शन जल्दी से
3: जी। सो मैं ये कहूंगी शादी तब करनी चाहिए जब आप फाइनेंशियली एंड इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं, मैच्योर,
0: ठीक है,
3: वरना आप शादी के लिए प्लीज।
0: चलिए इसी नोट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket.
5: We're also charmed by the Champions League. Fanatical about the FA Cup. And rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sport's the brassiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as it can. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: धरती से आकाश तक भारत की बढ़ रही ताकत, देश में ही तैयार सेना के मॉडर्न हथियार, आत्मनिर्भर भारत का गोल्डन चैप्टर। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अब कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इसमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हैरान कर देंगे तो कुछ आपको भावुक भी कर सकते हैं।
6: जिंदगी में खुश रहने के लिए कोई वजह जरूरी नहीं होती। ये नन्हा बच्चा स्टील के बर्तन की थाप पर मासूमियत से झूमता नजर आ रहा है। उसकी मुस्कान और छोटे छोटे कदम दिल को खुशी से भर देते हैं। सच में बचपन की यही सादगी जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। ये महिला नारी शक्ति की सशक्त मिसाल है। एक तरफ भारी कैमरा संभालते हुए वो शादी की फोटोग्राफी कर रही है तो दूसरी तरफ अपनी छोटी बच्ची का भी ध्यान रख रही है। माँ की ममता से बच्चा परे ना हो, इसलिए ये साहस सिर्फ माँ ही कर सकती है। ये नज़ारा दिखाता है कि महिलाएं जिम्मेदारी के साथ अपने सपनों को भी बखूबी पूरा कर सकती हैं। दोस्ती की ये अनोखी मिसाल दिल को छू लेती है। एक बच्चा अपने खाने को एक तोते के साथ शेयर कर रहा है और दोनों आराम के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ये मासूम दोस्ती इंसानों और प्रकृति के बीच प्यार और अपनापन दिखाती है। चिड़िया हमारी बचपन की साथी हुआ करती थी, लेकिन आज इन्हें देख पाना दुर्लभ हो गया है। ये नज़ारा बचपन की यादें ताज़ा कर देता है, जब हम चिड़ियों को नहाते हुए देखकर मौसम बदलने की उम्मीद करते थे। आज वही मासूम पल बहुत याद आते हैं। ये छोटी बच्ची अपनी मासूमियत और एनर्जी से दिल जीत रही है। दो चोटियों में सजी ये नन्ही परी मस्ती में झूमते हुए अपने हर स्टेप को बेहद क्यूट अंदाज में कर रही है। उसकी खुशी और नटखटपन देखने वालों का मन खुश कर देती है।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होगी। खबरें

0: पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: आईपीएल का सबसे बड़ा धुरंधर। वैभव के बल्ले ने मचाया बवंडर। उम्र 15 साल बना गेंदबाजों का काल। सिक्सर का बेमिसाल बेबी बॉस। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
2: It's your boy,
1: just
2: Jay-Z.
1: Search classic hip-hop, or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: Hey, it's Harry Douglas for Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
4: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
3: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
4: They score!
3: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: Sage University, transforming your passion into profession.
9: दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चली तेज हवाओं से गिरा पारा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। राजस्थान में रेतीले तूफान का बवंडर, श्रीगंगानगर में दिन में हुआ अंधेरा, बवंडर के बाद हुई बारिश से तापमान में आई 8 डिग्री की गिरावट। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को मिली 538 नए अग्निवीरों की ताकत, 24 महीने के कठोर प्रशिक्षण के बाद 7वें बैच ने ली शपथ, लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर में पासिंग आउट करे। कांचीपुरम के वरदराज पेरुमल मंदिर से निकाली गई भगवान की शानदार शोभा यात्रा, वैकासी ब्रह्मोत्सवम के अवसर पर भव्य आयोजन, जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल। नागपुर में वन संपदा को बचाने की अनोखी मुहिम, दुर्लभ पेड़ों की प्रजातियों के लिए बनाया गया सीड बैंक, लोगों को किया जा रहा है जागरूक।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी

0: ताकत में बेस्ट, तकनीक में श्रेष्ठ, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार, हिंदुस्तान बना रहा है स्वदेशी हथियार।
1: जो देश अपने हथियार खुद बनाता है, वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है।
0: आज भारत तोप की गोली से लेकर मिसाइल तक और फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक सब कुछ खुद ही तैयार कर रहा है। एक वक्त था जब भारत अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपनी ताकत को समझा, उसे जाना और खुद आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो अपने यहाँ ही बना रहा है। कई देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत ही भारत ने अपने यहाँ ही कई रक्षा उपकरणों को बनाना शुरू किया है। नतीजा ये है कि आज की डेट में भारत न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि दूसरे देशों का निर्यातक भी बन रहा है। डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
1: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
0: हर दिन नए हथियारों की चमक दुश्मनों को भयभीत कर रही है। भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जो दुश्मन की नापाक हरकतों का माकूल जवाब दे सके।
1: आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं, दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। साथियों, इसका एक और लाभ सीमा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह बहुत ही कठिन है, जटिल है, टफ है। हर जगह सैनिकों की तैनाती करना यह कोई आसान काम नहीं होता। मैं प्रत्यक्ष से महसूस कर रहा हूं। और ऐसे में ऑटोमेटेड निगरानी सिस्टम, रोबोटिक वाहन और सेंसर दिन रात सीमा की निगरानी कर सकते हैं, ऐसा सभी अब स्वीकार करने लगे हैं। इससे सुरक्षा भी बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उन पर दबाव भी कम रहता है।
0: म्यूनिशन और ऑटोमेटेड सिस्टम में भारत अगुआ बनकर उभरे, इसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है।
1: भविष्य के युद्धों में सबसे बड़ा अंतर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पास सैनिकों की संख्या कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन और ऑटोमेशन की दृष्टि से कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ युद्ध की आवश्यकता नहीं, बल्कि शांति, विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। रक्षा क्षेत्र में यदि हम अभी तक दूसरों पर निर्भर रहते तो यकीन मानिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे डिफेंस सेक्टर और हमारे फाइनेंस सेक्टर को होता। लेकिन अब क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची, खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में, तो यही वजह है कि खासतौर पर तकनीक के मामले में और रक्षा तकनीक के मामले में आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है। 23 मई को महाराष्ट्र के शिरडी में एक बेहद आधुनिक गोला बारूद निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया, जिसमें सालाना 5,00,000 आर्टिलरी शेल्स तैयार किए जाएंगे। साथ ही भारत के पहले 300 किलोमीटर वाले सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम को भी हरी झंडी दिखाई गई। सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 2 रेंज वेरिएंट्स में डिजाइन किया गया है। पहला वेरिएंट 150 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों तक हमला कर सकता है और दूसरा लंबी दूरी वाला वेरिएंट 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र की खरीद का ऑर्डर भी दे दिया है।
2: सूर्यास्त्र भारत की सेनाओं को एक ऐसा जबरदस्त वेपन और फोर्स मल्टीप्लायर मिलने वाला है जो वाकई में दुश्मन की कमर तोड़ने में कामयाब होगा, क्योंकि इसका पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता है कि 5 मीटर के अंदर लिखा हो लेकिन 2 मीटर के रिजल्ट दिए गए 300 किलोमीटर दूर। आज समझिए कि जब वो हमला करने में सक्षम है दुनिया के कमांड सेंटर पर, जहाँ पे उनके शीर्ष अधिकारी बैठे होते हैं, प्लानिंग चल रही है, वहाँ पर हमले के पहले हमारा हमला होता है, उनकी सारी प्लानिंग ध्वस्त हो जाती है। कम्युनिकेशन सिस्टम पर जहाँ से बातचीत होती है उसको ख़त्म कर दें, रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक बेस, जहाँ से उनके हथियारों का भंडारण है, अम्यूनिशन का भंडारण है, तेल है, पिन पॉइंट हमला करने में सक्षम है।
0: सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम में प्रिसिजन गाइडेड रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये पारंपरिक हथियारों की तरह इधर उधर नहीं गिरते बल्कि बिल्कुल उसी जगह पर प्रहार करते हैं जहां इन्हें भेजा गया, यानी निशाना एकदम अचूक। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में 150 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल महज 1.5 मीटर है, वहीं 300 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी 2 मीटर है। इसका मतलब ये है कि रॉकेट अपने टारगेट से औसतन 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर गिरता है, जो युद्ध में बहुत बड़ी ताकत है।
2: सूर्यास्त्र देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी का बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। इससे 122 mm, 306 mm, 370 mm के रॉकेट फायर किए जा सकते हैं, साथ साथ में कामिकाजी ड्रोन भी फायर किया जा सकता है। 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी और तकरीबन 5 मीटर कहा जाता है, लेकिन इससे बेहतर रिजल्ट्स इसके मिले 2 मीटर का सर्कुलर एरर पे, यानी कि 2 मीटर के अंदर अंदर ये फायर करने में सक्षम है। ये इसका प्रिसीजन है, ये इसकी एक्यूरेसी है। क्या फायदा होगा इसका? यह होगा कि दुश्मन के कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक बेस, उनकी गन पोजीशन, एडी सिस्टम, रडार स्टेशन और जहाँ पे उनकी रॉकेट सिस्टम है, जहाँ सब पर भी उनका जो एक स्ट्रेटजिक टारगेट्स हैं, उनको हम पिन पॉइंट हमला करने में ये सक्षम है।
0: भारतीय सेना को अब लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाले रॉकेट्स मिलेंगे, जिससे दुश्मन के ठिकानों जैसे कि आर्टिलरी पोजीशंस, कमांड सेंटर्स और दूसरे अहम टारगेट्स को सुरक्षित दूरी से तबाह किया जा सकेगा।

सूर्यास की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मल्टी बैरल क्षमता, जिसमें अलग अलग तकनीक के हथियार एक साथ लगाए जा सकते हैं और दागे भी जा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि निशाना भी सटीक और लॉजिस्टिक का खर्च भी बहुत कम। सूर्यास के अलग अलग पॉड्स को मिशन के हिसाब से बदला जा सकता है। 370 mm कैलिबर की प्रेडेटर हॉक गाइडेड रॉकेट सूर्यास सिस्टम का सबसे घातक हथियार है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। सूर्यास सिस्टम का एक और घातक हथियार है एक्स्ट्रा रॉकेट। 306 mm कैलिबर का ये गाइडेड रॉकेट 150 किलोमीटर तक दुश्मन के बंकरों और कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकता है। सूर्यास सिस्टम से 122 mm और 160 mm कैलिबर के बेहद किफायती एक्यूलर रॉकेट्स दागे जा सकते हैं, जो 40 से 100 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। सूर्यास सिस्टम से स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन भी दागे जा सकते हैं, जो हवा में रहकर दुश्मन की खोज करते हैं और सटीक हमला करते हैं। सूर्यास रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागी जाने वाली प्रेडेटर हॉक रॉकेट्स में GPS INS सेंसर फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये तकनीक प्रेडेटर हॉक रॉकेट को बिना किसी भारी मदद के बेहद खराब मौसम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के बीच भी सटीक निशाना लगाने की क्षमता देती है।

0: देखा जाए तो प्रेडेटर हॉक सूर्य अस्त्र का सबसे खतरनाक रॉकेट है। 300 किलोमीटर तक जाता है, 370 mm है और 140 से 200 किलोग्राम तक का ये एक्सप्लोसिव ले जा सकता है और छत के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर, बंकर्स के ऊपर बहुत इफेक्टिव है। तोड़ के अंदर तक उनको तहस नहस कर सकता है। सेल्फ गाइडेंस है, गाइडेंस बड़ी अच्छी है और पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है, जैसा कि 5 मीटर का बताया जाता है, लेकिन 2 मीटर की हमको इसमें एक्यूरेसी मिली है। और शूट एंड स्कूट का इसका फैसिलिटी है कि फायर करे उसके बाद जगह बदली कर सकता है।
1: हॉक रॉकेट सुपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है, जबकि ये 140 किलोग्राम का भारी वॉरहेड लेकर अपने टारगेट से टकराता है तो भारी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। इस ऊर्जा के कारण बिना विस्फोट हुए भी ये रॉकेट सिर्फ अपनी रफ्तार और वजन के दम पर कंक्रीट की कई फीट मोटी दीवारों को मलबे में तब्दील कर सकता है। सूर्यास्त्र की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक पारंपरिक क्रूज और एक बैलिस्टिक मिसाइल के 15% खर्चे से भी सस्ता है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि युद्ध के क्षेत्र में हमें भारी भरकम खर्च उठाने की जरूरत नहीं है। हम मल्टीपल रॉकेट्स दुश्मन पर दाग सकते हैं। आधुनिक युद्ध में आर्टिलरी की भूमिका निर्णायक होती है और सूर्यास्त्र शूट एंड स्कूट क्षमता के साथ दुश्मन के काउंटर अटैक से बचते हुए तेज हमला करने में सक्षम है। इसमें हाई मोबिलिटी व्हीकल भी लगाया गया है, जिससे ये बहुत तेजी से जगह बदल सकता है। सूर्यास्त्र को 6x6 भारी ट्रकों पर माउंट किया गया है। हमला करने के बाद ये सिस्टम फौरन अपना लोकेशन बदलने में सक्षम है, जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। जानते हैं कि भारत सरकार ने किस तरह के चेंजेस किए हैं, जिस वजह से 5000 तरह के उपकरण भारत में ही बनाए जा रहे हैं। दरअसल अभी अगर बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट पार्टनरशिप 20-30% है, जिसे बढ़ाकर सरकार 50% तक करना चाह रही है। इसको लेकर विचार हो रहा है। मोदी सरकार ने FDI, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जैसे बड़े सुधार किए हैं। सूर्यास्त्र भारत की आर्टिलरी ताकत में काफी इजाफा करेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के पास जो पिनाका मौजूद है उसमें और सूर्यास्त्र में क्या अंतर है? तो सबसे पहले दोनों रॉकेट सिस्टम की ताकत और खासियत जान लीजिए। सिस्टम की बात करें तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च है, जो सिर्फ रॉकेट लॉन्चिंग के लिए ही है। सूर्यास्त्र यूनिवर्सल लॉन्चर है, जो रॉकेट और मिसाइल दोनों दाग सकता है। पिनाका में कैलिबर फिक्स है और इसे सिर्फ 214 mm रॉकेट से ही दागा जा सकता है। सूर्यास्त्र मल्टी कैलिबर है, जो 122 mm, 306 mm, 370 mm के वेपन्स दाग सकता है। रेंज की बात की जाए तो पिनाका MK1 40 किलोमीटर और पिनाका एक्सटेंडेड रेंज 75 से 90 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। वहीं सूर्यास्त्र की रेंज 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है। पॉड रीलोड सिस्टम की बात करें तो पिनाका के रीलोडिंग में करीब 4-5 मिनट का समय लगता है। वहीं सूर्यास्त्र में जो पॉड सिस्टम लगा है उसे रीलोड करने में 10 मिनट का वक्त लगता है।
0: पिनाका और सूर्यास्त्र में फर्क ये है कि पिनाका में एक साथ बहुत सारे रॉकेट फायर होते हैं, 6-6 रॉकेट यानी 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ गिरते हैं एक इलाके में, और वो एक एरिया वेपन के तौर पे, यानी कि 214 mm के रॉकेट हैं, एक ही कैलिबर के होंगे और वो एक जगह जाके पूरे इलाके को सैचुरेट कर देंगे, भस्म कर देंगे। जबकि सूर्य अस्त्र में अलग अलग कैलिबर के रॉकेट फायर हो सकते हैं, 122 mm, 306 mm या 370 mm, 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज होती है। और ये फर्क ये कि पिन पॉइंट अटैक करता ही है, एक रॉकेट जाएगा वहाँ पिन पॉइंट हमला करेगा, तो दोनों के टारगेट अलग हैं।
1: भारतीय सेना सूर्यास्त्र सिस्टम को उसकी 300 किलोमीटर की लंबी रेंज और डीप स्ट्राइक क्षमता के कारण LAC और LOC के अत्यंत संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात कर सकती है। इसका मेन मकसद चीन और पाकिस्तान की सेना के रसद आपूर्ति करने वाले रास्तों, एयरबेस और कमांड सेंटर्स को अपने तोपखाने की जद में लाना है। रॉकेट का ताकतवर होना कई मायनों में सेना की युद्ध क्षमता तो नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा, जो काम फाइटर जेट किया करते थे और जिन कामों में मिसाइल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उसी काम को अब सूर्यास्त्र जैसा सिस्टम आसानी से कर देगा। पारंपरिक तौर पर अगर देखा जाए तो अगर दुश्मन 300 किलोमीटर दूरी पर बैठा है तो भारत को अपने लड़ाकू विमानों को मैदान में उतारना पड़ता है, लेकिन सूर्यास्त के आने के बाद न तो हम अपने पायलट्स की जान जोखिम में डालेंगे और न ही दुश्मन की सरहद में जाने की जरूरत होगी, बल्कि भारत अपनी सरहद पर ही बैठे दुश्मन का काम तमाम कर सकता है।
2: पहले सीमा से 150 से 300 किलोमीटर दूरी पर मौजूद दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार या रसद डिपो को तबाह करने के लिए वायुसेना के सुखोई विमानों को उड़ान भरनी पड़ती थी। वहीं अब इस काम को जमीन पर तैनात आर्मी के सूर्यास्त रेजिमेंट अपने प्रेडेटर हॉक रॉकेट से मिनटों में पूरा कर पाएंगे। इससे महंगे लड़ाकू विमानों और जांबाज पायलटों को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में भेजने का जोखिम भी काफी हद तक कम हो जाएगा।
1: सूर्यास्त की तैनाती पारंपरिक तौर पर सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस मिसाइल के वर्कलोड को काफी हद तक कम कर देगी। अब वो किस तरीके से, वो भी आपको समझाते हैं। सीधी सी बात है कि 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को अगर निशाने पर लाना हो तो उसके लिए सूर्यास्त ही काफी होगा। यानी अगर देखा जाए तो रण क्षेत्र में सूर्यास्त सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की जगह ले सकता है।
2: सूर्यास्त 300 किलोमीटर की दूरी तक ब्रह्मोस जैसी अचूक सटीकता प्रदान करता है, इसीलिए सामान्य और कम सुरक्षा वाले लक्ष्यों जैसे कि आतंकी कैंप, रसद डिपों के लिए ब्रह्मोस को बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। ये काम सूर्यास्त आसानी से कर देगा। ब्रह्मोस मिसाइल को अब सिर्फ अति संवेदनशील और अत्यधिक बख्तरबंद जैसे दुश्मन के युद्धपोत या परमाणु बंकर जैसे लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा। ब्रह्मोस ले जाने वाले सुखोई 30 MKI विमानों का वजन और रखरखाव का दबाव कम होने से वायुसेना इन विमानों का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में कर पाएगी। सूर्यास्त वायुसेना का विकल्प नहीं बल्कि ये थल सेना को आत्मनिर्भर बनाकर वायुसेना की कीमती हथियारों और विमानों को बड़े और अधिक रणनीतिक युद्धों के लिए रीस्टॉक करने का मौका देता है।
0: ब्रह्मोस जैसा महंगा मिसाइल एक स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के इस्तेमाल किया जा सके, हालांकि तो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट टारगेट है वहाँ पर सूर्यास्त का इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है। और तीसरी बात यह कि सुखोई को भी बचत होगी, एयरफोर्स को जो 300 किलोमीटर दूर टारगेट होते थे उनके लिए हवा में जाके मिसाइल फायर करनी पड़ती थी, वो बच जाएगा। आप ज़मीन से फायर करोगे उनके टारगेट को बर्बाद कर दोगे, यानी कि हम अपने जो एयरक्राफ्ट हैं सुखोई है इनको एक्सपोज नहीं करेंगे, उनका इस्तेमाल और स्ट्रेटजिक टारगेट के लिए और बड़े टारगेट्स के लिए किया जा सकता है। तो यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर है कि वो हथियार बने रहेंगे, वो अपने टारगेट्स करेंगे, बाकी टारगेट्स को सूर्यास्त एंगेज करेगा, अपनी जमीन पर रहते रहते दुश्मन को नेस्ता नाबूद करेगा।
1: आज देश में सिर्फ हथियार ही नहीं बनाए जा रहे बल्कि यहाँ उस भरोसे को भी मजबूत किया जा रहा है जिसके दम पर सेना वीरता का नया इतिहास लिख रही है।

0: अब हम सिर्फ टैंक, तोप, मिसाइल या फाइटर जेट्स ही नहीं बनाते, हम बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, जिसका सर्वोच्च संकल्प है राष्ट्र रक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना।
1: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
0: रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा और विदेश से हथियार और उपकरण के आयात को कम कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड मिशन पर आगे बढ़ रहा है।

0: हिंदुस्तान अब अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं, भारत में ही तरह तरह की मिसाइलें, फाइटर जेट्स और यहां तक कि छोटे कलपुर्जे तक बनाए जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत रक्षा के क्षेत्र में खुद स्टैंड कर चुका है और ये दुनिया भी भारत का लोहा मान रही है।
1: भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में लंबी छलांग लगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2023 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वो है रक्षा।
2: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
1: मेक इन इंडिया मिशन की वो तैयारी है जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है और भारत के लिए है।
0: स्क्रू से लेकर सिस्टम और सॉफ्टवेयर तक भारत आज की तारीख में ये सब कुछ अपने आप बना रहा है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि भारत ये सब कुछ न सिर्फ अपने लिए बना रहा है बल्कि 80 से ज्यादा देशों को दे भी रहा है। और ये तमाम वो देश हैं जो रक्षा के मामले में भारत पर भरोसा करते हैं।
1: सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन एक वक्त था जब 65% से 70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 35% सामान ही आयात होता है। इसका मुख्य कारण भारत की अपनी रक्षा प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने की बढ़ती क्षमता है।
0: भारत सरकार की तरफ से पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट तैयार की गई है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि स्वदेशीकरण को ज्यादा बढ़ावा देना। यानी खास तौर पर रक्षा के क्षेत्र में हम किसी दूसरे मुल्क पर निर्भर ना रहें, छोटे से कलपुर्जे से लेकर बड़ी से बड़ी मिसाइल तक बनाने में भारत खुद अपनी धरती का और यहाँ के साजो सामान का ही इस्तेमाल करे।
1: अब तक रक्षा मंत्रालय ऐसी 5 लिस्ट जारी कर चुका है और इसमें तकरीबन 5,000 आइटम्स के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी। ये सभी डिफेंस, पीएसयू और निजी स्वदेशी कंपनियों से खरीदे जा रहे हैं। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट 4,666 आइटम्स की 5 लिस्ट जारी की गई है, जिन्हें सिर्फ स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। नेगेटिव लिस्ट, इसमें 310 उपकरणों जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, तोप के आयात पर 2020 से 27 तक रोक लगाई गई है। डैप 2020 यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में खरीद को प्राथमिकता दी गई, यानी कि स्वदेशी डिजाइन और प्रोडक्शन को बढ़ावा। सृजन पोर्टल, इसमें 19,509 पहले आयातित आइटम्स को स्वदेशी बनाने के लिए लिस्ट किया गया। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा, इसमें टाटा, L&T, भारत फोर्स और MSME को बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। FDI में छूट, डिफेंस में 74% तक FDI ऑटोमेटिक रूट से और 100% सरकार की मंजूरी से होगी। अगला है R&D को बढ़ावा, इसमें IDEX और TDF स्कीम्स से स्टार्टअप्स और MSMEs को फंडिंग दी जा रही है। साल 2025 में TDF के लिए 60 करोड़ रुपए और IDEX प्राइम के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए।
3: हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर ना सिर्फ सुरक्षा के मामले में डिफेंस प्रोडक्शन में होना पड़ेगा, तमाम ऐसी विधाएं हैं उसमें हर एक में आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका कि प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कट कॉल दिया हुआ है। जहां तक डिफेंस का सवाल है, देखिए हिंदुस्तान की सुरक्षा में को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आप ऐसे समय में दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें जब आपको उस इक्विपमेंट की, उस हथियार की, उस गोला बारूद की, उस एमनिशन की जरूरत है। लिहाजा आपको स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा और हिंदुस्तान देखिए धीरे धीरे इसके तरफ अग्रसर हो रहा है।
1: प्राइवेट कंपनियों को भी सरकार की तरफ से सहूलियतें दी गई हैं। सरकार ने भारत की निजी हथियार निर्माता कंपनियों के लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है कि बड़ी तेजी से ये आगे बढ़ने लगे। इस पूरी बढ़ोतरी में हिस्सेदारी की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2024-25 में कुल रक्षा उत्पादन में DPSU यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान करीब 77% रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 23% रहा। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बढ़ी है। जो वित्त वर्ष 2023-24 में 21% थी, वो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23% हो गई।
3: सबसे पहले मैं टच करूंगा पॉजिटिव इंडियनाइजेशन। इसके तहत वो सारी चीजें हैं जो कि डिफेंस में जिसकी रिक्वायरमेंट है और जिसको हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है, चाहे वो PSUs हो, DPSUs हो, प्राइवेट सेक्टर हो। अब हम नेगेटिव लिस्ट की बात करते हैं। टाइम टू टाइम ये लिस्ट रिवाइज की जाती है। नेगेटिव लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें कि उन आइटम को बैन किया गया है जिसका हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ये सारे के सारे आइटम हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लिहाजा ये नेगेटिव लिस्ट में दिन रात इजाफा हो रहा है और इन आइटम को हम अब बाहर से इंपोर्ट करना डिफेंस सेक्टर में बंद करेंगे। सृजन पोर्टल देखिए एक ऐसा पोर्टल है जिसमें तमाम प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक सेक्टर की यूनिट इसमें लॉग इन कर सकते हैं, अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि तमाम आगे आने वाले दिनों में जो हमारे डिफेंस की प्रोक्योरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, किसका टेंडर निकलने वाला है, क्या उसका क्वालिफिकेशन क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों की उसमें लिस्टिंग होती है।
1: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अपने डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा तवज्जो दे रहा है और इसी के तहत देश में डिफेंस कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में सिर्फ दो ही कॉरिडोर हैं। रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match, from today's hits
6: Somebody save me
5: to timeless favorites
6: and, life is like a song.
5: And new discoveries.
6: So much more than a history. Wake up.
5: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: You and I, so much more.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: डिफेंस कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर है जहां न सिर्फ रक्षा क्षेत्र के लिए हथियार बनाए जाते हैं बल्कि तमाम रिसर्च भी यहां पर की जाती हैं, और ये भारत के लिए बहुत अहम है। यहीं से हमारी सेनाओं को तमाम हथियारों की सप्लाई भी होती है, उनकी जरूरत के हर सामान का ख्याल यहां पर रखा जाता है। डिफेंस कॉरिडोर का मकसद है कि भारत अब हथियार, मिसाइल, लड़ाकू विमान और उनके जरूरी पार्ट्स विदेशों से न मंगाए बल्कि खुद बनाए और दूसरे देशों को भी निर्यात करे। इनमें सबसे खास है टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट, जिसे दुनिया के सबसे बड़े टाइटेनियम रिमेल्टिंग यूनिट में से एक बताया जा रहा है, जो भारत के उत्तर प्रदेश में है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदा क्या होगा, तो आपको बता दें कि टाइटेनियम और सुपर एलॉयज का इस्तेमाल लड़ाकू विमानों के इंजन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, ड्रोन और यहां तक कि नेवी के जहाजों और पनडुब्बियों में होता है। ये मटेरियल हल्के होते हैं मगर बेहद मजबूत और हीट रेजिस्टिंग भी होते हैं। इस प्लांट से भारत तेजस, AMCA, नए जेट इंजन प्रोजेक्ट्स, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों और एडवांस ड्रोन्स के लिए जरूरी पार्ट्स खुद ही बनाएगा।
3: प्राइवेट प्लेयर भी इसमें आ सकते हैं, जिसमें जो मेजर प्राइवेट प्लेयर हैं, टाटाज हैं, रिलायंस हैं, महिंद्रा हैं, कल्याणी ग्रुप हैं, L&T हैं, अडानी एरो सिस्टम है, तमाम लोगों को इसमें इनवाइट किया गया है। जब जिसमें कि जो हमारा जो एडवांस टोट गन सिस्टम है वो भी देखिए प्राइवेट प्लेयर ने बनाया हुआ, तो एक तरीके की खुली छूट है और साथ में डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ उनको एक इंटरनेशनल मार्केट भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से हम नाउ सिर्फ हिंदुस्तान की आर्मी के लिए डिफेंस का प्रोडक्शन ना करके एक उनको मल्टी फेरियस आप मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि इन प्राइवेट प्लेयर्स को जो हिंदुस्तान की नीड को पूरा करने के बाद बाहर के भी मार्केट उनके लिए उपलब्ध है।
11: कॉरिडोर से विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता घटेगी और भारत आत्मनिर्भर बनेगा, साथ ही युद्ध जैसे हालात में सेना के लिए हथियार की सप्लाई से लेकर उसकी मरम्मत सब कुछ आसान होगा। सरकार राजस्थान में भी एक नया डिफेंस कॉरिडोर बनाने जा रही है, जिसके बनने से हमारी सेना को बहुत ज्यादा फायदा होगा। दरअसल अभी तक अगर देखा जाए तो दो कॉरिडोर भारत में है, यानी कि दो डिफेंस कॉरिडोर, एक यूपी में है और एक आंध्र प्रदेश में है। कहीं अगर किसी चीज की भी जरूरत पड़ती, किसी हथियार में कोई भी दिक्कत आती है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से ही टीमें आती हैं, या फिर हम कहें कि वहीं से इसकी मरम्मत होती है। लेकिन राजस्थान में डिफेंस कॉरिडोर बनने के बाद खास तौर पर भारत और चीन के सबसे करीब यह डिफेंस कॉरिडोर होगा, तो भारतीय सेना को सीधे तौर पर इसमें मदद ही मिलेगी। आज भारत दुनिया में अपनी रक्षा क्षमताओं के मामले में कई इलीट ग्रुप्स का सदस्य है। भारत न सिर्फ अपनी सेना को स्वदेशी सैन्य उपकरणों से मजबूत कर रहा है बल्कि उन्हें दुनिया भर के देशों को बेच भी रहा है। भारत की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि सभी पुराने रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। साल 2021
1: 2004 से 2014 में जहां रक्षा निर्यात सिर्फ 4,312 करोड़ रुपए था, वो साल 2014 से 24 में बढ़कर 88,319 करोड़ रुपए हो गया। साल 2023-24 की ही बात करें तो डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपए था, जो कि साल 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी कि 12.04% की बढ़ोतरी। भारत का लक्ष्य है साल 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाना।
3: डिफेंस कॉरिडोर है वो इनवाइट करता है तमाम डिफेंस का जो प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको एक जमीन मुहैया कराने और वो टेक्नोलॉजी वो अपने साथ लेके आए, एक उनको एक कॉरिडोर, एक जगह मिली हुई प्रोडक्शन के लिए जिसके तहत वो टाइटेनियम या सुपर अलॉय बना सकते हैं। ये टाइटेनियम देखिए एक ऐसा स्ट्रांग धातु है जिसके जिसका वेट कम होता है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। इसके तमाम फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो एरोनॉटिक्स हो, चाहे वो सबमरीन्स हो, चाहे वो डिफेंस के इक्विपमेंट हो। इसी तरह सुपर अलॉय जब आप बनाते हैं तो वो कई तरीके के होते हैं, जिसमें आपका कोबाल्ट होता है, निकल होता है, आयरन का सुपर अलॉय होता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, क्या वो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जा रहा है, क्या वो एवियोनिक्स के लिए जा रहा है, क्या वो गन सिस्टम में यूज होना है। इन सारी चीजों का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में करते हैं और हाई क्वालिटी का इस तरीके का अलॉय या टाइटेनियम बनाते हैं तो डिफेंस के क्षेत्र में इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है।
1: 11 साल की आत्मनिर्भरता की यात्रा में भारत ने रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। अब भारत न सिर्फ अपनी सेना को मजबूत कर रहा है बल्कि दुनिया को हथियार बेचकर अपनी वैश्विक उपस्थिति भी बढ़ा रहा है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि ताकत और तकनीक के मामले में भारत कहां तक पहुंच चुका है। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत की 100 से ज्यादा कंपनियां हैं जो दूसरे देशों को अपने यहां के हथियार दे रही हैं, यानी छोटे कलपुर्जों से लेकर बड़ी मिसाइल तक के लिए कई देश भारत पर निर्भर हो चुके हैं। भारत के जिन हथियारों और उपकरणों की डिमांड दुनिया भर में बढ़ी है या फिर जिनका निर्यात किया जा रहा है, उनमें शामिल हैं डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट, 155 ATAGS ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, सिमुलेटर्स, बारूदी सुरंगों से बचाने वाली गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर्स, हथियार, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर, इसके अलावा एवियोनिक्स और कई छोटे मोटे हथियार और उपकरण शामिल हैं। डिफेंस की फील्ड में ये बदलाव की कहानी एक दिन की तैयारी का नतीजा नहीं है। आज भारत 100 से ज्यादा देशों को हथियार और रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। इनमें सबसे ज्यादा 31% हथियार म्यांमार, 19% हथियार श्रीलंका, 12% मॉरिशस, 6% नेपाल, 5.1% आर्मेनिया, 4.3% वियतनाम, 4.2% मालदीव और 2.2% हथियार भारत अफगानिस्तान को निर्यात कर रहा है। कभी भारत की गिनती हथियार मांगने वाले देशों के रूप में भी हुआ करती थी, लेकिन अब भारत डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर जाना जाता है। आज भारत का डिफेंस प्रोटेक्शन 225,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है।
11: भारत को आजाद हुए 78 साल हो चुके हैं और इन 78 सालों में भारत ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई जगह भारत ने तरक्की की और कई बार बहुत से मुल्कों ने भारत को नीचा दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन भारत ना रुका और ना ही झुका और आज की तारीख में आत्मनिर्भर बनकर दुनिया को दिखा रहा है कि किस तरीके से भारत की पहचान एक अलग है।
1: किसी भी देश की सुरक्षा के लिए मजबूत सैन्य संरचना के साथ साथ हथियार, गोला बारूद, उपकरण समेत कई जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इन सामग्रियों के लिए किसी दूसरे देश पर आश्रित रहना सामरिक दृष्टिकोण से खतरनाक होता है। इसी को ध्यान में रखकर ज्यादातर देश अपनी शक्तियों के मुताबिक खुद के लिए आयुध फैक्ट्री लगाते हैं और इन्हीं के बदौलत देश की सेना को हथियारों की ताकत मिलती है। आजादी से पहले रक्षा क्षेत्र के निर्माण में भारत दुनिया के कई देशों से आगे था, यहाँ कई आयुध कारखाने और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हुआ करती थी। अंग्रेजों के जमाने में ही देश में 18 ऐसे आयुध कारखाने स्थापित किए गए जिनका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था। 18 मार्च 1801 कोलकाता के कोसेपुर में पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित हुई। ब्रिटिश काल में ही दो प्रमुख रक्षा इकाइयों की स्थापना की गई थी, गार्डन रीच और मजगांव डॉक्स।
11: भारतीय आयुध कारखाना दरअसल 41 इकाइयों का एक समूह है जहां पर भारतीय सुरक्षा बलों के लिए तमाम तरह के हथियार बनाए जाते हैं और ये सुनिश्चित किया जाता है कि जरूरत के हिसाब से उन्हें तुरंत उन हथियारों को मुहैया करवाया जाए।
1: ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के प्रमुख ग्राहक हैं हमारी तीनों सेनाएं। सेना को हथियारों की आपूर्ति के अलावा आयुध फैक्ट्री केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस बल को भी साजो सामान बेचती है।
11: ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो जगह है जहां पर भारतीय सेना की रिसर्च से लेकर प्रोड्यूसिंग, लॉजिस्टिक, यहां तक कि छोटे से छोटे हथियार और बड़ी से बड़ी मिसाइलों तक को बनाया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि भारतीय सेना की हर जरूरत यहां से पूरी हो।
13: ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज किसी भी राष्ट्र की इंडिजिनस तरीके से हथियारों को प्रोड्यूस करने के कारखाने होते हैं जहां पर मिलिट्री हार्डवेयर और अनेक डिफेंस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल का उत्पादन किया जाता है, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो। हमारी जो पैरा मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस को भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के माध्यम से अनेक तरीके के इक्विपमेंट्स समय समय पर मिलते हैं।
1: आजादी के बाद भारत को रक्षा क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश में स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का अभाव था, सैन्य उपकरणों के लिए दूसरे देशों से आयात पर बहुत अधिक निर्भर था। हालांकि 1958 में DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना जैसे प्रमुख उपलब्धियों ने तकनीकी प्रगति के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया।
13: DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो 66 वर्ष पूर्व 1958 में की गई थी और DRDO ने भारत के रक्षा के क्षेत्र में बड़े अनुसंधान और विकास के कार्य को सफलतापूर्वक किया है। DRDO ने अपने द्वारा अपने अनुसंधान और विकास के माध्यम से भारत को अनेक स्वदेशी उपकरण, रक्षा के उपकरण प्रोवाइड कराए हैं और जिसमें कि जो अनेक लंबी दूरी की, मध्यम दूरी की और छोटी दूरी के जो मिसाइल्स हैं, चाहे वो अग्नि हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, नाग हो, जैसी जो मिसाइल्स हैं वो DRDO ने अपने अनुसंधान और विकास से के माध्यम से विकसित की है।
1: साल 1962 में जब चीन से युद्ध में हमें अच्छे परिणाम नहीं मिले, तब भारत सरकार ने भविष्य की जरूरतों को समझा और कुछ अहम कदम उठाने का फैसला किया।
11: जानते हैं कि हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की नींव किसने रखी थी? तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके मेनन ने भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की नींव रखी। इससे पहले 1954 में BEL और 1958 में DRDO की स्थापना हो चुकी थी। हमारे पास 1962 के युद्ध की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली और आधुनिक हथियार, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स तो है ही, लेकिन अब हम परमाणु शक्ति संपन्न भी हैं।
1: के युद्ध ने प्रमुख सैन्य सुधारों के लिए भी देश को प्रेरित किया और भारत के रक्षा उद्योग को फिर से आकार देने और विस्तार देने के लिए बड़े पैमाने पर भूमिका निभाई। 1962 युद्ध के बाद भारत का रक्षा खर्च बड़े पैमाने पर बढ़ गया। 1961 में ये जीडीपी के 2.1% से बढ़कर 1963 में 4% हो गया और शेष शीत युद्ध में जीडीपी के 3% से लगातार ऊपर रहा। ये 1962 के पहले स्तर पर कभी नहीं लौटा। 1970 के बाद भारत का रक्षा क्षेत्र में विकास हुआ। रूस ने हमें लाइसेंस प्रोडक्शन दिया और इसके तहत भारत ने MiG-21 का लाइसेंस प्रोडक्शन शुरू किया। DRDO ने भी विकास किया। इसके बाद DRDO, BEL, BDL ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया।
13: इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो संकल्पना है वो भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी और इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को 1983 में शुरू किया गया था और इसके माध्यम से भारत ने अनेक तरीके की जो बड़ी मिसाइल्स हैं और मिसाइल की जो पूरी टेक्नोलॉजी है उसको विकसित किया। अनेक लेबोरेटरीज में आपस में कोलाबरेट करना, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलाबरेशन हो या जो प्राइवेट सेक्टर की जो डिफेंस यूनिट्स हैं, डिफेंस फैक्ट्रीज हैं, उनके साथ कोलाबरेट करके अधिक से अधिक बेहतर रिजल्ट सामने लाना और बेहतर से बेहतर मिसाइलें डेवलप करना।
1: भारत ने आत्मरक्षा को लेकर 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नजर में आ गया। 24 साल बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को नजरअंदाज करते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षणों को अंजाम देकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया।
11: चौहत्तर से 1998 तक भारत ने कई परमाणु परीक्षण किए जिसने भारत की ताकत को और ज्यादा मजबूत किया और दुनिया को दिखाया कि भारत किस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। इसने भारत को परमाणु सशस्त्र देशों की लीग में ला खड़ा किया जिस क्षेत्र में इसकी रणनीतिक स्थिति मजबूत हुई। इसके साथ ही साथ अग्नि सीरीज, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल भारत की स्वदेशी मिसाइल प्रौद्योगिकी विकास ने मिसाइल प्रणालियों में देश की शक्ति को प्रदर्शित किया।
1: साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा। साल 1965 और 1971 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने ये महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है जिनमें मिसाइलें सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 ही देश ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लॉन्स मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इजराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था। उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है और साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा था। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिशों में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किए। 1 जून 1982 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने DRDL यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही तरह एक विंग है जो कि मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। DRDL ज्वाइन करते ही सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया, जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कई मिसाइलों पर एक साथ काम शुरू हुआ। अलग अलग मिसाइलों के नाम तय किए गए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टेक्टिकल कोर व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एक एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें शामिल की गई थी, जिसका नाम रखा गया था नाग। और एपीजे अब्दुल कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रेक्स यानी कि री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम रखा गया अग्नि। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के करीब 2000 कर्मचारियों के साथ लगातार काम करने के बाद साल 1987 के आखिर में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों पर पहुंचा। तब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी। पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया था जहाँ दुनिया के ताकतवर देश खड़े थे।
11: रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: Right field, and it will...
2: From the first pitch of the season to the stretch run.
3: And that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अब कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इसमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हैरान कर देंगे तो कुछ आपको भावुक भी कर सकते हैं।
6: जिंदगी में खुश रहने के लिए कोई वजह जरूरी नहीं होती। ये नन्हा बच्चा स्टील के बर्तन की थाप पर मासूमियत से झूमता नजर आ रहा है। उसकी मुस्कान और छोटे छोटे कदम दिल को खुशी से भर देते हैं। सच में बचपन की यही सादगी जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। ये महिला नारी शक्ति की सशक्त मिसाल है। एक तरफ भारी कैमरा संभालते हुए वो शादी की फोटोग्राफी कर रही है तो दूसरी तरफ अपनी छोटी बच्ची का भी ध्यान रख रही है। माँ की ममता से बच्चा परे ना हो, इसलिए ये साहस सिर्फ माँ ही कर सकती है। ये नज़ारा दिखाता है कि महिलाएं जिम्मेदारी के साथ अपने सपनों को भी बखूबी पूरा कर सकती हैं। दोस्ती की ये अनोखी मिसाल दिल को छू लेती है। एक बच्चा अपने खाने को एक तोते के साथ शेयर कर रहा है और दोनों आराम के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ये मासूम दोस्ती इंसानों और प्रकृति के बीच प्यार और अपनापन दिखाती है। चिड़िया हमारी बचपन की साथी हुआ करती थी, लेकिन आज इन्हें देख पाना दुर्लभ हो गया है। ये नज़ारा बचपन की यादें ताज़ा कर देता है, जब हम चिड़ियों को नहाते हुए देखकर मौसम बदलने की उम्मीद करते थे। आज वही मासूम पल बहुत याद आते हैं। ये छोटी बच्ची अपनी मासूमियत और एनर्जी से दिल जीत रही है। दो चोटियों में सजी ये नन्ही परी मस्ती में झूमते हुए अपने हर स्टेप को बेहद क्यूट अंदाज में कर रही है। उसकी खुशी और नटखटपन देखने वालों का मन खुश कर देती है।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: No ticket, no line, just showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
0: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels.

0: jingles, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
1: Thank God I get to wait.
0: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Good news today banata hai.
3: Good news today.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.

0: आईपीएल का सबसे बड़ा धुरंधर। वैभव के बल्ले ने मचाया बवंडर। उम्र 15 साल बना गेंदबाजों का काल। सिक्सर का बेमिसाल बेबी बॉस। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
7: पवित्र चार धाम यात्रा के दौरान हर रोज बन रहे नए रिकॉर्ड। महज 39 दिनों में 10 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में मुस्तैद प्रशासन। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के साथ चली तेज हवाओं से गिरा पारा। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों का रुख कर रहे हैं लोग। उत्तराखंड के मसूरी में हर रोज बढ़ रही सैलानियों की तादाद। पहाड़ों की रानी में सड़कों पर थमा ट्रैफिक। हिमाचल प्रदेश में मनाली की खूबसूरत वादियां सैलानियों से गुलजार। रोहतांग के माइनस तापमान में भी मस्ती करते नजर आ रहे हैं पर्यटक। बर्फीले पहाड़ों पर एडवेंचर का भी उठा रहे हैं लोग। राजस्थान में रेतीले तूफान का बवंडर। श्रीगंगानगर में दिन में हुआ अंधेरा, बवंडर के बाद हुई बारिश से तापमान में आई 8 डिग्री की गिरावट। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को मिली 538 नए अग्निवीरों की ताकत। 24 महीने के कठोर प्रशिक्षण के बाद 7वें बैच ने ली शपथ। लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर में पासिंग आउट परेड।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मौत

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का विस्फोटक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो है तो महज 15 साल का, लेकिन क्रिकेट के मैदान में बल्ले से ऐसे ऐसे कीर्तिमान रच रहा है कि बड़े बड़े सूरमाओं की चमक उसके आगे फीकी पड़ती जा रही है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बीते 27 मई को आईपीएल के एक मुकाबले में बल्ले से विस्फोट की नई इबारत लिखने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी है। जी हां, 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की जो विस्फोटक पारी खेली उसकी धमक में क्रिकेट के कई दिग्गजों के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स दफन हो गए। वैभव ने एक पारी में इतने रिकॉर्ड्स बना दिए कि ये खुद अपने आप में रिकॉर्ड हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वाली पारी। दरअसल पिछले 2 साल से वैभव मैदान में टिककर जिस तरह से आतिशबाजी कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले वर्षों में बल्लेबाजी का कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा ही नहीं जो वैभव के नाम ना हो।
1: क्रिकेट के क्षितिज पर उदित हो चुका है एक ऐसा चमचमाता वैभवशाली सूर्य जिसकी चौंधिया देने वाली चमक में क्रिकेट के आसमान के बड़े बड़े सितारे गुम से हो गए हैं। इस वैभवशाली सूर्य ने आईपीएल की महज एक पारी में इतने कीर्तिमान बना दिए हैं कि रिकॉर्ड बुक के हर सफहे पर एक ही नाम चमक रहा है, वैभव सूर्यवंशी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को हुए एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की ऐसी विस्फोटक पारी खेली कि आईपीएल के 18 साल के इतिहास में बल्ले से बने करीब करीब सारे रिकॉर्ड्स जमींदोज हो गए।
2: वो बच्चा 15 साल का है, इतनी धमाल मचा रखी है। बुमराह को उसने पहली बॉल पे छक्का मारा, हेजलवुड को, हर एक बॉलर को उन्हें पहली बॉल पे छक्का मारा। ऐसा बल्लेबाज मैंने दुनिया में नहीं देखा। वरिंदर सहवाग भी ऐसी पारी नहीं कभी खेल सका जो वैभव सूर्यवंशी खेलता।
1: वैभव की इस अविस्मरणीय पारी को देखकर ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कहना पड़ गया अभूतपूर्व। बल्ले से वैभव का अतुल्य धमाका पूरी एकाग्रता से देखने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग असाधारण था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पैरों पर फेंकी गई गेंद पर उन्होंने बेहद कुशलता के साथ फ्रंट फुट क्लियर का रूम बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने जहां चाहा गेंद को वहीं पहुंचा दिया। वैभव की ये पारी चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। यूं तो वैभव ने पूरे आईपीएल के दौरान अतुल्य बल्लेबाजी की है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को खेली गई उनकी एक अदद पारी क्रिस गेल, डेविड वार्नर, रिली रूसो, शुभमन गिल और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों की कई कई पारियों पर भारी पड़ गई है। वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की धमाकेदार पारी में 12 छक्के लगाए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वैभव ने आईपीएल 2026 सीजन में 65 छक्के पूरे कर लिए हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्सर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। गेल ने आईपीएल 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे। वैभव के इस रिकॉर्ड के भीतर भी एक रिकॉर्ड छिपा हुआ है। गेल ने 59 सिक्सर के लिए 456 गेंदें खेली थी, जबकि वैभव ने सिर्फ 280 गेंदों पर 65 छक्के अपने नाम कर लिए हैं। 280 गेंदों पर 65 छक्कों का मतलब ये हुआ कि कमोबेश हर चौथी गेंद पर सिक्सर। ये रिकॉर्ड तो गेंदबाजों के लिए डरावने सपने की तरह है।
3: Young man is something else. He can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd. His sixes are generally into the crowd. His sixes are not those that just pop over that boundary rope, and he just makes it look so ridiculously easy.
1: महज 15 साल के वैभव जिस तरह कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भविष्य में बल्लेबाजी के सारे रिकॉर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट में इनके नाम ही दर्ज मिलेंगे। 27 मई को एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने एचआरएस के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। आईपीएल के नॉकआउट हिस्ट्री में ये संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 है। इससे पहले साल 2014 के क्वालिफायर 2 में सुरेश रैना ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 16 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था। इतना ही नहीं, वैभव की इस पारी में शुरू के 10 छक्के सिर्फ 24 गेंदों पर ही आ गए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 10 छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गेल के 10 छक्के साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 27 गेंदों में आए थे। आईपीएल 2026 के दौरान 27 मई को खेली गई ऐतिहासिक पारी समेत कुल 15 पारियों में वैभव 243 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बना चुके हैं। टी20 के किसी भी टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले साल 2022 में टी20 ब्लास्ट में रिली रूसो ने 192 के स्ट्राइक रेट से 623 रन बनाए थे। वैभव की इस एक पारी में बने रिकॉर्ड्स की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव के कुल 12 में से 8 छक्के पावर प्ले में ही आ गए थे। दिलचस्प तो ये है कि इससे पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा 7 छक्कों का कीर्तिमान भी हिंदुस्तान के इस वैभवशाली खिलाड़ी के नाम ही दर्ज था। वैभव अब आईपीएल में 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियां खेल चुके हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पर कमाल यह है कि वैभव की 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियों में से 3 आईपीएल के मौजूदा सीजन में ही आई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की अपनी पारी में वैभव ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। आईपीएल के इतिहास में 90 प्लस रनों की सभी पारियों में वैभव की पारी सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाली पारी बन गई है। वैभव ने 334.48 की स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड रजत पाटीदार के नाम था, जिन्होंने इसी सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 281.81 की स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पर 93 रन बनाए थे। आपको बता दें कि 27 मई वाली पारी को लेकर वैभव आईपीएल 2026 सीजन में सिर्फ पावर प्ले के दौरान 490 रन बना चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम था, जिन्होंने साल 2016 में पावर प्ले के दौरान 467 रन बनाए थे। ये सारे रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं 15 साल के एक टीनेजर के नाम। सोचिए, 15 साल का ये बच्चा इसी उम्र में अगर क्रिस गेल, डेविड वार्नर, किरोन पोलार्ड और शुभमन गिल जैसे महारथियों के रिकॉर्ड्स की कब्रगाह बना चुका है, तो आगे तो वैभव के नाम से ही कीर्तिमान की एक किताब छापनी पड़ जाएगी।
4: बैट्समैन बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में अगर वो अपनी फिटनेस अच्छी मेंटेन करता है तो फिर आने वाला वो फ्यूचर स्टार है इंडिया का।
5: वैभव सूर्यवंशी, उसकी भी बैटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेलता है, बहुत नेक्स्ट लेवल बैटिंग है। हम उसकी बैटिंग को नहीं कह सकते, उसकी अब अपनी अलग क्लास है।
6: करदा उड़ा दिया वैभव सूर्यवंशी ने, लटकाड़ दिया।
1: ऐसा नहीं है कि वैभव का बल्ला सिर्फ आईपीएल में ही चला है। इससे पहले भी बिहार के समस्तीपुर का ये लाल ऐसी ऐसी अद्भुत पारियां खेल चुका है कि क्रिकेट के इतिहास में उसकी कोई सानी देखने को नहीं मिलती। इसी साल 6 फरवरी को जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव ने जो पारी खेली थी, उसे अंडर 19 वर्ल्ड कप के 38 साल के इतिहास की सबसे महान पारी कहा जा रहा है। सबसे महान पारी क्यों कहा जा रहा है, स्टैट देखने से इसका जवाब मिल जाएगा। वैभव ने महज 80 गेंदों पर 175 रन ठोक दिए। वैभव ने इस पारी में 15 छक्के और 15 चौके लगाए, यानी 150 रन सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए अपने खाते में जोड़ लिए। 55 गेंदों पर शतक पूरा किया, बाद के 75 रन सिर्फ 25 गेंदों पर ठोक दिए। महज 71 गेंदों पर 150 रन पूरे कर लिए, जो यूथ वनडे इतिहास का सबसे तेज 150 है। इतना ही नहीं, वैभव ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कुल 30 छक्के लगाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस के नाम था, जिन्होंने 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में 18 छक्के लगाए थे। पूरे टूर्नामेंट में वैभव 439 रन के साथ सेकेंड टॉप स्कोरर भी रहे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहने के साथ वैभव ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप से ठीक पहले अंडर 19 एशिया कप में 12 दिसंबर 2025 को यूएई के खिलाफ वैभव ने 95 गेंदों पर 171 रन कूटकर विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए थे। इस आतिशी पारी में वैभव ने 9 चौके और 14 छक्के लगाए थे। कहने की जरूरत नहीं कि सबसे तेज और सबसे कम उम्र से जुड़े रिकॉर्ड्स के सरताज बन चुके हैं वैभव। 24 दिसंबर 2025 को रांची के जेएससीए ओवल ग्राउंड में वैभव ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कई विश्व कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल के खिलाफ हुए मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 84 गेंदों पर 15 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 190 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी थी। इस मैच में सिर्फ 59 गेंदों पर 150 रन पूरे कर वैभव ने लिस्ट ए मैच में फास्टेस्ट 150 का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 बॉल पर 150 रन बनाए थे। तूफान थोड़ी देर के लिए हो तो राहत, नहीं तो कहर बन जाता है। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान के टिक कर रहने वाले तूफान नहीं बल्कि बवंडर हैं। इसीलिए विरोधियों के लिए कहर नहीं बल्कि महाकहर बन रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैभव 13 साल की उम्र में एक मैच में ट्रिपल सेंचुरी भी लगा चुके हैं। रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में वैभव ने 332 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अभी तो ये यूथ इंडिया की रहनुमाई कर रहे हैं, इंतजार कीजिए इनके टीम इंडिया में शामिल होने का। इसकी पूरी संभावना है कि साल 2027 के वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे और बहुत संभव है कि भारत तब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाएगा।
0: 15 साल के वैभव की कामयाबी क्रिकेट के बड़े बड़े धुरंधरों को भी हैरान करने लगी है। आईपीएल में अपने से दोगुने ढाई गुने उम्र के घातक गेंदबाजों को भी वो न सिर्फ सहजता से खेल रहे हैं बल्कि कायदे से धुलाई भी कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतनी छोटी उम्र में ही वैभव इतने दिग्गज बल्लेबाज कैसे बन गए। दरअसल इसके पीछे कहानी है एक अधूरे सपने की, जो कभी वैभव के पिता ने देखा था। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन हालात की दुश्वारियों की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। पर अपने उसी अधूरे सपने को संजीव ने अपने बेटे वैभव के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया। वैभव के क्रिकेटर बनने की पूरी कहानी आपके दिल को छू लेगी।
1: सर पर कामयाबी के ताज के साथ मन में विनम्रता का संस्कार हिंदुस्तान की संस्कृति का सनातन हिस्सा है। मैच 15 की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी का बेनजीर परचम लहरा चुके वैभव सूर्यवंशी सनातन संस्कार के युगीन संवाहक हैं। जिस मैच में वैभव ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी, उसके प्री मैच शो के दौरान जब उन्होंने सुनील गावस्कर और संजय बांगर को देखा तो दौड़कर उनके पास गए और पूरी विनम्रता के साथ उनके पैर छू लिए। वैभव के संस्कार की निश्चल सादगी देखिए कि गावस्कर और बांगर के साथ मौजूद प्रेजेंटर जतिन सप्रू के भी पैर छूने की उन्होंने पूरी कोशिश की। यह अलग बात है कि जतिन पीछे हट गए।
3: हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है कि हम अपने जो बुजुर्ग है, सीनियर्स है, एल्डर्स है, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, और वही उन्होंने किया। सिर्फ मेरे पास ही नहीं आए थे वो, बस मेरे बाजू में संजय बांगर थे और जतिन सप्रू थे, उनके पास भी आए थे और मुझसे थोड़ा सा रुक कर मुझसे कुछ अपेक्षा कर रहे थे कि मैं कुछ उनको बोलूं। शायद अपेक्षा कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूंगा, तो शायद अपेक्षा कर रहे थे। तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा, लगे रहो, क्योंकि जब वो लगे रहेंगे तो फिर वो बल्ला मतलब बल्ला लगता रहेगा और छक्के भी लगते रहेंगे।
1: उम्र के लिहाज से वैभव की बेनजीर कामयाबी इस बात की मुनादी कर रही है कि आने वाले वक्त में कीर्तिमान की किताब के हर सफहे पर बिहार के इस लाल का नाम दर्ज मिलेगा। पर वैभव नाम के इस प्रदीप्त दिए की रोशनी से सराबोर होने वाले लोगों को उस तेल और बाती के बारे में भी जानना चाहिए जो खुद गुमनाम रहकर अपने दिए को जगमग कर रहा है। वैभव की इस बेनजीर कामयाबी के पीछे हाथ है उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का, जो कभी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का ख्वाब सजोए हुए थे, पर खुद की जो हसरत अधूरी रह गई उसे उन्होंने अपने लाल में प्रत्यारोपित कर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक पिता के अनोखे त्याग की खामोश सदाएं समस्तीपुर जिले के जर्रे जर्रे में जज्ब है।
7: वास्तव में एक पिता का जो त्याग था, तपस्या था, जिद था कि हमको किसी भी तरह जो मैं हासिल नहीं कर सका वो मैं अपने बच्चे को उस मुकाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। वो एकाकी भी देखा कि लोगों से मिलना तक लोगों में, क्योंकि जुनून सवार था कि मैं अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाऊं, तो लोगों से मिलना भी बंद किया। उस बीच में कई ऐसी मुसीबतें भी आईं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया।
1: पांच साल के बच्चे को पढ़ाई से दूर कर क्रिकेट के मैदान में पसीना बहाने के लिए खड़ा कर देना किसी भी पिता के लिए आसान फैसला नहीं होगा। पर संजीव सूर्यवंशी ने कलेजे पर पत्थर रख कर ये फैसला लिया। समस्तीपुर जिले की ताजपुर पंचायत में जहां क्रिकेट का कोई नाम लेवा नहीं था, वहां पांच साल के बेटे की प्रैक्टिस के लिए सारी व्यवस्था कर दी। यहां तक कि कुछ हम उम्र और बड़े बच्चों को भी चॉकलेट मिठाई का प्रलोभन देकर साथ जोड़ लिया ताकि वे बॉलिंग करें और वैभव लगातार बैटिंग की प्रैक्टिस करता रहे। पांच साल से सात साल यानी दो साल तक गांव में ही वैभव को दिन रात प्रैक्टिस कराने के बाद एक दिन संजीव सूर्यवंशी को इल्हाम हो गया कि अब अगले लेवल की प्रैक्टिस का वक्त आ गया है, लिहाजा बेटे को लेकर निकल गए ताजपुर से 12 किलोमीटर दूर स्थित पटेल मैदान में, जहां ब्रजेश झा क्रिकेट एकेडमी चलाते थे। क्रिकेटर बनाने का जुनून ऐसा था कि संजीव सूर्यवंशी को जब लगा कि रोजी रोटी के लिए चलने वाला बिजनेस व्यवधान बन रहा है तो बगैर देरी के उसे बंद कर दिया।
8: गार्डियनों का उनका सपोर्ट रहा है कि अपने बच्चे को इतना ज्यादा टाइम किल करते थे, अपने साथ लाना ले जाना, बच्चों के साथ अपना बिजनेस छोड़ के बच्चे के प्रति इतना एक फोकस, गार्जियन का भी कहीं ना कहीं टारगेट था कि हमारा बच्चा ऊपर खेले, और भगवान की दुआ से बच्चा वो मुकाम पर हासिल किया।
1: इसमें कोई संदेह नहीं कि 7-8 साल की छोटी उम्र में ही वैभव अपने पिता की उम्मीदों की कसौटी पर लगातार खरे उतर रहे थे। जब तक सूर्य की रोशनी धरा पर मौजूद रहती, वैभव बल्ले को दामन से दूर नहीं होने देते। पिता और माँ को छोड़कर घर के बाकी सदस्यों को वैभव की आदत कई बार नागवार गुजरती थी। दादी ने तो कई मौकों पर ऊब कर वैभव की पिटाई भी कर दी थी, पर बचपन में वैभव की पिटाई के वो वाकये आज दादी के लिए सुनहरी यादें बन चुकी हैं।
9: डांटते तो थे,
10: अच्छा,
9: कभी कभी उसको मारते थे, दौड़ते थे उस पर, फिर भी कहता था नहीं दादी हमको अच्छा लगता है, हम खेलेंगे। हम कहे ठीक है बाबू तब खेलो। जब धीरे धीरे जब उदल सिंह सराय गया बेनी पट्टी, उसके बाद आपको क्या कहते हैं बेगूसराय, जब हम देखते रहे कि यह अच्छा खेल में उतर रहा, तब से मेरा भी मनोबल और मन ये हुआ कि हाँ यह खेले।
1: बचपन में वैभव की बैटिंग की खटखट से ऊब जाने वाली दादी का हृदय आज इस बात को जानकर गदगद है कि उनका पौत्र क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़कर आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाला खिलाड़ी बन गया है। समझे कौन रहस्य प्रकृत का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि वैभव को पटना के जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में डालने के लिए संजीव सूर्यवंशी को जमीन तक बेचनी पड़ी थी? दरअसल संजीव सूर्यवंशी को जब ये लगने लगा कि उनका बेटा समस्तीपुर स्थित पटेल मैदान के स्टैंडर्ड से आगे निकल चुका है, तो पटना में जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराने का फैसला किया। एकेडमी की फीस और उसके बाद समस्तीपुर से हर रोज पटना आना जाना कॉस्टली अफेयर था, इसीलिए संजीव सूर्यवंशी बेटे वैभव को लेकर हर अल्टरनेट डे पर पटना जाने लगे। जेनेक्स एकेडमी चलाने वाले पूर्व रणजी खिलाड़ी मनीष ओझा भी वैभव के पिता के त्याग और तपस्या को याद कर भावुक हो जाते हैं।
10: माँ का रोल रहता था बच्चे को तैयार करने से लेके उसको, और जब इधर से थक के जाता था तो उसको फिर रिकवरी में, चाहे वो खाने के सेंस में हो, उसको प्यार के सेंस में हो, उसको रेस्ट के सेंस में हो, और पिता का त्याग इस सेंस में था कि अर्ली सारे बोझ को वो अपने कंधे पर उठा रहे थे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और फिर भी वो जो वो अपने हैसियत से ज़्यादा बढ़ के उन्होंने उस बच्चे के लिए किया, और हर एक वो सुविधा उस बच्चे के लिए उन्होंने अरेंज किया खेल के प्रति कि वो आज इस मुकाम को प्राप्त कर सके।
1: पिता ने अपनी हैसियत की हदों को पार कर वैभव के लिए जमीन तैयार की, और वैभव ने भी पिता के इस त्याग की कीमत को शिद्दत से महसूस करते हुए मैदान पर पसीना बहाने में कोई कोताही नहीं की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था और वैभव को पटना ले जाना ले आना संभव नहीं रहा, तो संजीव सूर्यवंशी ने अपने ताजपुर स्थित घर के बाहर ही नेट प्रैक्टिस के लिए पिच बनवा दी ताकि वैभव की प्रैक्टिस खंडित ना हो।
11: लॉकडाउन में एक्चुअली पूरा बिहार बंद था, तो यहाँ पे पिच का जनरेट किया गया भैया के द्वारा, और टर्बिकेट और सीमेंटेड लॉकडाउन में लोग घर से नहीं निकल रहे थे, उस वक्त में भी इसका प्रैक्टिस सेशन लगातार यहाँ पे चलता रहा।
1: बेटे को क्रिकेटर बनाने का ये जुनून अपने आप में अनूठा है, इसका नतीजा सबके सामने है। आज वैभव के बल्ले से बनने वाले विश्व रिकॉर्ड्स संजीव सूर्यवंशी की दुनिया को रंगीन सपनों से भी ज्यादा सुहावन बना रहे हैं। वैभव की विराट बुलंदी का आलम यह है कि पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पर संजीव सूर्यवंशी और उनकी पत्नी से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। देश का गौरव बन चुके तेजस्वी पुत्र का पिता होने के लिए बधाई देते हैं। पिता ने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए त्याग तपस्या की, तो बेटा भी दो कदम आगे बढ़कर अपनी विराट उपलब्धियों से हक अदायगी कर रहा है। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसके 14 साल के बेटे को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को वैभव को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। साफ है कि पिता के संकल्प और बेटे की जीतोड़ मेहनत का पावन संगम क्रिकेट के मैदान पर चमत्कारिक धारा बनकर नमूदार हो रही है।
0: तो बंदे मेहदम में आज आपने वैभव सूर्यवंशी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
12: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
13: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

0: कौन सा राजयोग बड़ी मेहनत के बाद बहुत बड़ी सफलता देता है? शनि का कौन सा राजयोग विवाह के बाद भाग्य चमका देता है? कौन से हैं शनि के राजयोग और क्या है इनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Tune In has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
6: पवित्र चार धाम यात्रा के दौरान हर रोज बन रहे नए रिकॉर्ड, महज 39 दिनों में 10 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में मुस्तैद प्रशासन। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चली तेज हवाओं से गिरा पारा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों का रुख कर रहे हैं लोग, उत्तराखंड के मसूरी में हर रोज बढ़ रही है सैलानियों की तादाद, पहाड़ों की रानी में सड़कों पर थमा ट्रैफिक। हिमाचल प्रदेश के मनाली की खूबसूरत वादियां सैलानियों से गुलजार, रोहतांग के माइनस तापमान में भी मस्ती करते नजर आ रहे हैं पर्यटक, बर्फीले पहाड़ों पर एडवेंचर का भी उठा रहे हैं लुत्फ। राजस्थान में रेतीले तूफान का बवंडर, श्रीगंगानगर में दिन में हुआ अंधेरा, बवंडर के बाद हुई बारिश से तापमान में आई 8 डिग्री की गिरावट।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: शुरू के सरदार शहर में रेगिस्तान में धूल भरी आंधी से दिन में ही छाया अंधेरा, धूल के विशाल बवंडर ने पूरे आसमान को ढका। आसमान में छाए धूल के गुबार ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया, तेज हवाओं के कारण लोगों को घरों और सुरक्षित स्थानों में रहना पड़ा। कुछ मीटर दूर तक देख पाना भी हुआ मुश्किल, लो विजिबिलिटी की वजह से सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार, दिन में हेडलाइट जलाना पड़ा। श्रीगंगानगर में भी रेत के बवंडर ने दिन को बनाया रात, करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला धूल भरा तूफान। करीब 30 मिनट तक बवंडर ने जनजीवन को किया प्रभावित, आसमान में रेत के घने गुब्बार की वजह से विजिबिलिटी रही बेहद कम। वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर सफर करना पड़ा, आंधी और बारिश से तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। फतेहपुर शेखावटी में रेत के महाबवंडर ने मचाई हलचल, धूल के गुब्बार से दिन में ही दिखा रात जैसा नजारा। फतेहपुर शेखावटी और रामगढ़ शेखावटी धूल की चादर से लिपटे, कई किलोमीटर तक फैले रेतीले बवंडर ने आसमान को ढका। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हनुमानगढ़ में भी रेतीला तूफान, राजस्थान के पांच जिलों यानी चुरू, हनुमानगढ़ी, श्रीगंगानगर, बीकानेर और सीकर में रेत का बवंडर। बीकानेर में भी चली धूल भरी आंधी, दिन में दिखा रात से अंधेरा, मौसम विभाग ने भारी बारिश का भी अलर्ट किया जारी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। बारिश के साथ तेज हवा चलने से मौसम हुआ सुहावना, वीकेंड की बारिश से हुई शुरुआत। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में झमाझम बारिश, इंदिरा गांधी स्टेडियम इलाके से भी बारिश की तस्वीर आई सामने। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला इलाके में बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट, तपती गर्मी से लोगों को मिली राहत। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश, कल भी दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। देश के कई भागों में मौसम हुआ सुहाना, उत्तर भारत के कई शहरों में बारिश के बाद गिरा तापमान। पंजाब के कई जिलों में बारिश की खबर, पठानकोट में बारिश के साथ गिरे ओले, हीटवेव और तेज गर्मी से लोगों को मिली काफी राहत। गुजरात के भी कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, अरावली जिले में मुदासा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में हुई बारिश। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश और आंधी तूफान का अनुमान, आने वाले दिनों में भी दिख सकता है मौसम में बदलाव। गिर सोमनाथ, दीव, दमन और दादर नगर हवेली में भी हो सकती है छिटपुट बारिश। अगले 7 दिनों में गुजरात में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना। गुजरात के दाहोद जिले में सुबह से छाए बादल, दाहोद, झालोद, लिमडी, फतेहपुरा और संजेली समेत कई इलाकों में बारिश। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से मिली राहत, तापमान में आई गिरावट। गुजरात के साबरकांठा में भी सुबह से जारी है रिमझिम बारिश, लोगों में खुशी की लहर। साबरकांठा के हिम्मतनगर इलाके में बारिश के बाद गर्मी से मिला छुटकारा, इलाके में अभी और बरसात की उम्मीद। साबरकांठा में खेतों में बुआई के लिए अभी और बारिश जरूरी, आने वाले दिनों में रहेगा बारिश का इंतजार। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आज 42वां दिन, अभी तक लगभग 25 लाख श्रद्धालुओं ने किए चारों धाम के दर्शन। उत्तराखंड के चमोली में जोर शोर से जारी है बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा, बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह बरकरार। अब तक करीब 7.5 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम, देश के कोने कोने से पहुंच रहे लोग। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का दौर है जारी, पुलिस, एसडीआरएफ और सहायता दलों की मदद से गुरुद्वारे तक पहुंच रहे श्रद्धालु। मैदानी इलाकों की गर्मी से भी राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं सैलानी, पहाड़ों में बारिश और बर्फीले माहौल का कर रहे हैं आनंद उठा रहे हैं। भारत यात्रा पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी टिफनी अपने पति माइकल के साथ पहुंची दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर। टिफनी ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया अक्षरधाम मंदिर की यात्रा की तस्वीरें, मंदिर परिसर की सुंदर वास्तुकला, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक माहौल का लिया अनुभव। ताजमहल का दीदार करने आगरा भी पहुंची टिफनी ट्रंप, पति के साथ खिंचवाई तस्वीरें। टिफनी ट्रंप ने अलग अलग पोज में ताजमहल के सामने खिंचवाई तस्वीरें, यात्रा को बनाया यादगार। भारतीय संस्कृति से प्रभावित दिखी टिफनी ट्रंप, सिंपल लुक और ड्रेस ने खींचा सभी का ध्यान। कश्मीर के सोनमर्ग में सैलानियों की भारी भीड़, पहाड़ों की गर्मी के बीच बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। पिछले कुछ ही महीनों में 4 लाख से ज्यादा सैलानी पहुंचे सोनमर्ग, टूरिज्म में जबरदस्त बूम। घाटी पहुंचे दर्जनों टूरिस्ट व्हीकल, स्थानीय कारोबारियों और होटल मालिकों की चांदी ही चांदी। अगरतला का नीरमहल पैलेस बना सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र, झील में बोटिंग का आनंद लेते हुए महल तक पहुंचते हैं पर्यटक। अपनी अनूठी जल महल वास्तुकला और शानदार प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों में काफी चर्चित है ये जगह, ये भारत का सबसे बड़ा और पूर्वी भारत का एकमात्र जल महल है। मेघालय के उमरोय में भारतीय सेना के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन, 12 मित्र देशों की सेनाओं के जवान इसमें शामिल। 20 मई से उमरोय में शुरू हुआ था अभ्यास प्रगति, 400 से ज्यादा जवान ले रहे हैं इसमें हिस्सा। मिले जुले पहाड़ी और जंगली इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित है अभ्यास प्रगति, संयुक्त योजना अभ्यास, सामरिक स्तर के अभ्यास और समन्वित अभियान की ट्रेनिंग ले रहे हैं जवान। क्षेत्र शांति सुरक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है अभ्यास प्रगति का मकसद, आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर। अभ्यास में सभी देशों की संयुक्त टीमों को साझा मिशन के तहत एक साथ प्रशिक्षण, रॉक क्राफ्ट, एम्बुश और काउंटर एम्बुश ड्रिल, स्लिथरिंग, जंगल लेन शूटिंग सहित कई तरीके की ट्रेनिंग का आयोजन। पुणे के खड़गवासला में नेशनल डिफेंस अकेडमी के 150वें कोर्स की पासिंग आउट परेड, सेना के तीनों अंगों को मिले नए अवसर। पासिंग आउट परेड में सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 355 कैडेट शामिल, ट्रेनिंग संपन्न होने के बाद हुई परेड। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया परेड का रिव्यू, ऐतिहासिक खेत्रपाल परेड ग्राउंड में हुई है परेड। परेड के दौरान कैडेट्स ने किया शानदार मार्च पास्ट, कठोर सैन्य और शैक्षणिक प्रशिक्षण की दिखी झलक। एनडीए में 3 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद होती है कैडेट्स की पासिंग आउट परेड, साल में 2 बार होता है इसका आयोजन। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पासिंग आउट परेड का निरीक्षण, परेड के लिए सलामी। पासिंग आउट परेड के दौरान कैडेट्स ने शानदार कदमताल से बांधा समा, देश सेवा के लिए जोश और जज्बे का प्रदर्शन। परेड के बाद वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने किया शानदार फ्लाई पास्ट, सेना के शौर्य की नुमाइश। फ्लाई पास्ट में वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी हुए शामिल, आसमान में परवाज भरकर किया जाबाजी का प्रदर्शन। परेड के दौरान कैडेट्स ने पेश के शानदार फॉर्मेशन, पारंपरिक फाइनल स्टेप भी बना खास आकर्षण का केंद्र। एनडीए में पासिंग आउट परेड के बाद कैडेट्स के परिजनों से मिले सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कैडेट्स को प्रदान किए मेडल और पुरस्कार, ट्रेनिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए की सराहना। सेना अध्यक्ष ने कैडेट्स के साथ खिंचवाई तस्वीरें, उनके परिजनों के साथ भी फोटो सेशन में हुए शामिल। श्रीनगर में हुई अग्निवीरों के 7वें बैच के पासिंग आउट परेड, रेजिमेंटल सेंटर में 538 अग्निवीरों ने किया मार्च पास्ट। पासिंग आउट परेड के बाद परिजनों से मिले अग्निवीर, भावुक कर देने वाला दिखा पल, सेना में काम करने के लिए अपने जज्बे का किया इजहार। बेंगलुरु में हुई मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर के अग्निवीरों के पासिंग आउट परेड, 2315 अग्निवीर हुए इसमें शामिल। ब्रिगेडियर अजय सिंह ठाकुर ने की अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड की समीक्षा, परेड के लिए सलामी। नौसेना के पश्चिमी कमान में बदलाव के मौके पर मुंबई में शानदार परेड, नौसेना के जवानों ने लिया इसमें हिस्सा। नौसेना के वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने संभाला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्ट का पदभार, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन की जगह संभाली कमान। निवर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को दिया गया औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर, विदाई से पहले दी गई सलामी। देहरादून में टपकेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, भक्तिभाव से की पूजा अर्चना। मदुरई के थिरुपरान कुंदरम मुरुगन मंदिर में उमड़ी श्रद्धालु की भारी भीड़, वैकासी विकासम उत्सव का भव्य आयोजन। भगवान मुरुगन को समर्पित है वैकासी विकासम उत्सव, मंदिर में किया गया भगवान का विशेष अभिषेक। कांचीपुरम के वरदराज पेरुमल मंदिर से निकाली गई भगवान की शानदार शोभा यात्रा, वैकासी ब्रह्मोत्सवम के अवसर पर भव्य आयोजन। शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु, मंदिर परिसर में जय घोष करते हुए भगवान के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भव्य दिव्य भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल। ज्येष्ठ अधिक मास शुक्ल चतुर्दशी तिथि के अवसर पर बाबा महाकाल की विशेष आरती, आज ही है अधिक मास पूर्णिमा। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के नीलाद्री बीच पर SIR की थीम पर रेत से बनाई शानदार कलाकृति, देखने के लिए उमड़ रहे लोग। ओडिशा में वोटर लिस्ट के SIR प्रक्रिया शुरू होने के अवसर पर सुदर्शन पटनायक ने बनाई कलाकृति, लोगों में जागरूकता पैदा करना है इसका मकसद। ओडिशा में वोटर लिस्ट के SIR प्रक्रिया के सिलसिले में नीलाद्री बीच पर हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। नागपुर में वन संपदा को बचाने के लिए अनोखी पहल, दुर्लभ हो रहे पेड़ों की प्रजातियों के लिए बनाया गया सीड बैंक। नागपुर में सीड बैंक के पहल के जरिए लगाए जा रहे हैं हजारों पेड़, पर्यावरण की रक्षा के लिए बढ़ाई जा रही है जागरूकता। मुंबई में आई टेक वीक 2026 का आयोजन, कई उद्यमियों और स्टार्टअप्स ने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में दी जानकारी। भारत यात्रा पर आए म्यांमार के राष्ट्रपति, बोधगया के महाबोधि मंदिर में किए दर्शन। कुल्लू में पैराग्लाइडर की हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। लंदन से लौटे उद्यमी अदनान शाह ने कश्मीर में बनाई खास पहचान, ब्रांडेड गारमेंट्स के कारोबार में हासिल कर रहे हैं बुलंदियां। अदनान शाह के कारोबार की हर तरफ हो रही है सराहना, चला रहे हैं अपने ब्रांड के 20 से अधिक आउटलेट्स, मल्टी ब्रांड परिधान श्रृंखला के क्षेत्र में शानदार कामयाबी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जैविक खेती ने पकड़ा जोर, किसानों की हो रही है शानदार कमाई। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की ओर से जम्मू कश्मीर में जैविक खेती को दिया जा रहा है बढ़ावा, किसानों को लाभ पहुंचाने की पहल। हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में दुर्गम पहाड़ों से शिलाजीत निकालने में जुटे लोग, कई रोगों के लिए मानी जाती है रामबाण औषधि। फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटा मैक्सिको का ग्वाडालाजारा, हजारों विदेशी फुटबॉल प्रशंसकों के स्वागत की तैयारी पूरी रफ्तार पर। प्रमुख चौक और फैन जोन फुटबॉल उत्सव के लिए सजाए जा रहे हैं ऐतिहासिक चर्च, थिएटर और सांस्कृतिक स्थलों का लुत्फ उठाएंगे पर्यटक। पर्यटकों की सुविधा के लिए ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस, होटल रेस्टोरेंट स्थानीय कारोबारियों को होगा आर्थिक लाभ। फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंगी मेक्सिको सिटी राजधानी की सड़कों पर खिलाड़ियों के भित्ति चित्र वर्ल्ड कप सजावट छाई। पूरा शहर फुटबॉल महाकुंभ के स्वागत के लिए उत्सवी माहौल में डूबा, 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप। हांगकांग में रोबोटिक वॉलेंटियर एसोसिएशन की शानदार शुरुआत, रोबोट डॉग्स अब नर्सिंग होम में निभाएंगे साथी की भूमिका। बुजुर्गों के साथ समय बिताने और मदद करने पहुंचेंगे रोबोट डॉग, सामुदायिक देखभाल कार्यक्रमों में भी दिखेगी रोबोट टीम। ट्रेनिंग पूरी करने वाले छात्र बनेंगे रोबोट वॉलेंटियर, सीखे गए तकनीकी कौशल का मैदान में होगा प्रदर्शन। चीन के बुजुर्गों ने एब व्हील वॉकआउट से जीता दिल, तियानजिन के बुजुर्गों का फिटनेस वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। एब व्हील रोल आउट करते सीनियर्स की ताकत देख लोग हुए हैरान, मुश्किल एक्सरसाइज को बुजुर्गों ने बेहद आसानी से किया। चीन का स्पेस स्टेशन 41 किलो वैज्ञानिक सैंपल्स लेकर धरती पर लौटा, 23 अंतरिक्ष प्रयोगों के नमूने शेंजाओ 22 कैप्सूल से वापस आए। अंतरिक्ष में जेब्रा फिश के भ्रूण सफलतापूर्वक छोटी मछलियों में बदले, स्टेम सेल से बने आर्टिफिशियल भ्रूण का प्रयोग पूरी तरीके से हुआ रिकॉर्ड। नए टाइटेनियम अलॉय और हाई स्ट्रेंथ स्टील के नमूने की जांच शुरू, शोध से लंबी अंतरिक्ष यात्राओं और डीप स्पेस मिशनों को मिलेगा बड़ा फायदा। इक्वाडोर में फीफा वर्ल्ड कप से पहले बच्चे फुटबॉल के जरिए बुन रहे बड़े सपने, चेल्सी एकेडमी से जमकर ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे और युवक। चेल्सी मिडफील्डर मोइजेस के साडो से काफी प्रभावित है बच्चे, युवा खिलाड़ियों का सपना एक दिन कैसीडो की तरह वर्ल्ड कप खेलना है।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Or country roads. Thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: खबरें तो आ रहा है।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके

0: अपने सपनों को भी बखूबी पूरा कर सकती हूँ। दोस्ती की ये अनोखी मिसाल दिल को छू लेती है। एक बच्चा अपने खाने को एक तोते के साथ शेयर कर रहा है और दोनों आराम के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ये मासूम दोस्ती इंसानों और प्रकृति के बीच प्यार और अपनापन दिखाती है। चिड़िया हमारी बचपन की साथी हुआ करती थी, लेकिन आज इन्हें देख पाना दुर्लभ हो गया है। ये नज़ारा बचपन की यादें ताज़ा कर देता है, जब हम चिड़ियों को नहाते हुए देखकर मौसम बदलने की उम्मीद करते थे। आज वही मासूम पल बहुत याद आते हैं। ये छोटी बच्ची अपनी मासूमियत और एनर्जी से दिल जीत रही है। दो चोटियों में सजी ये नन्ही परी मस्ती में झूमते हुए अपने हर स्टेप को बेहद क्यूट अंदाज में कर रही है। उसकी खुशी और नटखटपन देखने वालों का मन खुश कर देती है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें
2: का कौन सा राजयोग बड़ी मेहनत के बाद बहुत बड़ी सफलता देता है? शनि का कौन सा राजयोग विवाह के बाद भाग्य चमका देता है? कौन से हैं शनि के राजयोग और क्या है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
4: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
3: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
4: They score!
3: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है।
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर।

0: किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: पवित्र चार धाम यात्रा के दौरान हर रोज बन रहे नए रिकॉर्ड, महज 39 दिनों में 10 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में मुस्तैद प्रशासन। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चली तेज हवाओं से गिरा पारा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों का रुख कर रहे हैं लोग, उत्तराखंड के मसूरी में हर रोज बढ़ रही सैलानियों की तादाद, पहाड़ों की रानी में सड़कों पर थमा ट्रैफिक। हिमाचल प्रदेश में मनाली की खूबसूरत वादियां सैलानियों से गुलजार, रोहतांग के माइनस तापमान में भी मस्ती करते नजर आ रहे हैं पर्यटक, बर्फीले पहाड़ों पर एडवेंचर का भी उठा रहे हैं लोग। राजस्थान में रेतीले तूफान का बवंडर, श्रीगंगानगर में दिन में हुआ अंधेरा, बवंडर के बाद हुई बारिश से तापमान में आई 8 डिग्री की गिरावट। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को मिली 538 नए अग्निवीरों की ताकत, 24 महीने के कठोर प्रशिक्षण के बाद 7वें बैच ने ली शपथ, लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर में पासिंग आउट परेड।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छे।
6: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत और फैक्ट चेक में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो को कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल कर दिया जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच के धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। जी हां, तो फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि तीनों वीडियो मध्य प्रदेश के भोपाल के हैं, जहां लव जिहाद के आरोप में एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले शख्स को पीटने के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, ये आगे आपको बताएंगे। तो हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि भारत में सरकारी स्कूल में पढ़ते बच्चों पर पंखा गिरने से हड़कंप मच गया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, ये भी आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
6: सोशल मीडिया पर 3 वीडियो खूब वायरल किए जा रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि हाल ही में भोपाल में एक धर्म विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले शख्स पर हुए हमले से इन 3 वीडियो का संबंध है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: 10 मई को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले शख्स पर होटल के अंदर हमला किया गया। कुछ लोग होटल में घुस आए और उस पर लव जिहाद का आरोप लगाकर पीटा। हालांकि उस वक्त व्यक्ति के साथ मौजूद महिला ने पुलिस को बताया कि वो लिव इन रिलेशनशिप में थी। हमले का वीडियो वायरल होने के बाद 12 मई को पुराने भोपाल में व्यापक विरोध प्रदर्शन भी हुआ। प्रदर्शनकारी पीर गेट और पुलिस कमिश्नर कार्यालय के पास जमा हुए और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसी मामले से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये 3 वीडियो खूब वायरल किए जा रहे हैं। वायरल हो रहे पहले वीडियो में एक शख्स को कुछ लोग घेर कर खड़े हैं। वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि ये लोग शख्स के बाल पकड़कर सड़क पर खींच कर ले जा रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में एक इमारत में भयानक आग लगी हुई दिख रही है। वहीं तीसरे वायरल वीडियो में कुछ लोगों को प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है।
1: दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले शख्स पर होटल के अंदर हमला किया गया। कुछ लोग होटल में घुस आए और उस पर लव जिहाद का आरोप लगाकर उसको खूब पीटा। हालांकि उस व्यक्ति के साथ मौजूद महिला ने पुलिस को बताया कि वो लिव इन रिलेशनशिप में थी। हमले का वीडियो वायरल होने के बाद 12 मई को पुराने भोपाल में व्यापक विरोध प्रदर्शन भी हुआ। अब इसी से इस घटना को जोड़ते हुए तीनों वीडियो को खूब वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना बेहद जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो को बारी बारी से जांच किया। टीम ने तीनों वीडियो को गौर से देखा। पहले वीडियो में जिस शख्स को घेर कर भीड़ खड़ी है, जब हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की तो सामने आया कि 10 मई को भोपाल में जिस शख्स को लव जिहाद के आरोप में पीटा गया था वो ये शख्स नहीं है। दूसरे वीडियो में एक इमारत में भयानक आग दिख रही है, इसका भी हालिया भोपाल कांड से कोई संबंध नहीं मिला। वहीं तीसरा वीडियो ताज उल मस्जिद का है जो पुराने भोपाल में स्थित है। जी हां, इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच के लिए इंटरनेट और भोपाल के मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन इस दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। साथ ही भोपाल में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 45 लोग मारे गए, इसके बारे में भी कोई आधिकारिक रिपोर्ट देखने को नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। और सबसे पहला सवाल ये कि वायरल हो रहे तीनों वीडियो के पीछे की आखिर असली कहानी क्या है, और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच अफवाह फैलाने की साजिश तो नहीं की जा रही। तो आइए देखते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है।
0: जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें भोपाल में सामूहिक हत्याओं या मस्जिदों में आगजनी की कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली। इसके अलावा भोपाल की अतिरिक्त डीसीपी शालिनी दीक्षित ने गुड न्यूज टुडे के फैक्ट चेक को बताया कि पुलिस ने किसी भी प्रदर्शनकारी पर गोली नहीं चलाई और न ही किसी मस्जिद में आग लगाई गई। यहां से इतना तो साफ हो जाता है कि वायरल हो रहे वीडियो के जरिए गलत जानकारी फैलाई जा रही है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने आग वाले दूसरे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 13 मई की फेसबुक पोस्ट मिली। पोस्ट में बताया गया था कि भोपाल में पीपुल्स हॉस्पिटल के सामने एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। 13 मई को छपी एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 13 मई को भोपाल के करोंद इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम के जनरेटर से आग निकली और देखते ही देखते आसपास के एयर कंडीशनर और फर्नीचर में फैल गई। इस घटना में किसी की जान नहीं गई। इसके बाद हमने तीसरे यानी प्रदर्शन के वीडियो के बारे में पता लगाया। सर्च के दौरान हमें 13 मई को एक रिपोर्ट में एक वीडियो मिला जिसमें कहा गया था कि आरिफ खान पर हमले के बाद भोपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों का है। रिपोर्ट के अनुसार विरोध प्रदर्शन काजियात परिसर में शुरू हुआ था। सर्च के दौरान हमें 13 मई को एक इंस्टाग्राम यूजर का पोस्ट किया गया दूसरा विरोध प्रदर्शन वाला वीडियो मिला। इसका कैप्शन था ताजुल मस्जिद। बता दें 12 मई को पुराने भोपाल में इसी मस्जिद के पास प्रदर्शनकारी जमा हुए थे। हालांकि हम वीडियो के शूट होने की तारीख का पता नहीं लगा सके। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में बच्चे कक्षा में पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखता है कि अचानक छत पर लगा पंखा टूटकर बच्चों के ऊपर गिर जाता है। इस वीडियो को शेयर करके भारत का इसे बताया जा रहा है। वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: सरकारी स्कूल में पढ़ते बच्चों का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं, तभी उनके ऊपर एक पंखा टूटकर गिर जाता है। इस वीडियो को भारत के स्कूल में हुई घटना का बताते हुए शेयर किया जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, सिर्फ पंखा गिरा है वरना तो हवाई जहाज गिर जाता। देश हित में क्या गरीब के 3 बच्चे एक पंखे से चोट भी नहीं खा सकते। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार वायरल किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं, तभी उनके ऊपर एक पंखा टूटकर गिर जाता है। इस वीडियो को भारत के स्कूल में हुई घटना का बताते हुए शेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बेहद जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की जांच की और टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान ग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये काफी हद तक नेपाली जैसा लगा। आप भी सुनिए इन आवाजों को। तो सुना आपने। इसके बाद टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच के लिए इंटरनेट और मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन यहां पर हाल फिलहाल में ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट हमें नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल जो निकल कर आया वो ये कि अगर दावा सही है तो वायरल वीडियो कब का है और कहां का है, और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच भ्रम फैलाने की साजिश तो नहीं की जा रही, लोगों के बीच अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। तो आइए देखते हैं इसके पीछे का सच और झूठ क्या है।
0: फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो से जुड़ी एक रिपोर्ट एक फेसबुक पेज पर मिली। इस पोस्ट को 21 मई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूद जानकारी के अनुसार ये वीडियो नेपाल के एक स्कूल में हुई घटना का है। इस जानकारी के आधार पर हमने पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट्स नेपाली वेबसाइट पर प्रकाशित मिली। इन रिपोर्ट्स को 7 मई 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार वीडियो नेपाल के बीरगंज के एक स्कूल का है। दरअसल सिद्धार्थ स्कूल में जब बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे उसी दौरान उनके ऊपर पंखा टूटकर गिर गया था और 7 बच्चे घायल हो गए थे। घायल बच्चों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। साफ है वायरल दावा गलत है। असल में वायरल वीडियो का भारत से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो नेपाल में हुई एक घटना का है जिसे अब गलत दावे के साथ भारत का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि सासाराम से पटना जा रही ट्रेन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि ट्रेन में आग लगी हुई है और एक महिला गोद में बच्चे को लिए हुए है। वे खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए।
0: आग का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए हुए है। वो खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, सासाराम से चलने वाली ट्रेन में आग लगी है, बहुत ही भयानक, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। वायरल वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर यूजर्स इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसे लगातार वायरल किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए हुए है। ये खुद को और अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर ये दावा भी किया जा रहा है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का ये वीडियो है, जहां एक ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की और जांच पड़ताल के दौरान दावे की सच्चाई जानने के लिए टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसी कई चीजें देखने को मिली जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। वीडियो में एक शख्स ने कैमरा पकड़ा हुआ है और उसके पीछे एक शख्स ने माइक पकड़ा हुआ है। ऐसे में हमें ये किसी शूटिंग के दौरान का वीडियो होने का इस पर संदेह हुआ। 18 मई 2026 को बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के कोच में आग लग गई थी। जब आग लगी थी उस दौरान ट्रेन खाली थी और कोई यात्री उसमें मौजूद नहीं था, जबकि वायरल वीडियो में यात्री नजर आ रहे हैं। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो के सवालों को कसौटी पर कसा और इस वीडियो को देखते हुए ये सवाल निकला कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने अब तक क्यों नहीं आई, और दूसरा सवाल ये कि कहीं शूटिंग के वीडियो को नया एंगल देकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। तो आइए देखते हैं हमारी टीम ने क्या सच खंगाल कर निकाला है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। वीडियो को 9 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक वीडियो गोधरा फिल्म की शूटिंग के बिहाइंड द सीन्स का है। प्राप्त जानकारी के आधार पर हमने YouTube पर फिल्म के ट्रेलर को सर्च किया। हमें ट्रेलर एक आधिकारिक YouTube चैनल पर मिला। ट्रेलर 25 जून 2024 को शेयर किया गया था। वीडियो में 19 सेकंड पर वायरल वीडियो वाली महिला को देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि 18 मई 2026 को बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के कोच में आग लग गई थी। हादसे का पता चलते ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई थी। जब आग लगी उस दौरान ट्रेन खाली थी और कोई यात्री उसमें मौजूद नहीं था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये स्पष्ट हो गया कि सासाराम ट्रेन हादसे के नाम पर वायरल वीडियो किसी असली घटना का नहीं है। असल में वायरल वीडियो साल 2024 में रिलीज हुई गोधरा फिल्म का है। उस फिल्म के एक सीन को गलत दावे के साथ सासाराम स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ चल रहा है। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
5: तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का, जब हम पेश करने वाले हैं कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
10: सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़े वीडियो लोगों के बीच आए दिन वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों लोगों के बीच सामने आया है जिसने हर किसी का ध्यान खींचा है। इसमें एक छोटी सी बच्ची बेहद मासूम अंदाज में पीएम मोदी से अपने मम्मी पापा की शिकायत करती नजर आ रही है। उसकी प्यारी आवाज, भोले चेहरे के एक्सप्रेशन और बात करने का तरीका लोगों को इतना पसंद आया कि ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। शिकायत के साथ बच्चे के चेहरे पर है मुस्कान। उसकी ये मासूम शिकायत लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आई। वीडियो में बच्ची जिस तरह से हाथ जोड़कर और प्यारे एक्सप्रेशन के साथ अपनी बात कहती है वो हर किसी को बेहद क्यूट लगा। एक तरफ जहां लोग जिम जाने के लिए समय और पैसे दोनों खर्च करते हैं, वहीं एक शख्स ने फिट रहने के लिए अपने ही घर की छत पर बहुत ही आसान और सस्ता सा समाधान ढूंढ लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी छत पर टहल रहा है। उसने अपने छत पर कुछ ऐसे वॉक किया कि उस पर 8 के आकार का एक निशान बन गया, जो कि पूरे छत से अलग ही हाईलाइट हो रहा है। इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि शख्स ने छत पर ही वॉकिंग ट्रैक बना लिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि व्यक्ति लगातार इसी 8 के आकार पर चलते हुए वॉक कर रहा है। वीडियो को ऊपर से शूट किया गया जिससे पूरा पैटर्न साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शख्स के इस वीडियो को देख ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने घर की छत को ही छोटा सा पार्क बना दिया हो। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये प्रैंक वीडियो लोगों के बीच तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स अपने ऑफिस के साथियों के साथ ऐसा मजाक करता है जिसे देखकर इंटरनेट यूजर्स भी खूब मनोरंजन कर रहे हैं। क्लिप की शुरुआत में एक व्यक्ति बेहद नॉर्मल तरीके से अपने साथ काम करने वाले लोगों के पास जाता है और उन्हें प्रसाद देने के लिए कहता है। ऑफिस का माहौल भी बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, इसीलिए किसी को उस पर शक नहीं होता। लोग भी बिना ज्यादा सोचे समझे प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब लोगों को पता चलता है कि वो कोई मिठाई या धार्मिक प्रसाद नहीं बल्कि खट्टा नींबू का रस है। जैसे ही लोग उसका स्वाद चखते हैं उनके चेहरे अचानक बदल जाते हैं। किसी की आंखें सिकुड़ जाती हैं तो कोई तुरंत मुंह बना लेता है, तो कोई अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता नजर आता है। कुछ लोग तो ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे उन्हें भरोसा ही न हो कि उनके साथ ऐसा मजाक हुआ है। वीडियो की सबसे मजेदार बात यह है कि हर व्यक्ति का रिएक्शन अलग अलग है। कोई धीरे धीरे समझ पाता है कि स्वाद इतना अजीब क्यों है, जबकि कुछ लोग तुरंत झटका महसूस करते हैं। एक दो कर्मचारी तो ऐसे भी दिखते हैं जो खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके चेहरे साफ बता देते हैं कि नींबू की खटास ने उन्हें पूरी तरह चौंका दिया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है। ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह से सब्जी मंडी में बदल गई, जहां महिलाएं बैठकर ताजी सब्जियां बेच रही थी और यात्री उनसे खरीदारी करते नजर आ रहे थे। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ट्रेन तेज रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही है। इसी दौरान बोगी के फर्श पर कुछ महिलाएं अलग अलग तरह की सब्जियां सजा कर बैठी हुई हैं। किसी के सामने आलू और प्याज रखे हैं, तो कहीं टमाटर, गोभी, बैंगन और हरी सब्जियों का ढेर नजर आ रहा है। महिलाएं बेहद सहज तरीके से ग्राहकों से बात करती दिख रही हैं। यात्री भी बिना किसी झिझक के उनसे सब्जियां खरीद रहे हैं। कोई दाम पूछ रहा है तो कोई थैली में सब्जियां भरवा रहा है। कुछ महिलाएं पैसे गिनती नजर आती हैं, तो कुछ ग्राहकों को सामान पकड़ा रही हैं। पूरा माहौल बिल्कुल किसी छोटे बाजार जैसा लग रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि ये मंडी सड़क पर नहीं बल्कि ट्रेन के अंदर लगी हुई थी। घर की दीवारों पर लगी हाथ से बनाई गई पेंटिंग्स अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। जब कोई मेहमान उन्हें देखकर तारीफ करता है तो कलाकार को अलग ही खुशी मिलती है, लेकिन कई बार कुछ तारीफें इसलिए भी खास बन जाती हैं क्योंकि वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लोगों की तरफ से आती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला आर्टिस्ट की पेंटिंग्स की तारीफ करने वाले लोग कोई आर्ट एक्सपर्ट नहीं बल्कि एसी ठीक करने आए टेक्नीशियन थे। यही बात इस वीडियो को बेहद दिलचस्प और भावुक बना देती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टेक्नीशियन कमरे में लगी हर पेंटिंग को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। वो किसी जल्दी में नहीं दिखते बल्कि हर तस्वीर के सामने रुककर उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। उनके चेहरे के हाव भाव ये बता रहे थे कि वो सचमुच उन कलाकृतियों से प्रभावित थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी आर्ट गैलरी में खड़े होकर लोग कलाकार की मेहनत को महसूस कर रहे हों। सबसे खास बात ये रही कि उन लोगों की प्रतिक्रियाएं बनावटी नहीं लग रही थी। सोशल मीडिया पर फौजी का ये शानदार डांस इन विरोध तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जवान पूरे जोश और मस्ती के साथ डांस करता नजर आ रहा है, जिसे देखकर आसपास बैठे लोग भी तालियां बजाने लगते हैं। फौजी का देसी अंदाज और चेहरे की खुशी इंटरनेट यूजर्स को खूब पसंद आ रही है।

गांव के एक खास समारोह में उस समय माहौल पूरी तरह बदल गया जब एक लड़की ने एक पॉपुलर गाने पर शानदार डांस किया। रंग बिरंगा लहंगा पहनकर जब वो मंच पर उतरी तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की नजर उसी पर टिक गई। उसकी जबरदस्त एनर्जी, आत्मविश्वास और बेहतरीन डांस स्टेप्स ने लोगों को इतना इम्प्रेस किया कि पूरा कार्यक्रम तालियों और उत्साह से गूंज उठा। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इंटरनेट यूजर्स इसे खूब पसंद।

0: वायरल हो रहे इस वीडियो में एक हाथी और एक छोटे से डॉगी की जबरदस्त बॉन्डिंग और मस्ती साफ नजर आती है। वीडियो में दिखता है कि एक बड़ा हाथी तालाब के किनारे खड़ा है और अपनी लंबी सूंड से पानी उछालकर उसे नन्हे डॉगी पर गिरा रहा था। हाथी का अंदाज ऐसा लगता है जैसे वो डॉगी को बारिश या झरने जैसा मजा दिला रहा हो। हाथी की इस हरकत से डॉगी भी काफी खुश दिखता है। पानी की बौछारों के बीच वो उछल कूद करता रहता है जैसे उसे कोई नेचुरल शावर मिल गया हो। वीडियो में उसकी पूंछ लगातार हिलती रहती है जिससे साफ पता चलता है कि वो इस मस्ती को दिल से एंजॉय कर रहा है। साथ ही वो कई बार हाथी को फिर से पानी डालने का इशारा भी करता नजर आता है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
4: It's college football time. College basketball feels
3: Pardon
4: like it's
3: my take.
5: The Rams catching the Commanders.
3: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn. There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: यानी का कौन सा राजयोग बड़ी मेहनत के बाद बहुत बड़ी सफलता देता है? शनि का कौन सा राजयोग विवाह के बाद भाग्य चमका देता है? कौन से हैं शनि के राजयोग और क्या है इनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: पवित्र चारधाम यात्रा के दौरान हर रोज बन रहे नए रिकॉर्ड। महज 39 दिनों में 10 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में मुस्तैद प्रशासन। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चली तेज हवाओं से गिरा पारा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों का रुख कर रहे लोग। उत्तराखंड के मसूरी में हर रोज बढ़ रही सैलानियों की तादाद, पहाड़ों की रानी में सड़कों पर थमा ट्रैफिक। हिमाचल प्रदेश के मनाली की खूबसूरत वादियां सैलानियों से गुलजार, रोहतांग के माइनस तापमान में भी मस्ती करते नजर आ रहे पर्यटक, बर्फीले पहाड़ों पर एडवेंचर का भी उठा रहे लुत्फ। राजस्थान में रेतीले तूफान का बवंडर, श्रीगंगानगर में दिन में हुआ अंधेरा, बवंडर के बाद हुई बारिश से तापमान में आई 8 डिग्री की गिरावट।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका GNT स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज आपको लेकर चलेंगे यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा पर। देवभूमि उत्तराखंड की पावन वादियों से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ पहाड़ों की नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों तक जाती है। चारधाम यात्रा का प्रथम पड़ाव है यमुनोत्री धाम, जहां से मोक्ष की राह का पहला कदम रखा जाता है। यही वो धाम है जहां श्रद्धा पहली बार परीक्षा देती है और आस्था पहली बार खुद को साबित करती है।
10: यमुनोत्री वो पावन द्वार है जहां से उत्तराखंड की पवित्र चार धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ होता है। ये केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि जीवन की शुद्धि का वो प्रथम पड़ाव है जो भक्त को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का क्रम यमुनोत्री से ही शुरू होता है। नियम कहता है कि भक्त सबसे पहले माँ यमुना का आशीर्वाद लेते हैं, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ जाए। ये यात्रा का वो आधार है जो भक्त को आगे की कठिन डगर के लिए तैयार करता है।
11: चार धामों में जो ये पहला तीर्थ है उसको कहते हैं तरती अनेना तीर्था, जहाँ पर व्यक्ति तर जाता है ऐसे तीर्थों में आके जो है स्नान पूजन और ध्यान करने से भगवत प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति होती है। यमुनोत्री में जो है सूर्यकुंड के दर्शन होते हैं और दिव्यशिला के दर्शन है, तत्र दिव्यशिला नाम स्पर्शानाम मुक्तिदायिनी, जहाँ पर स्पर्श करने से ही मुक्ति होती है। 11 किलोमीटर ऊपर कलिंद पर्वत से यमुना जी की मूल धारा उत्पन्न हुई है। कलिंद गिरि मस्तके पतत मंद पुरोज्वला और उगले संतप्ते तब शीतल पात्र से, उबलते हुए जल में जब मिलती है तो यहाँ से यमुना नाम की प्रसिद्धि होती है। जैमिनी नामक ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी और इसीलिए यमुना नाम यहाँ पर हुआ। शास्त्रों में आया है कि यमुना जी की धारा को देखने से 100 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। दृष्ट्वा जन्म शतम एकम, स्नात्वा जन्म शतद्वयम, पित्वा जन्म सहस्राणी, हंती यमुना कलयुगे। देखने से 100 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, स्नान करने से 200 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और पान करने से तो हजारों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए गंगा का स्नान और यमुना का पान बड़ा दुर्लभ कहा गया है।
10: उत्तरकाशी जिले के गढ़वाल हिमालय में 3,293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माँ यमुना का ये पवित्र धाम प्रकृति की गोद में अपनी संपूर्ण दिव्यता के साथ विराजमान है। पास में कालिंद पर्वत है जिसकी वजह से यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है। यहाँ बहती शीतल धारा भक्तों के तन और मन की सारी थकान पल भर में दूर कर देती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माँ यमुना भगवान सूर्य की पुत्री है, यमराज इनके जुड़वा भाई हैं और इसीलिए इन्हें यम की बहन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भाई दूज के दिन जब यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए तो यमुना ने उनसे वरदान मांगा कि जो भी भक्त उनके पावन जल में स्नान करेगा उसे यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ेंगी, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। इसीलिए यमुनोत्री को यम के भय से मुक्ति दिलाने वाला धाम भी कहा जाता है।
12: यमुना जी यहीं से प्रकट हुई है। यमुना जी की दो धारा है, एक तो जो गर्म धारा है वो यहाँ से निकली है और जो शीतल धारा है वो कलिंद पर्वत से निकली है और वो कलिंद पर्वत से जामुन के वृक्ष से निकली है। वहां पर कोई कलयुग का आदमी नहीं जा पाता है। तो कहा जाता है तत्र दिव्य शिला नाम प्रसाद मुक्तिदायिनी कलो धर्म विहीनाया पूजा करवंतु मानव। इस कलयुग के सच्चे मनुष्य पर माँ यमुना जी की कृपा अपार होती है, अपार आशीर्वाद होता है और इस शिला पर बैठता है, यहाँ पर बैठ कर माँ यमुना जी की पूजा सच्चे तन मन धन से करता है तो यम त्रास से मुक्त हो जाता है।
10: यमुनोत्री का मुख्य मंदिर काले पत्थर से निर्मित है जो माँ यमुना के श्यामल रूप का प्रतीक है। मंदिर के गर्भगृह में माँ यमुना की प्रतिमा विराजमान है जो भक्तों को वात्सल्य और शांति का आशीर्वाद देती है। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है लेकिन बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण इसका जीर्णोद्धार होता रहा। यहाँ की सबसे खास परंपरा है सूर्यकुंड के उबलते जल में कपड़े की पोटली में चावल और आलू पकाना। इसे माँ यमुना का प्रसाद मानकर भक्त अपने घर ले जाते हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। चारों ओर हाड़ कपा देने वाली ठंड हो वहाँ माँ के चरणों में जल खौलता रहता है।
13: ये सूर्यकुंड है, माँ यमुना सूर्य भगवान की पुत्री है तो यमुना जी कालिंदी पर्वत से निकली है तो यमुना जी ने सूर्य भगवान की तपस्या की। फिर यहाँ पे यमुना जी ने बोला मैं सूर्य पुत्री हूँ, कुछ प्रमाण होना चाहिए। फिर जैसा कोई अपनी लड़की को दहेज देता है उसे सूर्य भगवान ने यमुना जी को एक तेज अपना दहेज में दिया। यमुना ये पूर्व भागे सूर्य कुंडी स्मृति, वह यमुना के दाहिने तरफ सूर्य कुंड है जिस कहा गया है, स्कंद पुराण में बोला गया, अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजनो समुत भवः अन्न से अन्न पते अन्न नाम। यमुना मैया ने बोला मेरा जो यमुनोत्री धाम का जो प्रसाद जाएगा, कोई भी आएगा यमुना मानस भक्त यमुनोत्री धाम में, वह इस कुंड में चावल रोटी दाल बनता था, आज तो सारी व्यवस्था हो गई। 50 साल पहले यजमान और तीर्थ पुरोहित इसी कुंड में चावल रोटी दाल बनाता था और सब लोग उस महाप्रसाद को पाते थे।
10: हर साल अक्षय तृतीया के पावन दिन माँ यमुना के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। पूरा वातावरण जय माँ यमुना के जयकारों से गूंजता है। शीतकाल की दस्तक के साथ ही भाई दूज के दिन कपाट बंद कर दिए जाते हैं। माँ की डोली नीचे खरसाली गांव के खुशीमठ में लाई जाती है, जहां सर्दियों में उनकी पूजा होती है। चार धाम यात्रा शुरू होते ही यहीं भक्तों का तांता लगता है। माँ के धाम तक पहुंचने के लिए हनुमान चट्टी और जानकी चट्टी से शुरू होने वाली करीब 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई भक्तों के धैर्य की परीक्षा लेती है। यमुनोत्री तक की ये दुर्गम यात्रा भक्तों को पवित्र यमुना नदी के तट पर दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: और अब बात गंगोत्री धाम की पतित पावनी माँ गंगा, जिसके स्पर्श मात्र से भक्तों के पाप कट जाते हैं, जिसके तट पर आकर ठहर जाता है हर आध्यात्मिक खोज का सफर। गंगोत्री धाम उस महान तप का प्रमाण है, जिसने स्वर्ग की धारा को धरती पर उतरने के लिए विवश कर दिया था।

0: हिमालय की गोद में स्थित गंगोत्री धाम वो पवित्र स्थान है जो याद दिलाता है कि आस्था में इतनी शक्ति है कि वो ईश्वर को भी धरती पर उतरने को विवश कर देती है। ये वो जगह है जहाँ से पाप नाशिनी गंगा का सफर शुरू होता है जो करोड़ों आत्माओं को मोक्ष प्रदान करती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि इस मृत्युलोक के लिए स्वर्ग का वरदान है। उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3,140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री धाम उत्तराखंड के चार धामों में से एक है। यहाँ माँ गंगा भागीरथी के रूप में रहती हैं। यहाँ राजा भागीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तप किया था। यहाँ का कण कण उस महान तप और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास की गवाही देता है। पौराणिक कथा कहती है कि माँ गंगा राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वर्ग से धरती पर आईं। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण लिया था। जब गंगा के वेग से धरती के फटने का खतरा उत्पन्न हुआ तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर उनके वेग को नियंत्रित किया और फिर धरती पर प्रवाहित किया। इसी जगह पर माँ गंगा ने महादेव की जटाओं से निकल कर इस धरती का स्पर्श किया। गंगोत्री की सुंदरता शब्दों से परे है। सफेद बर्फ से ढकी चोटियाँ, देवदार के घने जंगल और चट्टानों से टकराती गंगा की गर्जना। गंगोत्री मंदिर सफेद संगमरमर से बना है जो माँ गंगा की धवल और स्वच्छ धारा का प्रतीक है। करीब 20 फीट ऊंचे गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने करवाया था। बाद में जयपुर के घराने ने इसका जीर्णोद्धार किया। सदियों से स्थान ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है। भक्तों के लिए गंगोत्री धाम आना जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। मान्यता है कि यहाँ के सूर्य कुंड और ब्रह्म कुंड में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद लेने से न केवल मन शुद्ध होता है बल्कि इंसान को जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की नई ऊर्जा भी मिलती है। यमुनोत्री के बाद चार धाम यात्रा का दूसरा पड़ाव गंगोत्री ही है। यहाँ से श्रद्धालु गंगा जल लेकर केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरफ बढ़ते हैं। बिना गंगोत्री के जल के महादेव का अभिषेक अधूरा माना गया है, इसलिए इस धाम की यात्रा का विशेष महत्व रहा है। हर साल चार धाम यात्रा शुरू होते ही भक्तों के बीच उत्साह की लहर दौड़ पड़ती है। कठिन पहाड़ी रास्ते, बदलता मौसम, लेकिन श्रद्धा इतनी प्रबल होती है कि श्रद्धालुओं को हर बाधा छोटी लगती है। माँ गंगा का दरबार ऋतुओं के साथ अलग अलग जगह सजता है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं। हर साल गोवर्धन पूजा के बाद कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद माँ गंगा की उत्सव मूर्ति को डोली में सजाकर मुखबा गांव ले जाया जाता है जहां सर्दियों के 6 महीने उनकी पूजा होती है। माँ गंगा हमें बहना और ठहरना दोनों ही सिखाती हैं। गंगोत्री धाम से हर श्रद्धालु ये सीखता है कि चाहे कितनी भी ऊंचाई से गिरना पड़े, अगर लक्ष्य पवित्र है तो आप पूरी दुनिया को जीवन दान दे सकते हैं। ये धाम सिर्फ एक स्थान भर नहीं, जीवन का आरंभ है। यहीं से वो धारा बहती है जो न केवल शरीर बल्कि आत्मा को भी पवित्र करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चार धाम यात्रा पूरे भक्ति भाव और उत्साह के साथ जारी है। कोई माँ यमुना के दर्शन को आतुर है तो कोई माँ गंगा के चरणों में शीश झुकाने के लिए लंबी यात्रा कर रहा है। कपाट खुलने के बाद से अब तक लाखों श्रद्धालु इन पवित्र धामों में पहुंचकर दर्शन पूजन कर चुके हैं।
0: उत्तरकाशी जिले में मौजूद पवित्र यमुनोत्री धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 19 अप्रैल को धाम के कपाट खुलने के बाद से अब तक 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मां यमुना का आशीर्वाद ले चुके हैं। ये धाम चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव है और यमुना नदी का उद्गम स्थल है। हिमालय की गोद में बसे इस दिव्य धाम में जय माँ यमुना के जयकारों, बर्फीली हवाओं और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भक्तों की आस्था चरम पर दिखाई दे रही है। यमुनोत्री धाम में सुबह से लेकर शाम तक का माहौल भक्तिमय और ऊर्जा से भरा हुआ है। कालिंदी पर्वत की तलहटी में स्थित इस धाम में गूंजते हुए जय माँ यमुना के जयकारे यात्रियों की थकान को मिटा देते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता श्रद्धालुओं को आनंद से भर देती है। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियाँ, गहरी घाटियाँ, कल कल बहती यमुना, घने देवदार के पेड़ और हरे भरे जंगल, झरनों और बादलों से घिरा रास्ता यात्रा को रोमांचक और यादगार बना देते हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक का ट्रैक श्रद्धालुओं को प्रकृति के बेहद करीब ले जाता है।
2: वक्त मैं मौजूद हूँ यमुनोत्री नेशनल हाईवे के बड़कोट स्थान पर, और ये वही स्थान है जहाँ पर यात्री पंजीकरण जांच की जाती है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से तीर्थयात्रियों के वाहनों का काफिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर प्रत्येक दिन तीर्थयात्रियों की संख्या की बात की जाए तो जो पुराना रिकॉर्ड है वो लगातार टूटता चला जा रहा है।
0: पहाड़ों पर मौसम तेजी से बदलता है, इसीलिए प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को सलाह दी है कि वो गर्म कपड़े, रेनकोट और जरूरी दवाइयाँ अपने साथ रखे और मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर ही यात्रा करें। यमुनोत्री धाम को चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है। सनातन परंपरा के मुताबिक यात्रा हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर शुरू होती है, इसीलिए सबसे पहले यमुनोत्री के दर्शन किए जाते हैं। उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा का दूसरा पड़ाव गंगोत्री धाम है। यमुनोत्री में दर्शन पूजन कर श्रद्धालु सीधे गंगोत्री धाम पहुंचते हैं। ये धाम भी उत्तरकाशी जिले में है। दोनों धामों के बीच की दूरी करीब 225 किलोमीटर है। गंगोत्री धाम की तीर्थ यात्रा पूरे आस्था और उत्साह के साथ चल रही है। धाम में भक्ति का अद्भुत और दिव्य माहौल है। सुबह से लेकर शाम तक पूरा गंगोत्री परिसर हर हर गंगे और वैदिक मंत्रोच्चार के जयकारों से गूंजता रहा है। सुबह शाम माँ गंगा की आरती के समय भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। उन्नीस अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से अब तक करीब 4.5 लाख श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। चार धाम यात्रा में गंगोत्री इकलौता ऐसा धाम है जहां सड़क मार्ग से सीधे मंदिर के पास तक पहुंचा जा सकता है, इसीलिए यहां पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। इस समय उत्तराखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन का जोर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर है। भक्तों की सुविधा के लिए पंजीकरण, चिकित्सा, पुलिस सहायता काउंटर और सुरक्षित पार्किंग जैसे व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
2: आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रशासन के द्वारा है, जो यात्रियों की जो स्वास्थ्य जांच है उसके लिए भी यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र खोला गया है, जहाँ पर तीर्थयात्री आकर के अपने स्वास्थ्य की जांच करते हैं और उसके बाद आगे की ओर यानी कि जानकी चट्टी की ओर बढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर के प्रशासन ने फौरी तौर पर यह व्यवस्था की है कि यात्रियों को किसी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से न जूझना पड़े और उनकी प्राथमिक उनकी जांच यहां पर की जाए। तीर्थ यात्रियों का उपचार कर रही है, साथ में जो है स्वास्थ्य की जांच भी कर रही है। पीओसीटी मशीन है जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, शुगर्स आदि की जो है जाँच की जाती है, साथ में जो है ब्लड प्रेशर की भी यहाँ पर जाँच की जाती है।
0: हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगोत्री के पवित्र जल में डुबकी लगाने से मनुष्य के जन्म मरण के बंधन और सभी पाप कट जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चारधाम यात्रा पर हमारी इस खास पेशकश में भी लेता ही, बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
6: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
5: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
8: तो कभी भीमे भीमे पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: पीएम मोदी ने जब से देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तभी से जीएनटी भी आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजिए ताकि हम उन वीडियोस को दिखाएं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला लेकर चलते हैं, जहां के तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें एक वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने धर्मशाला समेत कांगड़ा वैली की खास जगहों के बारे में तस्वीरें हमसे साझा की है, आइए देखते हैं।

0: मैं आप सभी को भी न्योता देता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो देव भूमि है और हिमाचल के ही अंदर बसा हमारा ये सुंदर धर्मशाला, जहाँ एक तरफ धुलाधार की हसीन पहाड़ियाँ, जहाँ आज मई और जून के महीने में भी बर्फबारी धुलाधार की पहाड़ियों पर है। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सुंदर हमारा धर्मशाला, जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व का सबसे सुंदर स्टेडियम है वो धर्मशाला में है, चाहे मैक्लोडगंज जो नगरी है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, वो धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा जी यहाँ पर हैं। आप सभी आए और धर्मगुरु दलाई लामा जी का आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य आप सभी को मिलेगा। धर्मशाला के अंदर चाय के बगान है, आप उन्हें निहारने के लिए यहाँ आ सकते हैं। धर्मशाला के अंदर कई देवी स्थान, कई मंदिर, जैसे अगंजर महादेव, इंद्रनाग जी का मंदिर देवी स्थल है, और कई मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के शहर के अंदर है। बात करूं रोपवे की, तो धर्मशाला में धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए रोपवे की सुविधा है, आप उसका आनंद लेने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकते हैं। अगर कोई ट्रैकिंग का शौकीन है तो त्रिउंड जैसा एक ट्रैकिंग का हमारे पास स्पॉट जो है धर्मशाला के अंदर है, आप ट्रैकिंग के लिए भी त्रिउंड जा सकते हैं। साथ में धर्मशाला के लगते बाथू की लड़ी यहाँ घूमने के लिए है। मंदिर की बात करूँ तो रॉकट टेम्पल हमारे यहाँ है। धर्मशाला के साथ ही लगता कांगड़ा है, प्रदेश माता शक्तिपीठ धर्मशाला के अंदर लगते कांगड़ा में है। तो आप इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए धर्मशाला आए हिमाचल वासी, तो धर्मशाला अतिथि देवो भव के भाव के साथ आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपने आना कैसे है ये सबसे बड़ा प्रश्न है, तो बताऊँ आपको, धर्मशाला के ही समीप गग्गल एयरपोर्ट, जहाँ आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। रेलवे से अगर आपने आना है तो पठानकोट जो सबसे नजदीक हमारे पड़ता है उसके माध्यम से आ सकते हैं। जब दिल्ली से आपने आना है तो वोल्वो बसें जो है धर्मशाला तक आती हैं। इन तमाम साधनों से जो आप धर्मशाला आ सकते हैं। हम सभी धर्मशाला वासी आपके स्वागत के लिए और अतिथियों के, अतिथि देवो भव के भाव के साथ यहाँ पर।
1: तो आप भी

0: भारी कैमरा संभालते हुए वो शादी की फोटोग्राफी कर रही है, तो दूसरी तरफ अपनी छोटी बच्ची का भी ध्यान रख रही है। माँ की ममता से बच्चा परे ना हो, इसलिए ये साहस सिर्फ माँ ही कर सकती है। ये नज़ारा दिखाता है कि महिलाएं जिम्मेदारी के साथ अपने सपनों को भी बखूबी पूरा कर सकती हैं। दोस्ती की ये अनोखी मिसाल दिल को छू लेती है। एक बच्चा अपने खाने को एक तोते के साथ शेयर कर रहा है और दोनों आराम के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ये मासूम दोस्ती इंसानों और प्रकृति के बीच प्यार और अपनापन दिखाती है। चिड़िया हमारी बचपन की साथी हुआ करती थी, लेकिन आज इन्हें देख पाना दुर्लभ हो गया है। ये नज़ारा बचपन की यादें ताज़ा कर देता है, जब हम चिड़ियों को नहाते हुए देखकर मौसम बदलने की उम्मीद करते थे। आज वही मासूम पल बहुत याद आते हैं। ये छोटी बच्ची अपनी मासूमियत और एनर्जी से दिल जीत रही है। दो चोटियों में सजी ये नन्ही परी मस्ती में झूमते हुए अपने हर स्टेप को बेहद क्यूट अंदाज में कर रही है। उसकी खुशी और नटखटपन देखने वालों का मन खुश कर देती है।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: शनि का कौन सा राजयोग बड़ी मेहनत के बाद बहुत बड़ी सफलता देता है? शनि का कौन सा राजयोग विवाह के बाद भाग्य चमका देता है? कौन से हैं शनि के राजयोग और क्या है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
7: समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे।

0: अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: पवित्र चारधाम यात्रा के दौरान हर रोज बन रहे नए रिकॉर्ड, महज 39 दिनों में 10 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में मुस्तैद प्रशासन। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चली तेज हवाओं से गिरा पारा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों का रुख कर रहे लोग, उत्तराखंड के मसूरी में हर रोज बढ़ रही सैलानियों की तादाद, पहाड़ों की रानी में सड़कों पर थमा ट्रैफिक। हिमाचल प्रदेश के मनाली की खूबसूरत वादियां सैलानियों से गुलजार, रोहतांग के माइनस तापमान में भी मस्ती करते नजर आ रहे पर्यटक, बर्फीले पहाड़ों पर एडवेंचर का भी उठा रहे लुत्फ। राजस्थान में रेतीले तूफान का बवंडर, श्रीगंगानगर में दिन में हुआ अंधेरा, बवंडर के बाद हुई बारिश से तापमान में आई 8 डिग्री की गिरावट।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में, आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। वीकेंड की ये शाम कई गुड न्यूज लेकर आई है, मौसम बदल रहा है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, पहाड़ों की खूबसूरत वादियां सैलानी से गुलजार है, शौर्य की अद्भुत तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं, जहां 12 देशों के 400 से ज्यादा जवान एक लक्ष्य एक मिशन के साथ दिन रात एक कर रहे हैं। तमाम खबरें तमाम तस्वीरें आपके सामने होंगी, लेकिन अच्छी खबर सच्ची खबर में सबसे पहले बात IPL के घमासान की। गुड न्यूज यह है कि रोमांच का कारवां अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, आ गया है विराट फाइनल।

कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सीजन 19 का फाइनल खेला जाएगा। इस महामुकाबले में बेंगलुरु और गुजरात की टीमें आमने सामने होंगी, लेकिन इन सब के बीच फैंस की निगाहें एक खिलाड़ी पर टिकी हैं। किंग कोहली को आईपीएल की ट्रॉफी उठाने के लिए 18 साल का इंतजार करना पड़ा था, तब जाकर पिछले साल उनका यह सपना पूरा हुआ था। क्या टीम बेंगलुरु विराट कोहली को महाजीत का एक और तोहफा देगी, या शुभमन गिल अपनी कप्तानी में गुजरात को पहला फाइनल जिताएंगे? फिलहाल दोनों खेमे इस महामुकाबले के लिए तैयार हैं।

0: आईपीएल सीजन 19 के सबसे बड़े घमासान का महामंच सज चुका है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले के लिए गुजरात और बेंगलुरु की टीम तैयार है। सवाल यही है कि इस विराट मुकाबले में कौन मारेगा बाजी। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी खिताब बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरा सीजन ये टीम चैंपियन वाली धमक के साथ खेली है। 14 में से 9 मुकाबले जीत कर ये टीम सबसे पहले प्लेऑफ में पहुंची और फिर सबसे पहले फाइनल में जगह पक्की की। लेकिन अब फैसले की घड़ी है जहां ये रिकॉर्ड्स बेमानी होंगे। खिताबी मुकाबले में वही टीम बाजी मारेगी जो विराट जज्बा दिखाएगी, और जब बात जज्बे की हो तो किंग कोहली का कोई मुकाबला नहीं। दिलचस्प ये कि इस वक्त जज्ब ही नहीं जज्बात भी उफान पर हैं। लगातार दूसरी बार आरसीबी फाइनल में पहुंची है और तैयारी लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने की है। यूं तो आईपीएल के इतिहास में इस टीम का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। 5वीं बार ये टीम फाइनल में उतर रही है। इससे पहले 2009, 2011, 2016 और 2025 में आरसीबी फाइनल में खेली थी और अब एक बार फिर फाइनल में जौहर दिखाने की तैयारी है। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आरसीबी ने पिछले साल टाइटल जीता था। जाहिर है किंग एंड कंपनी महाजीत का स्वाद चख चुकी है, लिहाजा फाइनल में टक्कर जोरदार होगी। लेकिन उसकी राह आसान नहीं होगी क्योंकि आईपीएल में किंग कोहली की बादशाहत को चुनौती देने के लिए सामने खड़ी है शुभमन गिल की टोली। फाइनल का घमासान कांटे का होगा, इसकी तस्दीक आंकड़े भी करते हैं। आईपीएल में दोनों टीमों का अब तक 9 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें आरसीबी ने 5 और गुजरात ने 4 मैच जीते हैं। जब से रजत पाटीदार ने आरसीबी की कप्तानी संभाली है, इस टीम का अंदाज बदल गया है और किस्मत भी। इस युवा कप्तान ने अपनी सोच और रणनीति से सबका दिल जीता है। वहीं शुभमन गिल भी अपनी कप्तानी में गुजरात को पहला खिताब दिलाने को बेताब हैं। लिहाजा फाइनल की जंग महज 2 टीमों तक ही नहीं सिमटी है, 2 युवा कप्तान भी चैंपियन का ताज जीतने की तैयारी में हैं। यूं तो गुजरात टाइटन 2022 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खिताब जीत चुके हैं। इसके बाद 2023 में भी ये टीम फाइनल में पहुंची थी, लेकिन तब चेन्नई से फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब शुभमन गिल ये मौका नहीं चूकना चाहेंगे, लिहाजा तैयारी पक्की है और जोश हाई। दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान को हराकर शुभमन गिल एंड कंपनी ने फाइनल में जगह बनाई है। गुजरात की ताकत उसकी पेस बैटरी है। मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान जैसे गेंदबाजों से सजी बोलिंग लाइनअप का सामना इस सीजन की सबसे तगड़ी बैटिंग लाइनअप से होगा। विराट कोहली, रजत पाटीदार और देवदत्त पड्डीकल जबरदस्त फॉर्म में है, लिहाजा ये विराट फाइनल बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब सबको इंतजार है उस पल का जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किंग कोहली की टोली का सामना शुभमन गिल के चैलेंजर से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात शौर्य की। मेघालय के उमरोई में 12 देशों के 400 से ज्यादा सैनिक संयुक्त युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। 2 हफ्ते के इस युद्धाभ्यास का कल समापन होगा। इस एक्सरसाइज का मकसद क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूती देना है। साथ ही संयुक्त सैन्य अभ्यास का ध्येय इन जवानों के सामरिक और रणनीतिक कौशल को नई धार देना भी है, ताकि ये मुश्किल हालात में विश्व शांति और स्थिरता के लिए अपना योगदान दे सकें।

0: जोश और जज्बे से भरी ये तस्वीरें मेघालय के उमरोई सैन्य केंद्र की हैं, जहां भारतीय सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज प्रगति अंतिम दौर में है। खास बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में 12 मित्र देशों के 400 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इनमें भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम के जवान युद्ध और रणनीति पर आपसी समझ और बेहतर तालमेल पर फोकस कर रहे हैं। ये जवान इस दौरान यहाँ संयुक्त प्रशिक्षण तो ले ही रहे हैं, साथ ही अपने सामरिक अनुभव भी साझा कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों ने अर्ध पहाड़ी और घने जंगलों वाले इलाकों में कठिन सैन्य अभ्यास किए। इनमें रॉक क्राफ्ट, एम्बुश, काउंटर एम्बुश ड्रिल, स्लिथरिंग, जंगल लेन शूटिंग जैसे कठिन अभ्यास शामिल हैं। 2 हफ्ते का ये अभ्यास अब अंतिम चरण में है। ये ड्रिल पहाड़ी और घने जंगलों वाले दुर्गम इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों पर फोकस है। इस ट्रेनिंग का लक्ष्य इन जवानों की सामरिक और रणनीतिक कुशलता को नई धार देना भी है। अभ्यास के दौरान इन जवानों ने बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और रस्साकसी जैसी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया। इस कैंप से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की एक्टिविटीज से अलग अलग देशों की सेनाओं के इन जवानों के बीच आपसी विश्वास, टीम भावना और सहयोग बेहतर होता है।
1: हेलीबॉर्न ऑपरेशंस, वेरियस टैक्टिकल ड्रिल्स, नैप सिचुएशंस, ऑल दिस आल्सो प्रोवाइडेड अस द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड कमराडरी। इन एडिशन टू द टैक्टिकल ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स, soldiers have come closer by indulging themselves in sports and games as well as cultural activities.
0: जाहिर है दुर्गम स्थानों पर दुश्मन को मात देने की तैयारी है। ये मुश्किल हालात में हर चुनौती पर फौलादी चोट करने की तैयारी है। इसे न सिर्फ इन भारतीय जवानों की बल्कि इस संयुक्त अभ्यास का हिस्सा रहे मित्र देशों के जवानों की क्षमता और रणकौशल में सुधार होगा और आतंकवाद के खिलाफ मुकाबले के लिए ये जवान बेहतर और कारगर ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए तैयार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की यह पासिंग आउट परेड केवल एक सैन्य परंपरा नहीं बल्कि युवा संकल्प, अनुशासन और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यहां से निकलने वाले कैडेट आने वाले समय में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की ताकत बनेंगे। सालों की कठिन मेहनत और प्रशिक्षण के बाद ये युवा अब देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। उनकी उपलब्धियां न केवल उनके परिवारों बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।

शौर्य की चमक, समर्पण की मिसाल, अनुशासन की पहचान और राष्ट्र सेवा का अटूट संकल्प, यही है नए भारत का निर्माण। पुणे जिले के खड़गवासला की धरती पर आज वही गौरवशाली दृश्य नजर आया जो हर भारतीय के मन में गर्व का भाव जगा देता है। सामने थे देश के भावी सैन्य नेतृत्वकर्ता, जिनकी आंखों में सपने नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा का संकल्प दिखाई दे रहा था। सालों की कठिन साधना, अथक परिश्रम और अदम्य इच्छा शक्ति के बाद वो क्षण आया जब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें कोर्स के युवा अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण दहलीज पर खड़े नजर आए। ऐतिहासिक क्षेत्रपाल परेड ग्राउंड पर आयोजित ये समारोह केवल एक सैन्य परंपरा नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य और सम्मान का विराट उत्सव बन गया। महाराष्ट्र के पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें दल की पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें ऐतिहासिक क्षेत्रपाल परेड ग्राउंड पर आयोजित समारोह में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और सलामी लेकर युवाओं के उत्साह का अभिवादन किया। सुबह की सुनहरी किरणों के बीच जब टुकड़ियां मैदान में पहुंची तो पूरा वातावरण गौरव और सम्मान की भावना से भर गया। एक समान चाल, सटीक तालमेल तथा दृढ़ संकल्प ने दर्शकों को प्रभावित किया। मैदान में मौजूद हर व्यक्ति इन भविष्य के सैन्य नेतृत्वकर्ताओं का प्रदर्शन देखकर अभिभूत दिखाई दिए। इस अवसर पर कुल 355 प्रशिक्षु सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर देश की तीनों सेनाओं से जुड़ने की दिशा में आगे बढ़े। कठोर शारीरिक अभ्यास, शैक्षणिक उत्कृष्टता, नेतृत्व विकास और मानसिक मजबूती की लंबी प्रक्रिया के बाद ये महत्वपूर्ण दिन उनके जीवन में आया। दीक्षांत समारोह के दौरान विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले युवाओं को सम्मानित भी किया गया और सोशल साइंस स्ट्रीम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले पी स्क्वाड्रन के बीसीसी सुशांत वर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय बुनियादी विषयों पर विशेष ध्यान देने को दिया। उन्होंने बताया कि एकेडमी में आने के बाद उन्होंने लगातार स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम आज सभी के सामने है। समारोह के दौरान अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और उत्कृष्ट प्रशिक्षण की झलक हर प्रस्तुति में दिखाई दी। सधे हुए कदमों के साथ शानदार मार्च पास्ट ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। युवाओं ने बेहतरीन फॉर्मेशन बनाकर अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया। मैदान में गूंजती कमांड और उसके अनुरूप दिखाई देता तालमेल इस बात का प्रमाण था कि एकेडमी केवल सैन्य शिक्षा ही नहीं देती बल्कि व्यक्तित्व को भी नई दिशा प्रदान करती है। कार्यक्रम का एक और आकर्षण रहा पारंपरिक फाइनल स्टेप। ये क्षण हर प्रशिक्षु के लिए भावनात्मक महत्व रखता है, क्योंकि इसी के साथ वो प्रशिक्षण के एक महत्वपूर्ण अध्याय को पीछे छोड़कर जिम्मेदारियों से भरे भविष्य की ओर बढ़ता है। जैसे ही जमीनी प्रदर्शन समाप्त हुआ, आसमान में भी रोमांच देखने को मिला। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाईपास्ट पर अपनी क्षमता का परिचय दिया। आकाश में उड़ते विमानों की गर्जना ने पूरे परिसर को उत्साह से भर दिया। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस शानदार नजारे का स्वागत किया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में हर साल 2 बार पासिंग आउट परेड आयोजित की जाती है। ये परंपरा उन युवाओं की मेहनत, लगन और समर्पण को सम्मान देने का अवसर होती है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा का मार्ग चुना है। यहाँ दिया जाने वाला प्रशिक्षण शारीरिक क्षमता के साथ साथ निर्णय लेने की योग्यता, जिम्मेदारी निभाने की भावना और नेतृत्व कौशल को भी मजबूत बनाता है। आज का ये आयोजन केवल उपलब्धियों का सम्मान नहीं था बल्कि देश के उज्जवल भविष्य की तस्वीर भी था। मैदान से निकलने वाला हर युवा अपने साथ साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र प्रेम की अमूल्य पूंजी लेकर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: और आइए बात करते हैं मौसम की। गुड न्यूज यह है कि वीकेंड पर मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने 10 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस दौरान तेज रफ्तार से हवा चलने का भी अनुमान है। फिलहाल मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। दिल्ली NCR की बात करें तो कल भी यहां मौसम सुहाना बना रहेगा। राजधानी में अगले 2 दिन हल्की बारिश का अनुमान है। यहां अधिकतम पारा 38 और न्यूनतम पारा 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ये राहत 1 जून तक भी बनी रहेगी। हालांकि 2 जून से फिर पारा चढ़ेगा और गर्मी जोर पकड़ेगी। देश के बाकी मैदानी इलाकों की तरह यूपी के मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। यहां अगले 2 दिन बारिश आंधी का दौर बना रहेगा, साथ ही गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान की बात करें, यहां भी मौसम ने करवट बदल ली है। IMD के मुताबिक यहां भी पारा गिरा है, लिहाजा लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। हालांकि यहां कुछ जगहों पर आंधी और ओले गिरने का भी अनुमान है। अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार की बात करें तो यहां कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। कुछ एक जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। पहाड़ों पर मौसम का अंदाज बदला सा है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल की ऊंचाई वाली जगहों पर 4 जून तक बारिश का दौर जारी रहेगा, साथ ही साथ तेज रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। और समर ब्रेक में लगे बड़ी तादाद में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं लोग, और यही वजह है कि सरोवर नगरी नैनीताल में इन दिनों जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ झीलों की खूबसूरती, ठंडी हवाएं, प्राकृतिक नजारे सैलानियों को खूब आकर्षित कर रहे हैं, खूब भा रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में पर्यटक कैची धाम भी पहुंच रहे हैं।
1: नौतपा में सुकून की तलाश लोगों को पहाड़ों की ओर खींच रही है। ठंडी फिजाओं, हरियाली और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर सरोवर नगरी नैनीताल इन दिनों मेहमानों से गुलजार है। हालात ऐसे हैं कि शहर की सड़कें हों या दर्शनीय स्थल, हर तरफ रौनक ही रौनक दिखाई दे रही है। वीकेंड आते ही नैनीताल में चहल पहल कई गुना बढ़ गई। सुबह से लेकर देर शाम तक शहर के प्रमुख आकर्षण केंद्रों पर लोगों का तांता लगा रहा। माल रोड पर कदम रखने तक की जगह मुश्किल से मिल रही है।
2: तो हमना मौसम हो रहा है, नीचे लोग इस समय जहाँ गर्मी से तड़प रहे हैं, नैनीताल में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ तो स्वेटशर्ट पहनी हुई है। जो भी टूरिस्ट इस समय आ रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। ईद के बाद यहाँ पर को रश भी बढ़ने की हम काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला जो वीकेंड है वो बहुत अच्छा रहेगा, और हम बाकी सारे लोगों को वेलकम करना चाहेंगे कि नैनीताल आए और यहाँ के मौसम का पूरा आनंद।
1: शहर का सबसे बड़ा आकर्षण नैनी झील भी इन दिनों पूरी तरह आबाद है। नाव में बैठकर लोग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। ठंडी हवाओं के बीच इस झील पर इन सैलानियों की खुशी देखते ही बनती है। सूर्यास्त के समय यहां का दृश्य और भी मनमोहक दिखाई देता है, जिसे अपने कैमरे में कैद करने के लिए लोग उत्साहित नजर आते हैं।
3: जब से हम यहाँ पे आए हैं बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट हो रही है। आई थिंक जो टीचर्स हैं वो भी हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, देयर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड ओवरऑल रिजॉर्ट एंड सारी अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है। मौसम बहुत अच्छा है, लाइक बारिश का मौसम है और बहुत ठंड है, बट ठीक ही है, अच्छा है, बहुत अच्छा। तो बहुत गर्मी पड़ रही है, सही बहुत गर्मी हो जाती है, अगर घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, हमेशा लाइक AC में रहने का मन करता है। इधर आपको बहुत अच्छा लगता है,
4: इधर तो पंखा की भी जरूरत नहीं पड़ती,
3: वही इधर तो बस आप इधर
4: विंडो खोलना काफी है,
3: बहुत एंजॉय किया।
1: दूसरी ओर विश्व विख्यात बाबा नीम करोली महाराज के कैंची धाम में भी श्रद्धा का सैलाब लगातार बढ़ रहा है। देश के अलग अलग राज्यों के अलावा विदेशी नागरिक भी बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हर कोई आध्यात्मिक शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना लेकर यहाँ पहुँच रहा है। पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का अनूठा माहौल बना हुआ है। बढ़ती आवाजाही का सबसे बड़ा फायदा स्थानीय कारोबार को मिल रहा है। होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे सब सैलानियों से गुलजार हैं। टैक्सी सेवाओं की मांग में भी तेजी आई है। लंबे इंतजार के बाद बाजार में लौटी इस रौनक ने व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। हालांकि इस बढ़ते दबाव ने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। माल रोड, भवाली मार्ग, कालाडूंगी रोड और दूसरे एंट्री पॉइंट्स पर कई बार ट्रैफिक की गति बहुत धीमी पड़ जाती है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक टीमें लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
5: नैनीताल और जो आसपास के शहर हैं वहाँ पार्किंग कैपेसिटी बहुत कम है। सीजन के समय पे गर्मी की छुट्टियां हो चुकी हैं, इस समय काफी संख्या में जब टूरिस्ट आते हैं तो जो अंदर की जब पार्किंग फुल हो जाती है उसके बाद जो आउटर पेरिफेरीज में रूसी वन और रूसी टू दो डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेस है उन जगहों पे टूरिस्ट को रोका जाता है। वहां से जो स्थानीय शटल सेवा है उसके माध्यम से नैनीताल शहर के अंदर प्रवेश किया जाता है। यही सिस्टम कैंची धाम में भी लागू किया गया है। भीमताल विकास भवन पार्किंग और भवाली में सैनिटोरियम पार्किंग में यहाँ से श्रद्धालुओं को आगे कैंची धाम के लिए शटल के माध्यम से ही भेजा जाएगा। ये व्यवस्था पूरे पर्यटक सीजन में रहेगी और सभी पर्यटकों से ये अपील की जाती है कि वो इसमें पुलिस का सहयोग करें।
1: मौसम की सुहानी फिजा, पहाड़ों की ताजगी, झील की खूबसूरती और धार्मिक आस्था का संगम नैनीताल को इन दिनों लोगों की पहली पसंद बना रहा है। गर्मी से राहत पाने की चाहत में यहां लगातार बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: कभी कभी जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जो इंसान की पहचान को बदल देते हैं। एक ऐसा अनुभव जो सिर्फ कामयाबी नहीं देता बल्कि सोच, व्यवहार और नजरिया भी नया कर देता है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अपनी आने वाली फिल्म रामायण में भगवान राम का किरदार निभाते हुए उन्होंने खुद के भीतर कई बदलाव महसूस किए हैं। पिता बनने के बाद मिले इस अनुभव ने उनकी जिंदगी को किस तरह नई दिशा दी है, देखिए रिपोर्ट में।

0: बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता रणबीर कपूर इन दिनों अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म रामायण को लेकर सुर्खियों में हैं। इस भव्य प्रोजेक्ट में वो भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ये सफर केवल एक फिल्म तक सीमित नहीं रहा। इस अनुभव ने उनके व्यक्तित्व, भावनाओं, पारिवारिक जिम्मेदारियों और जीवन को समझने के तरीके पर गहरा प्रभाव डाला है। जब किसी कलाकार को इतिहास, संस्कृति और आस्था से जुड़े सबसे सम्मानित पात्रों में से एक को निभाने का अवसर मिलता है, तब चुनौती भी उतनी ही बड़ी होती है। यही एहसास रणबीर कपूर के मन में भी था। रणबीर कपूर का कहना है कि जब उन्हें इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मिला, तब उनके मन में सबसे पहला सवाल यही था कि क्या वो इतने प्रतिष्ठित चरित्र को पूरी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत कर पाएंगे। शुरुआत में उन्हें खुद पर पूरा भरोसा नहीं था, मन में झिझक थी, जिम्मेदारी का दबाव था और कहीं ना कहीं असफल होने का डर भी मौजूद था।
1: Years back, three or four years back, when Namit casually spoke to me in London, I was filming at that time, and he called me over to his house and he said that, you know, I'm attempting to make the Ramayana and would you be interested in essaying Lord Rama's role? And my first instinct was fear. And I was like, absolutely not, because I don't think I deserve it. I don't think I'm worthy enough. Forget about it.
0: हालांकि समय के साथ ये संकोच धीरे धीरे सम्मान में बदल गया, तैयारी आगे बढ़ी, कहानी को समझने का अवसर मिला और पात्र की गहराई को महसूस करने का मौका मिला। इसके बाद वही आशंका एक मजबूत जुड़ाव में बदल गई।
1: When I came back to India after a couple of weeks, I met Nitesh sir and Namit again, and they narrated the story to me, and I just realized what a fool I am, that apart from being career defining, this was an opportunity of a lifetime to be part of a vision like this, to take a film like Ramayana, which is our truth, our culture, our history, to take it global, to take it to a larger audience, that I was just filled with gratitude.
0: रणबीर कपूर का मानना है कि ये प्रोजेक्ट उनके पेशेवर सफर का केवल एक अध्याय नहीं है, बल्कि निजी जीवन का बेहद महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। उनके अनुसार इस अनुभव ने उन्हें कई मायनों में बेहतर बनाया है। रणबीर कपूर कहते हैं कि शूटिंग के दौरान उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आए। कुछ ऐसी आदतें जिन्हें वो लंबे समय से छोड़ना चाहते थे, उनसे दूरी बनने लगी। सोचने का तरीका बदला, परिस्थितियों को समझने की क्षमता बढ़ी। इस बातचीत में रणबीर कपूर ने अपनी बेटी राहा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिता बनने के बाद उनके जीवन में एक नई जिम्मेदारी आई। राहा के आने से उन्होंने खुद को अधिक संवेदनशील और समझदार महसूस किया। अभिनेता के मुताबिक बेटी ने उन्हें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दी, जबकि रामायण ने उन्हें ये सिखाया कि एक अच्छे पिता की भूमिका किस तरह निभाई जाती है। इन दोनों अनुभवों ने मिलकर उनके व्यक्तित्व को नई दिशा दी। रणबीर कपूर का मानना है कि सही समय पर सही अवसर मिलना किसी सौभाग्य से कम नहीं होता। उन्होंने इस बात पर भी खुशी जताई कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास पर इतने बड़े स्तर की प्रस्तुति तैयार की जा रही है, जिसका हिस्सा बनने का अवसर उन्हें मिला। अगर फिल्म की बात करें तो इस मेगा प्रोजेक्ट का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं। निर्माण की जिम्मेदारी यश और नमित मल्होत्रा संभाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये भारतीय सिनेमा की सबसे बड़े बजट वाली फिल्मों में शामिल होगी।

0: फिल्म में भगवान राम की भूमिका रणबीर कपूर निभाएंगे, जबकि माता सीता के रूप में साईं पल्लवी दिखाई देंगी। वहीं यश भी इस महत्वाकांक्षी परियोजना में अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। निर्माताओं ने इस कहानी को दो हिस्सों में दर्शकों के सामने लाने की योजना बनाई है। पहला भाग इस साल दिवाली पर रिलीज होगा, जबकि दूसरा अध्याय 2027 की दिवाली के अवसर पर सिनेमा घरों में रिलीज होगा।
1: और अभी के लिए फिलहाल यहाँ इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: शनि का कौन सा राजयोग बड़ी मेहनत के बाद बहुत बड़ी सफलता देता है? शनि का कौन सा राजयोग विवाह के बाद भाग्य चमका देता है? कौन से हैं शनि के राजयोग और क्या है इनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar, plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
10: गुड न्यूज टुडे.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे शनि के शुभ योग कौन से हैं और इनका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 31 मई 2026 दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, दोपहर 2:14 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, शाम के 4:12 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 31 मई 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है वृषभ राशि में, बुध बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मेष राशि में। और इसी आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम शनि के शुभ योगों की बात करें उसके पहले ये जानते हैं कि शनि का हमारे जीवन में रोल क्या है, शनि की हमारे जिंदगी में भूमिका क्या है। देखिए, शनि को नव ग्रहों में सेवक कहा जाता है। सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति, उसी तरह से शनि सेवक है। इसको न्याय का अधिपति भी कहा जाता है, न्याय का देवता भी मानते हैं। और शनि अनुशासन और कठोरता का ग्रह माना जाता है। शनि कानून, नौकरी, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी और संघर्ष से संबंध रखता है। अगर शनि के शुभ योग कुंडली में हैं तो ये जीवन को प्रगति की तरफ ले जाते हैं, जीवन में उन्नति करवाते हैं और संघर्ष थोड़े कम कर देते हैं। हालांकि शनि के शुभ योगों का प्रभाव थोड़ा विलंब से होता है। चंद्रमा के शुभ योग हों, मंगल के शुभ योग हों, तो उसका प्रभाव जीवन में जल्दी होगा। शनि के शुभ योग अगर कुंडली में हैं तो इसका प्रभाव थोड़े विलंब से होता है, इसका प्रभाव आने में समय लगता है। शनि के शुभ योगों पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, स्वास्थ्य में समस्या रह सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में बड़ा निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताओं से राहत मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शनि का जो पहला शुभ योग है उसका नाम है शश योग। क्या होता है शश योग? जो है वो शनि का सबसे बड़ा राजयोग है और ये शनि का पंच महापुरुष योग है। शनि अगर कुंडली में मकर, कुंभ या तुला राशि में बैठा हो तो शश नामक महायोग बन जाता है, लेकिन इसके लिए शनि लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अगर शनि लग्न से केंद्र में हो, तुला, मकर या कुंभ राशि में हो तो कुंडली में शश योग बन जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपार धन संपत्ति और अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और ऐसे लोग बहुत नीचे स्तर से उठकर जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। ये योग धनवान भी बनाता है, करियर में जीवन में बड़ा नाम बनाता है, बड़ी सफलता देता है, लेकिन चूंकि शनि का राजयोग है इसीलिए जीवन में संघर्ष के बाद ही व्यक्ति को बड़ी सफलता मिल पाती है। अगर आपकी कुंडली में शश योग है तो अपने से छोटों का हमेशा सम्मान करिए। जो लोग आपसे निर्बल हैं, दुर्बल हैं, पद में, प्रतिष्ठा में, स्टेटस में, उनका ध्यान रखिए और उनका सम्मान करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। शनि के दूसरे शुभ योग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम आज टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
पारिवारिक समस्या हल होगी, संतान की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंता समाप्त होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शनि का दूसरा शुभ योग है सप्तमस्थ शनि, यानी सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि। शनि सप्तम भाव में कुंडली में अगर बैठा हो तो ये भी शनि की एक शुभ स्थिति है। शनि सप्तम भाव में दिग्बली हो जाता है और यहां पर बैठा हुआ शनि सामान्यतः व्यक्ति को धनवान बनाता है। सप्तम भाव में शनि बैठा हो तो व्यक्ति धीरे धीरे बहुत सारा पैसा कमाता है। हालांकि सप्तम भाव में शनि बैठा हो तो सामान्यतः विवाह में विलंब होता है। अपने से ज्यादा बड़े उम्र की लड़की या लड़की से विवाह होता है या किसी ऐसे लड़की या लड़के से विवाह होता है जो दिखने में ज्यादा उम्र का दिखाई देता हो। सप्तम भाव में शनि के होने पर व्यक्ति कर्मठ होता है और अपने परिश्रम से आगे बढ़ता है। और ज्यादातर देखा गया है कि जिनके सप्तम में शनि हो ऐसे लोगों का भाग्य विवाह के बाद उदित हो जाता है। सप्तम भाव में जिनके शनि हो लोहे का, मशीनरी का, कंस्ट्रक्शन का, पॉलिटिक्स का ऐसा काम कर सकते हैं या ऐसे क्षेत्रों में जा सकते हैं। सप्तम के शनि की मुश्किल सिर्फ इतनी है कि विवाह में विलंब कराता है और अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति से विवाह कराता है, ऐसा देखा गया है। अगर आपकी कुंडली के सातवें भाव में शनि है तो नियमित रूप से शनि देव की पूजा करिए, आप अपने करियर में और धन के मामले में ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी, परिवार में कोई शुभ कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, करियर में लाभ के योग हैं, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि का राजयोग बनता है तो आप ये मत समझिए कि जीवन में चीजें आसानी से मिलेंगी। मिलेंगी जरूर, बहुत बढ़िया मिलेंगी और स्थाई मिलेंगी, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। शनि का जितना बड़ा राजयोग होगा मेहनत उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन राजयोग भी बहुत बड़ा होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में शनि का राजयोग है वो आपको फल नहीं दे रहा है, तो आप अपने खान पान को पवित्र करिए, नियमित रूप से शनि देव की पूजा करिए और जितना संभव हो सके लोगों की सहायता करिए, अन्न का, वस्त्र का, भोजन का दान करिए। अगर आप इतना काम रेगुलरली नियमित रूप से करने लगें तो शनि का राजयोग आपको फल अवश्य देगा। तो आज हमने बात की शनि के शुभ योगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। पति पत्नी को आग्नेय कोण के कमरे में, यानी साउथ ईस्ट के कमरे में रहने से बचना चाहिए। अगर पति पत्नी आग्नेय कोण के कमरे में रहेंगे तो बेवजह के विवाद और बेवजह के झगड़े परेशान करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 31 मई 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल सूर्य देव को रोली मिला हुआ जल अर्पित करें, इसके बाद लोटे के किनारे पर लगी हुई रोली अपने मस्तक पर लगा लें। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: The Tailgate Top 20.
2: Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
1: The Tailgate Top 20.
3: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
2: Try to keep up.
4: खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और आइए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
2: जिंदगी में खुश रहने के लिए कोई वजह जरूरी नहीं होती। ये नन्हा बच्चा स्टील के बर्तन की थाप पर मासूमियत से झूमता नजर आ रहा है। उसकी मुस्कान और छोटे छोटे कदम दिल को खुशी से भर देते हैं। सच में बचपन की यही सादगी जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। ये महिला नारी शक्ति की सशक्त मिसाल है। एक तरफ भारी कैमरा संभालते हुए वो शादी की फोटोग्राफी कर रही है, तो दूसरी तरफ अपनी छोटी बच्ची का भी ध्यान रख रही है। माँ की ममता से बच्चा परे ना हो, इसलिए ये साहस सिर्फ माँ ही कर सकती है। ये नज़ारा दिखाता है कि महिलाएं जिम्मेदारी के साथ अपने सपनों को भी बखूबी पूरा कर सकती हैं। दोस्ती की ये अनोखी मिसाल दिल को छू लेती है। एक बच्चा अपने खाने को एक तोते के साथ शेयर कर रहा है और दोनों आराम के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ये मासूम दोस्ती इंसानों और प्रकृति के बीच प्यार और अपनापन दिखाती है। चिड़िया हमारी बचपन की साथी हुआ करती थी, लेकिन आज इन्हें देख पाना दुर्लभ हो गया है। ये नज़ारा बचपन की यादें ताज़ा कर देता है, जब हम चिड़ियों को नहाते हुए देखकर मौसम बदलने की उम्मीद करते थे। आज वही मासूम पल बहुत याद आते हैं। ये छोटी बच्ची अपनी मासूमियत और एनर्जी से दिल जीत रही है। दो चोटियों में सजी ये नन्ही परी मस्ती में झूमते हुए अपने हर स्टेप को बेहद क्यूट अंदाज में कर रही है। उसकी खुशी और नटखटपन देखने वालों का मन खुश कर देती है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार

0: थोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: पवित्र चारधाम यात्रा के दौरान हर रोज बन रहे नए रिकॉर्ड, महज 39 दिनों में 10 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में मुस्तैद प्रशासन। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चली तेज हवाओं से गिरा पारा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों का रुख कर रहे लोग, उत्तराखंड के मसूरी में हर रोज बढ़ रही सैलानियों की तादाद, पहाड़ों की रानी में सड़कों पर थमा ट्रैफिक। हिमाचल प्रदेश के मनाली की खूबसूरत वादियां सैलानियों से गुलजार, रोहतांग के माइनस तापमान में भी मस्ती करते नजर आ रहे पर्यटक, बर्फीले पहाड़ों पर एडवेंचर का भी उठा रहे लुत्फ। राजस्थान में रेतीले तूफान का बवंडर, श्रीगंगानगर में दिन में हुआ अंधेरा, बवंडर के बाद हुई बारिश से तापमान में आई 8 डिग्री की गिरावट।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे।

0: हकीकत में बेस्ट, तकनीक में श्रेष्ठ, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार, हिंदुस्तान बना रहा है स्वदेशी हथियार।
1: जो देश अपने हथियार खुद बनाता है वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है।
0: आज भारत तोप की गोली से लेकर मिसाइल तक और फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक सब कुछ खुद ही तैयार कर रहा है। एक वक्त था जब भारत अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपनी ताकत को समझा, उसे जाना और खुद आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो अपने यहाँ ही बना रहा है। कई देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत ही भारत ने अपने यहाँ ही कई रक्षा उपकरणों को बनाना शुरू किया है। नतीजा ये है कि आज की डेट में भारत न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि दूसरे देशों का निर्यातक भी बन रहा है। डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
1: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
0: हर दिन नए हथियारों की चमक दुश्मनों को भयभीत कर रही है। भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जो दुश्मन की नापाक हरकतों का माकूल जवाब दे सके।
1: आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। साथियों, इसका एक और लाभ सीमा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह बहुत ही कठिन है, जटिल है, टफ है। हर जगह सैनिकों की तैनाती करना यह कोई आसान काम नहीं होता, मैं प्रत्यक्ष से महसूस कर रहा हूं। और ऐसे में ऑटोमेटेड निगरानी सिस्टम, रोबोटिक वाहन और सेंसर दिन रात सीमा की निगरानी कर सकते हैं, ऐसा सभी अब स्वीकार करने लगे हैं। इससे सुरक्षा भी बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उन पर दबाव भी कम रहता है।
0: म्यूनिशन और ऑटोमेटेड सिस्टम में भारत अगुआ बनकर उभरे, इसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है।
1: भविष्य के युद्धों में सबसे बड़ा अंतर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पास सैनिकों की संख्या कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन और ऑटोमेशन की दृष्टि से कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ युद्ध की आवश्यकता नहीं बल्कि शांति, विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। रक्षा क्षेत्र में यदि हम अभी तक दूसरों पर निर्भर रहे थे तो यकीन मानिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे डिफेंस सेक्टर और हमारे फाइनेंस सेक्टर को होता। लेकिन अब क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची, खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में, तो यही वजह है कि खासतौर पर तकनीक के मामले में और रक्षा तकनीक के मामले में आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है। 23 मई को महाराष्ट्र के शिरडी में एक बेहद आधुनिक गोला बारूद निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया जिसमें सालाना 5,00,000 आर्टिलरी शेल्स तैयार किए जाएंगे। साथ ही भारत के पहले 300 किलोमीटर वाले सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम को भी हरी झंडी दिखाई गई। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दो रेंज वेरिएंट्स में डिजाइन किया गया है। पहला वेरिएंट 150 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों तक हमला कर सकता है और दूसरा लंबी दूरी वाला वेरिएंट 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। भारतीय सेना ने सूर्यास्त की खरीद का ऑर्डर भी दे दिया है।
2: सूर्यास्त भारत की सेनाओं को एक ऐसा जबरदस्त वेपन और फोर्स मल्टीप्लायर मिलने वाला है जो वाकई में दुश्मन की कमर तोड़ने में एक कामयाब होगा, क्योंकि इसका पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता है कि 5 मीटर के अंदर लिखा हो लेकिन 2 मीटर के रिजल्ट दिए गए 300 किलोमीटर दूर। आज समझिए कि जब वो हमला करने में सक्षम है दुनिया के कमांड सेंटर पर जहाँ पर उनके शीर्ष अधिकारी बैठे होते हैं, प्लानिंग चल रही है, वहाँ पर हमले के पहले हमारा हमला होता है, उनकी सारी प्लानिंग ध्वस्त हो जाती है। कम्युनिकेशन सिस्टम पर जहाँ से बातचीत होती है उसको ख़त्म कर दें, रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक बेस जहाँ से उनके हथियारों का भंडारण है, अम्यूनिशन का भंडारण है, तेल है, पिन पॉइंट हमला करने में सक्षम है।
0: सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम में प्रिसिजन गाइडेड रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये पारंपरिक हथियारों की तरह इधर उधर नहीं गिरते बल्कि बिल्कुल उसी जगह पर प्रहार करते हैं जहां इन्हें भेजा गया, यानी निशाना एकदम अचूक। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में 150 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल महज 1.5 मीटर है, वहीं 300 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी 2 मीटर है। इसका मतलब ये है कि रॉकेट अपने टारगेट से औसतन 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर गिरता है, जो युद्ध में बहुत बड़ी ताकत है।
2: सूर्यास्त्र देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी का बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। इससे 122 एमएम, 306 एमएम, 370 एमएम के रॉकेट फायर किए जा सकते हैं, साथ साथ में कामिकाजी ड्रोन भी फायर किया जा सकता है। 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी और तकरीबन 5 मीटर कहा जाता है, लेकिन इससे बेहतर रिजल्ट्स इसके मिले हैं 2 मीटर का सर्कुलर एरर पे, यानी कि 2 मीटर के अंदर अंदर ये फायर करने में सक्षम है। ये इसका प्रिसीजन है, ये इसकी एक्यूरेसी है। क्या फ़ायदा होगा इसका? यह होगा कि दुश्मन के कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक बेस, उनकी गन पोजीशन, एडी सिस्टम, रडार स्टेशन और जहाँ पे उनकी रॉकेट सिस्टम है, जहाँ सब पर भी उनका जो एक स्ट्रेटजिक टारगेट्स हैं उनको हम पिन पॉइंट हमला करने में ये सक्षम है।
0: भारतीय सेना को अब लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाले रॉकेट्स मिलेंगे, जिससे दुश्मन के ठिकानों जैसे कि आर्टिलरी पोजीशंस, कमांड सेंटर्स और दूसरे अहम टारगेट्स को सुरक्षित दूरी से तबाह किया जा सकेगा।

सूर्यास की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मल्टी बैरल क्षमता, जिसमें अलग अलग तकनीक के हथियार एक साथ लगाए जा सकते हैं और दागे भी जा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि निशाना भी सटीक और लॉजिस्टिक का खर्च भी बहुत कम। सूर्यास के अलग अलग पॉड्स को मिशन के हिसाब से बदला जा सकता है। 370 mm कैलिबर की प्रेडेटर हॉक गाइडेड रॉकेट सूर्यास सिस्टम का सबसे घातक हथियार है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। सूर्यास सिस्टम का एक और घातक हथियार है एक्स्ट्रा रॉकेट। 306 mm कैलिबर का ये गाइडेड रॉकेट 150 किलोमीटर तक दुश्मन के बंकरों और कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकता है। सूर्यास सिस्टम से 122 mm और 160 mm कैलिबर के बेहद किफायती एक्यूलर रॉकेट्स दागे जा सकते हैं, जो 40 से 100 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। सूर्यास सिस्टम से स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन भी दागे जा सकते हैं, जो हवा में रहकर दुश्मन की खोज करते हैं और सटीक हमला करते हैं। सूर्यास रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागी जाने वाली प्रेडेटर हॉक रॉकेट्स में GPS INS सेंसर फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये तकनीक प्रेडेटर हॉक रॉकेट को बिना किसी भारी मदद के बेहद खराब मौसम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के बीच भी सटीक निशाना लगाने की क्षमता देती है।

0: देखा जाए तो प्रेडेटर हॉक सूर्य अस्त्र का सबसे खतरनाक रॉकेट है। 300 किलोमीटर तक जाता है, 370 mm है और 140 से 200 किलोग्राम तक का ये एक्सप्लोसिव ले जा सकता है और छत के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर, बंकर्स के ऊपर बहुत इफेक्टिव है। तोड़ के अंदर तक उनको तहस नहस कर सकता है। सेल्फ गाइडेंस है, गाइडेंस बड़ी अच्छी है और पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है, जैसा कि 5 मीटर का बताया जाता है, लेकिन 2 मीटर की हमको इसमें एक्यूरेसी मिली है। और शूट एंड स्कूट का इसका फैसिलिटी है कि फायर करे, उसके बाद जगह बदली कर सकता है।
1: हॉक रॉकेट सुपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है, जबकि ये 140 किलोग्राम का भारी वॉरहेड लेकर अपने टारगेट से टकराता है तो भारी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। इस ऊर्जा के कारण बिना विस्फोट हुए भी ये रॉकेट सिर्फ अपनी रफ्तार और वजन के दम पर कंक्रीट की कई फीट मोटी दीवारों को मलबे में तब्दील कर सकता है। सूर्यास्त्र की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक पारंपरिक क्रूज और एक बैलिस्टिक मिसाइल के 15% खर्चे से भी सस्ता है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि युद्ध के क्षेत्र में हमें भारी भरकम खर्च उठाने की जरूरत नहीं है। हम मल्टीपल रॉकेट्स दुश्मन पर दाग सकते हैं। आधुनिक युद्ध में आर्टिलरी की भूमिका निर्णायक होती है और सूर्यास्त्र शूट एंड स्कूट क्षमता के साथ दुश्मन के काउंटर अटैक से बचते हुए तेज हमला करने में सक्षम है। इसमें हाई मोबिलिटी व्हीकल भी लगाया गया है, जिससे ये बहुत तेजी से जगह बदल सकता है। सूर्यास्त्र को 6x6 भारी ट्रकों पर माउंट किया गया है। हमला करने के बाद ये सिस्टम फौरन अपना लोकेशन बदलने में सक्षम है, जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। जानते हैं कि भारत सरकार ने किस तरह के चेंजेस किए हैं, जिस वजह से 5000 तरह के उपकरण भारत में ही बनाए जा रहे हैं। दरअसल अभी अगर बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट पार्टनरशिप 20-30% है, जिसे बढ़ाकर सरकार 50% तक करना चाह रही है। इसको लेकर विचार हो रहा है। मोदी सरकार ने FDI, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जैसे बड़े सुधार किए हैं। सूर्यास्त्र भारत की आर्टिलरी ताकत में काफी इजाफा करेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के पास जो पिनाका मौजूद है उसमें और सूर्यास्त्र में क्या अंतर है? तो सबसे पहले दोनों रॉकेट सिस्टम की ताकत और खासियत जान लीजिए। सिस्टम की बात करें तो पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्च है, जो सिर्फ रॉकेट लॉन्चिंग के लिए ही है। सूर्यास्त्र यूनिवर्सल लॉन्चर है, जो रॉकेट और मिसाइल दोनों दाग सकता है। पिनाका में कैलिबर फिक्स है और इसे सिर्फ 214 mm रॉकेट से ही दागा जा सकता है। सूर्यास्त्र मल्टी कैलिबर है, जो 122 mm, 306 mm, 370 mm के वेपन्स दाग सकता है। रेंज की बात की जाए तो पिनाका MK1 40 किलोमीटर और पिनाका एक्सटेंडेड रेंज 75 से 90 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। वहीं सूर्यास्त्र की रेंज 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है। पॉड रीलोड सिस्टम की बात करें तो पिनाका के रीलोडिंग में करीब 4-5 मिनट का समय लगता है। वहीं सूर्यास्त्र में जो पॉड सिस्टम लगा है उसे रीलोड करने में 10 मिनट का वक्त लगता है।
0: पिनाका और सूर्यास्त्र में फर्क ये है कि पिनाका में एक साथ बहुत सारे रॉकेट फायर होते हैं, 6-6 रॉकेट यानी 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ गिरते हैं एक इलाके में, और वो एक एरिया वेपन के तौर पे, यानी कि 214 mm के रॉकेट हैं, एक ही कैलिबर के होंगे और वो एक जगह जाके पूरे इलाके को सैचुरेट कर देंगे, भस्म कर देंगे। जबकि सूर्यास्त्र में अलग अलग कैलिबर के रॉकेट फायर हो सकते हैं, 122 mm, 306 mm या 370 mm, 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज होती है। और ये फर्क ये पिन पॉइंट अटैक करता ही है, एक रॉकेट जाएगा वहाँ पिन पॉइंट हमला करेगा, तो दोनों के टारगेट अलग हैं।
1: भारतीय सेना सूर्यास्त्र सिस्टम को उसकी 300 किलोमीटर की लंबी रेंज और डीप स्ट्राइक क्षमता के कारण LAC और LOC के अत्यंत संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात कर सकती है। इसका मेन मकसद चीन और पाकिस्तान की सेना के रसद आपूर्ति करने वाले रास्तों, एयरबेस और कमांड सेंटर्स को अपने तोपखाने की जद में लाना है। रॉकेट का ताकतवर होना कई मायनों में सेना की युद्ध क्षमता तो नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा, जो काम फाइटर जेट किया करते थे और जिन कामों में मिसाइल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उसी काम को अब सूर्यास्त्र जैसा सिस्टम आसानी से कर देगा। पारंपरिक तौर पर अगर देखा जाए तो अगर दुश्मन 300 किलोमीटर दूरी पर बैठा है तो भारत को अपने लड़ाकू विमानों को मैदान में उतारना पड़ता है, लेकिन सूर्यास्त के आने के बाद न तो हम अपने पायलट्स की जान जोखिम में डालेंगे और न ही दुश्मन की सरहद में जाने की जरूरत होगी, बल्कि भारत अपनी सरहद पर ही बैठे दुश्मन का काम तमाम कर सकता है।
2: पहले सीमा से 150 से 300 किलोमीटर दूरी पर मौजूद दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार या रसद डिपो को तबाह करने के लिए वायुसेना के सुखोई विमानों को उड़ान भरनी पड़ती थी। वहीं अब इस काम को जमीन पर तैनात आर्मी के सूर्यास्त रेजिमेंट अपने प्रेडेटर हॉक रॉकेट से मिनटों में पूरा कर पाएंगे। इससे महंगे लड़ाकू विमानों और जांबाज पायलटों को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में भेजने का जोखिम भी काफी हद तक कम हो जाएगा।
1: सूर्यास्त की तैनाती पारंपरिक तौर पर सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस मिसाइल के वर्कलोड को काफी हद तक कम कर देगी। अब वो किस तरीके से, वो भी आपको समझाते हैं। सीधी सी बात है कि 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को अगर निशाने पर लाना हो तो उसके लिए सूर्यास्त ही काफी होगा। यानी अगर देखा जाए तो रण क्षेत्र में सूर्यास्त सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की जगह ले सकता है।
2: सूर्यास्त 300 किलोमीटर की दूरी तक ब्रह्मोस जैसी अचूक सटीकता प्रदान करता है, इसीलिए सामान्य और कम सुरक्षा वाले लक्ष्यों जैसे कि आतंकी कैंप, रसद दीपों के लिए ब्रह्मोस को बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। ये काम सूर्यास्त आसानी से कर देगा। ब्रह्मोस मिसाइल को अब सिर्फ अति संवेदनशील और अत्यधिक बख्तरबंद जैसे दुश्मन के युद्धपोत या परमाणु बंकर जैसे लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा। ब्रह्मोस ले जाने वाले सुखोई 30 MKI विमानों का वजन और रखरखाव का दबाव कम होने से वायुसेना इन विमानों का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में कर पाएगी। सूर्यास्त वायुसेना का विकल्प नहीं बल्कि ये थल सेना को आत्मनिर्भर बनाकर वायुसेना की कीमती हथियारों और विमानों को बड़े और अधिक रणनीतिक युद्धों के लिए रीस्टॉक करने का मौका देता है।
0: ब्रह्मोस जैसा महंगा मिसाइल एक स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि तो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट टारगेट है, वहाँ पर सूर्यास्त का इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है। और तीसरी बात यह कि सुखोई को भी बचत होगी, एयरफोर्स को जो 300 किलोमीटर दूर टारगेट होते थे उनके लिए हवा में जाके मिसाइल फायर करनी पड़ती थी, वो बच जाएगा। आप जमीन से फायर करोगे उनके टारगेट को बर्बाद कर दोगे, यानी कि हम अपने जो एयरक्राफ्ट हैं सुखोई है इनको एक्सपोज नहीं करेंगे, उनका इस्तेमाल और स्ट्रेटजिक टारगेट के लिए और बड़े टारगेट्स के लिए किया जा सकता है। तो यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर है कि वो हथियार बने रहेंगे, वो अपने टारगेट्स करेंगे, बाकी टारगेट्स को सूर्यास्त एंगेज करेगा, अपनी जमीन पर रहते रहते दुश्मन को नेस्ता नाबूद करेगा।
1: आज देश में सिर्फ हथियार ही नहीं बनाए जा रहे बल्कि यहाँ उस भरोसे को भी मजबूत किया जा रहा है जिसके दम पर सेना वीरता का नया इतिहास लिख रही है।

0: अब हम सिर्फ टैंक, तोप, मिसाइल या फाइटर जेट्स ही नहीं बनाते, हम बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, जिसका सर्वोच्च संकल्प है राष्ट्र रक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना।
1: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
0: रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा और विदेश से हथियार और उपकरण के आयात को कम कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड मिशन पर आगे बढ़ रहा है।

0: हिंदुस्तान अब अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं, भारत में ही तरह तरह की मिसाइलें, फाइटर जेट्स और यहाँ तक कि छोटे कलपुर्जे तक बनाए जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत रक्षा के क्षेत्र में खुद स्टैंड कर चुका है और ये दुनिया भी भारत का लोहा मान रही है। भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में लंबी छलांग लगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2023 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वो है रक्षा।
1: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
0: ये मेक इन इंडिया मिशन की वो तैयारी है जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है और भारत के लिए है। स्क्रू से लेकर सिस्टम और सॉफ्टवेयर तक भारत आज की तारीख में ये सब कुछ अपने आप बना रहा है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि भारत ये सब कुछ न सिर्फ अपने लिए बना रहा है बल्कि 80 से ज्यादा देशों को दे भी रहा है। और ये तमाम वो देश हैं जो रक्षा के मामले में भारत पर भरोसा करते हैं। सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन एक वक्त था जब 65-70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 35% सामान ही आयात होता है। इसका मुख्य कारण भारत की अपनी रक्षा प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने की बढ़ती क्षमता है। भारत सरकार की तरफ से पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट तैयार की गई है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि स्वदेशीकरण को ज्यादा बढ़ावा देना। यानी खास तौर पर रक्षा के क्षेत्र में हम किसी दूसरे मुल्क पर निर्भर न रहें, छोटे से कलपुर्जे से लेकर बड़ी से बड़ी मिसाइल तक बनाने में भारत खुद अपनी धरती का और यहाँ के साजो सामान का ही इस्तेमाल करे। अब तक रक्षा मंत्रालय ऐसी 5 लिस्ट जारी कर चुका है और इसमें तकरीबन 5,000 आइटम्स के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी। ये सभी डिफेंस, पीएसयू और निजी स्वदेशी कंपनियों से खरीदे जा रहे हैं। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट 4,666 आइटम्स की 5 लिस्ट जारी की गई है, जिन्हें सिर्फ स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। नेगेटिव लिस्ट, इसमें 310 उपकरणों जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, तोप के आयात पर 2020 से 27 तक रोक लगाई गई है। डैप 2020 यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में खरीद को प्राथमिकता दी गई, यानी कि स्वदेशी डिजाइन और प्रोडक्शन को बढ़ावा। सृजन पोर्टल, इसमें 19,509 पहले आयातित आइटम्स को स्वदेशी बनाने के लिए लिस्ट किया गया। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा, इसमें टाटा, L&T, भारत फोर्स और MSME को बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। FDI में छूट, डिफेंस में 74% तक FDI ऑटोमेटिक रूट से और 100% सरकार की मंजूरी से होगी। अगला है R&D को बढ़ावा, इसमें IDEX और TDF स्कीम्स से स्टार्टअप्स और MSMEs को फंडिंग दी जा रही है। साल 2025 में TDF के लिए 60 करोड़ रुपए और IDEX प्राइम के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए।
2: हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर ना सिर्फ सुरक्षा के मामले में डिफेंस प्रोडक्शन में होना पड़ेगा, तमाम ऐसी विधाएं हैं उसमें हर एक में आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका कि प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कट कॉल दिया हुआ है। जहां तक डिफेंस का सवाल है, देखिए हिंदुस्तान की सुरक्षा में को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आप ऐसे समय में दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें जब आपको उस इक्विपमेंट की, उस हथियार की, उस गोला बारूद की, उस एमनिशन की जरूरत है, लिहाजा आपको स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा। और हिंदुस्तान देखिए धीरे धीरे इसके तरफ अग्रसर हो रहा है।
0: प्राइवेट कंपनियों को भी सरकार की तरफ से सहूलियतें दी गई हैं। सरकार ने भारत की निजी हथियार निर्माता कंपनियों के लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है कि बड़ी तेजी से ये आगे बढ़ने लगे। इस पूरी बढ़ोतरी में हिस्सेदारी की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2024-25 में कुल रक्षा उत्पादन में DPSU यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान करीब 77% रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 23% रहा। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बढ़ी है। जो वित्त वर्ष 2023-24 में 21% थी वो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23% हो गई।
2: सबसे पहले मैं टच करूंगा पॉजिटिव इंडियनाइजेशन। इसके तहत वो सारी चीजें हैं जो कि डिफेंस में जिसकी रिक्वायरमेंट है और जिसको हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है, चाहे वो PSUs हो, DPSUs हो, प्राइवेट सेक्टर हो। अब हम नेगेटिव लिस्ट की बात करते हैं। टाइम टू टाइम ये लिस्ट रिवाइज की जाती है। नेगेटिव लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें कि उन आइटम को बैन किया गया है जिसका हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ये सारे के सारे आइटम हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लिहाजा ये नेगेटिव लिस्ट में दिन रात इजाफा हो रहा है और इन आइटम को हम अब बाहर से इंपोर्ट करना डिफेंस सेक्टर में बंद करेंगे। सृजन पोर्टल देखिए एक ऐसा पोर्टल है जिसमें तमाम प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक सेक्टर की यूनिट इसमें लॉग इन कर सकते हैं। अपने आप क्या रिक्वायरमेंट है, किसका टेंडर निकलने वाला है, क्या उसका क्वालिफिकेशन क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, इन में लॉग इन कर सकते हैं, अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि तमाम आगे आने वाले दिनों में जो हमारे डिफेंस की प्रोक्योरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, किसका टेंडर निकलने वाला है, क्या उसका क्वालिफिकेशन क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों की उसमें लिस्टिंग होती है।
0: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अपने डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा तवज्जो दे रहा है और इसी के तहत देश में डिफेंस कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में सिर्फ दो ही कॉरिडोर हैं। रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
6: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
0: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: डिफेंस कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर है जहां न सिर्फ रक्षा क्षेत्र के लिए हथियार बनाए जाते हैं बल्कि तमाम रिसर्च भी यहां पर की जाती है, और ये भारत के लिए बहुत अहम है। यहीं से हमारी सेनाओं को तमाम हथियारों की सप्लाई भी होती है, उनकी जरूरत के हर सामान का ख्याल यहां पर रखा जाता है। डिफेंस कॉरिडोर का मकसद है कि भारत अब हथियार, मिसाइल, लड़ाकू विमान और उनके जरूरी पार्ट्स विदेशों से न मंगाए बल्कि खुद बनाए और दूसरे देशों को भी निर्यात करे। इनमें सबसे खास है टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट, जिसे दुनिया के सबसे बड़े टाइटेनियम रिमेल्टिंग यूनिट में से एक बताया जा रहा है, जो भारत के उत्तर प्रदेश में है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदा क्या होगा, तो आपको बता दें कि टाइटेनियम और सुपर एलॉयज का इस्तेमाल लड़ाकू विमानों के इंजन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, ड्रोन और यहां तक कि नेवी के जहाजों और पनडुब्बियों में होता है। ये मटेरियल हल्के होते हैं मगर बेहद मजबूत और हीट रेजिस्टिंग भी होते हैं। इस प्लांट से भारत तेजस, AMCA, नए जेट इंजन प्रोजेक्ट्स, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों और एडवांस ड्रोन्स के लिए जरूरी पार्ट्स खुद ही बनाएगा।
2: प्राइवेट प्लेयर भी इसमें आ सकते हैं, जिसमें जो मेजर प्राइवेट प्लेयर हैं, टाटाज हैं, रिलायंस हैं, महिंद्राज हैं, कल्याणी ग्रुप हैं, L&T हैं, अदानी एरो सिस्टम है, तमाम लोगों को इसमें इनवाइट किया गया है। जब जिसमें कि जो हमारा जो एडवांस टोट गन सिस्टम है वो भी देखिए प्राइवेट प्लेयर ने बनाया हुआ, तो एक तरीके की खुली छूट है और साथ में डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ उनको एक इंटरनेशनल मार्केट भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से हम नाउ सर हिंदुस्तान की आर्मी के लिए डिफेंस का प्रोडक्शन ना करके एक उनको मल्टी फेरियस आप मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि इन प्राइवेट प्लेयर को जो हिंदुस्तान की नीड को पूरा करने के बाद बाहर के भी मार्केट उनके लिए उपलब्ध है।
1: कॉरिडोर से विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता घटेगी और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही युद्ध जैसे हालात में सेना के लिए हथियार की सप्लाई से लेकर उसकी मरम्मत सब कुछ आसान होगा। सरकार राजस्थान में भी एक नया डिफेंस कॉरिडोर बनाने जा रही है, जिसके बनने से हमारी सेना को बहुत ज्यादा फायदा होगा। दरअसल अभी तक अगर देखा जाए तो दो कॉरिडोर भारत में है, यानी कि दो डिफेंस कॉरिडोर, एक यूपी में है और एक आंध्र प्रदेश में है। कहीं अगर किसी चीज की भी जरूरत पड़ती है, किसी हथियार में कोई भी दिक्कत आती है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से ही टीमें आती हैं, या फिर हम कहें कि वहीं से इसकी मरम्मत होती है। लेकिन राजस्थान में डिफेंस कॉरिडोर बनने के बाद खास तौर पर भारत और चीन के सबसे करीब यह डिफेंस कॉरिडोर होगा, तो भारतीय सेना को सीधे तौर पर इसमें मदद ही मिलेगी। आज भारत दुनिया में अपनी रक्षा क्षमताओं के मामले में कई इलीट ग्रुप्स का सदस्य है। भारत न सिर्फ अपनी सेना को स्वदेशी सैन्य उपकरणों से मजबूत कर रहा है बल्कि उन्हें दुनिया भर के देशों को बेच भी रहा है। भारत की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि सभी पुराने रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। साल 2004 से 2014 में जहां रक्षा निर्यात सिर्फ 4312 करोड़ रुपए था, वो साल 2014 से 24 में बढ़कर 88319 करोड़ रुपए हो गया। साल 2023-24 की ही बात करें तो डिफेंस एक्सपोर्ट 21083 करोड़ रुपए था, जो कि साल 2024-25 में 23622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी कि 12.04% की बढ़ोतरी। भारत का लक्ष्य है साल 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाना।
2: डिफेंस कॉरिडोर है वो इनवाइट करता है तमाम डिफेंस का जो प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको एक जमीन मुहैया कराने और वो टेक्नोलॉजी वो अपने साथ लेके आए, एक उनको एक कॉरिडोर, एक जगह मिली हुई प्रोडक्शन के लिए जिसके तहत वो टाइटेनियम या सुपर अलॉय बना सकते हैं। ये टाइटेनियम देखिए एक ऐसा स्ट्रांग धातु है जिसका वेट कम होता है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। इसके तमाम फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो एरोनॉटिक्स हो, चाहे वो सबमरीन्स हो, चाहे वो डिफेंस के इक्विपमेंट हो। इसी इसी तरह सुपर अलॉय जब आप बनाते हैं तो वो कई तरीके के होते हैं, जिसमें आपका कोबाल्ट होता है, निकल होता है, आयरन का सुपर अलॉय होता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, क्या वो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जा रहा है, क्या वो एवियोनिक्स के लिए जा रहा है, क्या वो गन सिस्टम में यूज होना है। इन सारी चीजों का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में करते हैं और हाई क्वालिटी का इस तरीके का अलॉय या टाइटेनियम बनाते हैं, तो डिफेंस के क्षेत्र में इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है।
1: 11 साल की आत्मनिर्भरता की यात्रा में भारत ने रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। अब भारत न सिर्फ अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, बल्कि दुनिया को हथियार बेचकर अपनी वैश्विक उपस्थिति भी बढ़ा रहा है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि ताकत और तकनीक के मामले में भारत कहां तक पहुंच चुका है। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत की 100 से ज्यादा कंपनियां हैं जो दूसरे देशों को अपने यहां के हथियार दे रही हैं। यानी छोटे कलपुर्जों से लेकर बड़ी मिसाइल तक के लिए कई देश भारत पर निर्भर हो चुके हैं। भारत के जिन हथियारों और उपकरणों की डिमांड दुनिया भर में बढ़ी है या फिर जिनका निर्यात किया जा रहा है, उनमें शामिल हैं डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट, 155 MM-80 AGS ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, सेमुलेट्स, बारूदी सुरंगों से बचाने वाली गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर्स, हथियार, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर, इसके अलावा एवियोनिक्स और कई छोटे मोटे हथियार और उपकरण शामिल हैं। डिफेंस की फील्ड में ये बदलाव की कहानी एक दिन की तैयारी का नतीजा नहीं है। आज भारत 100 से ज्यादा देशों को हथियार और रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। इनमें सबसे ज्यादा 31% हथियार म्यांमार, 19% हथियार श्रीलंका, 12% मॉरिशस, 6% नेपाल, 5.1% अर्मेनिया, 4.3% वियतनाम, 4.2% मालदीव और 2.2% हथियार भारत अफगानिस्तान को निर्यात कर रहा है। कभी भारत की गिनती हथियार मांगने वाले देशों के रूप में भी हुआ करती थी, लेकिन अब भारत डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर जाना जाता है। आज भारत का डिफेंस प्रोटेक्शन 225,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। भारत को आजाद हुए 78 साल हो चुके हैं और इन 78 सालों में भारत ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई जगह भारत ने तरक्की की और कई बार बहुत से मुल्कों ने भारत को नीचा दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन भारत ना रुका और ना ही झुका और आज की तारीख में आत्मनिर्भर बनकर दुनिया को दिखा रहा है कि किस तरीके से भारत की पहचान एक अलग है। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए मजबूत सैन्य संरचना के साथ साथ हथियार, गोला बारूद, उपकरण समेत कई जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इन सामग्रियों के लिए किसी दूसरे देश पर आश्रित रहना सामरिक दृष्टिकोण से खतरनाक होता है। इसी को ध्यान में रखकर ज्यादातर देश अपनी शक्तियों के मुताबिक खुद के लिए आयुध फैक्ट्री लगाते हैं और इन्हीं के बदौलत देश की सेना को हथियारों की ताकत मिलती है। आजादी से पहले रक्षा क्षेत्र के निर्माण में भारत दुनिया के कई देशों से आगे था। यहाँ कई आयुध कारखाने और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हुआ करती थी। अंग्रेजों के जमाने में देश में 18 ऐसे आयुध कारखाने स्थापित किए गए जिनका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था। 18 मार्च 1801 कोलकाता के कोसेपुर में पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित हुई। ब्रिटिश काल में ही दो प्रमुख रक्षा इकाइयों की स्थापना की गई थी, गार्डन रीच और मजगांव डॉक्स। भारतीय आयुध कारखाना दरअसल 41 इकाइयों का एक समूह है जहां पर भारतीय सुरक्षा बलों के लिए तमाम तरह के हथियार बनाए जाते हैं और ये सुनिश्चित किया जाता है कि जरूरत के हिसाब से उन्हें तुरंत उन हथियारों को मुहैया करवाया जाए।
3: ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के प्रमुख ग्राहक हैं हमारी तीनों सेनाएं। सेना को हथियारों की आपूर्ति के अलावा आयुध फैक्ट्री केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस बल को भी साजो सामान बेचती है।
1: ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो जगह है जहां पर भारतीय सेना की रिसर्च से लेकर प्रोड्यूसिंग, लॉजिस्टिक, यहां तक कि छोटे से छोटे हथियार और बड़ी से बड़ी मिसाइलों तक को बनाया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि भारतीय सेना की हर जरूरत यहां से पूरी हो।
4: ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज किसी भी राष्ट्र की इंडिजिनस तरीके से हथियारों को प्रोड्यूस करने के कारखाने होते हैं, जहां पर मिलिट्री हार्डवेयर और अनेक डिफेंस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल का उत्पादन किया जाता है। चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, हमारी जो पैरा मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस को भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के माध्यम से अनेक तरीके के इक्विपमेंट्स समय समय पर मिलते हैं।
3: आजादी के बाद भारत को रक्षा क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश में स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का अभाव था, सैन्य उपकरणों के लिए दूसरे देशों से आयात पर बहुत अधिक निर्भर था। हालांकि 1958 में DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना जैसे प्रमुख उपलब्धियों ने तकनीकी प्रगति के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया।
4: DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो 66 वर्ष पूर्व 1958 में की गई थी और DRDO ने भारत के रक्षा के क्षेत्र में बड़े अनुसंधान और विकास के कार्य को सफलतापूर्वक किया है। DRDO ने अपने द्वारा अपने अनुसंधान और विकास के माध्यम से भारत को अनेक स्वदेशी उपकरण, रक्षा के उपकरण प्रोवाइड कराए हैं और जिसमें कि जो अनेक लंबी दूरी की, मध्यम दूरी की और छोटी दूरी की जो मिसाइल्स हैं, चाहे वो अग्नि हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, नाग हो, जैसी जो मिसाइल्स हैं वो DRDO ने अपने अनुसंधान और विकास से के माध्यम से विकसित की है।
3: साल 1962 में जब चीन से युद्ध में हमें अच्छे परिणाम नहीं मिले, तब भारत सरकार ने भविष्य की जरूरतों को समझा और कुछ अहम कदम उठाने का फैसला किया।
1: जानते हैं कि हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की नींव किसने रखी थी? तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके मेनन ने भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की नींव रखी। इससे पहले 1954 में BEL और 1958 में DRDO की स्थापना हो चुकी थी। हमारे पास 1962 के युद्ध की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली और आधुनिक हथियार, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स तो है ही, लेकिन अब हम परमाणु शक्ति संपन्न भी हैं।
3: के युद्ध ने प्रमुख सैन्य सुधारों के लिए भी देश को प्रेरित किया और भारत के रक्षा उद्योग को फिर से आकार देने और विस्तार देने के लिए बड़े पैमाने पर भूमिका निभाई। 1962 युद्ध के बाद भारत का रक्षा खर्च बड़े पैमाने पर बढ़ गया। 1961 में ये GDP के 2.1% से बढ़कर 1963 में 4% हो गया और शेष शीत युद्ध में GDP के 3% से लगातार ऊपर रहा। ये 1962 के पहले स्तर पर कभी नहीं लौटा। 1970 के बाद भारत का रक्षा क्षेत्र में विकास हुआ। रूस ने हमें लाइसेंस प्रोडक्शन दिया और इसके तहत भारत ने MiG-21 का लाइसेंस प्रोडक्शन शुरू किया। DRDO ने भी विकास किया। इसके बाद DRDO, BEL, BDL ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया।
4: इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो संकल्पना है वो भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी और इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को 1983 में शुरू किया गया था और इसके माध्यम से भारत ने अनेक तरीके की जो बड़ी मिसाइल्स हैं और मिसाइल की जो पूरी टेक्नोलॉजी है उसको विकसित किया। अनेक लेबोरेटरीज में आपस में कोलाबरेट करना, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलाबरेशन हो, या जो प्राइवेट सेक्टर की जो डिफेंस यूनिट्स हैं, डिफेंस फैक्ट्रीज हैं, उनके साथ कोलाबरेट करके अधिक से अधिक बेहतर रिजल्ट सामने लाना और बेहतर से बेहतर मिसाइलें डेवलप करना।
3: भारत ने आत्मरक्षा को लेकर 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नजर में आ गया। 24 साल बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को नजरअंदाज करते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षणों को अंजाम देकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया।
1: चौहत्तर से 1998 तक भारत ने कई परमाणु परीक्षण किए, जिसने भारत की ताकत को और ज्यादा मजबूत किया और दुनिया को दिखाया कि भारत किस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। इसने भारत को परमाणु सशस्त्र देशों की लीग में ला खड़ा किया, जिस क्षेत्र में इसकी रणनीतिक स्थिति मजबूत हुई। इसके साथ ही साथ अग्नि सीरीज, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल, भारत की स्वदेशी मिसाइल प्रौद्योगिकी विकास ने मिसाइल प्रणालियों में देश की शक्ति को प्रदर्शित किया।
3: साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा। साल 1965 और 1971 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने ये महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें मिसाइलें सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 ही देश ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लॉन्स मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इजराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था। उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है और साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा था। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिशों में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किए। 1 जून 1982 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने DRDL यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही तरह एक विंग है जो कि मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। DRDL ज्वाइन करते ही सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया, जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कई मिसाइलों पर एक साथ काम शुरू हुआ। अलग अलग मिसाइलों के नाम तय किए गए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टेक्टिकल कोर व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एक एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें शामिल की गई थी, जिसका नाम रखा गया था नाग। और APJ अब्दुल कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रेक्स यानी कि री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम रखा गया अग्नि। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के करीब 2000 कर्मचारियों के साथ लगातार काम करने के बाद साल 1987 के आखिर में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों पर पहुंचा। तब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी। पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया था जहां दुनिया के ताकतवर देश खड़े थे।
1: रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: शनिदेव की कौन सी राशि धन की सबसे बड़ी राशि है? शनिदेव की कौन सी राशि के लोग भयंकर लापरवाह होते हैं? और शनिदेव की कौन सी राशि बृहस्पति के लिए बड़ी निगेटिव होती है? कौन सी हैं शनिदेव की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
7: Gone, home run.
6: NHL. College basketball.
8: He shoots it immediately. He makes it in.
6: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
9: One lap to go.
6: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
10: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर

0: सी राशि बृहस्पति के लिए बड़ी निगेटिव होती है? कौन सी हैं शनिदेव की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: Sage University, transforming your passion into profession.
1: पवित्र चारधाम यात्रा के दौरान हर रोज बन रहे नए रिकॉर्ड, महज 39 दिनों में 10 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में मुस्तैद प्रशासन। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चली तेज हवाओं से गिरा पारा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों का रुख कर रहे लोग, उत्तराखंड के मसूरी में हर रोज बढ़ रही सैलानियों की तादाद, पहाड़ों की रानी में सड़कों पर थमा ट्रैफिक। हिमाचल प्रदेश के मनाली की खूबसूरत वादियां सैलानियों से गुलजार, रोहतांग के माइनस तापमान में भी मस्ती करते नजर आ रहे पर्यटक, बर्फीले पहाड़ों पर एडवेंचर का भी उठा रहे लुत्फ। राजस्थान में रेतीले तूफान का बवंडर, श्रीगंगानगर में दिन में हुआ अंधेरा, बवंडर के बाद हुई बारिश से तापमान में आई 8 डिग्री की गिरावट।
2: गुड़ने चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो

देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का विस्फोटक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं वो है तो महज 15 साल का, लेकिन क्रिकेट के मैदान में बल्ले से ऐसे ऐसे कीर्तिमान रच रहा है कि बड़े बड़े सूरमाओं की चमक उसके आगे फीकी पड़ती जा रही है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बीते 27 मई को आईपीएल के एक मुकाबले में बल्ले से विस्फोट की नई इबारत लिखने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी है। जी हां, 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की जो विस्फोटक पारी खेली उसकी धमक में क्रिकेट के कई दिग्गजों के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स दफन हो गए। वैभव ने एक पारी में इतने रिकॉर्ड्स बना दिए कि ये खुद अपने आप में रिकॉर्ड हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वाली पारी। दरअसल पिछले 2 साल से वैभव मैदान में टिककर जिस तरह से आतिशबाजी कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले वर्षों में बल्लेबाजी का कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा ही नहीं जो वैभव के नाम ना हो।
1: क्रिकेट के क्षितिज पर उदित हो चुका है एक ऐसा चमचमाता वैभवशाली सूर्य जिसकी चौंधिया देने वाली चमक में क्रिकेट के आसमान के बड़े बड़े सितारे गुम से हो गए हैं। इस वैभवशाली सूर्य ने आईपीएल की महज एक पारी में इतने कीर्तिमान बना दिए हैं कि रिकॉर्ड बुक के हर सफहे पर एक ही नाम चमक रहा है, वैभव सूर्यवंशी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को हुए एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की ऐसी विस्फोटक पारी खेली कि आईपीएल के 18 साल के इतिहास में बल्ले से बने करीब करीब सारे रिकॉर्ड्स जमींदोज हो गए।
2: वो बच्चा 15 साल का है, इतनी धमाल मचा रखी है। बुमराह को उसने पहली बॉल पे छक्का मारा, हेजलवुड को, हर एक बॉलर को उसने पहली बॉल पे छक्का मारा। ऐसा बल्लेबाज मैंने दुनिया में नहीं देखा। वरिंदर सहवाग भी ऐसी पारी नहीं कभी खेल सका जो वैभव सूर्यवंशी खेलता।
1: वैभव की इस अविस्मरणीय पारी को देखकर ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कहना पड़ गया अभूतपूर्व। बल्ले से वैभव का अतुल्य धमाका पूरी एकाग्रता से देखने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग असाधारण था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पैरों पर फेंकी गई गेंद पर उन्होंने बेहद कुशलता के साथ फ्रंट फुट क्लियर कर रूम बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने जहां चाहा गेंद को वहीं पहुंचा दिया। वैभव की ये पारी चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। यूं तो वैभव ने पूरे आईपीएल के दौरान अतुल्य बल्लेबाजी की है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को खेली गई उनकी एक अदद पारी क्रिस गेल, डेविड वार्नर, रिली रूसो, शुभमन गिल और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों की कई कई पारियों पर भारी पड़ गई है। वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की धमाकेदार पारी में 12 छक्के लगाए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वैभव ने आईपीएल 2026 सीजन में 65 छक्के पूरे कर लिए हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्सर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। गेल ने आईपीएल 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे। वैभव के इस रिकॉर्ड के भीतर भी एक रिकॉर्ड छिपा हुआ है। गेल ने 59 सिक्सर के लिए 456 गेंदें खेली थी, जबकि वैभव ने सिर्फ 280 गेंदों पर 65 छक्के अपने नाम कर लिए हैं। 280 गेंदों पर 65 छक्कों का मतलब ये हुआ कि कमोबेश हर चौथी गेंद पर सिक्सर। ये रिकॉर्ड तो गेंदबाजों के लिए डरावने सपने की तरह है।
3: Young man is something else. He can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd. His sixes are generally into the crowd. His sixes are not those that just pop over that boundary rope. And he just makes it look so ridiculously easy.
1: महज 15 साल के वैभव जिस तरह कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भविष्य में बल्लेबाजी के सारे रिकॉर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट में इनके नाम ही दर्ज मिलेंगे। 27 मई को एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने एचआरएस के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। आईपीएल के नॉकआउट हिस्ट्री में ये संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 है। इससे पहले साल 2014 के क्वालिफायर 2 में सुरेश रैना ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 16 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था। इतना ही नहीं, वैभव की इस पारी में शुरू के 10 छक्के सिर्फ 24 गेंदों पर ही आ गए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 10 छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गेल के 10 छक्के साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 27 गेंदों में आए थे। आईपीएल 2026 के दौरान 27 मई को खेली गई ऐतिहासिक पारी समेत कुल 15 पारियों में वैभव 243 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बना चुके हैं। टी20 के किसी भी टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले साल 2022 में टी20 ब्लास्ट में रिली रूसो ने 192 के स्ट्राइक रेट से 623 रन बनाए थे। वैभव की इस एक पारी में बने रिकॉर्ड्स की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव के कुल 12 में से 8 छक्के पावर प्ले में ही आ गए थे। दिलचस्प तो ये है कि इससे पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा 7 छक्कों का कीर्तिमान भी हिंदुस्तान के इस वैभवशाली खिलाड़ी के नाम ही दर्ज था। वैभव अब आईपीएल में 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियां खेल चुके हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पर कमाल यह है कि वैभव की 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियों में से 3 आईपीएल के मौजूदा सीजन में ही आई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की अपनी पारी में वैभव ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। आईपीएल के इतिहास में 90 प्लस रनों की सभी पारियों में वैभव की पारी सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाली पारी बन गई है। वैभव ने 334.48 की स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड रजत पाटीदार के नाम था, जिन्होंने इसी सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 281.81 की स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पर 93 रन बनाए थे। आपको बता दें कि 27 मई वाली पारी को लेकर वैभव आईपीएल 2026 सीजन में सिर्फ पावर प्ले के दौरान 490 रन बना चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम था, जिन्होंने साल 2016 में पावर प्ले के दौरान 467 रन बनाए थे। ये सारे रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं 15 साल के एक टीनेजर के नाम। सोचिए, 15 साल का ये बच्चा इसी उम्र में अगर क्रिस गेल, डेविड वार्नर, किरोन पोलार्ड और शुमन गिल जैसे महारथियों के रिकॉर्ड्स की कब्रगाह बना चुका है, तो आगे तो वैभव के नाम से ही कीर्तिमान की एक किताब छापनी पड़ जाएगी।
4: बैट्समैन बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में अगर वो अपनी फिटनेस अच्छी मेंटेन करता है तो फिर आने वाला वो फ्यूचर स्टार है इंडिया का।
5: वैभव सूर्यवंशी, उसकी भी बैटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेलता है,
6: बहुत बढ़िया,
5: बहुत नेक्स्ट लेवल बैटिंग है। हम उसकी बैटिंग को नहीं कह सकते, उसकी अपनी अलग क्लास है।
7: करदा उड़ा दिया वैभव सूर्यवंशी ने,
1: ऐसा नहीं है कि वैभव का बल्ला सिर्फ आईपीएल में ही चला है। इससे पहले भी बिहार के समस्तीपुर का ये लाल ऐसी ऐसी अद्भुत पारियां खेल चुका है कि क्रिकेट के इतिहास में उसकी कोई सानी देखने को नहीं मिलती। इसी साल 6 फरवरी को जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव ने जो पारी खेली थी, उसे अंडर 19 वर्ल्ड कप के 38 साल के इतिहास की सबसे महान पारी कहा जा रहा है। सबसे महान पारी क्यों कहा जा रहा है, स्टैट देखने से इसका जवाब मिल जाएगा। वैभव ने महज 80 गेंदों पर 175 रन ठोक दिए। वैभव ने इस पारी में 15 छक्के और 15 चौके लगाए, यानी 150 रन सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए अपने खाते में जोड़ लिए। 55 गेंदों पर शतक पूरा किया, बाद के 75 रन सिर्फ 25 गेंदों पर ठोक दिए। महज 71 गेंदों पर 150 रन पूरे कर लिए, जो यूथ वनडे इतिहास का सबसे तेज 150 है। इतना ही नहीं, वैभव ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कुल 30 छक्के लगाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस के नाम था, जिन्होंने 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में 18 छक्के लगाए थे। पूरे टूर्नामेंट में वैभव 439 रन के साथ सेकेंड टॉप स्कोरर भी रहे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहने के साथ वैभव ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप से ठीक पहले अंडर 19 एशिया कप में 12 दिसंबर 2025 को यूएई के खिलाफ वैभव ने 95 गेंदों पर 171 रन कूटकर विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए थे। इस आतिशी पारी में वैभव ने 9 चौके और 14 छक्के लगाए थे। कहने की जरूरत नहीं कि सबसे तेज और सबसे कम उम्र से जुड़े रिकॉर्ड्स के सरताज बन चुके हैं वैभव। 24 दिसंबर 2025 को रांची के JSCA ओवल ग्राउंड में वैभव ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कई विश्व कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल के खिलाफ हुए मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 84 गेंदों पर 15 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 190 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी थी। इस मैच में सिर्फ 59 गेंदों पर 150 रन पूरे कर वैभव ने लिस्ट ए मैच में फास्टेस्ट 150 का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 बॉल पर 150 रन बनाए थे। तूफान थोड़ी देर के लिए हो तो राहत, नहीं तो कहर बन जाता है। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान के टिक कर रहने वाले तूफान नहीं बल्कि बवंडर हैं। इसीलिए विरोधियों के लिए कहर नहीं बल्कि महाकहर बन रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैभव 13 साल की उम्र में एक मैच में ट्रिपल सेंचुरी भी लगा चुके हैं। रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में वैभव ने 332 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अभी तो ये यूथ इंडिया की रहनुमाई कर रहे हैं। इंतजार कीजिए इनके टीम इंडिया में शामिल होने का। इसकी पूरी संभावना है कि साल 2027 के वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे और बहुत संभव है कि भारत तब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाएगा।
0: 15 साल के वैभव की कामयाबी क्रिकेट के बड़े बड़े धुरंधरों को भी हैरान करने लगी है। आईपीएल में अपने से दो गुने ढाई गुने उम्र के घातक गेंदबाजों को भी वो न सिर्फ सहजता से खेल रहे हैं बल्कि कायदे से धुलाई भी कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतनी छोटी उम्र में ही वैभव इतने दिग्गज बल्लेबाज कैसे बन गए। दरअसल इसके पीछे कहानी है एक अधूरे सपने की, जो कभी वैभव के पिता ने देखा था। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन हालात की दुश्वारियों की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। पर अपने उसी अधूरे सपने को संजीव ने अपने बेटे वैभव के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया। वैभव के क्रिकेटर बनने की पूरी कहानी आपके दिल को छू लेगी।
1: सर पर कामयाबी के ताज के साथ मन में विनम्रता का संस्कार हिंदुस्तान की संस्कृति का सनातन हिस्सा है। मैच 15 की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी का बेनजीर परचम लहरा चुके वैभव सूर्यवंशी सनातन संस्कार के युगीन संवाहक हैं। जिस मैच में वैभव ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी, उसके प्री मैच शो के दौरान जब उन्होंने सुनील गावस्कर और संजय बांगर को देखा तो दौड़कर उनके पास गए और पूरी विनम्रता के साथ उनके पैर छू लिए। वैभव के संस्कार की निश्चल सादगी देखिए कि गावस्कर और बांगर के साथ मौजूद प्रेजेंटर जतिन सप्रू के भी पैर छूने की उन्होंने पूरी कोशिश की। यह अलग बात है कि जतिन पीछे हट गए।
3: हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है कि हम अपने जो बुजुर्ग है, सीनियर्स है, एल्डर्स है, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, और वही उन्होंने किया। सिर्फ मेरे पास ही नहीं आए थे वो, बस मेरे बाजू में संजय बांगर थे और जतिन सप्रू थे, उनके पास भी आए थे और मुझसे थोड़ा सा रुककर मुझसे कुछ अपेक्षा कर रहे थे कि मैं कुछ उनको बोलूं, शायद अपेक्षा कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूंगा, शायद अपेक्षा कर रहे थे। तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा, लगे रहो, क्योंकि जब वो लगे रहेंगे तो फिर वो बल्ला मतलब बल्ला लगता रहेगा और छक्के भी लगते रहेंगे।
1: उम्र के लिहाज से वैभव की बेनजीर कामयाबी इस बात की मुनादी कर रही है कि आने वाले वक्त में कीर्तिमान की किताब के हर सफहे पर बिहार के इस लाल का नाम दर्ज मिलेगा। पर वैभव नाम के इस प्रदीप्त दिए की रोशनी से सराबोर होने वाले लोगों को उस तेल और बाती के बारे में भी जानना चाहिए जो खुद गुमनाम रहकर अपने दिए को जगमग कर रहा है। वैभव की इस बेनजीर कामयाबी के पीछे हाथ है उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का, जो कभी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का ख्वाब सजोए हुए थे, पर खुद की जो हसरत अधूरी रह गई उसे उन्होंने अपने लाल में प्रत्यारोपित कर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक पिता के अनोखे त्याग की खामोश सदाएं समस्तीपुर जिले के जर्रे जर्रे में जज्ब है।
6: वास्तव में एक पिता का जो त्याग था, तपस्या था, जिद था कि हमको किसी भी तरह जो मैं हासिल नहीं कर सका वो मैं अपने बच्चे को उस मुकाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। वो एकाकी भी देखा कि लोगों से मिलना तक लोगों में, क्योंकि जुनून सवार था कि मैं अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाऊं, तो लोगों से मिलना भी बंद किया। उस बीच में कई ऐसी मुसीबतें भी आईं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया।
1: पांच साल के बच्चे को पढ़ाई से दूर कर क्रिकेट के मैदान में पसीना बहाने के लिए खड़ा कर देना किसी भी पिता के लिए आसान फैसला नहीं होगा। पर संजीव सूर्यवंशी ने कलेजे पर पत्थर रख कर ये फैसला लिया। समस्तीपुर जिले की ताजपुर पंचायत में जहां क्रिकेट का कोई नाम लेवा नहीं था, वहां पांच साल के बेटे की प्रैक्टिस के लिए सारी व्यवस्था कर दी। यहां तक कि कुछ हम उम्र और बड़े बच्चों को भी चॉकलेट मिठाई का प्रलोभन देकर साथ जोड़ लिया ताकि वे बॉलिंग करें और वैभव लगातार बैटिंग की प्रैक्टिस करता रहे। पांच साल से सात साल यानी दो साल तक गांव में ही वैभव को दिन रात प्रैक्टिस कराने के बाद एक दिन संजीव सूर्यवंशी को इल्हाम हो गया कि अब अगले लेवल की प्रैक्टिस का वक्त आ गया है, लिहाजा बेटे को लेकर निकल गए ताजपुर से 12 किलोमीटर दूर स्थित पटेल मैदान में, जहां ब्रजेश झा क्रिकेट एकेडमी चलाते थे। क्रिकेटर बनाने का जुनून ऐसा था कि संजीव सूर्यवंशी को जब लगा कि रोजी रोटी के लिए चलने वाला बिजनेस व्यवधान बन रहा है तो बगैर देरी के उसे बंद कर दिया।
8: गार्डियनों का उनका सपोर्ट रहा है कि अपने बच्चे को इतना ज्यादा टाइम किल करते थे, अपने साथ लाना ले जाना, बच्चों के साथ अपना बिजनेस छोड़ के बच्चे के प्रति इतना एक फोकस, गार्जियन का भी कहीं ना कहीं टारगेट था कि हमारा बच्चा ऊपर खेले, और भगवान की दुआ से बच्चा वो मुकाम पर हासिल किया।
1: इसमें कोई संदेह नहीं कि 7-8 साल की छोटी उम्र में ही वैभव अपने पिता की उम्मीदों की कसौटी पर लगातार खरे उतर रहे थे। जब तक सूर्य की रोशनी धरा पर मौजूद रहती, वैभव बल्ले को दामन से दूर नहीं होने देते। पिता और माँ को छोड़कर घर के बाकी सदस्यों को वैभव की आदत कई बार नागवार गुजरती थी। दादी ने तो कई मौकों पर ऊब कर वैभव की पिटाई भी कर दी थी, पर बचपन में वैभव की पिटाई के वो वाकये आज दादी के लिए सुनहरी यादें बन चुकी हैं।
9: डांटते थे,
10: अच्छा,
9: कभी कभी उसको मार देते, दौड़ते थे उस पर, फिर भी कहता था नहीं दादी हमको अच्छा लगता है, हम खेलेंगे। हम कहे ठीक है बाबू तब खेलो। धीरे धीरे जब दलसिंह सराय गया, बेनी पट्टी, उसके बाद आपको क्या कहते हैं बेगूसराय, जब हम देखते रहे कि यह अच्छा खेल में उतर रहा, तब से मेरा भी मनोबल और मन ये हुआ कि हाँ यह खेले।
1: बचपन में वैभव की बैटिंग की खटखट से ऊब जाने वाली दादी का हृदय आज इस बात को जानकर गदगद है कि उनका पौत्र क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़कर आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाला खिलाड़ी बन गया है। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि वैभव को पटना के जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में डालने के लिए संजीव सूर्यवंशी को जमीन तक बेचनी पड़ी थी? दरअसल संजीव सूर्यवंशी को जब ये लगने लगा कि उनका बेटा समस्तीपुर स्थित पटेल मैदान के स्टैंडर्ड से आगे निकल चुका है, तो पटना में जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराने का फैसला किया। एकेडमी की फीस और उसके बाद समस्तीपुर से हर रोज पटना आना जाना कॉस्टली अफेयर था, इसीलिए संजीव सूर्यवंशी बेटे वैभव को लेकर हर अल्टरनेट डे पर पटना जाने लगे। जेनेक्स एकेडमी चलाने वाले पूर्व रणजी खिलाड़ी मनीष ओझा भी वैभव के पिता के त्याग और तपस्या को याद कर भावुक हो जाते हैं।
10: माँ का रोल रहता था बच्चे को तैयार करने से लेके उसको, और जब इधर से थक के जाता था तो उसको फिर रिकवरी में, चाहे वो खाने के सेंस में हो, उसको प्यार के सेंस में हो, उसको रेस्ट के सेंस में हो, और पिता का त्याग इस सेंस में था कि अर्ली सारे बोझ को वो अपने कंधे पर उठा रहे थे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और फिर भी वो जो वो अपने हैसियत से ज़्यादा बढ़ के उन्होंने उस बच्चे के लिए किया, और हर एक वो सुविधा उस बच्चे के लिए उन्होंने अरेंज किया खेल के प्रति कि वो आज इस मुकाम को प्राप्त कर सके।
1: पिता ने अपनी हैसियत की हदों को पार कर वैभव के लिए जमीन तैयार की, और वैभव ने भी पिता के इस त्याग की कीमत को शिद्दत से महसूस करते हुए मैदान पर पसीना बहाने में कोई कोताही नहीं की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था और वैभव को पटना ले जाना ले आना संभव नहीं रहा, तो संजीव सूर्यवंशी ने अपने ताजपुर स्थित घर के बाहर ही नेट प्रैक्टिस के लिए पिच बनवा दी ताकि वैभव की प्रैक्टिस खंडित ना हो।
11: लॉकडाउन में एक्चुअली पूरा बिहार बंद था, तो यहाँ पे पिच का जनरेट किया गया भैया के द्वारा, और टर्बिकेट और सीमेंटेड लॉकडाउन में लोग घर से नहीं निकल लेते, उस वक्त में भी इसका प्रैक्टिस सेशन लगातार यहाँ पे चलता रहा।
1: बेटे को क्रिकेटर बनाने का ये जुनून अपने आप में अनूठा है, इसका नतीजा सबके सामने है। आज वैभव के बल्ले से बनने वाले विश्व रिकॉर्ड्स संजीव सूर्यवंशी की दुनिया को रंगीन सपनों से भी ज्यादा सुहावन बना रहे हैं। वैभव की विराट बुलंदी का आलम यह है कि पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पर संजीव सूर्यवंशी और उनकी पत्नी से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। देश का गौरव बन चुके तेजस्वी पुत्र का पिता होने के लिए बधाई देते हैं। पिता ने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए त्याग तपस्या की, तो बेटा भी दो कदम आगे बढ़कर अपनी विराट उपलब्धियों से हक अदायगी कर रहा है। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसके 14 साल के बेटे को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को वैभव को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। साफ है कि पिता के संकल्प और बेटे की जीतोड़ मेहनत का पावन संगम क्रिकेट के मैदान पर चमत्कारिक धारा बनकर नमूदार हो रही है।
0: तो बंदे में है दम में आज आपने वैभव सूर्यवंशी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
12: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
13: Right field, and it will...
12: From the first pitch of the season to the stretch run.
13: And that's the ball game.
12: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits.
15: More
14: more country roads.
15: Thank God I get to wake
14: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
16: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
17: खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
18: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
17: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
20: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
17: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
21: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
20: अविश्वास में विश्वास बसता है,
17: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
18: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: शनि देव की कौन सी राशि धन की सबसे बड़ी राशि है? शनि देव की कौन सी राशि के लोग भयंकर लापरवाह होते हैं? और शनि देव की कौन सी राशि बृहस्पति के लिए बड़ी निगेटिव होती है? कौन सी हैं शनि देव की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
2: How they looked after game one.
3: I mean, they were frustrated.
1: The Daily.
4: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
1: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: पवित्र चारधाम यात्रा के दौरान हर रोज बन रहे नए रिकॉर्ड, महज 39 दिनों में 10 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में प्रशासन मुस्तैद। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चली तेज हवाओं से गिरा पारा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों का रुख कर रहे लोग, उत्तराखंड के मसूरी में हर रोज बढ़ रही सैलानियों की तादाद, पहाड़ों की रानी में सड़कों पर थमा ट्रैफिक। हिमाचल प्रदेश के मनाली की खूबसूरत वादियां सैलानियों से गुलजार, रोहतांग के माइनस तापमान में मस्ती करते नजर आ रहे पर्यटक, बर्फीले पहाड़ों पर एडवेंचर का भी उठा रहे लुत्फ। राजस्थान में रेतीले तूफान का बवंडर, श्रीगंगानगर में दिन में हुआ अंधेरा, बवंडर के बाद हुई बारिश से तापमान में आई 8 डिग्री की गिरावट।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
9: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आज 42वां दिन, अभी तक लगभग 25 लाख भक्तों ने किए चारधाम के दर्शन। उत्तराखंड के चमोली में जोर शोर से जारी है बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा, बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। अब तक करीब 7.5 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम, देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं लोग। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का दौर है जारी, पुलिस, SDRF और सहायता दलों की मदद से गुरुद्वारे तक पहुंच रहे श्रद्धालु। मैदानी इलाकों की गर्मी से भी राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं सैलानी, पहाड़ों में बारिश और बर्फीला माहौल कर रहा आकर्षित। बाबा केदारनाथ धाम में 39 दिन में पहुंचे 10 लाख श्रद्धालु, बाबा केदार के दर्शन का बना नया रिकॉर्ड। बाबा केदारनाथ धाम में आस्था का अभूतपूर्व सैलाब, हर दिन हजारों श्रद्धालु कठिन यात्रा कर पहुंच रहे धाम। इस साल की चारधाम यात्रा बना रही लगातार नए रिकॉर्ड, यात्रा मार्ग पर भक्ति और उत्साह का माहौल। रियल टाइम ट्रैफिक और भीड़ निगरानी सिस्टम से हालात पर नजर, केदारनाथ रूट पर होटल और विश्राम स्थल पूरी तरह फुल। बर्फीली चोटियों और घाटियों पर यात्रा को यादगार बना रहे श्रद्धालु, 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से लगातार बढ़ रही भीड़। मई के अंत में भी बर्फ से चमका रोहतांग दर्रा, 13,000 फीट ऊंचाई पर बर्फीला नजारा बरकरार, सैलानियों में उमड़ रही भीड़। स्नो स्कूटर और स्कीइंग का मजा ले रहे पर्यटक, बर्फ में सेल्फी और रील्स का बड़ा क्रेज, ठंडी हवाओं और हल्की धुंध से बड़ा रोमांच। कभी बर्फबारी तो कभी फुहारों का सिलसिला जारी, बर्फ के गोले बनाकर खेलते नजर आए बच्चे, युवाओं ने बर्फ में एडवेंचर का लिया आनंद। बर्फीले पहाड़ों ने पर्यटकों को किया मंत्रमुग्ध, बादलों के बीच खुलते नजारे बने आकर्षण, रोहतांग बना गर्मी से राहत का सबसे बड़ा केंद्र। मनाली में होटल और होमस्टे बुकिंग फुल, पर्यटन कारोबार में भी भारी तेजी दर्ज, मनाली रोहतांग मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें। लू से राहत पाने कांगड़ा घाटी की ओर उमड़े तीर्थयात्री, धर्मशाला और आसपास के इलाकों में बढ़ी सैलानियों की संख्या। ज्वालाजी और ब्रजेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, बाणगंगा और झीलों में बोटिंग का ले रहे आनंद। होटल और रेस्टोरेंट में भारी बुकिंग से पर्यटन कारोबार में तेजी, धर्मशाला और चामुंडा क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल। भीषण गर्मी से राहत पाने पहाड़ों पर उमड़े सैलानी, मसूरी का सुहावना मौसम बना पर्यटकों की पहली पसंद, देहरादून मसूरी मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार। होटल और पर्यटन स्थल पर बढ़ी भीड़ से रौनक, भीड़ नियंत्रण के लिए वीकेंड पर वन डे सिस्टम लागू, पहाड़ों पर बढ़ती भीड़ से पर्यटन कारोबार में तेजी। चूरू के सरदार शहर में रोगिस्तान में धूल भरी आंधी से दिन में ही छाया अंधेरा, धूल के विशाल बवंडरों ने पूरे आसमान को ढका। आसमान में छाए धूल के गुबार ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया, तेज हवाओं के कारण लोगों को घरों और सुरक्षित स्थानों पर रहना पड़ा, कुछ मीटर दूर तक देख पाना भी हुआ मुश्किल। लो विजिबिलिटी की वजह से सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार, दिन में हेडलाइट जलाना पड़ा। श्रीगंगानगर में भी रेत के बवंडर ने दिन को बनाया रात, करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला धूल भरी तूफान, करीब 30 मिनट तक बवंडर ने जनजीवन को किया प्रभावित, आसमान में रेत के घने गुबार की वजह से विजिबिलिटी रही बेहद कम। वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर सफर करना पड़ा, आंधी और बारिश से तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज। फतेहपुर शेखावाटी में रेत के महाबंडर ने मचाई हलचल, धूल के गुबार से दिन में ही दिखा राज जैसा नजारा। फतेहपुर शेखावाटी और रामगढ़ शेखावाटी धूल की चादर में लिपटे, कई किलोमीटर तक फैले रेतीले बवंडर ने आसमान को ढका। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हनुमानगढ़ में भी रेतीला तूफान, राजस्थान में के 5 जिलों चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, सीकर में रेत का बवंडर। बीकानेर में भी चली धूल भरी आंधी, दिन में देखा रात सा अंधेरा, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। बारिश के साथ तेज हवा चलने से मौसम हुआ सुहावना, वीकेंड की बारिश से हुई शुरुआत। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में झमाझम बारिश, इंदिरा गांधी स्टेडियम इलाके से बारिश की तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला इलाके में बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट, तपती गर्मी से लोगों को मिली राहत। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश, कल भी दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। तेज बारिश के साथ दिल्ली में चली धूल भरी आंधी, कनॉट प्लेस इलाके में भी हुई झमाझम बारिश। चंडीगढ़ में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, तापमान में भी आई भारी गिरावट। चंडीगढ़ में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मशहूर सुखना लेक से तस्वीर आई सामने। हरियाणा के अंबाला में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशगवार, भीषण गर्मी से मिली बड़ी राहत। तिरुवनंतपुरम के कई इलाकों में तेज बारिश, सड़कों पर भरा लबालब पानी, बारिश से बचने के लिए छाता और रेनकोट का प्रयोग करते देखे लोग। गुजरात के दाहोद जिले में सुबह से ही छाए बादल, दाहोद, झालोद, लिमडी, फतेहपुरा और संजेली समेत कई इलाकों में बारिश। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से मिली राहत, तापमान में आई गिरावट। गुजरात के साबरकांठा में भी सुबह से जारी है रिमझिम बारिश, लोगों में खुशी की लहर। साबरकांठा के हिम्मतनगर इलाके में बारिश के बाद गर्मी से मिला छुटकारा, इलाके में अभी और बरसात की उम्मीद। साबरकांठा में खेतों की बुआई के लिए अभी और बारिश जरूरी, आने वाले दिनों में रहेगा बारिश का इंतजार। भारत यात्रा पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी टिफनी अपने पति माइकल के साथ दिल्ली पहुंची अक्षरधाम मंदिर। डिफिनेट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया अक्षरधाम मंदिर की यात्रा की तस्वीरें, तो मंदिर परिसर की सुंदर वास्तुकला, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक माहौल का लिया अनुभव। ताजमहल का दीदार करने आगरा भी पहुंची टिफनी, ट्रंप पति के साथ खिंचवाई तस्वीरें। टिफनी ट्रंप ने अलग अलग पोज में ताजमहल के सामने खिंचवाई तस्वीरें, यात्रा को बनाया यादगार। भारतीय संस्कृति से प्रभावित दिखी टिफनी ट्रंप, सिंपल लुक और ड्रेस में खींचा ध्यान। मेघालय की उमरों में भारतीय सेना के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन, 12 मित्र देशों की सेनाओं के जवान शामिल। 20 मई से उमरोई में शुरू हुआ था अभ्यास प्रगति, 400 से अधिक जवान ले रहे भाग। मिले जुले पहाड़ी और जंगली इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित है अभ्यास प्रगति, संयुक्त योजना अभ्यास, सामरिक स्तर के अभ्यास और समन्वित अभियान की ट्रेनिंग ले रहे जवान। क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है अभ्यास प्रगति का मकसद, आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर। अभ्यास में सभी देशों की संयुक्त टीमों को साझा मिशन के तहत एक साथ प्रशिक्षण, रॉक क्राफ्ट, एम्बुश और काउंटर एम्बुश, ड्रिल, स्ट्रीट रिंग, जंगल लेन शूटिंग सहित कई तरह के ट्रेनिंग का आयोजन। पुणे के खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी के 150वें कोर्स की पासिंग आउट परेड, सेना के तीनों अंगों को मिले नए अवसर। पासिंग आउट परेड में सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 355 कैडेट शामिल, ट्रेनिंग संपन्न होने के बाद हुई परेड। भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने किया परेड का रिव्यू, ऐतिहासिक केतरपाल परेड ग्राउंड में हुई परेड। परेड के दौरान कैडेट्स ने किया शानदार मार्च पास्ट, कठोर सैन्य और शैक्षणिक प्रशिक्षण की दिखी झलक। एनडीए में 3 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद होती है कैडेट्स की पासिंग आउट परेड, साल में 2 बार होता है आयोजन। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पासिंग आउट परेड का निरीक्षण, परेड के लिए सलामी। पासिंग आउट परेड के दौरान कैडेट्स ने शानदार कदम ताल से बांधा समा, देश सेवा के लिए जोश और जज्बे का प्रदर्शन। परेड के बाद वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने किया शानदार फ्लाईपास्ट, सेना के शौर्य की नुमाइश। फ्लाईपास्ट में वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी हुए शामिल, आसमान में परवाज भरकर किया जवाजी का प्रदर्शन। परेड के दौरान कैडेट्स ने पेश किया शानदार फॉर्मेशन, पारंपरिक फाइनल स्टेप भी बना खास आकर्षण का केंद्र। एनडीए में पासिंग आउट परेड के बाद कैडेट्स के परिजनों से मिले सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कैडेट्स को प्रदान किया मेडल और पुरस्कार, ट्रेनिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सराहना। सेनाध्यक्ष ने कैडेट्स के साथ खिंचवाई तस्वीरें, उनके परिजनों के साथ भी फोटोसेशन में हुए शामिल। श्रीनगर में हुई अग्निवीरों के 7वें बैच की पासिंग आउट परेड, रेजिमेंटल सेंटर में 538 अग्निवीरों ने किया मार्च पास्ट। पासिंग आउट परेड के बाद परिजनों से मिले अग्निवीर, भावुक कर देने वाला दिखापल, सेना में काम करने के लिए अपने जज्बे का किया इजहार। बेंगलुरु में हुई मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर के अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड, 2315 अग्निवीर हुए शामिल। ब्रिगेडियर अजय सिंह ठाकुर ने की अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड की समीक्षा, परेड के लिए सलामी। नौसेना के पश्चिमी कमान में बदलाव के मौके पर मुंबई में हुई शानदार परेड, नौसेना के जवानों ने लिया हिस्सा। नौसेना के वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने संभाला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्ट का पदभार, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की जगह संभाली कमान। निवृत्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को दिया गया औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर, विदाई से पहले दी गई सलामी। देहरादून में टपकेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, भक्तिभाव से की पूजा अर्चना। मदुरे के थिरुपरान कुंदरम मुरुगन मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, के वैकासी विकासम उत्सव का भव्य आयोजन। भगवान मुरुगन को समर्पित है वैकासी विकासम उत्सव, मंदिर में किया गया भगवान का विशेष अभिषेक। कांचीपुरम के वरदराज पेरुमल मंदिर से निकाली गई भगवान की शानदार शोभा यात्रा, वैकासी ब्रह्मोत्सव के अवसर पर भव्य आयोजन। शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु, मंदिर परिसर में जय घोष करते हुए भगवान के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटा मेक्सिको का ग्वाडालाजरा, हजारों विदेशी फुटबॉल प्रशंसकों के स्वागत की तैयारी पूरी रफ्तार पर। प्रमुख चौक और फैन जोन फुटबॉल उत्सव के लिए सजाए जा रहे हैं। ऐतिहासिक चर्च, थिएटर और सांस्कृतिक स्थलों का लुत्फ उठाएंगे पर्यटक। पर्यटकों की सुविधा के लिए ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस, होटल रेस्टोरेंट स्थानीय कारोबारी को होगा आर्थिक लाभ। फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंगी मेक्सिको सिटी राजधानी की सड़कों पर खिलाड़ियों के भित्ति चित्र और वर्ल्ड कप सजावट छाई। पूरा शहर फुटबॉल महाकुंभ के स्वागत के लिए उत्सवी माहौल में डूबा। 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप। हांगकांग में रोबोटिक वॉलंटियर एसोसिएशन की शानदार शुरुआत, रोबोट डॉग अब नर्सिंग होम में निभाएंगे साथी की भूमिका। बुजुर्गों के साथ समय बिताने और मदद करने पहुंचेंगे रोबोट डॉग्स, सामुदायिक देखभाल कार्यक्रमों में भी दिखेगी रोबोट की टीम। ट्रेनिंग पूरी करने वाले छात्र बनेंगे रोबोट वॉलंटियर, सीखे गए तकनीकी कौशल का मैदान में होगा प्रदर्शन। चीन के बुजुर्गों ने एबी व्हील वर्कआउट से जीता दिल, तियानजिन के बुजुर्गों का फिटनेस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एबी व्हील रोल आउट करते सीनियर्स की ताकत देख लोग हैरान, मुश्किल एक्सरसाइज को बुजुर्गों ने किया बेहद आसानी से।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
10: Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
11: It's college football time. College basketball feels
10: Pardon
11: like
10: my take.
12: The Rams catching the Commanders.
10: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: कभी कभी जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जो इंसान की पहचान को बदल देते हैं। एक ऐसा अनुभव जो सिर्फ कामयाबी नहीं देता बल्कि सोच, व्यवहार और नजरिया भी नया कर देता है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अपनी आने वाली फिल्म रामायण में भगवान राम का किरदार निभाते हुए उन्होंने खुद के भीतर कई बदलाव महसूस किए हैं। पिता बनने के बाद मिले इस अनुभव ने उनकी जिंदगी को किस तरह नई दिशा दी है, देखिए रिपोर्ट में।

0: बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता रणबीर कपूर इन दिनों अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म रामायण को लेकर सुर्खियों में हैं। इस भव्य प्रोजेक्ट में वो भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ये सफर केवल एक फिल्म तक सीमित नहीं रहा। इस अनुभव ने उनके व्यक्तित्व, भावनाओं, पारिवारिक जिम्मेदारियों और जीवन को समझने के तरीके पर गहरा प्रभाव डाला है। जब किसी कलाकार को इतिहास, संस्कृति और आस्था से जुड़े सबसे सम्मानित पात्रों में से एक को निभाने का अवसर मिलता है, तब चुनौती भी उतनी ही बड़ी होती है। यही एहसास रणबीर कपूर के मन में भी था। रणबीर कपूर का कहना है कि जब उन्हें इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मिला, तब उनके मन में सबसे पहला सवाल यही था कि क्या वो इतने प्रतिष्ठित चरित्र को पूरी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत कर पाएंगे। शुरुआत में उन्हें खुद पर पूरा भरोसा नहीं था, मन में झिझक थी, जिम्मेदारी का दबाव था और कहीं ना कहीं असफल होने का डर भी मौजूद था।
1: Years back, 3 or 4 years back, when Namit casually spoke to me in London, I was filming at that time, and he called me over to his house and he said that, you know, I'm attempting to make the Ramayana and would you be interested in essaying Lord Rama's role? And my first instinct was fear. And I was like, absolutely not, because I don't think I deserve it. I don't think I'm worthy enough. Forget about it.
0: हालांकि समय के साथ ये संकोच धीरे धीरे सम्मान में बदल गया, तैयारी आगे बढ़ी, कहानी को समझने का अवसर मिला और पात्र की गहराई को महसूस करने का मौका मिला। इसके बाद वही आशंका एक मजबूत जुड़ाव में बदल गई।
1: When I came back to India after a couple of weeks, I met Nitesh sir and Namit again, and they narrated the story to me, and I just realized what a fool I am, that apart from being career defining, this was an opportunity of a lifetime to be part of a vision like this, to take a film like Ramayana, which is our truth, our culture, our history, to take it global, to take it to a larger audience, that I was just filled with gratitude.
0: रणबीर कपूर का मानना है कि ये प्रोजेक्ट उनके पेशेवर सफर का केवल एक अध्याय नहीं है, बल्कि निजी जीवन का बेहद महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। उनके अनुसार इस अनुभव ने उन्हें कई मायनों में बेहतर बनाया है। रणबीर कपूर कहते हैं कि शूटिंग के दौरान उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आए। कुछ ऐसी आदतें जिन्हें वो लंबे समय से छोड़ना चाहते थे, उनसे दूरी बनने लगी। सोचने का तरीका बदला, परिस्थितियों को समझने की क्षमता बढ़ी। इस बातचीत में रणबीर कपूर ने अपनी बेटी राहा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिता बनने के बाद उनके जीवन में एक नई जिम्मेदारी आई। राहा के आने से उन्होंने खुद को अधिक संवेदनशील और समझदार महसूस किया। अभिनेता के मुताबिक बेटी ने उन्हें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दी, जबकि रामायण ने उन्हें ये सिखाया कि एक अच्छे पिता की भूमिका किस तरह निभाई जाती है। इन दोनों अनुभवों ने मिलकर उनके व्यक्तित्व को नई दिशा दी। रणबीर कपूर का मानना है कि सही समय पर सही अवसर मिलना किसी सौभाग्य से कम नहीं होता। उन्होंने इस बात पर भी खुशी जताई कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास पर इतने बड़े स्तर की प्रस्तुति तैयार की जा रही है, जिसका हिस्सा बनने का अवसर उन्हें मिला। अगर फिल्म की बात करें तो इस मेगा प्रोजेक्ट का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं। निर्माण की जिम्मेदारी यश और नमित मल्होत्रा संभाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये भारतीय सिनेमा की सबसे बड़े बजट वाली फिल्मों में शामिल होगी।

0: भगवान राम की भूमिका रणबीर कपूर निभाएंगे, जबकि माता सीता के रूप में साई पल्लवी दिखाई देंगी। वहीं यश भी इस महत्वाकांक्षी परियोजना में अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। निर्माताओं ने इस कहानी को दो हिस्सों में दर्शकों के सामने लाने की योजना बनाई है। पहला भाग इस साल दिवाली पर रिलीज होगा, जबकि दूसरा अध्याय 2027 की दिवाली के अवसर पर सिनेमा घरों में रिलीज होगा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: शनि देव की कौन सी राशि धन की सबसे बड़ी राशि है? शनि देव की कौन सी राशि के लोग भयंकर लापरवाह होते हैं? और शनि देव की कौन सी राशि बृहस्पति के लिए बड़ी निगेटिव होती है? कौन सी हैं शनि देव की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads.

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: To right field, and it will leave.
0: From the first pitch of the season to the stretch run,
1: and that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: Sage University, transforming your passion into profession.
7: पवित्र चारधाम यात्रा के दौरान हर रोज बन रहे नए रिकॉर्ड। महज 39 दिनों में 10 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में मुस्तैद प्रशासन। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चली तेज हवाओं से गिरा पारा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों का रुख कर रहे लोग। उत्तराखंड के मसूरी में हर रोज बढ़ रही सैलानियों की तादाद, पहाड़ों की रानी में सड़कों पर थमा ट्रैफिक। हिमाचल प्रदेश के मनाली की खूबसूरत वादियां सैलानियों से गुलजार। रोहतांग के माइनस तापमान में भी मस्ती करते नजर आ रहे पर्यटक, बर्फीले पहाड़ों पर एडवेंचर का भी उठा रहे लुत्फ। राजस्थान में रेतीले तूफान का बवंडर, श्रीगंगानगर में दिन में हुआ अंधेरा, बवंडर के बाद हुई बारिश से तापमान में आई 8 डिग्री की गिरावट।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं शनि की राशियों की। तो आखिरकार शनि की राशियां कौन सी हैं और क्यों इन राशियों को इतना खास माना जाता है और इन लोगों को, इन जातकों को अपने जीवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आपको हर समय हर स्थिति परिस्थिति में स्वास्थ्य में समस्या रहती हो, सेहत में दिक्कत रहती हो, तो हर शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करिए। निर्धन व्यक्ति को या जिसको जरूरत है, शनिवार को खाने पीने की चीज दीजिए, काफी बेहतर होगा।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 31 मई 2026 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 31 मई 2026 दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, दोपहर 2:14 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, शाम के 4:12 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक।

0: पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं शनि की राशियों की। तो पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि शनि की जो राशियां होती हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं?
0: जी देखिए, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं शनिदेव की राशियों के बारे में। शनिदेव की राशियां कौन सी हैं और उनकी विशिष्टता क्या है? शनि वायु तत्व का सबसे प्रमुख ग्रह है। जैसे पृथ्वी तत्व पर बुध का अधिकार है, वैसे ही वायु तत्व पर शनि का अधिकार है। शनि दो राशियों के स्वामी हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। मकर राशि मुख्यतः पृथ्वी तत्व की राशि है और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। मकर राशि को मटीरियलिस्टिक राशि, भौतिकवादी राशि माना जाता है। इसीलिए मकर वालों को शनि जीवन में धन, संपन्नता, रुपया, बंगला, गाड़ी ये सब देता है, जबकि कुंभ राशि इंटेलेक्चुअल राशि है, बुद्धिमता की राशि है। तो शनि कुंभ वालों को ज्ञान और आध्यात्म देता है। शनि के ज्यादातर जो गुण हैं या शनि की जो ज्यादातर निकटता है वो कुंभ राशि के साथ है। शनि कुंभ राशि के ज्यादा निकट माने जाते हैं।
1: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके समस्या रह सकती है, सतर्क रहें। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। करियर में बड़ा निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या हल होगी। करियर में कुछ परिवर्तन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि की सबसे पहली राशि यानी मकर राशि के बारे में। इसकी क्या कुछ विशेषताएं होती है और किन बातों का ध्यान मकर राशि वालों को रखना चाहिए, आइए जानते हैं।
0: देखिए शनि की जो पहली राशि है मकर यानी कैप्रिकॉर्न, ये कर्म की राशि है, मेहनत की राशि है और धन की राशि भी है। तो पृथ्वी तत्व की राशि है मकर और इस पृथ्वी तत्व के राशि के स्वामी हैं शनि देव। मकर राशि पर शनि और बुध दोनों का प्रभाव होता है, यानी मकर वालों की कुंडली में अगर मकर राशि है और बुध थोड़ा भी बेहतर है तो बुध मकर वालों को बहुत बुद्धिमान बना देता है। मकर वाले जो लोग होते हैं वो सामान्यतः चालाक, मौका परस्त और धनवान होते हैं। किसी भी आदमी के करियर पर, उसके रोजगार पर, कोई भी आदमी हो, सबसे ज्यादा जिस राशि का असर पड़ता है वो मकर राशि है। और मकर राशि के लोग अपने विषय में माहिर होते हैं, जो भी सब्जेक्ट हो इनका, जो भी काम करते हैं उसमें परफेक्ट होते हैं। और मकर राशि करियर और रोजगार को सीधे तौर से प्रभावित करती है। मकर वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये अपनी योग्यता को लेकर अहंकारी हो जाते हैं। मकर वाले अब मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनको ये लगता है कि मेरी ही मेहनत सबसे ज्यादा है। अहंकार मकर वालों के अंदर जल्दी आता है। अगर आपकी राशि मकर है तो सलाह लेकर एक पन्ना धारण करना चाहिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और मकर वाले अगर जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, जीवन की बाधाओं से बचना चाहते हैं, तो इनको नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, ऐसा करना इनके लिए शुभ होगा।
1: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चिंताओं से राहत मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम इस समय टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, संतान की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए कार्यक्रम में अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न वैभव जी ने हमें लिखा है और वैभव जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 18 फरवरी 1996। जन्म का समय शाम के 6:12। जन्म स्थान है लखनऊ। वैभव कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता हूं, क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो सकेगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैभव आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2027 में जून से दिसंबर वाले समय में आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से हो जाएगा, लेकिन विवाह के पहले एक बार कुंडली जरूर चेक करवा लीजिएगा और अगर उसमें कोई कमी है तो उसका उपाय करने के बाद तब विवाह करिएगा। आपका विवाह बेहतर हो, जीवन अच्छा रहे, इसके लिए एक पीला पुखराज, वजन में 5-6 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करिएगा। रोज सुबह और शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है आज का दूसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी को आप नोट कर सकते हैं और इसी ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न अजय कुमार शर्मा ने हमें लिखा है और ये देवरिया उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 मई 1979। जन्म का समय रात में 8:10। जन्म का स्थान है टांडा उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं देवरिया से। अजय जी कह रहे हैं कि मैंने अभी लोन लेकर अपना व्यापार भी शुरू किया है, घर भी बनवाया है, तो मुझे लोन से छुटकारा कब तक मिलेगा और व्यापार को बेहतर करने के लिए मैं क्या करूं? अजय जी, लोन से छुटकारा पाने में अभी वक्त लगेगा। साल 2028-29 तक जाते जाते आप लोन से कुछ हद तक छुटकारा पा सकेंगे। व्यापार आपका बेहतर है, व्यापार में आप तरक्की करेंगे, उसमें ज्योतिष के हिसाब से कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। एक पन्ना बनवा के पहने, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह और शाम 1-1 बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह की दूसरी राशि यानी कि कुंभ राशि के बारे में, जिसे अंग्रेजी में एक्वेरियस कहते हैं। क्या इसकी विशेषताएं हैं और किन बातों का ध्यान इन जातकों को रखना चाहिए, उसके बारे में पंडित जी से जानते हैं।
0: अब जानते हैं शनि देव की दूसरी राशि के बारे में, जिसका नाम है कुंभ यानी एक्वेरियस। क्या विशेषताएं हैं? कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है और इस राशि के स्वामी भी शनि हैं। एक तो शनि का तत्व भी है इनके पास, वायु तत्व, और दूसरा इनके स्वामी भी शनि हैं, तो इनके ऊपर शनि का इंपैक्ट जबरदस्त होता है। इनका जीवन कुल मिला जुला कर शनि पर ही निर्भर करता है। कुंभ राशि वालों के अंदर आध्यात्म, अंतर्ज्ञान और कला के गुण पाए जाते हैं और कुंभ वाले अगर सही रास्ते पे चलें तो समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं। फिल्मों में चले जाते हैं, पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, सोशल सर्विस में चले जाते हैं और दुनिया पे असर डालते हैं। अगर इनको जीवन में सही दिशा मिले, क्योंकि कुंभ वालों के भटकने की संभावना बहुत होती है, अगर इनको जीवन में सही दिशा मिले तो ये जीवन में विशेष हो जाते हैं, जीवन में विशेष सफलता पा जाते हैं। कुंभ वालों की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है लापरवाही और आलस्य। सारी योग्यता, सारी काबिलियत, सारी खूबी होने के बावजूद इनकी लापरवाही और इनका आलस्य इनको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता। अगर आपकी राशि कुंभ है तो नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिएगा, शिव मंत्र का जप करिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और गलत आदतों में मत पड़िए, गलत हरकतें, गलत आदतों में इन्वॉल्व मत होइए। भटकने से, नशा करने से, गलत संगति से कुंभ वालों को बचने का प्रयास अवश्य करना चाहिए।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, करियर के मामले में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग हैं, मानसिक चिंता समाप्त होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुसीबतों से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: अगर आपकी राशि भी मकर है और जीवन में समस्याएं आ रही हो, बार बार बाधाओं का सामना आपको करना पड़ रहा हो, तो क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, मकर वाले अगर जिद्दी ना हो, अहंकार ना करें, तो जीवन में सामान्यता मुश्किलें आएंगी नहीं। लेकिन अगर आपकी राशि मकर है और जीवन में मुश्किल आ गई है तो क्या करेंगे, इनको हमेशा अपने करियर और परिवार में संतुलन रखना चाहिए। ये काम के मामले में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि परिवार की तरफ ध्यान नहीं देते। स्वास्थ्य के मामलों में, खास तौर से खान पान और डाइजेशन के मामले में, इनको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मकर वाले बड़े साहसी होते हैं, लेकिन साहस का मतलब ये नहीं है कि हर मामले में आप रिस्क लेने लगें। जीवन में बड़े रिस्क लेने से बचना चाहिए, हर समय जोखिम ना लें। अगर आपकी राशि मकर है तो रोज शाम को शनि मंत्र का अधिक से अधिक जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। और जब मौका मिले गरीबों की, निर्धनों की सहायता करिए। अन्न, वस्त्र, चिकित्सा जैसा भी करना चाहें, यथाशक्ति गरीबों की सहायता करिए, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। तो क्या आपकी राशि भी कुंभ है और क्या आपको जीवन में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, समस्याएं आपको जीवन में बार बार घेर ले रही हैं? तो आइए पंडित जी से जानते हैं क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं।
0: देखिए, कुंभ वालों के साथ ज्यादा मुश्किल नहीं है, केवल आलस्य और लापरवाही इनके जीवन में मुश्किलें बढ़ा देती है। क्या उपाय करें कुंभ वाले अगर जीवन में समस्या आ रही है तो? देखिए, अगर आपकी राशि कुंभ है तो थोड़ा मेहनत करिए, आलस्य और लापरवाही से बचिएगा। ज्यादा आलस्य और लापरवाही आपको मुश्किल में डाल देगी। कुंभ वालों को एक साथ बहुत सारे काम में हाथ नहीं डालना चाहिए, एक बार में एक ही काम करें तो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। जीवन में जितना ज्यादा आध्यात्मिक होंगे, पूजा उपासना साधना करेंगे, भगवान की तरफ झुकाव होगा, उतना ही आप जीवन की मुश्किलों से बचेंगे। नियमित रूप से उपवास रखिए, दान करिए, पूजा उपासना, मंत्र जप, दान ध्यान, इनका अगर आप ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, करियर की बाधाएं दूर होंगी, परिवार में कोई शुभ कार्य होगा, खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए, अब समय हो गया है आज का तीसरा सवाल लेने का। तो पंडित जी, आज का अगला सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
0: जी, अगला प्रश्न अर्चना सिंह ने हमें लिखा है और अर्चना हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 20 सितंबर 1984। जन्म का समय सुबह के 6:15। जन्म का स्थान है बरेली। मेल लिखती हैं वाराणसी से। अर्चना जी कह रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मैं क्या उपाय करूं? अर्चना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपने खान पान का, लीवर का, डाइजेशन का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेट से संबंधित समस्याएं आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। जून 2027 तक अभी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, डॉक्टर की परामर्श मानिए, वो आपके लिए जरूरी है। चिकित्सा में लापरवाही मत करिए। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह के समय एक बार नारायण कवच का पाठ करें या सुनें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले याद दिला दूं कि अगर आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई परेशानी, दुख, तकलीफ है, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अंतिम यानी कि चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न राजेंद्र झा ने हमें लिखा है और राजेंद्र झा जी दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 नवंबर 1970। जन्म का समय सुबह के 6:00। जन्म स्थान है दरभंगा, बिहार। राजेंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे पास नौकरी के 2 ऑफर आए हुए हैं। एक नौकरी दिल्ली में ही है और एक नौकरी के लिए जगह बदलनी पड़ेगी, तो मुझे कौन सी नौकरी करनी चाहिए? राजेंद्र जी, ज्योतिष के हिसाब से इस समय जगह बदलना बहुत अच्छा नहीं है। नौकरी बदल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी आप चेंज कर लीजिए, लेकिन जगह बदलने के लिए रुक जाइए। दिल्ली एनसीआर में जो नौकरी है उसी को ज्वाइन कर लीजिए, यहीं रहिए, बेहतर होगा, क्योंकि आपके परिवार को आपकी जरूरत है और अभी दूर जाने से थोड़ा पारिवारिक जीवन पे बुरा असर पड़ सकता है। आपका करियर और जीवन बेहतर हो इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने, रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा।
1: तो पंडित जी, मकर और कुंभ राशि के बारे में हमने आज के कार्यक्रम में बात की, क्या शनि के अलावा किसी और ग्रह से भी इन दोनों राशियों का संबंध होता है?
0: जी देखिए, मकर राशि वैसे तो शनि की राशि है, लेकिन मकर राशि मंगल की बड़ी प्रिय राशि है। मंगल मकर राशि में बड़े मजबूत हो जाते हैं और मकर बृहस्पति की बड़ी निगेटिव राशि है। बृहस्पति जब मकर में बैठते हैं तो वो बड़े कमजोर हो जाते हैं। तो मकर राशि का संबंध शनि के साथ तो है, लेकिन बृहस्पति और मंगल से भी इसका कनेक्शन पाया जाता है। कुंभ राशि पूरी तरह से शनि की राशि है, लेकिन ज्योतिष के विद्वान कहते हैं कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में बैठते हैं तो वो उच्च के बृहस्पति का फल देते हैं, यानी कुंभ राशि का संबंध भी बृहस्पति के साथ है। और जब भी बृहस्पति कुंभ में हो तो वो कर्क के बृहस्पति का, उच्च के बृहस्पति का फल प्रदान करते हैं।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और जिनका बर्थडे, जिनका जन्मदिन 31 मई को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 31 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है, करियर की स्थिति मध्यम रहेगी, धन की स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी। अक्टूबर के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होना आरंभ होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: तो चलिए, अब कार्यक्रम में समय हो गया है ये जानने का कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
0: देखिए, बहुत बार कुंडली में शाप होते हैं, दोष होते हैं, तो पूर्व जन्म के शाप को, दोष को समाप्त कैसे किया जाए? देखिए, किसी भी तरह का कुंडली या जीवन में शाप होता है वो सामान्यतः राहु से या केतु से संबंध रखता है। इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण की या भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। अगर शाप का प्रभाव ज्यादा है तो श्रीमद् भागवत का पाठ करने से या श्रीमद् भागवत सुनने से काफी हद तक शाप से मुक्ति मिल जाती है।
1: तो चलिए, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि 31 मई 2026 यानी कि दिन रविवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 31 मई 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपका नाम और यश बढ़ेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 31 मई रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो चलिए, अब पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने जीवन की बेहतरी के लिए क्या करेंगे। आज की गुड लक राशि है तुला। जीवन की बेहतरी के लिए इनको माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए और चांदी इनको जीवन में जरूर धारण करना चाहिए।
1: तो चलिए, अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का महा उपाय आखिर क्या है।
0: जी बहुत सारे लोगों के परिवार में बेवजह की अशांति और बेवजह का कलेश रहता है। क्या उपाय किया जाए? घर के पूजा स्थान को हमेशा साफ रखिए। दोनों समय पूजा स्थान पर धूप बत्ती जलाइए और घर में शाम के समय बोल बोल कर मंत्र जप करें या उच्चारण करके कीर्तन करें, काफी लाभ होगा।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अब जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: आईपीएल का सबसे बड़ा धुरंधर वैभव के बल्ले ने मचाया बवंडर, उम्र 15 साल बना गेंदबाजों का काल, सिक्सर का बेमिसाल बेबी बॉस, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. Tune in has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
5: पवित्र चारधाम यात्रा के दौरान हर रोज बन रहे नए रिकॉर्ड। महज 39 दिनों में 10 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में मुस्तैद प्रशासन। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के साथ चली तेज हवाओं से गिरा पारा। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों का रुख कर रहे लोग। उत्तराखंड के मसूरी में हर रोज बढ़ रही सैलानियों की तादाद। पहाड़ों की रानी में सड़कों पर थमा ट्रैफिक। हिमाचल प्रदेश के मनाली की खूबसूरत वादियां सैलानियों से गुलजार। रोहतांग के माइनस तापमान में भी मस्ती करते नजर आ रहे पर्यटक। बर्फीले पहाड़ों पर एडवेंचर का भी उठा रहे लुत्फ। राजस्थान में रेतीले तूफान का बवंडर। श्रीगंगानगर में दिन में हुआ अंधेरा। बवंडर के बाद हुई बारिश से तापमान में आई 8 डिग्री की गिरावट।
6: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: ताकत में बेस्ट, तकनीक में श्रेष्ठ, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार, हिंदुस्तान बना रहा है स्वदेशी हथियार।
1: जो देश अपने हथियार खुद बनाता है वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है।
0: आज भारत तोप की गोली से लेकर मिसाइल तक और फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक सब कुछ खुद ही तैयार कर रहा है। एक वक्त था जब भारत अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपनी ताकत को समझा, उसे जाना और खुद आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो अपने यहाँ ही बना रहा है। कई देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत ही भारत ने अपने यहाँ ही कई रक्षा उपकरणों को बनाना शुरू किया है। नतीजा ये है कि आज की डेट में भारत न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि दूसरे देशों का निर्यातक भी बन रहा है। डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
1: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
0: हर दिन नए हथियारों की चमक दुश्मनों को भयभीत

0: कर रही है। भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जो दुश्मन की नापाक हरकतों का माकूल जवाब दे सके।
1: आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं, दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। साथियों, इसका एक और लाभ सीमा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बहुत ही कठिन है, जटिल है, टफ है। हर जगह सैनिकों की तैनाती करना या कोई आसान काम नहीं होता, मैं प्रत्यक्ष से महसूस कर रहा हूं। और ऐसे में ऑटोमेटेड निगरानी सिस्टम, रोबोटिक वाहन और सेंसर दिन रात सीमा की निगरानी कर सकते हैं, ऐसा सभी अब स्वीकार करने लगे हैं। इससे सुरक्षा भी बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उन पर दबाव भी कम रहता है।
0: म्यूनिशन और ऑटोमेटेड सिस्टम में भारत अगुआ बनकर उभरे, इसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है।
1: भविष्य के युद्धों में सबसे बड़ा अंतर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पास सैनिकों की संख्या कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन और ऑटोमेशन की दृष्टि से कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ युद्ध की आवश्यकता नहीं बल्कि शांति, विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। रक्षा क्षेत्र में यदि हम अभी तक दूसरों पर निर्भर रहे थे तो यकीन मानिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे डिफेंस सेक्टर और हमारे फाइनेंस सेक्टर को होता। लेकिन अब क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची, खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में, तो यही वजह है कि खासतौर पर तकनीक के मामले में और रक्षा तकनीक के मामले में आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है। 23 मई को महाराष्ट्र के शिरडी में एक बेहद आधुनिक गोला बारूद निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया, जिसमें सालाना 500,000 आर्टिलरी शेल्स तैयार किए जाएंगे। साथ ही भारत के पहले 300 किलोमीटर वाले सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम को भी हरी झंडी दिखाई गई। सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दो रेंज वेरिएंट्स में डिजाइन किया गया है। पहला वेरिएंट 150 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों तक हमला कर सकता है और दूसरा लंबी दूरी वाला वेरिएंट 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र की खरीद का ऑर्डर भी दे दिया है।
2: सूर्यास्त्र भारत की सेनाओं को एक ऐसा जबरदस्त वेपन और फोर्स मल्टीप्लायर मिलने वाला है जो वाकई में दुश्मन की कमर तोड़ने में कामयाब होगा, क्योंकि इसका पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता है कि 5 मीटर के अंदर लिखा हो लेकिन 2 मीटर के रिजल्ट दिए गए 300 किलोमीटर दूर। आप समझिए कि जब वो हमला करने में सक्षम है दुनिया के कमांड सेंटर पर, जहाँ पे उनके शीर्ष अधिकारी बैठे होते हैं, प्लानिंग चल रही, वहाँ पर हमले के पहले हमारा हमला होता है, उनकी सारी प्लानिंग ध्वस्त हो जाती है। कम्युनिकेशन सिस्टम पर जहाँ से बातचीत होती है उसको ख़त्म कर दें, रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक बेस जहाँ से उनके हथियारों का भंडारण है, अम्यूनिशन का भंडारण है, तेल है, पिन पॉइंट हमला करने में सक्षम है।
0: सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम में प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये पारंपरिक हथियारों की तरह इधर उधर नहीं गिरते बल्कि बिल्कुल उसी जगह पर प्रहार करते हैं जहां इन्हें भेजा गया, यानी निशाना एकदम अचूक। सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में 150 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल महज 1.5 मीटर है, वहीं 300 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी 2 मीटर है। इसका मतलब ये है कि रॉकेट अपने टारगेट से औसतन 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर गिरता है, जो युद्ध में बहुत बड़ी ताकत है।
2: सूर्यास्त्र देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी का बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। इससे 122 mm, 306 mm, 370 mm के रॉकेट फायर किए जा सकते हैं, साथ साथ में कामिकाजी ड्रोन भी फायर किया जा सकता है। 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी और तकरीबन 5 मीटर कहा जाता है, लेकिन इससे बेहतर रिजल्ट्स इसके मिले 2 मीटर का सर्कुलर एरर पे, यानी कि 2 मीटर के अंदर अंदर ये फायर करने में सक्षम है। ये इसका प्रिसीजन है, ये इसकी एक्यूरेसी है। क्या फ़ायदा होगा इसका? यह होगा कि दुश्मन के कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक बेस, उनकी गन पोजीशन, एडी सिस्टम, रडार स्टेशन और जहां पे उनकी रॉकेट सिस्टम है, जहां पर भी उनका जो एक स्ट्रेटजिक टारगेट्स हैं उनको हम पिन पॉइंट हमला करने में ये सक्षम है।
0: भारतीय सेना को अब लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाले रॉकेट्स मिलेंगे, जिससे दुश्मन के ठिकानों जैसे कि आर्टिलरी पोजीशंस, कमांड सेंटर्स और दूसरे अहम टारगेट्स को सुरक्षित दूरी से तबाह किया जा सकेगा।

सूर्यास्त की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मल्टी बैरल क्षमता, जिसमें अलग अलग तकनीक के हथियार एक साथ लगाए जा सकते हैं और दागे भी जा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि निशाना भी सटीक और लॉजिस्टिक का खर्च भी बहुत कम। सूर्यास्त के अलग अलग पॉड्स को मिशन के हिसाब से बदला जा सकता है। 370 mm कैलिबर की प्रेडेटर हॉक गाइडेड रॉकेट सूर्यास्त सिस्टम का सबसे घातक हथियार है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। सूर्यास्त सिस्टम का एक और घातक हथियार है एक्स्ट्रा रॉकेट। 306 mm कैलिबर का ये गाइडेड रॉकेट 150 किलोमीटर तक दुश्मन के बंकरों और कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकता है। सूर्यास्त सिस्टम से 122 mm और 160 mm कैलिबर के बेहद किफायती एक्यूलर रॉकेट्स दागे जा सकते हैं, जो 40 से 100 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। सूर्यास्त सिस्टम से स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन भी दागे जा सकते हैं, जो हवा में रहकर दुश्मन की खोज करते हैं और सटीक हमला करते हैं। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागी जाने वाली प्रेडेटर हॉक रॉकेट्स में GPS INS सेंसर फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये तकनीक प्रेडेटर हॉक रॉकेट को बिना किसी भारी मदद के बेहद खराब मौसम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के बीच भी सटीक निशाना लगाने की क्षमता देती है।

0: देखा जाए तो प्रेडेटर हॉक सूर्य अस्त्र का सबसे खतरनाक रॉकेट है। 300 किलोमीटर तक जाता है, 370 mm है और 140 से 200 किलोग्राम तक का ये एक्सप्लोसिव ले जा सकता है और छत के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर, बंकर्स के ऊपर बहुत इफेक्टिव है। तोड़ के अंदर तक उनको तहस नहस कर सकता है। सेल्फ गाइडेंस है, गाइडेंस बड़ी अच्छी है और पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है, जैसा कि 5 मीटर का बताया जाता है, लेकिन 2 मीटर की हमको इसमें एक्यूरेसी मिली है। और शूट एंड स्कूट का इसका फैसिलिटी है कि फायर करे, उसके बाद जगह बदली कर सकता है।
1: हॉक रॉकेट सुपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है, जबकि ये 140 किलोग्राम का भारी वॉरहेड लेकर अपने टारगेट से टकराता है तो भारी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। इस ऊर्जा के कारण बिना विस्फोट हुए भी ये रॉकेट सिर्फ अपनी रफ्तार और वजन के दम पर कंक्रीट की कई फीट मोटी दीवारों को मलबे में तब्दील कर सकता है। सूर्यास्त्र की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक पारंपरिक क्रूज और एक बैलिस्टिक मिसाइल के 15% खर्चे से भी सस्ता है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि युद्ध के क्षेत्र में हमें भारी भरकम खर्च उठाने की जरूरत नहीं है। हम मल्टीपल रॉकेट्स दुश्मन पर दाग सकते हैं। आधुनिक युद्ध में आर्टिलरी की भूमिका निर्णायक होती है और सूर्यास्त्र शूट एंड स्कूट क्षमता के साथ दुश्मन के काउंटर अटैक से बचते हुए तेज हमला करने में सक्षम है। इसमें हाई मोबिलिटी व्हीकल भी लगाया गया है, जिससे ये बहुत तेजी से जगह बदल सकता है। सूर्यास्त्र को 6x6 भारी ट्रकों पर माउंट किया गया है। हमला करने के बाद ये सिस्टम फौरन अपना लोकेशन बदलने में सक्षम है, जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। जानते हैं कि भारत सरकार ने किस तरह के चेंजेस किए हैं जिस वजह से 5000 तरह के उपकरण भारत में ही बनाए जा रहे हैं। दरअसल अभी अगर बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट पार्टनरशिप 20-30% है, जिसे बढ़ाकर सरकार 50% तक करना चाह रही है। इसको लेकर विचार हो रहा है। मोदी सरकार ने FDI, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जैसे बड़े सुधार किए हैं। सूर्यास्त्र भारत की आर्टिलरी ताकत में काफी इजाफा करेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के पास जो पिनाका मौजूद है उसमें और सूर्यास्त्र में क्या अंतर है? तो सबसे पहले दोनों रॉकेट सिस्टम की ताकत और खासियत जान लीजिए। सिस्टम की बात करें तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च है, जो सिर्फ रॉकेट लॉन्चिंग के लिए ही है। सूर्यास्त्र यूनिवर्सल लॉन्चर है, जो रॉकेट और मिसाइल दोनों दाग सकता है। पिनाका में कैलिबर फिक्स है और इसे सिर्फ 214 mm रॉकेट से ही दागा जा सकता है। सूर्यास्त्र मल्टी कैलिबर है, जो 122 mm, 306 mm, 370 mm के वेपन्स दाग सकता है। रेंज की बात की जाए तो पिनाका MK1 40 किलोमीटर और पिनाका एक्सटेंडेड रेंज 75 से 90 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। वहीं सूर्यास्त्र की रेंज 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है। पॉड रीलोड सिस्टम की बात करें तो पिनाका के रीलोडिंग में करीब 4-5 मिनट का समय लगता है। वहीं सूर्यास्त्र में जो पॉड सिस्टम लगा है उसे रीलोड करने में 10 मिनट का वक्त लगता है।
0: पिनाका और सूर्यास्त्र में फर्क ये है कि पिनाका में एक साथ बहुत सारे रॉकेट फायर होते हैं, 6-6 रॉकेट यानी 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ गिरते हैं एक इलाके में, और वो एक एरिया वेपन के तौर पे, यानी कि 214 mm के रॉकेट हैं, एक ही कैलिबर के होंगे और वो एक जगह जाके पूरे इलाके को सैचुरेट कर देंगे, भस्म कर देंगे। जबकि सूर्य अस्त्र में अलग अलग कैलिबर के रॉकेट फायर हो सकते हैं, 122 mm, 306 mm या 370 mm, 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज होती है। और ये फर्क ये कि पिन पॉइंट अटैक करता ही है, एक रॉकेट जाएगा वहाँ पिन पॉइंट हमला करेगा, तो दोनों के टारगेट अलग हैं।
1: भारतीय सेना सूर्यास्त्र सिस्टम को उसकी 300 किलोमीटर की लंबी रेंज और डीप स्ट्राइक क्षमता के कारण LAC और LOC के अत्यंत संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात कर सकती है। इसका मेन मकसद चीन और पाकिस्तान की सेना के रसद आपूर्ति करने वाले रास्तों, एयरबेस और कमांड सेंटर्स को अपने तोपखाने की जद मिलाना है। रॉकेट का ताकतवर होना कई मायनों में सेना की युद्ध क्षमता तो नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा, जो काम फाइटर जेट किया करते थे और जिन कामों में मिसाइल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उसी काम को अब सूर्यास्त्र जैसा सिस्टम आसानी से कर देगा।
2: पारा
1: पारंपरिक तौर पर अगर देखा जाए तो अगर दुश्मन 300 किलोमीटर दूरी पर बैठा है तो भारत को अपने लड़ाकू विमानों को मैदान में उतारना पड़ता है, लेकिन सूर्यास्त के आने के बाद न तो हम अपने पायलट्स की जान जोखिम में डालेंगे और न ही दुश्मन की सरहद में जाने की जरूरत होगी, बल्कि भारत अपनी सरहद पर ही बैठे दुश्मन का काम तमाम कर सकता है।
2: पहले सीमा से 150 से 300 किलोमीटर दूरी पर मौजूद दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार या रसद डिपो को तबाह करने के लिए वायुसेना के सुखोई विमानों को उड़ान भरनी पड़ती थी। वहीं अब इस काम को जमीन पर तैनात आर्मी के सूर्यास्त रेजिमेंट अपने प्रेडेटर हॉक रॉकेट से मिनटों में पूरा कर पाएंगे। इससे महंगे लड़ाकू विमानों और जांबाज पायलटों को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में भेजने का जोखिम भी काफी हद तक कम हो जाएगा।
1: सूर्यास्त की तैनाती पारंपरिक तौर पर सुखोई 30 एमकेआई और ब्रह्मोस मिसाइल के वर्कलोड को काफी हद तक कम कर देगी। अब वो किस तरीके से, वो भी आपको समझाते हैं। सीधी सी बात है कि 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को अगर निशाने पर लाना हो तो उसके लिए सूर्यास्त ही काफी होगा। यानी अगर देखा जाए तो रण क्षेत्र में सूर्यास्त सुखोई 30 एमकेआई और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की जगह ले सकता है।
2: सूर्यास्त 300 किलोमीटर की दूरी तक ब्रह्मोस जैसी अचूक सटीकता प्रदान करता है, इसीलिए सामान्य और कम सुरक्षा वाले लक्ष्यों जैसे कि आतंकी कैंप, रसद डिपो के लिए ब्रह्मोस को बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। ये काम सूर्यास्त आसानी से कर देगा। ब्रह्मोस मिसाइल को अब सिर्फ अति संवेदनशील और अत्यधिक बख्तरबंद जैसे दुश्मन के युद्धपोत या परमाणु बंकर जैसे लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा। ब्रह्मोस ले जाने वाले सुखोई 30 एमकेआई विमानों का वजन और रखरखाव का दबाव कम होने से वायुसेना इन विमानों का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में कर पाएगी। सूर्यास्त वायुसेना का विकल्प नहीं बल्कि ये थल सेना को आत्मनिर्भर बनाकर वायुसेना की कीमती हथियारों और विमानों को बड़े और अधिक रणनीतिक युद्धों के लिए रीस्टॉक करने का मौका देता है।
0: ब्रह्मोस जैसा महंगा मिसाइल एक स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि तो थोड़े कम इम्पोर्टेंट टारगेट है, वहाँ पर सूर्यास्त का इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है। और तीसरी बात ये कि सुखोई को भी बचत होगी, एयरफोर्स को जो 300 किलोमीटर दूर टारगेट होते थे उनके लिए हवा में जाके मिजाइल फायर करनी पड़ती थी, वो बच जाएगा। आप जमीन से फायर करोगे उनके टारगेट को बर्बाद कर दोगे, यानी कि हम अपने जो एयरक्राफ्ट हैं सुखोई है इनको एक्सपोज नहीं करेंगे, उनका इस्तेमाल और स्ट्रेटजिक टारगेट के लिए और बड़े टारगेट्स के लिए किया जा सकता है। तो यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर है कि वो हथियार बने रहेंगे, वो अपने टारगेट्स करेंगे, बाकी टारगेट्स को सूर्यास्त एंगेज करेगा, अपनी जमीन पर रहते रहते दुश्मन को नेस्ता नाबूद करेगा।
1: आज देश में सिर्फ हथियार ही नहीं बनाए जा रहे बल्कि यहाँ उस भरोसे को भी मजबूत किया जा रहा है जिसके दम पर सेना वीरता का नया इतिहास लिख रही है।

0: अब हम सिर्फ टैंक, तोप, मिसाइल या फाइटर जेट्स ही नहीं बनाते, हम बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, जिसका सर्वोच्च संकल्प है राष्ट्र रक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना।
1: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
0: रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा और विदेश से हथियार और उपकरण के आयात को कम कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड मिशन पर आगे बढ़ रहा है।

0: हिंदुस्तान अब अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं, भारत में ही तरह तरह की मिसाइलें, फाइटर जेट्स और यहां तक कि छोटे कलपुर्जे तक बनाए जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत रक्षा के क्षेत्र में खुद स्टैंड कर चुका है और ये दुनिया भी भारत का लोहा मान रही है।
1: भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में लंबी छलांग लगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2023 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वो है रक्षा।
2: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
1: ये मेक इन इंडिया मिशन की वो तैयारी है जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है और भारत के लिए है।
0: स्क्रू से लेकर सिस्टम और सॉफ्टवेयर तक भारत आज की तारीख में ये सब कुछ अपने आप बना रहा है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि भारत ये सब कुछ न सिर्फ अपने लिए बना रहा है बल्कि 80 से ज्यादा देशों को दे भी रहा है। और ये तमाम वो देश हैं जो रक्षा के मामले में भारत पर भरोसा करते हैं।
1: सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन एक वक्त था जब 65-70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 35% सामान ही आयात होता है। इसका मुख्य कारण भारत की अपनी रक्षा प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने की बढ़ती क्षमता है।
0: भारत सरकार की तरफ से पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट तैयार की गई है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि स्वदेशीकरण को ज्यादा बढ़ावा देना। यानी खास तौर पर रक्षा के क्षेत्र में हम किसी दूसरे मुल्क पर निर्भर न रहें, छोटे से कलपुर्जे से लेकर बड़ी से बड़ी मिसाइल तक बनाने में भारत खुद अपनी धरती का और यहाँ के साजो सामान का ही इस्तेमाल करे।
1: अब तक रक्षा मंत्रालय ऐसी 5 लिस्ट जारी कर चुका है और इसमें तकरीबन 5,000 आइटम्स के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी। ये सभी डिफेंस, पीएसयू और निजी स्वदेशी कंपनियों से खरीदे जा रहे हैं। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट 4,666 आइटम्स की 5 लिस्ट जारी की गई है, जिन्हें सिर्फ स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। नेगेटिव लिस्ट, इसमें 310 उपकरणों जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, तोप के आयात पर 2020 से 27 तक रोक लगाई गई है। डैप 2020 यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में खरीद को प्राथमिकता दी गई, यानी कि स्वदेशी डिजाइन और प्रोडक्शन को बढ़ावा। सृजन पोर्टल, इसमें 19,509 पहले आयातित आइटम्स को स्वदेशी बनाने के लिए लिस्ट किया गया। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा, इसमें टाटा, L&T, भारत फोर्स और MSME को बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। FDI में छूट, डिफेंस में 74% तक FDI ऑटोमेटिक रूट से और 100% सरकार की मंजूरी से होगी। अगला है R&D को बढ़ावा, इसमें IDEX और TDF स्कीम्स से स्टार्टअप्स और MSMEs को फंडिंग दी जा रही है। साल 2025 में TDF के लिए 60 करोड़ रुपए और IDEX प्राइम के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए।
3: हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर ना सिर्फ सुरक्षा के मामले में डिफेंस प्रोडक्शन में होना पड़ेगा, तमाम ऐसी विधाएं हैं उसमें हर एक में आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका कि प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कट कॉल दिया हुआ है। जहां तक डिफेंस का सवाल है, देखिए हिंदुस्तान की सुरक्षा में को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आप ऐसे समय में दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें जब आपको उस इक्विपमेंट की, उस हथियार की, उस गोला बारूद की, उस एमनिशन की जरूरत है। लिहाजा आपको स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा और हिंदुस्तान देखिए धीरे धीरे इसके तरफ अग्रसर हो रहा है।
1: प्राइवेट कंपनियों को भी सरकार की तरफ से सहूलियतें दी गई हैं। सरकार ने भारत की निजी हथियार निर्माता कंपनियों के लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है कि बड़ी तेजी से ये आगे बढ़ने लगे। इस पूरी बढ़ोतरी में हिस्सेदारी की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2024-25 में कुल रक्षा उत्पादन में डीपीएसयू यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान करीब 77% रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 23% रहा। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बढ़ी है। जो वित्त वर्ष 2023-24 में 21% थी वो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23% हो गई।
3: सबसे पहले मैं टच करूंगा पॉजिटिव इंडियनाइजेशन। इसके तहत वो सारी चीजें हैं जो कि डिफेंस में जिसकी रिक्वायरमेंट है और जिसको हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है, चाहे वो पीएसयूज हो, डीपीएसयूज हो, प्राइवेट सेक्टर हो। अब हम नेगेटिव लिस्ट की बात करते हैं। टाइम टू टाइम ये लिस्ट रिवाइज की जाती है। नेगेटिव लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें कि उन आइटम को बैन किया गया है जिसका हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ये सारे के सारे आइटम हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लिहाजा ये नेगेटिव लिस्ट में दिन रात इजाफा हो रहा है और इन आइटम को हम अब बाहर से इंपोर्ट करना डिफेंस सेक्टर में बंद करेंगे। सृजन पोर्टल देखिए एक ऐसा पोर्टल है जिसमें तमाम प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक सेक्टर की यूनिट इसमें लॉग इन कर सकते हैं, अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि तमाम आगे आने वाले दिनों में जो हमारे डिफेंस की प्रोक्योरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, किसका टेंडर निकलने वाला है, क्या उसका क्वालिफिकेशन क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों की उसमें लिस्टिंग होती है।
1: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अपने डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा तवज्जो दे रहा है और इसी के तहत देश में डिफेंस कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में सिर्फ दो ही कॉरिडोर हैं। रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: Shani Dev ki kaun si rashi dhan ki sabse badi rashi hai? Shani Dev ki kaun si rashi ke log bhayankar laparwah hote hain? और शनि देव की कौन सी राशि बृहस्पति के लिए बड़ी निगेटिव होती है? कौन सी हैं शनि देव की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: आईपीएल का सबसे बड़ा धुरंधर वैभव के बल्ले ने मचाया बवंडर, उम्र 15 साल बना गेंदबाजों का काल, सिक्सर का बेमिसाल बेबी बॉस, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
8: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: पवित्र चारधाम यात्रा के दौरान हर रोज बन रहे नए रिकॉर्ड, महज 39 दिनों में 10 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में मुस्तैद प्रशासन। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चली तेज हवाओं से गिरा पारा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों का रुख कर रहे लोग, उत्तराखंड के मसूरी में हर रोज बढ़ रही सैलानियों की तादाद, पहाड़ों की रानी में सड़कों पर थमा ट्रैफिक। हिमाचल प्रदेश के मनाली की खूबसूरत वादियां सैलानियों से गुलजार, रोहतांग के माइनस तापमान में भी मस्ती करते नजर आ रहे पर्यटक, बर्फीले पहाड़ों पर एडवेंचर का भी उठा रहे लुत्फ। राजस्थान में रेतीले तूफान का बवंडर, श्रीगंगानगर में दिन में हुआ अंधेरा, बवंडर के बाद हुई बारिश से तापमान में आई 8 डिग्री की गिरावट।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का विस्फोटक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो है तो महज 15 साल का, लेकिन क्रिकेट के मैदान में बल्ले से ऐसे ऐसे कीर्तिमान रच रहा है कि बड़े बड़े सूरमाओं की चमक उसके आगे फीकी पड़ती जा रही है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बीते 27 मई को आईपीएल के एक मुकाबले में बल्ले से विस्फोट की नई इबारत लिखने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी है। जी हां, 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की जो विस्फोटक पारी खेली उसकी धमक में क्रिकेट के कई दिग्गजों के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स दफन हो गए। वैभव ने एक पारी में इतने रिकॉर्ड्स बना दिए कि ये खुद अपने आप में रिकॉर्ड हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वाली पारी। दरअसल पिछले 2 साल से वैभव मैदान में टिककर जिस तरह से आतिशबाजी कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले वर्षों में बल्लेबाजी का कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा ही नहीं जो वैभव के नाम ना हो।
1: क्रिकेट के क्षितिज पर उदित हो चुका है एक ऐसा चमचमाता वैभवशाली सूर्य जिसकी चौंधिया देने वाली चमक में क्रिकेट के आसमान के बड़े बड़े सितारे गुम से हो गए हैं। इस वैभवशाली सूर्य ने आईपीएल की महज एक पारी में इतने कीर्तिमान बना दिए हैं कि रिकॉर्ड बुक के हर सफहे पर एक ही नाम चमक रहा है, वैभव सूर्यवंशी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को हुए एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की ऐसी विस्फोटक पारी खेली कि आईपीएल के 18 साल के इतिहास में बल्ले से बने करीब करीब सारे रिकॉर्ड्स जमींदोज हो गए।
2: वो बच्चा 15 साल का है, इतनी धमाल मचा रखी है। बुमराह को उसने पहली बॉल पे छक्का मारा, हेजलवुड को, हर एक बॉलर को उसने पहली बॉल पे छक्का मारा। ऐसा बल्लेबाज मैंने दुनिया में नहीं देखा। वरिंदर सहवाग भी ऐसी पारी नहीं कभी खेल सका जो वैभव सूर्यवंशी खेलता।
1: वैभव की इस अविस्मरणीय पारी को देखकर ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कहना पड़ गया अभूतपूर्व। बल्ले से वैभव का अतुल्य धमाका पूरी एकाग्रता से देखने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग असाधारण था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पैरों पर फेंकी गई गेंद पर उन्होंने बेहद कुशलता के साथ फ्रंट फुट क्लियर कर रूम बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने जहां चाहा गेंद को वहीं पहुंचा दिया। वैभव की ये पारी चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। यूं तो वैभव ने पूरे आईपीएल के दौरान अतुल्य बल्लेबाजी की है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को खेली गई उनकी एक अदद पारी क्रिस गेल, डेविड वार्नर, रिली रूसो, शुभमन गिल और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों की कई कई पारियों पर भारी पड़ गई है। वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की धमाकेदार पारी में 12 छक्के लगाए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वैभव ने आईपीएल 2026 सीजन में 65 छक्के पूरे कर लिए हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्सर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। गेल ने आईपीएल 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे। वैभव के इस रिकॉर्ड के भीतर भी एक रिकॉर्ड छिपा हुआ है। गेल ने 59 सिक्सर के लिए 456 गेंदें खेली थी, जबकि वैभव ने सिर्फ 280 गेंदों पर 65 छक्के अपने नाम कर लिए हैं। 280 गेंदों पर 65 छक्कों का मतलब ये हुआ कि कमोबेश हर चौथी गेंद पर सिक्सर। ये रिकॉर्ड तो गेंदबाजों के लिए डरावने सपने की तरह है।
3: Young man is something else. He can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd. His sixes are generally into the crowd. His sixes are not those that just pop over that boundary rope. And he just makes it look so ridiculously easy.
1: महज 15 साल के वैभव जिस तरह कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भविष्य में बल्लेबाजी के सारे रिकॉर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट में इनके नाम ही दर्ज मिलेंगे। 27 मई को एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने एचआरएस के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। आईपीएल के नॉकआउट हिस्ट्री में ये संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 है। इससे पहले साल 2014 के क्वालिफायर 2 में सुरेश रैना ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 16 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था। इतना ही नहीं, वैभव की इस पारी में शुरू के 10 छक्के सिर्फ 24 गेंदों पर ही आ गए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 10 छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गेल के 10 छक्के साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 27 गेंदों में आए थे। आईपीएल 2026 के दौरान 27 मई को खेली गई ऐतिहासिक पारी समेत कुल 15 पारियों में वैभव 243 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बना चुके हैं। टी20 के किसी भी टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले साल 2022 में टी20 ब्लास्ट में रिली रूसो ने 192 के स्ट्राइक रेट से 623 रन बनाए थे। वैभव की इस एक पारी में बने रिकॉर्ड्स की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव के कुल 12 में से 8 छक्के पावर प्ले में ही आ गए थे। दिलचस्प तो ये है कि इससे पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा 7 छक्कों का कीर्तिमान भी हिंदुस्तान के इस वैभवशाली खिलाड़ी के नाम ही दर्ज था। वैभव अब आईपीएल में 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियां खेल चुके हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पर कमाल यह है कि वैभव की 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियों में से 3 आईपीएल के मौजूदा सीजन में ही आई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की अपनी पारी में वैभव ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। आईपीएल के इतिहास में 90 प्लस रनों की सभी पारियों में वैभव की पारी सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाली पारी बन गई है। वैभव ने 334.48 की स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड रजत पाटीदार के नाम था, जिन्होंने इसी सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 281.81 की स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पर 93 रन बनाए थे। आपको बता दें कि 27 मई वाली पारी को लेकर वैभव आईपीएल 2026 सीजन में सिर्फ पावर प्ले के दौरान 490 रन बना चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम था, जिन्होंने साल 2016 में पावर प्ले के दौरान 467 रन बनाए थे। ये सारे रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं 15 साल के एक टीनेजर के नाम। सोचिए, 15 साल का ये बच्चा इसी उम्र में अगर क्रिस गेल, डेविड वार्नर, किरोन पोलार्ड और शुमन गिल जैसे महारथियों के रिकॉर्ड्स की कब्रगाह बना चुका है, तो आगे तो वैभव के नाम से ही कीर्तिमान की एक किताब छापनी पड़ जाएगी।
4: बैट्समैन बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में अगर वो अपनी फिटनेस अच्छी मेंटेन करता है तो फिर आने वाला वो फ्यूचर स्टार है इंडिया का।
5: वैभव सूर्यवंशी, उसकी भी बैटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया खेलता है, बहुत नेक्स्ट लेवल बैटिंग है। हम उसकी बैटिंग को नहीं कह सकते, उसकी अब अपनी अलग क्लास है।
6: गर्दा उड़ा दिया वैभव सूर्यवंशी ने।
1: ऐसा नहीं है कि वैभव का बल्ला सिर्फ आईपीएल में ही चला है। इससे पहले भी बिहार के समस्तीपुर का ये लाल ऐसी ऐसी अद्भुत पारियां खेल चुका है कि क्रिकेट के इतिहास में उसकी कोई सानी देखने को नहीं मिलती। इसी साल 6 फरवरी को जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव ने जो पारी खेली थी, उसे अंडर 19 वर्ल्ड कप के 38 साल के इतिहास की सबसे महान पारी कहा जा रहा है। सबसे महान पारी क्यों कहा जा रहा है, स्टैट देखने से इसका जवाब मिल जाएगा। वैभव ने महज 80 गेंदों पर 175 रन ठोक दिए। वैभव ने इस पारी में 15 छक्के और 15 चौके लगाए, यानी 150 रन सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए अपने खाते में जोड़ लिए। 55 गेंदों पर शतक पूरा किया, बाद के 75 रन सिर्फ 25 गेंदों पर ठोक दिए। महज 71 गेंदों पर 150 रन पूरे कर लिए, जो यूथ वनडे इतिहास का सबसे तेज 150 है। इतना ही नहीं, वैभव ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कुल 30 छक्के लगाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस के नाम था, जिन्होंने 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में 18 छक्के लगाए थे। पूरे टूर्नामेंट में वैभव 439 रन के साथ सेकेंड टॉप स्कोरर भी रहे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहने के साथ वैभव ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप से ठीक पहले अंडर 19 एशिया कप में 12 दिसंबर 2025 को यूए के खिलाफ वैभव ने 95 गेंदों पर 171 रन कूटकर विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए थे। इस आतिशी पारी में वैभव ने 9 चौके और 14 छक्के लगाए थे। कहने की जरूरत नहीं कि सबसे तेज और सबसे कम उम्र से जुड़े रिकॉर्ड्स के सरताज बन चुके हैं वैभव। 24 दिसंबर 2025 को रांची के जेएससीए ओवल ग्राउंड में वैभव ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कई विश्व कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल के खिलाफ हुए मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 84 गेंदों पर 15 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 190 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी थी। इस मैच में सिर्फ 59 गेंदों पर 150 रन पूरे कर वैभव ने लिस्ट ए मैच में फास्टेस्ट 150 का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 बॉल पर 150 रन बनाए थे। तूफान थोड़ी देर के लिए हो तो राहत, नहीं तो कहर बन जाता है। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान के टिक कर रहने वाले तूफान नहीं बल्कि बवंडर हैं, इसीलिए विरोधियों के लिए कहर नहीं बल्कि महाकहर बन रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैभव 13 साल की उम्र में एक मैच में ट्रिपल सेंचुरी भी लगा चुके हैं। रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में वैभव ने 332 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अभी तो ये यूथ इंडिया की रहनुमाई कर रहे हैं, इंतजार कीजिए इनके टीम इंडिया में शामिल होने का। इसकी पूरी संभावना है कि साल 2027 के वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे और बहुत संभव है कि भारत तब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाएगा।
0: 15 साल के वैभव की कामयाबी क्रिकेट के बड़े बड़े धुरंधरों को भी हैरान करने लगी है। आईपीएल में अपने से दो गुने ढाई गुने उम्र के घातक गेंदबाजों को भी वो न सिर्फ सहजता से खेल रहे हैं बल्कि कायदे से धुलाई भी कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतनी छोटी उम्र में ही वैभव इतने दिग्गज बल्लेबाज कैसे बन गए। दरअसल इसके पीछे कहानी है एक अधूरे सपने की, जो कभी वैभव के पिता ने देखा था। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन हालात की दुश्वारियों की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। पर अपने उसी अधूरे सपने को संजीव ने अपने बेटे वैभव के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया। वैभव के क्रिकेटर बनने की पूरी कहानी आपके दिल को छू लेगी।
1: सर पर कामयाबी के ताज के साथ मन में विनम्रता का संस्कार हिंदुस्तान की संस्कृति का सनातन हिस्सा है। मैच 15 की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी का बेनजीर परचम लहरा चुके वैभव सूर्यवंशी सनातन संस्कार के युगीन संवाहक हैं। जिस मैच में वैभव ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी, उसके प्री मैच शो के दौरान जब उन्होंने सुनील गावस्कर और संजय बांगर को देखा तो दौड़कर उनके पास गए और पूरी विनम्रता के साथ उनके पैर छू लिए। वैभव के संस्कार की निश्चल सादगी देखिए कि गावस्कर और बांगर के साथ मौजूद प्रेजेंटर जतिन सप्रू के भी पैर छूने की उन्होंने पूरी कोशिश की। यह अलग बात है कि जतिन पीछे हट गए।
3: हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है कि हम अपने जो बुजुर्ग है, सीनियर्स है, एल्डर्स है, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, और वही उन्होंने किया। सिर्फ मेरे पास ही नहीं आए थे वो, मेरे बाजू में संजय बांगर थे और जतिन सप्रू थे, उनके पास भी आए थे और मुझसे थोड़ा सा रुककर मुझसे कुछ अपेक्षा कर रहे थे कि मैं कुछ उनको बोलूं, शायद अपेक्षा कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूंगा, शायद अपेक्षा कर रहे थे। तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा, लगे रहो, क्योंकि जब वो लगे रहेंगे तो फिर वो बल्ला मतलब बल्ला लगता रहेगा और छक्के भी लगते रहेंगे।
1: उम्र के लिहाज से वैभव की बेनजीर कामयाबी इस बात की मुनादी कर रही है कि आने वाले वक्त में कीर्तिमान की किताब के हर सफहे पर बिहार के इस लाल का नाम दर्ज मिलेगा। पर वैभव नाम के इस प्रदीप्त दिए की रोशनी से सराबोर होने वाले लोगों को उस तेल और बाती के बारे में भी जानना चाहिए जो खुद गुमनाम रहकर अपने दिए को जगमग कर रहा है। वैभव की इस बेनजीर कामयाबी के पीछे हाथ है उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का, जो कभी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का ख्वाब सजोए हुए थे, पर खुद की जो हसरत अधूरी रह गई उसे उन्होंने अपने लाल में प्रत्यारोपित कर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक पिता के अनोखे त्याग की खामोश सदाएं समस्तीपुर जिले के जर्रे जर्रे में जज्ब है।
7: वास्तव में एक पिता का जो त्याग था, तपस्या था, जिद था कि हमको किसी भी तरह जो मैं हासिल नहीं कर सका वो मैं अपने बच्चे को उस मुकाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। वो एकाकी भी देखा कि लोगों से मिलना तक लोगों में, क्योंकि जुनून सवार था कि मैं अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाऊं, तो लोगों से मिलना भी बंद किया। उस बीच में कई ऐसी मुसीबतें भी आईं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया।
1: पांच साल के बच्चे को पढ़ाई से दूर कर क्रिकेट के मैदान में पसीना बहाने के लिए खड़ा कर देना किसी भी पिता के लिए आसान फैसला नहीं होगा। पर संजीव सूर्यवंशी ने कलेजे पर पत्थर रख कर ये फैसला लिया। समस्तीपुर जिले की ताजपुर पंचायत में जहां क्रिकेट का कोई नाम लेवा नहीं था, वहां पांच साल के बेटे की प्रैक्टिस के लिए सारी व्यवस्था कर दी। यहां तक कि कुछ हम उम्र और बड़े बच्चों को भी चॉकलेट मिठाई का प्रलोभन देकर साथ जोड़ लिया ताकि वे बॉलिंग करें और वैभव लगातार बैटिंग की प्रैक्टिस करता रहे। पांच साल से सात साल यानी दो साल तक गांव में ही वैभव को दिन रात प्रैक्टिस कराने के बाद एक दिन संजीव सूर्यवंशी को इल्हाम हो गया कि अब अगले लेवल की प्रैक्टिस का वक्त आ गया है, लिहाजा बेटे को लेकर निकल गए ताजपुर से 12 किलोमीटर दूर स्थित पटेल मैदान में, जहां ब्रजेश झा क्रिकेट एकेडमी चलाते थे। क्रिकेटर बनाने का जुनून ऐसा था कि संजीव सूर्यवंशी को जब लगा कि रोजी रोटी के लिए चलने वाला बिजनेस व्यवधान बन रहा है तो बगैर देरी के उसे बंद कर दिया।
8: गार्डियनों का उनका सपोर्ट रहा है कि अपने बच्चे को इतना ज्यादा टाइम किल करते थे, अपने साथ लाना ले जाना, बच्चों के साथ अपना बिजनेस छोड़ के बच्चे के प्रति इतना एक फोकस, गार्जियन का भी कहीं ना कहीं टारगेट था कि हमारा बच्चा ऊपर खेले, और भगवान की दुआ से बच्चा वो मुकाम पर हासिल किया।
1: इसमें कोई संदेह नहीं कि 7-8 साल की छोटी उम्र में ही वैभव अपने पिता की उम्मीदों की कसौटी पर लगातार खरे उतर रहे थे। जब तक सूर्य की रोशनी धरा पर मौजूद रहती, वैभव बल्ले को दामन से दूर नहीं होने देते। पिता और माँ को छोड़कर घर के बाकी सदस्यों को वैभव की आदत कई बार नागवार गुजरती थी। दादी ने तो कई मौकों पर ऊब कर वैभव की पिटाई भी कर दी थी, पर बचपन में वैभव की पिटाई के वो वाकये आज दादी के लिए सुनहरी यादें बन चुकी हैं।
9: डांटते थे,
10: अच्छा,
9: कभी कभी उसको दौड़ते थे उस पर, फिर भी कहता था नहीं दादी हमको अच्छा लगता है, हम खेलेंगे। हम कहे ठीक है बाबू तब खेलो। धीरे धीरे जब दलसिंह सराय गया, बेनी पट्टी, उसके बाद आपको क्या कहते हैं बेगूसराय, जब हम देखते गए कि यह अच्छा खेल में उतर रहा, तब से मेरा भी मनोबल और मन ये हुआ कि हाँ यह खेले।
1: बचपन में वैभव की बैटिंग की खटखट से ऊब जाने वाली दादी का हृदय आज इस बात को जानकर गदगद है कि उनका पौत्र क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़कर आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाला खिलाड़ी बन गया है। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि वैभव को पटना के जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में डालने के लिए संजीव सूर्यवंशी को जमीन तक बेचनी पड़ी थी? दरअसल संजीव सूर्यवंशी को जब ये लगने लगा कि उनका बेटा समस्तीपुर स्थित पटेल मैदान के स्टैंडर्ड से आगे निकल चुका है, तो पटना में जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराने का फैसला किया। एकेडमी की फीस और उसके बाद समस्तीपुर से हर रोज पटना आना जाना कॉस्टली अफेयर था, इसीलिए संजीव सूर्यवंशी बेटे वैभव को लेकर हर अल्टरनेट डे पर पटना जाने लगे। जेनेक्स एकेडमी चलाने वाले पूर्व रणजी खिलाड़ी मनीष ओझा भी वैभव के पिता के त्याग और तपस्या को याद कर भावुक हो जाते हैं।
10: माँ का रोल रहता था बच्चे को तैयार करने से लेके उसको, और जब इधर से थक के जाता था तो उसको फिर रिकवरी में, चाहे वो खाने के सेंस में हो, उसको प्यार के सेंस में हो, उसको रेस्ट के सेंस में हो, और पिता का त्याग इस सेंस में था कि अर्ली सारे बोझ को वो अपने कंधे पर उठा रहे थे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और फिर भी वो जो वो अपने हैसियत से ज़्यादा बढ़ के उन्होंने उस बच्चे के लिए किया, और हर एक वो सुविधा उस बच्चे के लिए उन्होंने अरेंज किया खेल के प्रति कि वो आज इस मुकाम को प्राप्त कर सके।
1: पिता ने अपनी हैसियत की हदों को पार कर वैभव के लिए जमीन तैयार की, और वैभव ने भी पिता के इस त्याग की कीमत को शिद्दत से महसूस करते हुए मैदान पर पसीना बहाने में कोई कोताही नहीं की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था और वैभव को पटना ले जाना ले आना संभव नहीं रहा, तो संजीव सूर्यवंशी ने अपने ताजपुर स्थित घर के बाहर ही नेट प्रैक्टिस के लिए पिच बनवा दी ताकि वैभव की प्रैक्टिस खंडित ना हो।
11: लॉकडाउन में एक्चुअली पूरा बिहार बंद था, तो यहाँ पे पिच का जनरेट किया गया भैया के द्वारा, और टर्बिकेट और सीमेंटेड लॉकडाउन में लोग घर से नहीं निकल लेते, उस वक्त में भी इसका प्रैक्टिस सेशन लगातार यहाँ पे चलता रहा।
1: बेटे को क्रिकेटर बनाने का ये जुनून अपने आप में अनूठा है, इसका नतीजा सबके सामने है। आज वैभव के बल्ले से बनने वाले विश्व रिकॉर्ड्स संजीव सूर्यवंशी की दुनिया को रंगीन सपनों से भी ज्यादा सुहावन बना रहे हैं। वैभव की विराट बुलंदी का आलम यह है कि पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पर संजीव सूर्यवंशी और उनकी पत्नी से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। देश का गौरव बन चुके तेजस्वी पुत्र का पिता होने के लिए बधाई देते हैं। पिता ने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए त्याग तपस्या की, तो बेटा भी दो कदम आगे बढ़कर अपनी विराट उपलब्धियों से हक अदायगी कर रहा है। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसके 14 साल के बेटे को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को वैभव को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। साफ है कि पिता के संकल्प और बेटे की जीतोड़ मेहनत का पावन संगम क्रिकेट के मैदान पर चमत्कारिक धारा बनकर नमूदार हो रही है।
0: तो बंदे में है दम में आज आपने वैभव सूर्यवंशी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: शनि देव की कौन सी राशि धन की सबसे बड़ी राशि है? शनि देव की कौन सी राशि के लोग भयंकर लापरवाह होते हैं? और शनि देव की कौन सी राशि बृहस्पति के लिए बड़ी निगेटिव होती है? कौन सी हैं शनि देव की राशियां और क्या है उनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: आईपीएल का सबसे बड़ा धुरंधर वैभव के बल्ले ने मचाया बवंडर। उम्र 15 साल बना गेंदबाजों का काल। सिक्सर का बेमिसाल बेबी बॉस। बंदे में है दम। श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: सोच दिखाती तो कुछ दिखाती।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
7: पवित्र चारधाम यात्रा

0: बाबा केदार के दर्शन, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में मुस्तैद प्रशासन। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चली तेज हवाओं से गिरा पारा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों का रुख कर रहे लोग, उत्तराखंड के मसूरी में हर रोज बढ़ रही सैलानियों की तादाद, पहाड़ों की रानी में सड़कों पर थमा ट्रैफिक। हिमाचल प्रदेश के मनाली की खूबसूरत वादियां सैलानियों से गुलजार, रोहतांग के माइनस तापमान में भी मस्ती करते नजर आ रहे पर्यटक, बर्फीले पहाड़ों पर एडवेंचर का भी उठा रहे लुत्फ। राजस्थान में रेतीले तूफान का बवंडर, श्रीगंगानगर में दिन में हुआ अंधेरा, बवंडर के बाद हुई बारिश से तापमान में आई 8 डिग्री की गिरावट।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: हकीकत में बेस्ट, तकनीक में श्रेष्ठ, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार, हिंदुस्तान बना रहा है स्वदेशी हथियार।
1: जो देश अपने हथियार खुद बनाता है वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है।
0: आज भारत तोप की गोली से लेकर मिसाइल तक और फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक सब कुछ खुद ही तैयार कर रहा है। एक वक्त था जब भारत अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपनी ताकत को समझा, उसे जाना और खुद आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो अपने यहाँ ही बना रहा है। कई देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत ही भारत ने अपने यहाँ ही कई रक्षा उपकरणों को बनाना शुरू किया है। नतीजा ये है कि आज की डेट में भारत न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि दूसरे देशों का निर्यातक भी बन रहा है। डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
1: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
0: हर दिन नए हथियारों की चमक दुश्मनों को भयभीत कर रही है। भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जो दुश्मन की नापाक हरकतों का माकूल जवाब दे सके।
1: आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। साथियों, इसका एक और लाभ सीमा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह बहुत ही कठिन है, जटिल है, टफ है। हर जगह सैनिकों की तैनाती करना यह कोई आसान काम नहीं होता, मैं प्रत्यक्ष से महसूस कर रहा हूं। और ऐसे में ऑटोमेटेड निगरानी सिस्टम, रोबोटिक वाहन और सेंसर दिन रात सीमा की निगरानी कर सकते हैं, ऐसा सभी अब स्वीकार करने लगे हैं। इससे सुरक्षा भी बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उन पर दबाव भी कम रहता है।
0: म्यूनिशन और ऑटोमेटेड सिस्टम में भारत अगुआ बनकर उभरे, इसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है।
1: भविष्य के युद्धों में सबसे बड़ा अंतर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पास सैनिकों की संख्या कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन और ऑटोमेशन की दृष्टि से कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ युद्ध की आवश्यकता नहीं बल्कि शांति, विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है।

0: रक्षा क्षेत्र में यदि हम अभी तक दूसरों पर निर्भर रहे थे तो यकीन मानिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे डिफेंस सेक्टर और हमारे फाइनेंस सेक्टर को होता। लेकिन अब क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची, खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में, तो यही वजह है कि खासतौर पर तकनीक के मामले में और रक्षा तकनीक के मामले में आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है।
1: 23 मई को महाराष्ट्र के शिरडी में एक बेहद आधुनिक गोला बारूद निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया, जिसमें सालाना 5,00,000 आर्टिलरी शेल्स तैयार किए जाएंगे। साथ ही भारत के पहले 300 किलोमीटर वाले सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम को भी हरी झंडी दिखाई गई। सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दो रेंज वेरिएंट्स में डिजाइन किया गया है। पहला वेरिएंट 150 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों तक हमला कर सकता है और दूसरा लंबी दूरी वाला वेरिएंट 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र की खरीद का ऑर्डर भी दे दिया है।
2: सूर्यास्त्र भारत की सेनाओं को एक ऐसा जबरदस्त वेपन और फोर्स मल्टीप्लायर मिलने वाला है जो वाकई में दुश्मन की कमर तोड़ने में एक कामयाब होगा, क्योंकि इसका पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता है कि 5 मीटर के अंदर लिखा हो लेकिन 2 मीटर के रिजल्ट दिए गए 300 किलोमीटर दूर। आप समझिए कि जब वो हमला करने में सक्षम है दुनिया के कमांड सेंटर पर, जहाँ पे उनके शीर्ष अधिकारी बैठे होते हैं, प्लानिंग चल रही है, वहाँ पर हमले के पहले हमारा हमला होता है, उनकी सारी प्लानिंग ध्वस्त हो जाती है। कम्युनिकेशन सिस्टम पर जहाँ से बातचीत होती है उसको ख़त्म कर दें, रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक बेस, जहाँ से उनके हथियारों का भंडारण है, अम्यूनिशन का भंडारण है, तेल है, पिन पॉइंट हमला करने में सक्षम है।
1: सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम में प्रिसिजन गाइडेड रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये पारंपरिक हथियारों की तरह इधर उधर नहीं गिरते बल्कि बिल्कुल उसी जगह पर प्रहार करते हैं जहां इन्हें भेजा गया, यानी निशाना एकदम अचूक। सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में 150 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल महज 1.5 मीटर है, वहीं 300 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी 2 मीटर है। इसका मतलब ये है कि रॉकेट अपने टारगेट से औसतन 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर गिरता है, जो युद्ध में बहुत बड़ी ताकत है।
2: सूर्यास्त्र देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी का बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। इससे 122 mm, 306 mm, 370 mm के रॉकेट फायर किए जा सकते हैं, साथ साथ में कामिकाजी ड्रोन भी फायर किया जा सकता है। 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी और तकरीबन 5 मीटर कहा जाता है, लेकिन इससे बेहतर रिजल्ट्स इसके मिले 2 मीटर का सर्कुलर एरर पे, यानी कि 2 मीटर के अंदर अंदर ये फायर करने में सक्षम है। ये इसका प्रिसीजन है, ये इसकी एक्यूरेसी है। क्या फ़ायदा होगा इसका? ये होगा कि दुश्मन के कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक बेस, उनकी गन पोजीशन, एडी सिस्टम, रडार स्टेशन और जहाँ पे उनकी रॉकेट सिस्टम है, जहाँ पर भी उनका जो एक स्ट्रेटजिक टारगेट्स हैं उनको हम पिन पॉइंट हमला करने में ये सक्षम है।
1: भारतीय सेना को अब लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाले रॉकेट्स मिलेंगे, जिससे दुश्मन के ठिकानों जैसे कि आर्टिलरी पोजीशंस, कमांड सेंटर्स और दूसरे अहम टारगेट्स को सुरक्षित दूरी से तबाह किया जा सकेगा।

सूर्यास्त की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मल्टी बैरल क्षमता, जिसमें अलग अलग तकनीक के हथियार एक साथ लगाए जा सकते हैं और दागे भी जा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि निशाना भी सटीक और लॉजिस्टिक का खर्च भी बहुत कम। सूर्यास्त के अलग अलग पॉड्स को मिशन के हिसाब से बदला जा सकता है। 370 mm कैलिबर की प्रेडेटर हॉक गाइडेड रॉकेट सूर्यास्त सिस्टम का सबसे घातक हथियार है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। सूर्यास्त सिस्टम का एक और घातक हथियार है एक्स्ट्रा रॉकेट। 306 mm कैलिबर का ये गाइडेड रॉकेट 150 किलोमीटर तक दुश्मन के बंकरों और कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकता है। सूर्यास्त सिस्टम से 122 mm और 160 mm कैलिबर के बेहद किफायती एक्यूलर रॉकेट्स दागे जा सकते हैं, जो 40 से 100 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। सूर्यास्त सिस्टम से स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन भी दागे जा सकते हैं, जो हवा में रहकर दुश्मन की खोज करते हैं और सटीक हमला करते हैं। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागी जाने वाली प्रेडेटर हॉक रॉकेट्स में GPS INS सेंसर फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये तकनीक प्रेडेटर हॉक रॉकेट को बिना किसी भारी मदद के बेहद खराब मौसम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के बीच भी सटीक निशाना लगाने की क्षमता देती है।

0: देखा जाए तो प्रेडेटर हॉक सूर्य अस्त्र का सबसे खतरनाक रॉकेट है। 300 किलोमीटर तक जाता है, 370 mm है और 140 से 200 किलोग्राम तक का ये एक्सप्लोसिव ले जा सकता है और छत के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर, बंकर्स के ऊपर बहुत इफेक्टिव है। तोड़ के अंदर तक उनको तहस नहस कर सकता है। सेल्फ गाइडेंस है, गाइडेंस बड़ी अच्छी है और पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है, जैसा कि 5 मीटर का बताया जाता है, लेकिन 2 मीटर की हमको इसमें एक्यूरेसी मिली है और शूट एंड स्कूट का इसका फैसिलिटी है कि फायर करे उसके बाद जगह बदली कर सकता है।
1: हॉक रॉकेट सुपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है, जबकि ये 140 किलोग्राम का भारी वॉरहेड लेकर अपने टारगेट से टकराता है तो भारी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। इस ऊर्जा के कारण बिना विस्फोट हुए भी ये रॉकेट सिर्फ अपनी रफ्तार और वजन के दम पर कंक्रीट की कई फीट मोटी दीवारों को मलबे में तब्दील कर सकता है। सूर्यास्त्र की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक पारंपरिक क्रूज और एक बैलिस्टिक मिसाइल के 15% खर्चे से भी सस्ता है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि युद्ध के क्षेत्र में हमें भारी भरकम खर्च उठाने की जरूरत नहीं है, हम मल्टीपल रॉकेट्स दुश्मन पर दाग सकते हैं। आधुनिक युद्ध में आर्टिलरी की भूमिका निर्णायक होती है और सूर्यास्त्र शूट एंड स्कूट क्षमता के साथ दुश्मन के काउंटर अटैक से बचते हुए तेज हमला करने में सक्षम है। इसमें हाई मोबिलिटी व्हीकल भी लगाया गया है, जिससे ये बहुत तेजी से जगह बदल सकता है। सूर्यास्त्र को 6x6 भारी ट्रकों पर माउंट किया गया है। हमला करने के बाद ये सिस्टम फौरन अपना लोकेशन बदलने में सक्षम है, जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। जानते हैं कि भारत सरकार ने किस तरह के चेंजेस किए हैं जिस वजह से 5000 तरह के उपकरण भारत में ही बनाए जा रहे हैं। दरअसल अभी अगर बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट पार्टनरशिप 20-30% है, जिसे बढ़ाकर सरकार 50% तक करना चाह रही है। इसको लेकर विचार हो रहा है। मोदी सरकार ने FDI, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जैसे बड़े सुधार किए हैं। सूर्यास्त्र भारत की आर्टिलरी ताकत में काफी इजाफा करेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के पास जो पिनाका मौजूद है उसमें और सूर्यास्त्र में क्या अंतर है? तो सबसे पहले दोनों रॉकेट सिस्टम की ताकत और खासियत जान लीजिए। सिस्टम की बात करें तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च है, जो सिर्फ रॉकेट लॉन्चिंग के लिए ही है। सूर्यास्त्र यूनिवर्सल लॉन्चर है, जो रॉकेट और मिसाइल दोनों दाग सकता है। पिनाका में कैलिबर फिक्स है और इसे सिर्फ 214 mm रॉकेट से ही दागा जा सकता है। सूर्यास्त्र मल्टी कैलिबर है, जो 122 mm, 306 mm, 370 mm के वेपन्स दाग सकता है। रेंज की बात की जाए तो पिनाका MK-1 40 किलोमीटर और पिनाका एक्सटेंडेड रेंज 75 से 90 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। वहीं सूर्यास्त्र की रेंज 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है। पॉड रीलोड सिस्टम की बात करें तो पिनाका के रीलोडिंग में करीब 4-5 मिनट का समय लगता है। वहीं सूर्यास्त्र में जो पॉड सिस्टम लगा है उसे रीलोड करने में 10 मिनट का वक्त लगता है।
0: पिनाका और सूर्यास्त्र में फर्क ये है कि पिनाका में एक साथ बहुत सारे रॉकेट फायर होते हैं, 6-6 रॉकेट यानी 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ गिरते हैं एक इलाके में, और वो एक एरिया वेपन के तौर पर, यानी कि 214 mm के रॉकेट हैं, एक ही कैलिबर के होंगे और वो एक जगह जाके पूरे इलाके को सैचुरेट कर देंगे, भस्म कर देंगे। जबकि सूर्य अस्त्र में अलग अलग कैलिबर के रॉकेट फायर हो सकते हैं, 122 mm, 306 mm या 370 mm, 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज होती है। और ये फर्क है कि पिन पॉइंट अटैक करता ही है, एक रॉकेट जाएगा वहाँ पिन पॉइंट हमला करेगा, तो दोनों के टारगेट अलग हैं।
1: भारतीय सेना सूर्यास्त्र सिस्टम को उसकी 300 किलोमीटर की लंबी रेंज और डीप स्ट्राइक क्षमता के कारण LAC और LOC के अत्यंत संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात कर सकती है। इसका मेन मकसद चीन और पाकिस्तान की सेना के रसद आपूर्ति करने वाले रास्तों, एयरबेस और कमांड सेंटर्स को अपने तोपखाने की जद में लाना है। रॉकेट का ताकतवर होना कई मायनों में सेना की युद्ध क्षमता तो नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा, जो काम फाइटर जेट किया करते थे और जिन कामों में मिसाइल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उसी काम को अब सूर्यास्त्र जैसा सिस्टम आसानी से कर देगा। पारंपरिक तौर पर अगर देखा जाए तो अगर दुश्मन 300 किलोमीटर दूरी पर बैठा है तो भारत को अपने लड़ाकू विमानों को मैदान में उतारना पड़ता है, लेकिन सूर्यास्त के आने के बाद न तो हम अपने पायलट्स की जान जोखिम में डालेंगे और न ही दुश्मन की सरहद में जाने की जरूरत होगी, बल्कि भारत अपनी सरहद पर ही बैठे दुश्मन का काम तमाम कर सकता है।
2: पहले सीमा से 150 से 300 किलोमीटर दूरी पर मौजूद दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार या रसद डिपो को तबाह करने के लिए वायुसेना के सुखोई विमानों को उड़ान भरनी पड़ती थी। वहीं अब इस काम को जमीन पर तैनात आर्मी के सूर्यास्त रेजिमेंट अपने प्रेडेटर हॉक रॉकेट से मिनटों में पूरा कर पाएंगे। इससे महंगे लड़ाकू विमानों और जांबाज पायलटों को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में भेजने का जोखिम भी काफी हद तक कम हो जाएगा।
1: सूर्यास्त की तैनाती पारंपरिक तौर पर सुखोई 30 एमकेआई और ब्रह्मोस मिसाइल के वर्कलोड को काफी हद तक कम कर देगी। अब वो किस तरीके से, वो भी आपको समझाते हैं। सीधी सी बात है कि 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को अगर निशाने पर लाना हो तो उसके लिए सूर्यास्त ही काफी होगा। यानी अगर देखा जाए तो रण क्षेत्र में सूर्यास्त सुखोई 30 एमकेआई और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की जगह ले सकता है।
2: सूर्यास्त 300 किलोमीटर की दूरी तक ब्रह्मोस जैसी अचूक सटीकता प्रदान करता है, इसीलिए सामान्य और कम सुरक्षा वाले लक्ष्यों जैसे कि आतंकी कैंप, रसद डिपो के लिए ब्रह्मोस को बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। ये काम सूर्यास्त आसानी से कर देगा। ब्रह्मोस मिसाइल को अब सिर्फ अति संवेदनशील और अत्यधिक बख्तरबंद जैसे दुश्मन के युद्धपोत या परमाणु बंकर जैसे लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा। ब्रह्मोस ले जाने वाले सुखोई 30 एमकेआई विमानों का वजन और रखरखाव का दबाव कम होने से वायुसेना इन विमानों का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में कर पाएगी। सूर्यास्त वायुसेना का विकल्प नहीं बल्कि ये थल सेना को आत्मनिर्भर बनाकर वायुसेना की कीमती हथियारों और विमानों को बड़े और अधिक रणनीतिक युद्धों के लिए रीस्टॉक करने का मौका देता है।
0: ब्रह्मोस जैसा महंगा मिसाइल एक स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि तो थोड़े कम इम्पोर्टेंट टारगेट है, वहाँ पर सूर्यास्त का इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है। और तीसरी बात यह है कि सुखोई को भी बचत होगी, एयरफोर्स को जो 300 किलोमीटर दूर टारगेट होते थे उनके लिए हवा में जाके मिजाइल फायर करनी पड़ती थी, वो बच जाएगा। आप जमीन से फायर करोगे उनके टारगेट को बर्बाद कर दोगे, यानी कि हम अपने जो एयरक्राफ्ट हैं सुखोई है इनको एक्सपोज नहीं करेंगे, उनका इस्तेमाल और स्ट्रेटजिक टारगेट के लिए और बड़े टारगेट्स के लिए किया जा सकता है। तो यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर है कि वो हथियार बने रहेंगे, वो अपने टारगेट्स करेंगे, बाकी टारगेट्स को सूर्यास्त एंगेज करेगा, अपनी जमीन पर रहते रहते दुश्मन को नेस्ता नाबूद करेगा।
1: आज देश में सिर्फ हथियार ही नहीं बनाए जा रहे बल्कि यहाँ उस भरोसे को भी मजबूत किया जा रहा है जिसके दम पर सेना वीरता का नया इतिहास लिख रही है।

0: अब हम सिर्फ टैंक, तोप, मिसाइल या फाइटर जेट्स ही नहीं बनाते, हम बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, जिसका सर्वोच्च संकल्प है राष्ट्र रक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना।
1: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
0: रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा और विदेश से हथियार और उपकरण के आयात को कम कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड मिशन पर आगे बढ़ रहा है।

0: हिंदुस्तान अब अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं, भारत में ही तरह तरह की मिसाइलें, फाइटर जेट्स और यहाँ तक कि छोटे कलपुर्जे तक बनाए जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत रक्षा के क्षेत्र में खुद स्टैंड कर चुका है और ये दुनिया भी भारत का लोहा मान रही है।
1: भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में लंबी छलांग लगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2023 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वो है रक्षा।
2: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
1: ये मेक इन इंडिया मिशन की वो तैयारी है जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है और भारत के लिए है।
0: स्क्रू से लेकर सिस्टम और सॉफ्टवेयर तक भारत आज की तारीख में ये सब कुछ अपने यहाँ बना रहा है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि भारत ये सब कुछ न सिर्फ अपने लिए बना रहा है बल्कि 80 से ज्यादा देशों को दे भी रहा है। और ये तमाम वो देश हैं जो रक्षा के मामले में भारत पर भरोसा करते हैं।
1: सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन एक वक्त था जब 65-70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 35% सामान ही आयात होता है। इसका मुख्य कारण भारत की अपनी रक्षा प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने की बढ़ती क्षमता है।
0: भारत सरकार की तरफ से पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट तैयार की गई है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि स्वदेशीकरण को ज्यादा बढ़ावा देना, यानी खास तौर पर रक्षा के क्षेत्र में हम किसी दूसरे मुल्क पर निर्भर न रहें। छोटे से कलपुर्जे से लेकर बड़ी से बड़ी मिसाइल तक बनाने में भारत खुद अपनी धरती का और यहाँ के साजो सामान का ही इस्तेमाल करे।
1: अब तक रक्षा मंत्रालय ऐसी 5 लिस्ट जारी कर चुका है और इसमें तकरीबन 5,000 आइटम्स के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी। ये सभी डिफेंस, पीएसयू और निजी स्वदेशी कंपनियों से खरीदे जा रहे हैं। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट 4,666 आइटम्स की 5 लिस्ट जारी की गई है, जिन्हें सिर्फ स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। नेगेटिव लिस्ट, इसमें 310 उपकरणों जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, तोप के आयात पर 2020 से 27 तक रोक लगाई गई है। डैप 2020 यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में खरीद को प्राथमिकता दी गई, यानी कि स्वदेशी डिजाइन और प्रोडक्शन को बढ़ावा। सृजन पोर्टल, इसमें 19,509 पहले आयातित आइटम्स को स्वदेशी बनाने के लिए लिस्ट किया गया। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा, इसमें टाटा, L&T, भारत फोर्स और MSME को बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। FDI में छूट, डिफेंस में 74% तक FDI ऑटोमेटिक रूट से और 100% सरकार की मंजूरी से होगी। अगला है R&D को बढ़ावा, इसमें IDEX और TDF स्कीम्स से स्टार्टअप्स और MSMEs को फंडिंग दी जा रही है। साल 2025 में TDF के लिए 60 करोड़ रुपए और IDEX प्राइम के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए।
3: हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर ना सिर्फ सुरक्षा के मामले में डिफेंस प्रोडक्शन में होना पड़ेगा, तमाम ऐसी विधाएं हैं उसमें हर एक में आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका कि प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कट कॉल दिया हुआ है। जहां तक डिफेंस का सवाल है, देखिए हिंदुस्तान की सुरक्षा में को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आप ऐसे समय में दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें जब आपको उस इक्विपमेंट की, उस हथियार की, उस गोला बारूद की, उस एमनिशन की जरूरत है, लिहाजा आपको स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा और हिंदुस्तान देखिए धीरे धीरे इसके तरफ अग्रसर हो रहा है।
1: प्राइवेट कंपनियों को भी सरकार की तरफ से सहूलियतें दी गई हैं। सरकार ने भारत की निजी हथियार निर्माता कंपनियों के लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है कि बड़ी तेजी से ये आगे बढ़ने लगे। इस पूरी बढ़ोतरी में हिस्सेदारी की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2024-25 में कुल रक्षा उत्पादन में डीपीएसयू यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान करीब 77% रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 23% रहा। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बढ़ी है। जो वित्त वर्ष 2023-24 में 21% थी वो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23% हो गई।
3: सबसे पहले मैं टच करूंगा पॉजिटिव इंडियनाइजेशन। इसके तहत वो सारी चीजें हैं जो कि डिफेंस में जिसकी रिक्वायरमेंट है और जिसको हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है, चाहे वो पीएसयूज हो, डीपीएसयूज हो, प्राइवेट सेक्टर हो। अब हम नेगेटिव लिस्ट की बात करते हैं। टाइम टू टाइम ये लिस्ट रिवाइज की जाती है। नेगेटिव लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें कि उन आइटम को बैन किया गया है जिसका हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ये सारे के सारे आइटम हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लिहाजा ये नेगेटिव लिस्ट में दिन रात इजाफा हो रहा है और इन आइटम को हम अब बाहर से इंपोर्ट करना डिफेंस सेक्टर में बंद करेंगे। सृजन पोर्टल देखिए एक ऐसा पोर्टल है जिसमें तमाम प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक सेक्टर की यूनिट इसमें लॉगिन कर सकते हैं, अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि तमाम आगे आने वाले दिनों में जो हमारे डिफेंस की प्रोक्योरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, किसका टेंडर निकलने वाला है, क्या उसका क्वालिफिकेशन क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों की उसमें लिस्टिंग होती है।
1: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अपने डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा तवज्जो दे रहा है और इसी के तहत देश में डिफेंस कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में सिर्फ दो ही कॉरिडोर हैं।
0: रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free on TuneIn.
6: देव की कौन सी राशि धन की सबसे बड़ी राशि है? शनि देव की कौन सी राशि के लोग भयंकर लापरवाह होते हैं और शनि देव की कौन सी राशि बृहस्पति के लिए बड़ी निगेटिव होती है? कौन सी हैं शनि देव की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: IPL का सबसे बड़ा धुरंधर वैभव के बल्ले ने मचाया बवंडर, उम्र 15 साल बना गेंदबाजों का काल, सिक्सर का बेमिसाल बेबी बॉस, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
8: Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as the games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: पवित्र चारधाम यात्रा के दौरान हर रोज बन रहे नए रिकॉर्ड, महज 39 दिनों में 10 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में मुस्तैद प्रशासन। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चली तेज हवाओं से गिरा पारा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों का रुख कर रहे लोग, उत्तराखंड के मसूरी में हर रोज बढ़ रही सैलानियों की तादाद, पहाड़ों की रानी में सड़कों पर थमा ट्रैफिक। हिमाचल प्रदेश के मनाली की खूबसूरत वादियां सैलानियों से गुलजार, रोहतांग के माइनस तापमान में भी मस्ती करते नजर आ रहे पर्यटक, बर्फीले पहाड़ों पर एडवेंचर का भी उठा रहे लुत्फ। राजस्थान में रेतीले तूफान का बवंडर, श्रीगंगानगर में दिन में हुआ अंधेरा, बवंडर के बाद हुई बारिश से तापमान में आई 8 डिग्री की गिरावट।

देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का विस्फोटक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं वो है तो महज 15 साल का, लेकिन क्रिकेट के मैदान में बल्ले से ऐसे ऐसे कीर्तिमान रच रहा है कि बड़े बड़े सूरमाओं की चमक उसके आगे फीकी पड़ती जा रही है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बीते 27 मई को आईपीएल के एक मुकाबले में बल्ले से विस्फोट की नई इबारत लिखने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी है। जी हाँ, 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की जो विस्फोटक पारी खेली उसकी धमक में क्रिकेट के कई दिग्गजों के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स दफन हो गए। वैभव ने एक पारी में इतने रिकॉर्ड्स बना दिए कि ये खुद अपने आप में रिकॉर्ड हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वाली पारी। दरअसल पिछले 2 साल से वैभव मैदान में टिककर जिस तरह से आतिशबाजी कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले वर्षों में बल्लेबाजी का कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा ही नहीं जो वैभव के नाम ना हो।
1: क्रिकेट के क्षितिज पर उदित हो चुका है एक ऐसा चमचमाता वैभवशाली सूर्य जिसकी चौंधिया देने वाली चमक में क्रिकेट के आसमान के बड़े बड़े सितारे गुम से हो गए हैं। इस वैभवशाली सूर्य ने आईपीएल की महज एक पारी में इतने कीर्तिमान बना दिए हैं कि रिकॉर्ड बुक के हर सफहे पर एक ही नाम चमक रहा है, वैभव सूर्यवंशी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को हुए एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की ऐसी विस्फोटक पारी खेली कि आईपीएल के 18 साल के इतिहास में बल्ले से बने करीब करीब सारे रिकॉर्ड्स जमींदोज हो गए।
2: वो बच्चा 15 साल का है, इतनी धमाल मचा रखी है। बुमराह को उसने पहली बॉल पे छक्का मारा, हेजलवुड को, हर एक बॉलर को उन्हें पहली बॉल पे छक्का मारा। ऐसा बल्लेबाज मैंने दुनिया में नहीं देखा। वरिंदर सहवाग भी ऐसी पारी नहीं कभी खेल सका जो वैभव सूर्यवंशी खेलता।
1: वैभव की इस अविस्मरणीय पारी को देखकर ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कहना पड़ गया अभूतपूर्व। बल्ले से वैभव का अतुल्य धमाका पूरी एकाग्रता से देखने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग असाधारण था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पैरों पर फेंकी गई गेंद पे से वैभव का अतुल्य धमाका पूरी एकाग्रता से देखने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग असाधारण था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पैरों पर फेंकी गई गेंद पर उन्होंने बेहद कुशलता के साथ फ्रंट फुट क्लियर कर रूम बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने जहां चाहा गेंद को वहीं पहुंचा दिया। वैभव की ये पारी चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। यूं तो वैभव ने पूरे आईपीएल के दौरान अतुल्य बल्लेबाजी की है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को खेली गई उनकी एक अदद पारी क्रिस गेल, डेविड वार्नर, रिली रूसो, शुभमन गिल और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों की कई कई पारियों पर भारी पड़ गई है। वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की धमाकेदार पारी में 12 छक्के लगाए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वैभव ने आईपीएल 2026 सीजन में 65 छक्के पूरे कर लिए हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्सर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। गेल ने आईपीएल 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे। वैभव के इस रिकॉर्ड के भीतर भी एक रिकॉर्ड छिपा हुआ है। गेल ने 59 सिक्सर के लिए 456 गेंदें खेली थी, जबकि वैभव ने सिर्फ 280 गेंदों पर 65 छक्के अपने नाम कर लिए हैं। 280 गेंदों पर 65 छक्कों का मतलब ये हुआ कि कमोबेश हर चौथी गेंद पर सिक्सर। ये रिकॉर्ड तो गेंदबाजों के लिए डरावने सपने की तरह है।
3: Young man is something else. He can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd. His sixes are generally into the crowd. His sixes are not those that just pop over that boundary rope. And he just makes it look so ridiculously easy.
1: महज 15 साल के वैभव जिस तरह कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भविष्य में बल्लेबाजी के सारे रिकॉर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट में इनके नाम ही दर्ज मिलेंगे। 27 मई को एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने एचआरएस के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। आईपीएल के नॉकआउट हिस्ट्री में ये संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 है। इससे पहले साल 2014 के क्वालिफायर 2 में सुरेश रैना ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 16 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था। इतना ही नहीं, वैभव की इस पारी में शुरू के 10 छक्के सिर्फ 24 गेंदों पर ही आ गए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 10 छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गेल के 10 छक्के साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 27 गेंदों में आए थे। आईपीएल 2026 के दौरान 27 मई को खेली गई ऐतिहासिक पारी समेत कुल 15 पारियों में वैभव 243 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बना चुके हैं। टी20 के किसी भी टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले साल 2022 में टी20 ब्लास्ट में रिली रूसो ने 192 के स्ट्राइक रेट से 623 रन बनाए थे। वैभव की इस एक पारी में बने रिकॉर्ड्स की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव के कुल 12 में से 8 छक्के पावर प्ले में ही आ गए थे। दिलचस्प तो ये है कि इससे पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा 7 छक्कों का कीर्तिमान भी हिंदुस्तान के इस वैभवशाली खिलाड़ी के नाम ही दर्ज था। वैभव अब आईपीएल में 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियां खेल चुके हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पर कमाल यह है कि वैभव की 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियों में से 3 आईपीएल के मौजूदा सीजन में ही आई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की अपनी पारी में वैभव ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। आईपीएल के इतिहास में 90 प्लस रनों की सभी पारियों में वैभव की पारी सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाली पारी बन गई है। वैभव ने 334.48 की स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड रजत पाटीदार के नाम था, जिन्होंने इसी सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 281.81 की स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पर 93 रन बनाए थे। आपको बता दें कि 27 मई वाली पारी को लेकर वैभव आईपीएल 2026 सीजन में सिर्फ पावर प्ले के दौरान 490 रन बना चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम था, जिन्होंने साल 2016 में पावर प्ले के दौरान 467 रन बनाए थे। ये सारे रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं 15 साल के एक टीनेजर के नाम। सोचिए, 15 साल का ये बच्चा इसी उम्र में अगर क्रिस गेल, डेविड वार्नर, किरोन पोलार्ड और शुमन गिल जैसे महारथियों के रिकॉर्ड्स की कब्रगाह बना चुका है, तो आगे तो वैभव के नाम से ही कीर्तिमान की एक किताब छापनी पड़ जाएगी।
4: बैट्समैन बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में अगर वो अपनी फिटनेस अच्छी मेंटेन करता है तो फिर आने वाला वो फ्यूचर स्टार है इंडिया का।
5: वैभव सूर्यवंशी, उसकी भी बैटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया खेलता है, बहुत नेक्स्ट लेवल बैटिंग है। हम उसकी बैटिंग को नहीं कह सकते, उसकी अपनी अलग क्लास है।
6: गर्दा उड़ा दिया वैभव सूर्यवंशी ने,
1: ऐसा नहीं है कि वैभव का बल्ला सिर्फ आईपीएल में ही चला है। इससे पहले भी बिहार के समस्तीपुर का ये लाल ऐसी ऐसी अद्भुत पारियां खेल चुका है कि क्रिकेट के इतिहास में उसकी कोई सानी देखने को नहीं मिलती। इसी साल 6 फरवरी को जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव ने जो पारी खेली थी, उसे अंडर 19 वर्ल्ड कप के 38 साल के इतिहास की सबसे महान पारी कहा जा रहा है। सबसे महान पारी क्यों कहा जा रहा है, स्टैट देखने से इसका जवाब मिल जाएगा। वैभव ने महज 80 गेंदों पर 175 रन ठोक दिए। वैभव ने इस पारी में 15 छक्के और 15 चौके लगाए, यानी 150 रन सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए अपने खाते में जोड़ लिए। 55 गेंदों पर शतक पूरा किया, बाद के 75 रन सिर्फ 25 गेंदों पर ठोक दिए। महज 71 गेंदों पर 150 रन पूरे कर लिए, जो यूथ वनडे इतिहास का सबसे तेज 150 है। इतना ही नहीं, वैभव ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कुल 30 छक्के लगाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस के नाम था, जिन्होंने 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में 18 छक्के लगाए थे। पूरे टूर्नामेंट में वैभव 439 रन के साथ सेकेंड टॉप स्कोरर भी रहे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहने के साथ वैभव ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप से ठीक पहले अंडर 19 एशिया कप में 12 दिसंबर 2025 को यूएई के खिलाफ वैभव ने 95 गेंदों पर 171 रन कूटकर विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए थे। इस आतिशी पारी में वैभव ने 9 चौके और 14 छक्के लगाए थे। कहने की जरूरत नहीं कि सबसे तेज और सबसे कम उम्र से जुड़े रिकॉर्ड्स के सरताज बन चुके हैं वैभव। 24 दिसंबर 2025 को रांची के JSCA ओवल ग्राउंड में वैभव ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कई विश्व कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल के खिलाफ हुए मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 84 गेंदों पर 15 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 190 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी थी। इस मैच में सिर्फ 59 गेंदों पर 150 रन पूरे कर वैभव ने लिस्ट ए मैच में फास्टेस्ट 150 का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 बॉल पर 150 रन बनाए थे। तूफान थोड़ी देर के लिए हो तो राहत, नहीं तो कहर बन जाता है। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान के टिक कर रहने वाले तूफान नहीं बल्कि बवंडर हैं। इसीलिए विरोधियों के लिए कहर नहीं बल्कि महाकहर बन रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैभव 13 साल की उम्र में एक मैच में ट्रिपल सेंचुरी भी लगा चुके हैं। रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में वैभव ने 332 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अभी तो ये यूथ इंडिया की रहनुमाई कर रहे हैं। इंतजार कीजिए इनके टीम इंडिया में शामिल होने का। इसकी पूरी संभावना है कि साल 2027 के वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे और बहुत संभव है कि भारत तब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाएगा।
0: 15 साल के वैभव की कामयाबी क्रिकेट के बड़े बड़े धुरंधरों को भी हैरान करने लगी है। आईपीएल में अपने से दोगुने ढाई गुने उम्र के घातक गेंदबाजों को भी वो न सिर्फ सहजता से खेल रहे हैं बल्कि कायदे से धुलाई भी कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतनी छोटी उम्र में ही वैभव इतने दिग्गज बल्लेबाज कैसे बन गए। दरअसल इसके पीछे कहानी है एक अधूरे सपने की, जो कभी वैभव के पिता ने देखा था। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन हालात की दुश्वारियों की वजह से उनका यह सपना अधूरा रह गया। पर अपने उसी अधूरे सपने को संजीव ने अपने बेटे वैभव के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया। वैभव के क्रिकेटर बनने की पूरी कहानी आपके दिल को छू लेगी।
1: सर पर कामयाबी के ताज के साथ मन में विनम्रता का संस्कार हिंदुस्तान की संस्कृति का सनातन हिस्सा है। मैच 15 की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी का बेनजीर परचम लहरा चुके वैभव सूर्यवंशी सनातन संस्कार के युगीन संवाहक हैं। जिस मैच में वैभव ने रिकॉर्ड्स की छड़ी लगा दी, उसके प्री मैच शो के दौरान जब उन्होंने सुनील गावस्कर और संजय बांगर को देखा तो दौड़कर उनके पास गए और पूरी विनम्रता के साथ उनके पैर छू लिए। वैभव के संस्कार की निश्चल सादगी देखिए कि गावस्कर और बांगर के साथ मौजूद प्रेजेंटर जतिन सप्रू के भी पैर छूने की उन्होंने पूरी कोशिश की। यह अलग बात है कि जतिन पीछे हट गए।
3: हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है कि हम अपने जो बुजुर्ग है, सीनियर्स है, एल्डर्स है, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, और वही उन्होंने किया। सिर्फ मेरे पास ही नहीं आए थे वो, बस मेरे बाजू में संजय बांगर थे और जतिन सप्रू थे, उनके पास भी आए थे और मुझसे थोड़ा सा रुककर मुझसे कुछ अपेक्षा कर रहे थे कि मैं कुछ उनको बोलूं। शायद अपेक्षा कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूंगा, तो शायद अपेक्षा कर रहे थे, तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा लगे रहो लगे रहो लगे रहो, क्योंकि जब वो लगे रहेंगे तो फिर वो बल्ला मतलब बल्ला लगता रहेगा और छक्के भी लगते रहेंगे।
1: उम्र के लिहाज से वैभव की बेनजीर कामयाबी इस बात की मुनादी कर रही है कि आने वाले वक्त में कीर्तिमान की किताब के हर सफहे पर बिहार के इस लाल का नाम दर्ज मिलेगा। पर वैभव नाम के इस प्रदीप्त दिए की रोशनी से सराबोर होने वाले लोगों को उस तेल और बाती के बारे में भी जानना चाहिए जो खुद गुमनाम रहकर अपने दिए को जगमग कर रहा है। वैभव की इस बेनजीर कामयाबी के पीछे हाथ है उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का, जो कभी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का ख्वाब सजोए हुए थे, पर खुद की जो हसरत अधूरी रह गई उसे उन्होंने अपने लाल में प्रत्यारोपित कर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक पिता के अनोखे त्याग की खामोश सदाएं समस्तीपुर जिले के जर्रे जर्रे में जज्ब है।
7: वास्तव में एक पिता का जो त्याग था, तपस्या था, जिद था कि हमको किसी भी तरह जो मैं हासिल नहीं कर सका वो मैं अपने बच्चे को उस मुकाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। वो एकाकी भी देखा कि लोगों से मिलना तक लोगों में, क्योंकि जुनून सवार था कि मैं अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाऊं, तो लोगों से मिलना भी बंद किया। उस बीच में कई ऐसी मुसीबतें भी आईं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया।
1: पांच साल के बच्चे को पढ़ाई से दूर कर क्रिकेट के मैदान में पसीना बहाने के लिए खड़ा कर देना किसी भी पिता के लिए आसान फैसला नहीं होगा। पर संजीव सूर्यवंशी ने कलेजे पर पत्थर रख कर ये फैसला लिया। समस्तीपुर जिले की ताजपुर पंचायत में जहां क्रिकेट का कोई नाम लेवा नहीं था, वहां पांच साल के बेटे की प्रैक्टिस के लिए सारी व्यवस्था कर दी। यहां तक कि कुछ हम उम्र और बड़े बच्चों को भी चॉकलेट मिठाई का प्रलोभन देकर साथ जोड़ लिया ताकि वे बॉलिंग करें और वैभव लगातार बैटिंग की प्रैक्टिस करता रहे। पांच साल से सात साल यानी दो साल तक गांव में ही वैभव को दिन रात प्रैक्टिस कराने के बाद एक दिन संजीव सूर्यवंशी को इल्हाम हो गया कि अब अगले लेवल की प्रैक्टिस का वक्त आ गया है, लिहाजा बेटे को लेकर निकल गए ताजपुर से 12 किलोमीटर दूर स्थित पटेल मैदान में, जहां ब्रजेश झा क्रिकेट एकेडमी चलाते थे। क्रिकेटर बनाने का जुनून ऐसा था कि संजीव सूर्यवंशी को जब लगा कि रोजी रोटी के लिए चलने वाला बिजनेस व्यवधान बन रहा है तो बगैर देरी के उसे बंद कर दिया।
8: गार्डियनों का उनका सपोर्ट रहा है कि अपने बच्चे को इतना ज्यादा टाइम किल करते थे, अपने साथ लाना ले जाना, बच्चों के साथ अपना बिजनेस छोड़ के बच्चे के प्रति इतना एक फोकस, गार्जियन का भी कहीं ना कहीं टारगेट था कि हमारा बच्चा ऊपर खेले, और भगवान की दुआ से बच्चा वो मुकाम पर हासिल किया।
1: इसमें कोई संदेह नहीं कि 7-8 साल की छोटी उम्र में ही वैभव अपने पिता की उम्मीदों की कसौटी पर लगातार खरे उतर रहे थे। जब तक सूर्य की रोशनी धरा पर मौजूद रहती, वैभव बल्ले को दामन से दूर नहीं होने देते। पिता और माँ को छोड़कर घर के बाकी सदस्यों को वैभव की आदत कई बार नागवार गुजरती थी। दादी ने तो कई मौकों पर ऊब कर वैभव की पिटाई भी कर दी थी, पर बचपन में वैभव की पिटाई के वो वाकये आज दादी के लिए सुनहरी यादें बन चुकी हैं।
9: डांटते थे,
10: अच्छा,
9: कभी कभी उसको मार देते थे, दौड़ते थे उस पर, फिर भी कहता था नहीं दादी हमको अच्छा लगता है, हम खेलेंगे। ठीक है बाबू, तब खेलो। धीरे धीरे जब दल सिंह सराय गया, बेनी पट्टी, उसके बाद आपको क्या कहते हैं बेगूसराय, जब हम देखते रहे कि यह अच्छा खेल में उतर रहा, तब से मेरा भी मनोबल और मन ये हुआ कि हाँ यह खेले।
1: बचपन में वैभव की बैटिंग की खटखट से ऊब जाने वाली दादी का हृदय आज इस बात को जानकर गदगद है कि उनका पौत्र क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़कर आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाला खिलाड़ी बन गया है। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि वैभव को पटना के जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में डालने के लिए संजीव सूर्यवंशी को जमीन तक बेचनी पड़ी थी? दरअसल संजीव सूर्यवंशी को जब ये लगने लगा कि उनका बेटा समस्तीपुर स्थित पटेल मैदान के स्टैंडर्ड से आगे निकल चुका है, तो पटना में जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराने का फैसला किया। एकेडमी की फीस और उसके बाद समस्तीपुर से हर रोज पटना आना जाना कॉस्टली अफेयर था, इसीलिए संजीव सूर्यवंशी बेटे वैभव को लेकर हर अल्टरनेट डे पर पटना जाने लगे। जेनेक्स एकेडमी चलाने वाले पूर्व रणजी खिलाड़ी मनीष ओझा भी वैभव के पिता के त्याग और तपस्या को याद कर भावुक हो जाते हैं।
10: माँ का रोल रहता था बच्चे को तैयार करने से लेके उसको, और जब इधर से थक के जाता था तो उसको फिर रिकवरी में, चाहे वो खाने के सेंस में हो, उसको प्यार के सेंस में हो, उसको रेस्ट के सेंस में हो, और पिता का त्याग इस सेंस में था कि अर्ली सारे बोझ को वो अपने कंधे पर उठा रहे थे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और फिर भी वो जो वो अपने हैसियत से ज़्यादा बढ़ के उन्होंने उस बच्चे के लिए किया, और हर एक वो सुविधा उस बच्चे के लिए उन्होंने अरेंज किया खेल के प्रति कि वो आज इस मुकाम को प्राप्त कर सके।
1: पिता ने अपनी हैसियत की हदों को पार कर वैभव के लिए जमीन तैयार की, और वैभव ने भी पिता के इस त्याग की कीमत को शिद्दत से महसूस करते हुए मैदान पर पसीना बहाने में कोई कोताही नहीं की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था और वैभव को पटना ले जाना ले आना संभव नहीं रहा, तो संजीव सूर्यवंशी ने अपने ताजपुर स्थित घर के बाहर ही नेट प्रैक्टिस के लिए पिच बनवा दी ताकि वैभव की प्रैक्टिस खंडित ना हो।
11: लॉकडाउन में एक्चुअली पूरा बिहार बंद था, तो यहाँ पे पिच का जनरेट किया गया भैया के द्वारा, और टर्बिकेट और सीमेंटेड लॉकडाउन में लोग घर से नहीं निकल रहे थे, उस वक्त में भी इसका प्रैक्टिस सेशन लगातार यहाँ पे चलता रहा।
1: बेटे को क्रिकेटर बनाने का ये जुनून अपने आप में अनूठा है, इसका नतीजा सबके सामने है। आज वैभव के बल्ले से बनने वाले विश्व रिकॉर्ड्स संजीव सूर्यवंशी की दुनिया को रंगीन सपनों से भी ज्यादा सुहावन बना रहे हैं। वैभव की विराट बुलंदी का आलम यह है कि पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पर संजीव सूर्यवंशी और उनकी पत्नी से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। देश का गौरव बन चुके तेजस्वी पुत्र का पिता होने के लिए बधाई देते हैं। पिता ने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए त्याग तपस्या की, तो बेटा भी दो कदम आगे बढ़कर अपनी विराट उपलब्धियों से हक अदायगी कर रहा है। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसके 14 साल के बेटे को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को वैभव को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। साफ है कि पिता के संकल्प और बेटे की जीतोड़ मेहनत का पावन संगम क्रिकेट के मैदान पर चमत्कारिक धारा बनकर नमूदार हो रही है।
0: तो बंदे में है दम में आज आपने वैभव सूर्यवंशी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
12: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
14: और आइए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
15: जिंदगी में खुश रहने के लिए कोई वजह जरूरी नहीं होती। ये नन्हा बच्चा स्टील के बर्तन की थाप पर मासूमियत से झूमता नजर आ रहा है। उसकी मुस्कान और छोटे छोटे कदम दिल को खुशी से भर देते हैं। सच में बचपन की यही सादगी जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। ये महिला नारी शक्ति की सशक्त मिसाल है। एक तरफ भारी कैमरा संभालते हुए वो शादी की फोटोग्राफी कर रही है, तो दूसरी तरफ अपनी छोटी बच्ची का भी ध्यान रख रही है। माँ की ममता से बच्चा परे ना हो, इसलिए ये साहस सिर्फ माँ ही कर सकती है। ये नज़ारा दिखाता है कि महिलाएं जिम्मेदारी के साथ अपने सपनों को भी बखूबी पूरा कर सकती हैं। दोस्ती की ये अनोखी मिसाल दिल को छू लेती है। एक बच्चा अपने खाने को एक तोते के साथ शेयर कर रहा है और दोनों आराम के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ये मासूम दोस्ती इंसानों और प्रकृति के बीच प्यार और अपनापन दिखाती है। चिड़िया हमारी बचपन की साथी हुआ करती थी, लेकिन आज इन्हें देख पाना दुर्लभ हो गया है। ये नज़ारा बचपन की यादें ताज़ा कर देता है, जब हम चिड़ियों को नहाते हुए देखकर मौसम बदलने की उम्मीद करते थे। आज वही मासूम पल बहुत याद आते हैं। ये छोटी बच्ची अपनी मासूमियत और एनर्जी से दिल जीत रही है। दो चोटियों में सजी ये नन्ही परी मस्ती में झूमते हुए अपने हर स्टेप को बेहद क्यूट अंदाज में कर रही है। उसकी खुशी और नटखटपन देखने वालों का मन खुश कर देती है।
13: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों
16: शनि देव की कौन सी राशि धन की सबसे बड़ी राशि है? शनि देव की कौन सी राशि के लोग भयंकर लापरवाह होते हैं? और शनि देव की कौन सी राशि बृहस्पति के लिए बड़ी निगेटिव होती है? कौन सी हैं शनि देव की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
12: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: IPL का सबसे बड़ा धुरंधर वैभव के बल्ले ने मचाया बवंडर। उम्र 15 साल बना गेंदबाजों का काल। सिक्सर का बेमिसाल बेबी बॉस। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: लगता है
1: कि भाग्य
2: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: पवित्र चारधाम यात्रा के दौरान हर रोज बन रहे नए रिकॉर्ड, महज 39 दिनों में 10 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीषण गर्मी से मिली राहत। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों का रुख कर रहे लोग, उत्तराखंड के मसूरी में हर रोज बढ़ रही सैलानियों की तादाद, पहाड़ों की रानी में सड़कों पर थमा ट्रैफिक। हिमाचल प्रदेश के मनाली की खूबसूरत वादियां सैलानियों से गुलजार, रोहतांग के माइनस तापमान में भी मस्ती करते नजर आ रहे पर्यटक, बर्फीले पहाड़ों पर एडवेंचर का भी उठा रहे लुत्फ। राजस्थान में रेतीले तूफान का बवंडर, श्रीगंगानगर में दिन में हुआ अंधेरा, बवंडर के बाद हुई बारिश से तापमान में आई 8 डिग्री की गिरावट।
2: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: ताकत में बेस्ट, तकनीक में श्रेष्ठ, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार, हिंदुस्तान बना रहा है स्वदेशी हथियार।
1: जो देश अपने हथियार खुद बनाता है वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है।
0: आज भारत तोप की गोली से लेकर मिसाइल तक और फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक सब कुछ खुद ही तैयार कर रहा है। एक वक्त था जब भारत अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपनी ताकत को समझा, उसे जाना और खुद आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो अपने यहाँ ही बना रहा है। कई देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत ही भारत ने अपने यहाँ ही कई रक्षा उपकरणों को बनाना शुरू किया है। नतीजा ये है कि आज की डेट में भारत न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि दूसरे देशों का निर्यातक भी बन रहा है। डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
1: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
0: हर दिन नए हथियारों की चमक दुश्मनों को भयभीत कर रही है। भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जो दुश्मन की नापाक हरकतों का माकूल जवाब दे सके।
1: आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। साथियों, इसका एक और लाभ सीमा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह बहुत ही कठिन है, जटिल है, टफ है। हर जगह सैनिकों की तैनाती करना यह कोई आसान काम नहीं होता, मैं प्रत्यक्ष से महसूस कर रहा हूं। और ऐसे में ऑटोमेटेड निगरानी सिस्टम, रोबोटिक वाहन और सेंसर दिन रात सीमा की निगरानी कर सकते हैं, ऐसा सभी अब स्वीकार करने लगे हैं। इससे सुरक्षा भी बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उन पर दबाव भी कम रहता है।
0: म्यूनिशन और ऑटोमेटेड सिस्टम में भारत अगुआ बनकर उभरे, इसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है।
1: भविष्य के युद्धों में सबसे बड़ा अंतर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पास सैनिकों की संख्या कितनी है, बल्कि

0: बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन और ऑटोमेशन की दृष्टि से कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ युद्ध की आवश्यकता नहीं,
0: बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन और ऑटोमेशन की दृष्टि से कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ युद्ध की आवश्यकता नहीं बल्कि शांति, विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। रक्षा क्षेत्र में यदि हम अभी तक दूसरों पर निर्भर रहे थे तो यकीन मानिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे डिफेंस सेक्टर और हमारे फाइनेंस सेक्टर को होता। लेकिन अब क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में, तो यही वजह है कि खासतौर पर तकनीक के मामले में और रक्षा तकनीक के मामले में आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है। 23 मई को महाराष्ट्र के शिरडी में एक बेहद आधुनिक गोला बारूद निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया जिसमें सालाना 5,00,000 आर्टिलरी शेल्स तैयार किए जाएंगे। साथ ही भारत के पहले 300 किलोमीटर वाले सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम को भी हरी झंडी दिखाई गई। सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दो रेंज वेरिएंट्स में डिजाइन किया गया है। पहला वेरिएंट 150 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों तक हमला कर सकता है और दूसरा लंबी दूरी वाला वेरिएंट 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र की खरीद का ऑर्डर भी दे दिया है।
2: सूर्यास्त्र भारत की सेनाओं को एक ऐसा जबरदस्त वेपन और फोर्स मल्टीप्लायर मिलने वाला है जो वाकई में दुश्मन की कमर तोड़ने में कामयाब होगा, क्योंकि इसका पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता है कि 5 मीटर के अंदर लिखा हो लेकिन 2 मीटर के रिजल्ट दिए गए 300 किलोमीटर दूर। आप समझिए कि जब वो हमला करने में सक्षम है दुनिया के कमांड सेंटर पर जहाँ पे उनके शीर्ष अधिकारी बैठे होते हैं, प्लानिंग चल रही है, वहाँ पर हमले के पहले हमारा हमला होता है, उनकी सारी प्लानिंग ध्वस्त हो जाती है। कम्युनिकेशन सिस्टम पर जहाँ से बातचीत होती है उसको ख़त्म कर दें, रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक बेस जहाँ से उनके हथियारों का भंडारण है, अम्यूनिशन का भंडारण है, तेल है, पिन पॉइंट हमला करने में सक्षम है।
1: सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम में प्रिसिजन गाइडेड रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये पारंपरिक हथियारों की तरह इधर उधर नहीं गिरते बल्कि बिल्कुल उसी जगह पर प्रहार करते हैं जहां इन्हें भेजा गया, यानी निशाना एकदम अचूक। सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में 150 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल महज 1.5 मीटर है, वहीं 300 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी 2 मीटर है। इसका मतलब ये है कि रॉकेट अपने टारगेट से औसतन 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर गिरता है जो युद्ध में बहुत बड़ी ताकत है।
2: सूर्यास्त्र देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी का बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। इससे 122 mm, 306 mm, 370 mm के रॉकेट फायर किए जा सकते हैं, साथ साथ में कामिकाजी ड्रोन भी फायर किया जा सकता है। 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी और तकरीबन 5 मीटर कहा जाता है, लेकिन इससे बेहतर रिजल्ट्स इसके मिले 2 मीटर का सर्कुलर एरर पे, यानी कि 2 मीटर के अंदर अंदर ये फायर करने में सक्षम है। ये इसका प्रिसीजन है, ये इसकी एक्यूरेसी है। क्या फ़ायदा होगा इसका? यह होगा कि दुश्मन के कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक बेस, उनकी गन पोजीशन, एडी सिस्टम, रडार स्टेशन और जहाँ पे उनकी रॉकेट सिस्टम है, जहाँ सब पर भी उनका जो एक स्ट्रेटजिक टारगेट्स हैं उनको हम पिन पॉइंट हमला करने में ये सक्षम है।
1: भारतीय सेना को अब लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाले रॉकेट्स मिलेंगे जिससे दुश्मन के ठिकानों जैसे कि आर्टिलरी पोजीशंस, कमांड सेंटर्स और दूसरे अहम टारगेट्स को सुरक्षित दूरी से तबाह किया जा सकेगा।

सूर्यास की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मल्टी बैरल क्षमता, जिसमें अलग अलग तकनीक के हथियार एक साथ लगाए जा सकते हैं और दागे भी जा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि निशाना भी सटीक और लॉजिस्टिक का खर्च भी बहुत कम। सूर्यास के अलग अलग पॉड्स को मिशन के हिसाब से बदला जा सकता है। 370 mm कैलिबर की प्रेडेटर हॉक गाइडेड रॉकेट सूर्यास सिस्टम का सबसे घातक हथियार है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। सूर्यास सिस्टम का एक और घातक हथियार है एक्स्ट्रा रॉकेट। 306 mm कैलिबर का ये गाइडेड रॉकेट 150 किलोमीटर तक दुश्मन के बंकरों और कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकता है। सूर्यास सिस्टम से 122 mm और 160 mm कैलिबर के बेहद किफायती एक्यूलर रॉकेट्स दागे जा सकते हैं, जो 40 से 100 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। सूर्यास सिस्टम से स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन भी दागे जा सकते हैं, जो हवा में रहकर दुश्मन की खोज करते हैं और सटीक हमला करते हैं। सूर्यास रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागी जाने वाली प्रेडेटर हॉक रॉकेट्स में GPS INS सेंसर फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये तकनीक प्रेडेटर हॉक रॉकेट को बिना किसी भारी मदद के बेहद खराब मौसम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के बीच भी सटीक निशाना लगाने की क्षमता देती है।

0: देखा जाए तो प्रेडेटर हॉक सूर्य अस्त्र का सबसे खतरनाक रॉकेट है। 300 किलोमीटर तक जाता है, 370 mm है और 140 से 200 किलोग्राम तक का ये एक्सप्लोसिव ले जा सकता है और छत के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर, बंकर्स के ऊपर बहुत इफेक्टिव है। तोड़ के अंदर तक उनको तहस नहस कर सकता है। सेल्फ गाइडेंस है, गाइडेंस बड़ी अच्छी है और पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है, जैसा कि 5 मीटर का बताया जाता है, लेकिन 2 मीटर की हमको इसमें एक्यूरेसी मिली है। और शूट एंड स्कूट का इसका फैसिलिटी है कि फायर करें उसके बाद जगह बदली कर सकता है।
1: हॉक रॉकेट सुपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है, जबकि ये 140 किलोग्राम का भारी वॉरहेड लेकर अपने टारगेट से टकराता है तो भारी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। इस ऊर्जा के कारण बिना विस्फोट हुए भी ये रॉकेट सिर्फ अपनी रफ्तार और वजन के दम पर कंक्रीट की कई फीट मोटी दीवारों को मलबे में तब्दील कर सकता है। सूर्यास्त्र की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक पारंपरिक क्रूज और एक बैलिस्टिक मिसाइल के 15% खर्चे से भी सस्ता है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि युद्ध के क्षेत्र में हमें भारी भरकम खर्च उठाने की जरूरत नहीं है, हम मल्टीपल रॉकेट्स दुश्मन पर दाग सकते हैं। आधुनिक युद्ध में आर्टिलरी की भूमिका निर्णायक होती है और सूर्यास्त्र शूट एंड स्कूट क्षमता के साथ दुश्मन के काउंटर अटैक से बचते हुए तेज हमला करने में सक्षम है। इसमें हाई मोबिलिटी व्हीकल भी लगाया गया है, जिससे ये बहुत तेजी से जगह बदल सकता है। सूर्यास्त्र को 6x6 भारी ट्रकों पर माउंट किया गया है। हमला करने के बाद ये सिस्टम फौरन अपना लोकेशन बदलने में सक्षम है, जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। जानते हैं कि भारत सरकार ने किस तरह के चेंजेस किए हैं जिस वजह से 5000 तरह के उपकरण भारत में ही बनाए जा रहे हैं। दरअसल अभी अगर बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट पार्टनरशिप 20-30% है, जिसे बढ़ाकर सरकार 50% तक करना चाह रही है। इसको लेकर विचार हो रहा है। मोदी सरकार ने FDI, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जैसे बड़े सुधार किए हैं। सूर्यास्त्र भारत की आर्टिलरी ताकत में काफी इजाफा करेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के पास जो पिनाका मौजूद है उसमें और सूर्यास्त्र में क्या अंतर है? तो सबसे पहले दोनों रॉकेट सिस्टम की ताकत और खासियत जान लीजिए। सिस्टम की बात करें तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च है, जो सिर्फ रॉकेट लॉन्चिंग के लिए ही है। सूर्यास्त्र यूनिवर्सल लॉन्चर है, जो रॉकेट और मिसाइल दोनों दाग सकता है। पिनाका में कैलिबर फिक्स है और इसे सिर्फ 214 mm रॉकेट से ही दागा जा सकता है। सूर्यास्त्र मल्टी कैलिबर है, जो 122 mm, 306 mm, 370 mm के वेपन्स दाग सकता है। रेंज की बात की जाए तो पिनाका MK-1 40 किलोमीटर और पिनाका एक्सटेंडेड रेंज 75 से 90 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। वहीं सूर्यास्त्र की रेंज 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है। पॉड रीलोड सिस्टम की बात करें तो पिनाका के रीलोडिंग में करीब 4-5 मिनट का समय लगता है। वहीं सूर्यास्त्र में जो पॉड सिस्टम लगा है उसे रीलोड करने में 10 मिनट का वक्त लगता है।
0: पिनाका और सूर्यास्त्र में फर्क ये है कि पिनाका में एक साथ बहुत सारे रॉकेट फायर होते हैं, 6-6 रॉकेट यानी 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ गिरते हैं एक इलाके में, और वो एक एरिया वेपन के तौर पे, यानी कि 214 mm के रॉकेट हैं, एक ही कैलिबर के होंगे और वो एक जगह जाके पूरे इलाके को सैचुरेट कर देंगे, भस्म कर देंगे। जबकि सूर्य अस्त्र में अलग अलग कैलिबर के रॉकेट फायर हो सकते हैं, 122 mm, 306 mm या 370 mm, 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज होती है। और ये फर्क ये कि पिन पॉइंट अटैक करता ही है, एक रॉकेट जाएगा वहाँ पिन पॉइंट हमला करेगा, तो दोनों के टारगेट अलग हैं।
1: भारतीय सेना सूर्यास्त्र सिस्टम को उसकी 300 किलोमीटर की लंबी रेंज और डीप स्ट्राइक क्षमता के कारण LAC और LOC के अत्यंत संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात कर सकती है। इसका मेन मकसद चीन और पाकिस्तान की सेना के रसद आपूर्ति करने वाले रास्तों, एयरबेस और कमांड सेंटर्स को अपने तोपखाने की जद में लाना है। रॉकेट का ताकतवर होना कई मायनों में सेना की युद्ध क्षमता तो नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा, जो काम फाइटर जेट किया करते थे और जिन कामों में मिसाइल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उसी काम को अब सूर्यास्त्र जैसा सिस्टम आसानी से कर देगा। पारंपरिक तौर पर अगर देखा जाए तो अगर दुश्मन 300 किलोमीटर दूरी पर बैठा है तो भारत को अपने लड़ाकू विमानों को मैदान में उतारना पड़ता है, लेकिन सूर्यास्त के आने के बाद न तो हम अपने पायलट्स की जान जोखिम में डालेंगे और न ही दुश्मन की सरहद में जाने की जरूरत होगी, बल्कि भारत अपनी सरहद पर ही बैठे दुश्मन का काम तमाम कर सकता है।
2: पहले सीमा से 150 से 300 किलोमीटर दूरी पर मौजूद दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार या रसद डिपो को तबाह करने के लिए वायुसेना के सुखोई विमानों को उड़ान भरनी पड़ती थी। वहीं अब इस काम को जमीन पर तैनात आर्मी के सूर्यास्त रेजिमेंट अपने प्रेडेटर हॉक रॉकेट से मिनटों में पूरा कर पाएंगे। इससे महंगे लड़ाकू विमानों और जांबाज पायलटों को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में भेजने का जोखिम भी काफी हद तक कम हो जाएगा।
1: सूर्यास्त की तैनाती पारंपरिक तौर पर सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस मिसाइल के वर्कलोड को काफी हद तक कम कर देगी। अब वो किस तरीके से, वो भी आपको समझाते हैं। सीधी सी बात है कि 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को अगर निशाने पर लाना हो तो उसके लिए सूर्यास्त ही काफी होगा। यानी अगर देखा जाए तो रण क्षेत्र में सूर्यास्त सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की जगह ले सकता है।
2: सूर्यास्त 300 किलोमीटर की दूरी तक ब्रह्मोस जैसी अचूक सटीकता प्रदान करता है, इसीलिए सामान्य और कम सुरक्षा वाले लक्ष्यों जैसे कि आतंकी कैंप, रसद डिपो के लिए ब्रह्मोस को बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। ये काम सूर्यास्त आसानी से कर देगा। ब्रह्मोस मिसाइल को अब सिर्फ अति संवेदनशील और अत्यधिक बख्तरबंद जैसे दुश्मन के युद्धपोत या परमाणु बंकर जैसे लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा। ब्रह्मोस ले जाने वाले सुखोई 30 MKI विमानों का वजन और रखरखाव का दबाव कम होने से वायुसेना इन विमानों का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में कर पाएगी। सूर्यास्त वायुसेना का विकल्प नहीं बल्कि ये थल सेना को आत्मनिर्भर बनाकर वायुसेना की कीमती हथियारों और विमानों को बड़े और अधिक रणनीतिक युद्धों के लिए रीस्टॉक करने का मौका देता है।
0: ब्रह्मोस जैसा महंगा मिसाइल एक स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि तो थोड़े कम इम्पोर्टेंट टारगेट है, वहाँ पर सूर्यास्त का इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है। और तीसरी बात ये कि सुखोई को भी बचत होगी, एयरफोर्स को जो 300 किलोमीटर दूर टारगेट होते थे उनके लिए हवा में जाके मिजाइल फायर करनी पड़ती थी, वो बच जाएगा। आप जमीन से फायर करोगे उनके टारगेट को बर्बाद कर दोगे, यानी कि हम अपने जो एयरक्राफ्ट हैं सुखोई है इनको एक्सपोज नहीं करेंगे, उनका इस्तेमाल और स्ट्रेटजिक टारगेट के लिए और बड़े टारगेट्स के लिए किया जा सकता है। तो यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर है कि वो हथियार बने रहेंगे, वो अपने टारगेट्स करेंगे, बाकी टारगेट्स को सूर्यास्त एंगेज करेगा, अपनी जमीन पर रहते रहते दुश्मन को नेस्ता नाबूद करेगा।
1: आज देश में सिर्फ हथियार ही नहीं बनाए जा रहे बल्कि यहाँ उस भरोसे को भी मजबूत किया जा रहा है जिसके दम पर सेना वीरता का नया इतिहास लिख रही है।

0: अब हम सिर्फ टैंक, तोप, मिसाइल या फाइटर जेट्स ही नहीं बनाते, हम बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, जिसका सर्वोच्च संकल्प है राष्ट्र रक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना।
1: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
0: रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा और विदेश से हथियार और उपकरण के आयात को कम कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड मिशन पर आगे बढ़ रहा है।

0: हिंदुस्तान अब अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं, भारत में ही तरह तरह की मिसाइलें, फाइटर जेट्स और यहां तक कि छोटे कलपुर्जे तक बनाए जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत रक्षा के क्षेत्र में खुद स्टैंड कर चुका है और ये दुनिया भी भारत का लोहा मान रही है।
1: भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में लंबी छलांग लगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2023 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वो है रक्षा।
2: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
1: ये मेक इन इंडिया मिशन की वो तैयारी है जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है और भारत के लिए है।
0: स्क्रू से लेकर सिस्टम और सॉफ्टवेयर तक भारत आज की तारीख में ये सब कुछ अपने आप बना रहा है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि भारत ये सब कुछ न सिर्फ अपने लिए बना रहा है बल्कि 80 से ज्यादा देशों को दे भी रहा है। और ये तमाम वो देश हैं जो रक्षा के मामले में भारत पर भरोसा करते हैं।
1: सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन एक वक्त था जब 65-70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 35% सामान ही आयात होता है। इसका मुख्य कारण भारत की अपनी रक्षा प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने की बढ़ती क्षमता है।
0: भारत सरकार की तरफ से पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट तैयार की गई है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि स्वदेशीकरण को ज्यादा बढ़ावा देना, यानी खास तौर पर रक्षा के क्षेत्र में हम किसी दूसरे मुल्क पर निर्भर न रहें। छोटे से कलपुर्जे से लेकर बड़ी से बड़ी मिसाइल तक बनाने में भारत खुद अपनी धरती का और यहाँ के साजो सामान का ही इस्तेमाल करे।
1: अब तक रक्षा मंत्रालय ऐसी 5 लिस्ट जारी कर चुका है और इसमें तकरीबन 5,000 आइटम्स के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी। ये सभी डिफेंस, पीएसयू और निजी स्वदेशी कंपनियों से खरीदे जा रहे हैं। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट 4,666 आइटम्स की 5 लिस्ट जारी की गई है, जिन्हें सिर्फ स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। नेगेटिव लिस्ट, इसमें 310 उपकरणों जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, तोप के आयात पर 2020 से 27 तक रोक लगाई गई है। डैप 2020 यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में खरीद को प्राथमिकता दी गई, यानी कि स्वदेशी डिजाइन और प्रोडक्शन को बढ़ावा। सृजन पोर्टल, इसमें 19,509 पहले आयातित आइटम्स को स्वदेशी बनाने के लिए लिस्ट किया गया। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा, इसमें टाटा, L&T, भारत फोर्स और MSME को बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। FDI में छूट, डिफेंस में 74% तक FDI ऑटोमेटिक रूट से और 100% सरकार की मंजूरी जारी को बढ़ावा, इसमें टाटा, L&T, भारत फोर्स और MSME को बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। FDI में छूट, डिफेंस में 74% तक FDI ऑटोमेटिक रूट से और 100% सरकार की मंजूरी से होगी। अगला है R&D को बढ़ावा, इसमें IDEX और TDF स्कीम्स से स्टार्टअप्स और MSMEs को फंडिंग दी जा रही है। साल 2025 में TDF के लिए 60 करोड़ रुपए और IDEX प्राइम के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए।
3: हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर ना सिर्फ सुरक्षा के मामले में डिफेंस प्रोडक्शन में होना पड़ेगा, तमाम ऐसी विधाएं हैं उसमें हर एक में आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका कि प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कट कॉल दिया हुआ है। जहां तक डिफेंस का सवाल है, देखिए हिंदुस्तान की सुरक्षा में को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आप ऐसे समय में दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें जब आपको उस इक्विपमेंट की, उस हथियार की, उस गोला बारूद की, उस एमनिशन की जरूरत है। लिहाजा आपको स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा और हिंदुस्तान देखिए धीरे धीरे इसके तरफ अग्रसर हो रहा है।
1: प्राइवेट कंपनियों को भी सरकार की तरफ से सहूलियतें दी गई हैं। सरकार ने भारत की निजी हथियार निर्माता कंपनियों के लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है कि बड़ी तेजी से ये आगे बढ़ने लगे। इस पूरी बढ़ोतरी में हिस्सेदारी की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2024-25 में कुल रक्षा उत्पादन में DPSU यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान करीब 77% रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 23% रहा। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बढ़ी है। जो वित्त वर्ष 2023-24 में 21% थी, वो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23% हो गई।
3: सबसे पहले मैं टच करूंगा पॉजिटिव इंडियनाइजेशन। इसके तहत वो सारी चीजें हैं जो कि डिफेंस में जिसकी रिक्वायरमेंट है और जिसको हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है, चाहे वो PSUs हो, DPSUs हो, प्राइवेट सेक्टर हो। अब हम नेगेटिव लिस्ट की बात करते हैं। टाइम टू टाइम ये लिस्ट रिवाइज की जाती है। नेगेटिव लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें कि उन आइटम को बैन किया गया है जिसका हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ये सारे के सारे आइटम हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। लिहाजा ये नेगेटिव लिस्ट में दिन रात इजाफा हो रहा है और इन आइटम को हम अब बाहर से इंपोर्ट करना डिफेंस सेक्टर में बंद करेंगे। सृजन पोर्टल देखिए एक ऐसा पोर्टल है जिसमें तमाम प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक सेक्टर की यूनिट इसमें लॉग इन कर सकते हैं, अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि तमाम आगे आने वाले दिनों में जो हमारे डिफेंस की प्रोक्योरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, किसका टेंडर निकलने वाला है, क्या उसका क्वालिफिकेशन क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों की उसमें लिस्टिंग होती है।
1: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अपने डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा तवज्जो दे रहा है और इसी के तहत देश में डिफेंस कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में सिर्फ दो ही कॉरिडोर हैं। रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
7: शनि देव की कौन सी राशि धन की सबसे बड़ी राशि है? शनि देव की कौन सी राशि के लोग भयंकर लापरवाह होते हैं? और शनि देव की कौन सी राशि बृहस्पति के लिए बड़ी निगेटिव होती है? कौन सी हैं शनि देव की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: IPL का सबसे बड़ा धुरंधर वैभव के बल्ले ने मचाया बवंडर, उम्र 15 साल बना गेंदबाजों का काल, सिक्सर का बेमिसाल बेबी बॉस, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
10: Thank God I get to wake up.
9: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: पवित्र चारधाम यात्रा के दौरान हर रोज बन रहे नए रिकॉर्ड, महज 39 दिनों में 10 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में मुस्तैद प्रशासन। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चली तेज हवाओं से गिरा पारा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों का रुख कर रहे लोग, उत्तराखंड के मसूरी में हर रोज बढ़ रही सैलानियों की तादाद, पहाड़ों की रानी में सड़कों पर थमा ट्रैफिक। हिमाचल प्रदेश के मनाली की खूबसूरत वादियां सैलानियों से गुलजार, रोहतांग के माइनस तापमान में भी मस्ती करते नजर आ रहे पर्यटक, बर्फीले पहाड़ों पर एडवेंचर का भी उठा रहे लुत्फ। राजस्थान में रेतीले तूफान का बवंडर, श्रीगंगानगर में दिन में हुआ अंधेरा, बवंडर के बाद हुई बारिश से तापमान में आई 8 डिग्री की गिरावट।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का विस्फोटक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो है तो महज 15 साल का, लेकिन क्रिकेट के मैदान में बल्ले से ऐसे ऐसे कीर्तिमान रच रहा है कि बड़े बड़े सूरमाओं की चमक उसके आगे फीकी पड़ती जा रही है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बीते 27 मई को आईपीएल के एक मुकाबले में बल्ले से विस्फोट की नई इबारत लिखने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी है। जी हाँ, 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की जो विस्फोटक पारी खेली उसकी धमक में क्रिकेट के कई दिग्गजों के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स दफन हो गए। वैभव ने एक पारी में इतने रिकॉर्ड्स बना दिए कि ये खुद अपने आप में रिकॉर्ड हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वाली पारी। दरअसल पिछले 2 साल से वैभव मैदान में टिककर जिस तरह से आतिशबाजी कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले वर्षों में बल्लेबाजी का कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा ही नहीं जो वैभव के नाम ना हो।
1: क्रिकेट के क्षितिज पर उदित हो चुका है एक ऐसा चमचमाता वैभवशाली सूर्य जिसकी चौंधिया देने वाली चमक में क्रिकेट के आसमान के बड़े बड़े सितारे गुम से हो गए हैं। इस वैभवशाली सूर्य ने आईपीएल की महज एक पारी में इतने कीर्तिमान बना दिए हैं कि रिकॉर्ड बुक के हर सफहे पर एक ही नाम चमक रहा है, वैभव सूर्यवंशी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को हुए एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की ऐसी विस्फोटक पारी खेली कि आईपीएल के 18 साल के इतिहास में बल्ले से बने करीब करीब सारे रिकॉर्ड्स जमींदोज हो गए।
2: वो बच्चा 15 साल का इतनी धमाल मचा रखी है, बुमराह को उसने पहली बॉल पे छक्का मारा, हेजलवुड को, हर एक बॉलर को उन्हें पहली बॉल पे छक्का मारा, ऐसा बल्लेबाज मैंने दुनिया में नहीं देखा। वरिंदर सहवाग भी ऐसी पारी नहीं कभी खेल सका जो वैभव सूर्यवंशी खेलता।
1: वैभव की इस अविस्मरणीय पारी को देखकर ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कहना पड़ गया अभूतपूर्व। बल्ले से वैभव का अतुल्य धमाका पूरी एकाग्रता से देखने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग असाधारण था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पैरों पर फेंकी गई गेंद पर उन्होंने बेहद कुशलता के साथ फ्रंट फुट क्लियर कर रूम बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने जहां चाहा गेंद को वहीं पहुंचा दिया। वैभव की ये पारी चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। यूं तो वैभव ने पूरे आईपीएल के दौरान अतुल्य बल्लेबाजी की है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को खेली गई उनकी एक अदद पारी क्रिस गेल, डेविड वार्नर, रिली रूसो, शुभमन गिल और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों की कई कई पारियों पर भारी पड़ गई है। वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की धमाकेदार पारी में 12 छक्के लगाए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वैभव ने आईपीएल 2026 सीजन में 65 छक्के पूरे कर लिए हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्सर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। गेल ने आईपीएल 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे। वैभव के इस रिकॉर्ड के भीतर भी एक रिकॉर्ड छिपा हुआ है। गेल ने 59 सिक्सर के लिए 456 गेंदें खेली थी, जबकि वैभव ने सिर्फ 280 गेंदों पर 65 छक्के अपने नाम कर लिए हैं। 280 गेंदों पर 65 छक्कों का मतलब ये हुआ कि कमोबेश हर चौथी गेंद पर सिक्सर। ये रिकॉर्ड तो गेंदबाजों के लिए डरावने सपने की तरह है।
3: Young man is something else. He can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd. His sixes are generally into the crowd. His sixes are not those that just pop over that boundary rope. And he just makes it look so ridiculously easy.
1: महज 15 साल के वैभव जिस तरह कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भविष्य में बल्लेबाजी के सारे रिकॉर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट में इनके नाम ही दर्ज मिलेंगे। 27 मई को एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने एचआरएस के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। आईपीएल के नॉकआउट हिस्ट्री में ये संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 है। इससे पहले साल 2014 के क्वालिफायर 2 में सुरेश रैना ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 16 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था। इतना ही नहीं, वैभव की इस पारी में शुरू के 10 छक्के सिर्फ 24 गेंदों पर ही आ गए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 10 छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गेल के 10 छक्के साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 27 गेंदों में आए थे। आईपीएल 2026 के दौरान 27 मई को खेली गई ऐतिहासिक पारी समेत कुल 15 पारियों में वैभव 243 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बना चुके हैं। टी20 के किसी भी टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले साल 2022 में टी20 ब्लास्ट में रिली रूसो ने 192 के स्ट्राइक रेट से 623 रन बनाए थे। वैभव की इस एक पारी में बने रिकॉर्ड्स की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव के कुल 12 में से 8 छक्के पावर प्ले में ही आ गए थे। दिलचस्प तो ये है कि इससे पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा 7 छक्कों का कीर्तिमान भी हिंदुस्तान के इस वैभवशाली खिलाड़ी के नाम ही दर्ज था। वैभव अब आईपीएल में 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियां खेल चुके हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पर कमाल यह है कि वैभव की 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियों में से 3 आईपीएल के मौजूदा सीजन में ही आई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की अपनी पारी में वैभव ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। आईपीएल के इतिहास में 90 प्लस रनों की सभी पारियों में वैभव की पारी सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाली पारी बन गई है। वैभव ने 334.48 की स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड रजत पाटीदार के नाम था, जिन्होंने इसी सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 281.81 की स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पर 93 रन बनाए थे। आपको बता दें कि 27 मई वाली पारी को लेकर वैभव आईपीएल 2026 सीजन में सिर्फ पावर प्ले के दौरान 490 रन बना चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम था, जिन्होंने साल 2016 में पावर प्ले के दौरान 467 रन बनाए थे। ये सारे रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं 15 साल के एक टीनेजर के नाम। सोचिए, 15 साल का ये बच्चा इसी उम्र में अगर क्रिस गेल, डेविड वार्नर, किरोन पोलार्ड और शुभमन गिल जैसे महारथियों के रिकॉर्ड्स की कब्रगाह बना चुका है, तो आगे तो वैभव के नाम से ही कीर्तिमान की एक किताब छापनी पड़ जाएगी।
4: बैट्समैन बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में अगर वो अपनी फिटनेस अच्छी मेंटेन करता है तो फिर आने वाला वो फ्यूचर स्टार है इंडिया का।
5: वैभव सूर्यवंशी, उसकी भी बैटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया खेलता है,
6: बहुत बढ़िया,
5: बहुत नेक्स्ट लेवल बैटिंग है। हम उसकी बैटिंग को नहीं कह सकते, उसकी अपनी अलग क्लास है।
7: करदा उड़ा दिया वैभव सूर्यवंशी ने,
8: लटकाड़ दिया।
1: ऐसा नहीं है कि वैभव का बल्ला सिर्फ आईपीएल में ही चला है। इससे पहले भी बिहार के समस्तीपुर का ये लाल ऐसी ऐसी अद्भुत पारियां खेल चुका है कि क्रिकेट के इतिहास में उसकी कोई सानी देखने को नहीं मिलती। इसी साल 6 फरवरी को जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव ने जो पारी खेली थी, उसे अंडर 19 वर्ल्ड कप के 38 साल के इतिहास की सबसे महान पारी कहा जा रहा है। सबसे महान पारी क्यों कहा जा रहा है, स्टैट देखने से इसका जवाब मिल जाएगा। वैभव ने महज 80 गेंदों पर 175 रन ठोक दिए। वैभव ने इस पारी में 15 छक्के और 15 चौके लगाए, यानी 150 रन सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए अपने खाते में जोड़ लिए। 55 गेंदों पर शतक पूरा किया, बाद के 75 रन सिर्फ 25 गेंदों पर ठोक दिए। महज 71 गेंदों पर 150 रन पूरे कर लिए, जो यूथ वनडे इतिहास का सबसे तेज 150 है। इतना ही नहीं, वैभव ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कुल 30 छक्के लगाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस के नाम था, जिन्होंने 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में 18 छक्के लगाए थे। पूरे टूर्नामेंट में वैभव 439 रन के साथ सेकेंड टॉप स्कोरर भी रहे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहने के साथ वैभव ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप से ठीक पहले अंडर 19 एशिया कप में 12 दिसंबर 2025 को यूएई के खिलाफ वैभव ने 95 गेंदों पर 171 रन कूटकर विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए थे। इस आतिशी पारी में वैभव ने 9 चौके और 14 छक्के लगाए थे। कहने की जरूरत नहीं कि सबसे तेज और सबसे कम उम्र से जुड़े रिकॉर्ड्स के सरताज बन चुके हैं वैभव। 24 दिसंबर 2025 को रांची के JSCA ओवल ग्राउंड में वैभव ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कई विश्व कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल के खिलाफ हुए मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 84 गेंदों पर 15 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 190 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी थी। इस मैच में सिर्फ 59 गेंदों पर 150 रन पूरे कर वैभव ने लिस्ट ए मैच में फास्टेस्ट 150 का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 बॉल पर 150 रन बनाए थे। तूफान थोड़ी देर के लिए हो तो राहत, नहीं तो कहर बन जाता है। वैभव, जिन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 बॉल पर 150 रन बनाए थे। तूफान थोड़ी देर के लिए हो तो राहत, नहीं तो कहर बन जाता है। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान के टिक कर रहने वाले तूफान नहीं बल्कि बवंडर हैं। इसीलिए विरोधियों के लिए कहर नहीं बल्कि महाकहर बन रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैभव 13 साल की उम्र में एक मैच में ट्रिपल सेंचुरी भी लगा चुके हैं। रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में वैभव ने 332 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अभी तो ये यूथ इंडिया की रहनुमाई कर रहे हैं। इंतजार कीजिए इनके टीम इंडिया में शामिल होने का। इसकी पूरी संभावना है कि साल 2027 के वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे और बहुत संभव है कि भारत तब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाएगा।
0: 15 साल के वैभव की कामयाबी क्रिकेट के बड़े बड़े धुरंधरों को भी हैरान करने लगी है। आईपीएल में अपने से दोगुने ढाई गुने उम्र के घातक गेंदबाजों को भी वो न सिर्फ सहजता से खेल रहे हैं बल्कि कायदे से धुलाई भी कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतनी छोटी उम्र में ही वैभव इतने दिग्गज बल्लेबाज कैसे बन गए। दरअसल इसके पीछे कहानी है एक अधूरे सपने की, जो कभी वैभव के पिता ने देखा था। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन हालात की दुश्वारियों की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। पर अपने उसी अधूरे सपने को संजीव ने अपने बेटे वैभव के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया। वैभव के क्रिकेटर बनने की पूरी कहानी आपके दिल को छू लेगी।
1: सर पर कामयाबी के ताज के साथ मन में विनम्रता का संस्कार हिंदुस्तान की संस्कृति का सनातन हिस्सा है। मैच 15 की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी का बेनजीर परचम लहरा चुके वैभव सूर्यवंशी सनातन संस्कार के युगीन संवाहक हैं। जिस मैच में वैभव ने रिकॉर्ड्स की छड़ी लगा दी, उसके प्री मैच शो के दौरान जब उन्होंने सुनील गावस्कर और संजय बांगर को देखा तो दौड़कर उनके पास गए और पूरी विनम्रता के साथ उनके पैर छू लिए। वैभव के संस्कार की निश्चल सादगी देखिए कि गावस्कर और बांगर के साथ मौजूद प्रेजेंटर जतिन सप्रू के भी पैर छूने की उन्होंने पूरी कोशिश की। यह अलग बात है कि जतिन पीछे हट गए।
3: हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है कि हम अपने जो बुजुर्ग है, सीनियर्स है, एल्डर्स है, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, और वही उन्होंने किया। सिर्फ मेरे पास ही नहीं आए थे वो, मेरे बाजू में संजय बांगर थे और जतिन सप्रू थे, उनके पास भी आए थे। और मुझसे थोड़ा सा रुक कर मुझसे कुछ अपेक्षा कर रहे थे कि मैं कुछ उनको बोलूं, शायद अपेक्षा कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूंगा, शायद अपेक्षा कर रहे थे। तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा, लगे रहो, क्योंकि जब वो लगे रहेंगे तो फिर वो बल्ला, मतलब बल्ला लगता रहेगा और छक्के भी लगते रहेंगे।
1: उम्र के लिहाज से वैभव की बेनजीर कामयाबी इस बात की मुनादी कर रही है कि आने वाले वक्त में कीर्तिमान की किताब के हर सफहे पर बिहार के इस लाल का नाम दर्ज मिलेगा। पर वैभव नाम के इस प्रदीप्त दिए की रोशनी से सराबोर होने वाले लोगों को उस तेल और बाती के बारे में भी जानना चाहिए जो खुद गुमनाम रहकर अपने दिए को जगमग कर रहा है। वैभव की इस बेनजीर कामयाबी के पीछे हाथ है उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का, जो कभी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का ख्वाब सजोए हुए थे, पर खुद की जो हसरत अधूरी रह गई उसे उन्होंने अपने लाल में प्रत्यारोपित कर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक पिता के अनोखे त्याग की खामोश सदाएं समस्तीपुर जिले के जर्रे जर्रे में जज्ब है।
6: वास्तव में एक पिता का जो त्याग था, तपस्या था, जिद था कि हमको किसी भी तरह जो मैं हासिल नहीं कर सका वो मैं अपने बच्चे को उस मुकाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। वो एकाकी भी देखा कि लोगों से मिलना तक, लोगों में क्योंकि जुनून सवार था कि मैं अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाऊं, तो लोगों से मिलना भी बंद किया। उस बीच में कई ऐसी मुसीबतें भी आईं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया।
1: पांच साल के बच्चे को पढ़ाई से दूर कर क्रिकेट के मैदान में पसीना बहाने के लिए खड़ा कर देना किसी भी पिता के लिए आसान फैसला नहीं होगा। पर संजीव सूर्यवंशी ने कलेजे पर पत्थर रख कर ये फैसला लिया। समस्तीपुर जिले की ताजपुर पंचायत में जहां क्रिकेट का कोई नाम लेवा नहीं था, वहां पांच साल के बेटे की प्रैक्टिस के लिए सारी व्यवस्था कर दी। यहां तक कि कुछ हम उम्र और बड़े बच्चों को भी चॉकलेट मिठाई का प्रलोभन देकर साथ जोड़ लिया ताकि वे बॉलिंग करें और वैभव लगातार बैटिंग की प्रैक्टिस करता रहे। पांच साल से सात साल यानी दो साल तक गांव में ही वैभव को दिन रात प्रैक्टिस कराने के बाद एक दिन संजीव सूर्यवंशी को इल्हाम हो गया कि अब अगले लेवल की प्रैक्टिस का वक्त आ गया है, लिहाजा बेटे को लेकर निकल गए ताजपुर से 12 किलोमीटर दूर स्थित पटेल मैदान में, जहां ब्रजेश झा क्रिकेट एकेडमी चलाते थे। क्रिकेटर बनाने का जुनून ऐसा था कि संजीव सूर्यवंशी को जब लगा कि रोजी रोटी के लिए चलने वाला बिजनेस व्यवधान बन रहा है तो बगैर देरी के उसे बंद कर दिया।
9: गार्जियनों का उनका सपोर्ट रहा है कि अपने बच्चे को इतना ज्यादा टाइम किल करते थे, अपने साथ लाना ले जाना, बच्चों के साथ अपना बिजनेस छोड़ के बच्चे के प्रति इतना एक फोकस, गार्जियन का भी कहीं ना कहीं टारगेट था कि हमारा बच्चा ऊपर खेले और भगवान की दुआ से बच्चा वो मुकना ले जाना, बच्चों के साथ अपना बिजनेस छोड़ के बच्चे के प्रति इतना एक फोकस, गार्जियन का भी कहीं ना कहीं टारगेट था कि हमारा बच्चा ऊपर खेले और भगवान की दुआ से बच्चा वो ज़्यादा टाइम किल करते थे, अपने साथ लाना ले जाना, बच्चों के साथ अपना बिजनेस छोड़ के बच्चे के प्रति इतना एक फोकस, गार्जियन का भी कहीं ना कहीं टारगेट था कि हमारा बच्चा ऊपर खेले और भगवान की दुआ से बच्चा वो मुकाम पर हासिल किया।
1: इसमें कोई संदेह नहीं कि 7-8 साल की छोटी उम्र में ही वैभव अपने पिता की उम्मीदों की कसौटी पर लगातार खरे उतर रहे थे। जब तक सूर्य की रोशनी धरा पर मौजूद रहती, वैभव बल्ले को दामन से दूर नहीं होने देते। पिता और माँ को छोड़कर घर के बाकी सदस्यों को वैभव की आदत कई बार नागवार गुजरती थी। दादी ने तो कई मौकों पर ऊब कर वैभव की पिटाई भी कर दी थी, पर बचपन में वैभव की पिटाई के वो वाकये आज दादी के लिए सुनहरी यादें बन चुकी हैं।
10: डांटते तो थे,
11: अच्छा,
10: अभी कभी उसको दौड़ते थे उस पर, फिर भी कहता था नहीं दादी हमको अच्छा लगता है, हम खेलेंगे। हम कहे ठीक है बाबू तब खेलो। जब धीरे धीरे जब उदल सिंह सराय गया, बेनी पट्टी, उसके बाद आपको क्या कहते हैं बेगूसराय, जब हम देखते रहे कि यह अच्छा खेल में उतर रहा, तब से मेरा भी मनोबल और मन ये हुआ कि हाँ यह खेले।
1: बचपन में वैभव की बैटिंग की खटखट से ऊब जाने वाली दादी का हृदय आज इस बात को जानकर गदगद है कि उनका पौत्र क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़कर आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाला खिलाड़ी बन गया है। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि वैभव को पटना के जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में डाक का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि वैभव को पटना के जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में डालने के लिए संजीव सूर्यवंशी को जमीन तक बेचनी पड़ी थी। दरअसल संजीव सूर्यवंशी को जब ये लगने लगा कि उनका बेटा समस्तीपुर स्थित पटेल मैदान के स्टैंडर्ड से आगे निकल चुका है तो पटना में जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराने का फैसला किया। एकेडमी की फीस और उसके बाद समस्तीपुर से हर रोज पटना आना जाना कॉस्टली अफेयर था, इसीलिए संजीव सूर्यवंशी बेटे वैभव को लेकर हर अल्टरनेट डे पर पटना जाने लगे। जेनेक्स एकेडमी चलाने वाले पूर्व रणजी खिलाड़ी मनीष ओझा भी वैभव के पिता के त्याग और तपस्या को याद कर भावुक हो जाते हैं।
11: माँ का रोल रहता था बच्चे को तैयार करने से लेके उसको, और जब इधर से थक के जाता था तो उसको फिर रिकवरी में, चाहे वो खाने के सेंस में हो, उसको प्यार के सेंस में हो, उसको रेस्ट के सेंस में हो, और पिता का त्याग इस सेंस में था कि अर्ली सारे बोझ को वो अपने कंधे पर उठा रहे थे इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और फिर भी वो जो वो अपने हैसियत से ज़्यादा बढ़ के उन्होंने उस बच्चे के लिए किया और हर एक वो सुविधा उस बच्चे के लिए उन्होंने अरेंज किया खेल के प्रति कि वो आज इस मुकाम को प्राप्त कर सके।
1: पिता ने अपनी हैसियत की हदों को पार कर वैभव के लिए जमीन तैयार की और वैभव ने भी पिता के इस त्याग की कीमत को शिद्दत से महसूस करते हुए मैदान पर पसीना बहाने में कोई कोताही नहीं की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था और वैभव को पटना ले जाना ले आना संभव नहीं रहा तो संजीव सूर्यवंशी ने अपने ताजपुर स्थित घर के बाहर ही नेट प्रैक्टिस के लिए पिच बनवा दी ताकि वैभव की प्रैक्टिस खंडित ना हो।
12: लॉकडाउन में एक्चुअली पूरा बिहार बंद था तो यहाँ पे पिच का जनरेट किया गया भैया के द्वारा, और टर्बिकेट और सीमेंटेड लॉकडाउन में लोग घर से नहीं निकल रहे थे, उस वक्त में भी इसका प्रैक्टिस सेशन लगातार यहाँ पे चलता रहा।
1: बेटे को क्रिकेटर बनाने का ये जुनून अपने आप में अनूठा है, इसका नतीजा सबके सामने है। आज वैभव के बल्ले से बनने वाले विश्व रिकॉर्ड्स संजीव सूर्यवंशी की दुनिया को रंगीन सपनों से भी ज्यादा सुहावन बना रहे हैं। वैभव की विराट बुलंदी का आलम यह है कि पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पर संजीव सूर्यवंशी और उनकी पत्नी से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। देश का गौरव बन चुके तेजस्वी पुत्र का पिता होने के लिए बधाई देते हैं। पिता ने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए त्याग तपस्या की तो बेटा भी दो कदम आगे बढ़कर अपनी विराट उपलब्धियों से हक अदायगी कर रहा है। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसके 14 साल के बेटे को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को वैभव को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। साफ है कि पिता के संकल्प और बेटे की जीतोड़ मेहनत का पावन संगम क्रिकेट के मैदान पर चमत्कारिक धारा बनकर नमूदार हो रही है।
0: तो बंदे मेहदम में आज आपने वैभव सूर्यवंशी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
13: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
14: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
13: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
14: They score!
13: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: IPL का सबसे बड़ा धुरंधर वैभव के बल्ले ने मचाया बवंडर, उम्र 15 साल बना गेंदबाजों का काल, सिक्सर का बेमिसाल बेबी बॉस, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
15: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
16: देव की कौन सी राशि धन की सबसे बड़ी राशि है? शनि देव की कौन सी राशि के लोग भयंकर लापरवाह होते हैं? और शनि देव की कौन सी राशि बृहस्पति के लिए बड़ी निगेटिव होती है? कौन सी हैं शनि देव की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
17: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
18: Good news today is really अच्छा लगता है. इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार-धाड़ और चिल्ला-चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को
19: पवित्र चारधाम यात्रा के दौरान हर रोज बन रहे नए रिकॉर्ड, महज 39 दिनों में 10 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में मुस्तैद प्रशासन।

0: जो देश अपने हथियार खुद बनाता है वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है।
1: आज भारत तोप की गोली से लेकर मिसाइल तक और फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक सब कुछ खुद ही तैयार कर रहा है। एक वक्त था जब भारत अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपनी ताकत को समझा, उसे जाना और खुद आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो अपने यहाँ ही बना रहा है। कई देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत ही भारत ने अपने यहाँ ही कई रक्षा उपकरणों को बनाना शुरू किया है। नतीजा ये है कि आज की डेट में भारत न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि दूसरे देशों का निर्यातक भी बन रहा है। डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
0: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
1: हर दिन नए हथियारों की चमक दुश्मनों को भयभीत कर रही है। भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जो दुश्मन की नापाक हरकतों का माकूल जवाब दे सके।
0: आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। साथियों, इसका एक और लाभ सीमा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह बहुत ही कठिन है, जटिल है, टफ है। हर जगह सैनिकों की तैनाती करना यह कोई आसान काम नहीं होता। मैं प्रत्यक्ष इसे महसूस कर रहा हूं और ऐसे में ऑटोमेटेड निगरानी सिस्टम, रोबोटिक वाहन और सेंसर दिन रात सीमा की निगरानी कर सकते हैं, ऐसा सभी अब स्वीकार करने लगे हैं। इससे सुरक्षा भी बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उन पर दबाव भी कम रहता है।
1: म्यूनिशन और ऑटोमेटेड सिस्टम में भारत अगुआ बनकर उभरे, इसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है।
0: भविष्य के युद्धों में सबसे बड़ा अंतर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पास सैनिकों की संख्या कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन और ऑटोमेशन की दृष्टि से कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ युद्ध की आवश्यकता नहीं बल्कि शांति, विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। रक्षा क्षेत्र में यदि हम अभी तक दूसरों पर निर्भर रहे थे तो यकीन मानिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे डिफेंस सेक्टर और हमारे फाइनेंस सेक्टर को होता। लेकिन अब क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची, खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में, तो यही वजह है कि खासतौर पर तकनीक के मामले में और रक्षा तकनीक के मामले में आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है। 23 मई को महाराष्ट्र के शिरडी में एक बेहद आधुनिक गोला बारूद निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया जिसमें सालाना 5,00,000 आर्टिलरी शेल्स तैयार किए जाएंगे। साथ ही भारत के पहले 300 किलोमीटर वाले सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम को भी हरी झंडी दिखाई गई। सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 2 रेंज वेरिएंट्स में डिजाइन किया गया है। पहला वेरिएंट 150 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों तक हमला कर सकता है और दूसरा लंबी दूरी वाला वेरिएंट 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र की खरीद का ऑर्डर भी दे दिया है।
2: सूर्यास्त्र भारत की सेनाओं को एक ऐसा जबरदस्त वेपन और फोर्स मल्टीप्लायर मिलने वाला है जो वाकई में दुश्मन की कमर तोड़ने में कामयाब होगा, क्योंकि इसका पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता है कि 5 मीटर के अंदर लिखा हो लेकिन 2 मीटर के रिजल्ट दिए गए 300 किलोमीटर दूर। आप समझिए कि जब वो हमला करने में सक्षम है दुनिया के कमांड सेंटर पर जहाँ पे उनके शीर्ष अधिकारी बैठे होते हैं, प्लानिंग चल रही है, वहाँ पर हमले के पहले हमारा हमला होता है, उनकी सारी प्लानिंग ध्वस्त हो जाती है। कम्युनिकेशन सिस्टम पर जहाँ से बातचीत होती है उसको ख़त्म कर दें, रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक बेस जहाँ से उनके हथियारों का भंडारण है, अम्यूनिशन का भंडारण है, तेल है, पिन पॉइंट हमला करने में सक्षम है।
1: सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम में प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये पारंपरिक हथियारों की तरह इधर उधर नहीं गिरते बल्कि बिल्कुल उसी जगह

0: पर प्रहार करते हैं जहां इन्हें भेजा गया, यानी निशाना एकदम अचूक। सूर्यास रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में 150 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल महज 1.5 मीटर है, वहीं 300 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट का सीईपी 2 मीटर है। इसका मतलब ये है कि रॉकेट अपने टारगेट से औसतन 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर गिरता है, जो युद्ध में बहुत बड़ी ताकत है।
1: सूर्यास्त्र देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी का बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। इससे 122 mm, 306 mm, 370 mm के रॉकेट फायर किए जा सकते हैं, साथ साथ में कामिकाजी ड्रोन भी फायर किया जा सकता है। 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी, और तकरीबन 5 मीटर कहा जाता है, लेकिन इससे बेहतर रिजल्ट्स इसके मिले 2 मीटर का सर्कुलर एरर पे, यानी कि 2 मीटर के अंदर अंदर ये फायर करने में सक्षम है। ये इसका प्रिसीजन है, ये इसकी एक्यूरेसी है। क्या फ़ायदा होगा इसका? यह होगा कि दुश्मन के कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक बेस, उनकी गन पोजीशन, एडी सिस्टम, रडार स्टेशन और जहाँ पे उनकी रॉकेट सिस्टम है, जहाँ सब पर भी उनका जो एक स्ट्रेटजिक टारगेट्स हैं, उनको हम पिन पॉइंट हमला करने में ये सक्षम है।
0: भारतीय सेना को अब लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाले रॉकेट्स मिलेंगे, जिससे दुश्मन के ठिकानों जैसे कि आर्टिलरी पोजीशंस, कमांड सेंटर्स और दूसरे अहम टारगेट्स को सुरक्षित दूरी से तबाह किया जा सकेगा।

सूर्यास की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मल्टी बैरल क्षमता, जिसमें अलग अलग तकनीक के हथियार एक साथ लगाए जा सकते हैं और दागे भी जा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि निशाना भी सटीक और लॉजिस्टिक का खर्च भी बहुत कम। सूर्यास के अलग अलग पॉड्स को मिशन के हिसाब से बदला जा सकता है। 370 mm कैलिबर की प्रेडेटर हॉक गाइडेड रॉकेट सूर्यास सिस्टम का सबसे घातक हथियार है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। सूर्यास सिस्टम का एक और घातक हथियार है एक्स्ट्रा रॉकेट। 306 mm कैलिबर का ये गाइडेड रॉकेट 150 किलोमीटर तक दुश्मन के बंकरों और कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकता है। सूर्यास सिस्टम से 122 mm और 160 mm कैलिबर के बेहद किफायती एक्यूलर रॉकेट्स दागे जा सकते हैं, जो 40 से 100 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। सूर्यास सिस्टम से स्काई स्ट्राइकर लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन भी दागे जा सकते हैं, जो हवा में रहकर दुश्मन की खोज करते हैं और सटीक हमला करते हैं। सूर्यास रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागी जाने वाली प्रेडेटर हॉक रॉकेट्स में GPS INS सेंसर फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये तकनीक प्रेडेटर हॉक रॉकेट को बिना किसी भारी मदद के बेहद खराब मौसम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के बीच भी सटीक निशाना लगाने की क्षमता देती है।

0: देखा जाए तो प्रेडेटर हॉक सूर्य अस्त्र का सबसे खतरनाक रॉकेट है। 300 किलोमीटर तक जाता है, 370 mm है और 140 से 200 किलोग्राम तक का ये एक्सप्लोसिव ले जा सकता है और छत के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर, बंकर्स के ऊपर बहुत इफेक्टिव है। तोड़ के अंदर तक उनको तहस नहस कर सकता है। सेल्फ गाइडेंस है, गाइडेंस बड़ी अच्छी है और पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है। जैसा कि 5 मीटर का बताया जाता है लेकिन 2 मीटर की हमको इसमें एक्यूरेसी मिली है और शूट एंड स्कूट का इसका फैसिलिटी है कि फायर करें उसके बाद जगह बदली कर सकता है।
1: हॉक रॉकेट सुपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है, जबकि ये 140 किलोग्राम का भारी वॉरहेड लेकर अपने टारगेट से टकराता है तो भारी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। इस ऊर्जा के कारण बिना विस्फोट हुए भी ये रॉकेट सिर्फ अपनी रफ्तार और वजन के दम पर कंक्रीट की कई फीट मोटी दीवारों को मलबे में तब्दील कर सकता है। सूर्यास्त्र की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक पारंपरिक क्रूज और एक बैलिस्टिक मिसाइल के 15% खर्चे से भी सस्ता है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि युद्ध के क्षेत्र में हमें भारी भरकम खर्च उठाने की जरूरत नहीं है। हम मल्टीपल रॉकेट्स दुश्मन पर दाग सकते हैं। आधुनिक युद्ध में आर्टिलरी की भूमिका निर्णायक होती है और सूर्यास्त्र शूट एंड स्कूट क्षमता के साथ दुश्मन के काउंटर अटैक से बचते हुए तेज हमला करने में सक्षम है। इसमें हाई मोबिलिटी व्हीकल भी लगाया गया है जिससे ये बहुत तेजी से जगह बदल सकता है। सूर्यास्त्र को 6x6 भारी ट्रकों पर माउंट किया गया है। हमला करने के बाद ये सिस्टम फौरन अपना लोकेशन बदलने में सक्षम है, जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। जानते हैं कि भारत सरकार ने किस तरह के चेंजेस किए हैं जिस वजह से 5000 तरह के उपकरण भारत में ही बनाए जा रहे हैं। दरअसल अभी अगर बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट पार्टनरशिप 20-30% है, जिसे बढ़ाकर सरकार 50% तक करना चाह रही है। इसको लेकर विचार हो रहा है। मोदी सरकार ने FDI, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जैसे बड़े सुधार किए हैं। सूर्यास्त्र भारत की आर्टिलरी ताकत में काफी इजाफा करेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के पास जो पिनाका मौजूद है उसमें और सूर्यास्त्र में क्या अंतर है? तो सबसे पहले दोनों रॉकेट सिस्टम की ताकत और खासियत जान लीजिए। सिस्टम की बात करें तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च है जो सिर्फ रॉकेट लॉन्चिंग के लिए ही है। सूर्यास्त्र यूनिवर्सल लॉन्चर है जो रॉकेट और मिसाइल दोनों दाग सकता है। पिनाका में कैलिबर फिक्स है और इसे सिर्फ 214 mm रॉकेट से ही दागा जा सकता है। सूर्यास्त्र मल्टी कैलिबर है जो 122 mm, 306 mm, 370 mm के वेपन्स दाग सकता है। रेंज की बात की जाए तो पिनाका MK-1 40 किलोमीटर और पिनाका एक्सटेंडेड रेंज 75 से 90 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। वहीं सूर्यास्त्र की रेंज 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है। पॉड रीलोड सिस्टम की बात करें तो पिनाका के रीलोडिंग में करीब 4-5 मिनट का समय लगता है। वहीं सूर्यास्त्र में जो पॉड सिस्टम लगा है उसे रीलोड करने में 10 मिनट का वक्त लगता है।
0: पिनाका और सूर्यास्त्र में फर्क ये है कि पिनाका में एक साथ बहुत सारे रॉकेट फायर होते हैं, 6-6 रॉकेट यानी 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ गिरते हैं एक इलाके में और वो एक एरिया वेपन के तौर पे, यानी कि 214 mm के रॉकेट हैं, एक ही कैलिबर के होंगे और वो एक जगह जाके पूरे इलाके को सैचुरेट कर देंगे, भस्म कर देंगे। जबकि सूर्य अस्त्र में अलग अलग कैलिबर के रॉकेट फायर हो सकते हैं, 122 mm, 306 mm या 370 mm, 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज होती है। और ये फर्क ये कि पिन पॉइंट अटैक करता ही है, एक रॉकेट जाएगा वहाँ पिन पॉइंट हमला करेगा, तो दोनों के टारगेट अलग हैं।
1: भारतीय सेना सूर्यास्त्र सिस्टम को उसकी 300 किलोमीटर की लंबी रेंज और डीप स्ट्राइक क्षमता के कारण LAC और LOC के अत्यंत संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात कर सकती है। इसका मेन मकसद चीन और पाकिस्तान की सेना के रसद आपूर्ति करने वाले रास्तों, एयरबेस और कमांड सेंटर्स को अपने तोपखाने की जद में लाना है। रॉकेट का ताकतवर होना कई मायनों में सेना की युद्ध क्षमता तो नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा, जो काम फाइटर जेट किया करते थे और जिन कामों में मिसाइल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उसी काम को अब सूर्यास्त्र जैसा सिस्टम आसानी से कर देगा। पारंपरिक तौर पर अगर देखा जाए तो अगर दुश्मन 300 किलोमीटर दूरी पर बैठा है तो भारत को अपने लड़ाकू विमानों को मैदान में उतारना पड़ता है, लेकिन सूर्यास्त के आने के बाद न तो हम अपने पायलट्स की जान जोखिम में डालेंगे और न ही दुश्मन की सरहद में जाने की जरूरत होगी, बल्कि भारत अपनी सरहद पर ही बैठे दुश्मन का काम तमाम कर सकता है।
2: पहले सीमा से 150 से 300 किलोमीटर दूरी पर मौजूद दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार या रसद डिपो को तबाह करने के लिए वायुसेना के सुखोई विमानों को उड़ान भरनी पड़ती थी। वहीं अब इस काम को जमीन पर तैनात आर्मी के सूर्यास्त रेजिमेंट अपने प्रेडेटर हॉक रॉकेट से मिनटों में पूरा कर पाएंगे। इससे महंगे लड़ाकू विमानों और जांबाज पायलटों को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में भेजने का जोखिम भी काफी हद तक कम हो जाएगा।
1: सूर्यास्त की तैनाती पारंपरिक तौर पर सुखोई 30 एमकेआई और ब्रह्मोस मिसाइल के वर्कलोड को काफी हद तक कम कर देगी। अब वो किस तरीके से, वो भी आपको समझाते हैं। सीधी सी बात है कि 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को अगर निशाने पर लाना हो तो उसके लिए सूर्यास्त ही काफी होगा। यानी अगर देखा जाए तो रण क्षेत्र में सूर्यास्त सुखोई 30 एमकेआई और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की जगह ले सकता है।
2: सूर्यास्त 300 किलोमीटर की दूरी तक ब्रह्मोस जैसी अचूक सटीकता प्रदान करता है, इसीलिए सामान्य और कम सुरक्षा वाले लक्ष्यों जैसे कि आतंकी कैंप, रसद डिपो के लिए ब्रह्मोस को बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। ये काम सूर्यास्त आसानी से कर देगा। ब्रह्मोस मिसाइल को अब सिर्फ अति संवेदनशील और अत्यधिक बख्तरबंद जैसे दुश्मन के युद्धपोत या परमाणु बंकर जैसे लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा। ब्रह्मोस ले जाने वाले सुखोई 30 एमकेआई विमानों का वजन और रखरखाव का दबाव कम होने से वायुसेना इन विमानों का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में कर पाएगी। सूर्यास्त वायुसेना का विकल्प नहीं बल्कि ये थल सेना को आत्मनिर्भर बनाकर वायुसेना की कीमती हथियारों और विमानों को बड़े और अधिक रणनीतिक युद्धों के लिए रीस्टॉक करने का मौका देता है।
0: ब्रह्मोस जैसा महंगा मिसाइल एक स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि तो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट टारगेट है, वहाँ पर सूर्यास्त का इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है। और तीसरी बात ये कि सुखोई को भी बचत होगी, एयरफोर्स को जो 300 किलोमीटर दूर टारगेट होते थे उनके लिए हवा में जाके मिजाइल फायर करनी पड़ती थी, वो बच जाएगा। आप जमीन से फायर करोगे उनके टारगेट को बर्बाद कर दोगे, यानी कि हम अपने जो एयरक्राफ्ट हैं सुखोई है इनको एक्सपोज नहीं करेंगे, उनका इस्तेमाल और स्ट्रेटजिक टारगेट के लिए और बड़े टारगेट्स के लिए किया जा सकता है। तो यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर है कि वो हथियार बने रहेंगे, वो अपने टारगेट्स करेंगे, बाकी टारगेट्स को सूर्यास्त एंगेज करेगा, अपनी जमीन पर रहते रहते दुश्मन को नेस्ता नाबूद करेगा।
1: आज देश में सिर्फ हथियार ही नहीं बनाए जा रहे बल्कि यहाँ उस भरोसे को भी मजबूत किया जा रहा है जिसके दम पर सेना वीरता का नया इतिहास लिख रही है।

0: अब हम सिर्फ टैंक, तोप, मिसाइल या फाइटर जेट्स ही नहीं बनाते, हम बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, जिसका सर्वोच्च संकल्प है राष्ट्र रक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना।
1: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
0: रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा और विदेश से हथियार और उपकरण के आयात को कम कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड मिशन पर आगे बढ़ रहा है।

0: हिंदुस्तान अब अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं, भारत में ही तरह तरह की मिसाइलें, फाइटर जेट्स और यहाँ तक कि छोटे कलपुर्जे तक बनाए जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत रक्षा के क्षेत्र में खुद स्टैंड कर चुका है और ये दुनिया भी भारत का लोहा मान रही है।
1: भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में लंबी छलांग लगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2023 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वो है रक्षा।
2: भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा।
1: ये मेक इन इंडिया मिशन की वो तैयारी है जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है और भारत के लिए है।
0: स्क्रू से लेकर सिस्टम और सॉफ्टवेयर तक भारत आज की तारीख में ये सब कुछ अपने आप बना रहा है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि भारत ये सब कुछ न सिर्फ अपने लिए बना रहा है बल्कि 80 से ज्यादा देशों को दे भी रहा है। और ये तमाम वो देश हैं जो रक्षा के मामले में भारत पर भरोसा करते हैं।
1: सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन एक वक्त था जब 65-70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 35% सामान ही आयात होता है। इसका मुख्य कारण भारत की अपनी रक्षा प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने की बढ़ती क्षमता है।
0: भारत सरकार की तरफ से पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट तैयार की गई है, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि स्वदेशीकरण को ज्यादा बढ़ावा देना। यानी खास तौर पर रक्षा के क्षेत्र में हम किसी दूसरे मुल्क पर निर्भर न रहें, छोटे से कलपुर्जे से लेकर बड़ी से बड़ी मिसाइल तक बनाने में भारत खुद अपनी धरती का और यहाँ के साजो सामान का ही इस्तेमाल करे।
1: अब तक रक्षा मंत्रालय ऐसी 5 लिस्ट जारी कर चुका है और इसमें तकरीबन 5,000 आइटम्स के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी। ये सभी डिफेंस, पीएसयू और निजी स्वदेशी कंपनियों से खरीदे जा रहे हैं। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट 4,666 आइटम्स की 5 लिस्ट जारी की गई है, जिन्हें सिर्फ स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। नेगेटिव लिस्ट, इसमें 310 उपकरणों जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, तोप के आयात पर 2020 से 27 तक रोक लगाई गई है। डैप 2020 यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में खरीद को प्राथमिकता दी गई, यानी कि स्वदेशी डिजाइन और प्रोडक्शन को बढ़ावा। सृजन पोर्टल, इसमें 19,509 पहले आयातित आइटम्स को स्वदेशी बनाने के लिए लिस्ट किया गया। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा, इसमें टाटा, L&T, भारत फोर्स और MSME को बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। FDI में छूट, डिफेंस में 74% तक FDI ऑटोमेटिक रूट से और 100% सरकार की मंजूरी से होगी। अगला है R&D को बढ़ावा, इसमें IDEX और TDF स्कीम्स से स्टार्टअप्स और MSMEs को फंडिंग दी जा रही है। साल 2025 में TDF के लिए 60 करोड़ रुपए और IDEX प्राइम के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए।
3: हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर ना सिर्फ सुरक्षा के मामले में डिफेंस प्रोडक्शन में होना पड़ेगा, तमाम ऐसी विधाएं हैं उसमें हर एक में आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका कि प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कट कॉल दिया हुआ है। जहां तक डिफेंस का सवाल है, देखिए हिंदुस्तान की सुरक्षा में को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आप ऐसे समय में दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें जब आपको उस इक्विपमेंट की, उस हथियार की, उस गोला बारूद की, उस एमनिशन की जरूरत है। लिहाजा आपको स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा और हिंदुस्तान
1: प्राइवेट कंपनी
3: की, उस हथियार की, उस गोला बारूद की, उस एमनिशन की जरूरत है। लिहाजा आपको स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा और हिंदुस्तान देखिए धीरे धीरे इसके तरफ अग्रसर हो रहा है।
1: प्राइवेट कंपनियों को भी सरकार की तरफ से सहूलियतें दी गई हैं। सरकार ने भारत की निजी हथियार निर्माता कंपनियों के लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है कि बड़ी तेजी से ये आगे बढ़ने लगे। इस पूरी बढ़ोतरी में हिस्सेदारी की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2024-25 में कुल रक्षा उत्पादन में DPSU यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान करीब 77% रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 23% रहा। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बढ़ी है। जो वित्त वर्ष 2023-24 में 21% थी वो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23% हो गई।
3: सबसे पहले मैं टच करूंगा पॉजिटिव इंडियनाइजेशन। इसके तहत वो सारी चीजें हैं जो कि डिफेंस में जिसकी रिक्वायरमेंट है और जिसको हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है, चाहे वो PSUs हो, DPSUs हो, प्राइवेट सेक्टर हो। अब हम नेगेटिव लिस्ट की बात करते हैं। टाइम टू टाइम ये लिस्ट रिवाइज की जाती है। नेगेटिव लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें कि उन आइटम को बैन किया गया है जिसका हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ये सारे के सारे आइटम हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लिहाजा ये नेगेटिव लिस्ट में दिन रात इजाफा हो रहा है और इन आइटम को हम अब बाहर से इंपोर्ट करना डिफेंस सेक्टर में बंद करेंगे। सृजन पोर्टल देखिए एक ऐसा पोर्टल है जिसमें तमाम प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक सेक्टर की यूनिट इसमें लॉग इन कर सकते हैं, अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि तमाम आगे आने वाले दिनों में जो हमारे डिफेंस की प्रोक्योरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, किसका टेंडर निकलने वाला है, क्या उसका क्वालिफिकेशन क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों की उसमें लिस्टिंग होती है।
1: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अपने डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा तवज्जो दे रहा है और इसी के तहत देश में डिफेंस कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में सिर्फ दो ही कॉरिडोर हैं। रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: शनि देव की कौन सी राशि धन की सबसे बड़ी राशि है? शनि देव की कौन सी राशि के लोग भयंकर लापरवाह होते हैं? और शनि देव की कौन सी राशि बृहस्पति के लिए बड़ी निगेटिव होती है? कौन सी हैं शनि देव की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: IPL का सबसे बड़ा धुरंधर वैभव के बल्ले ने मचाया बवंडर, उम्र 15 साल बना गेंदबाजों का काल, सिक्सर का बेमिसाल बेबी बॉस, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
8: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: पवित्र चारधाम यात्रा के दौरान हर रोज बन रहे नए रिकॉर्ड, महज 39 दिनों में 10 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में मुस्तैद प्रशासन। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चली तेज हवाओं से गिरा पारा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों का रुख कर रहे लोग, उत्तराखंड के मसूरी में हर रोज बढ़ रही सैलानियों की तादाद, पहाड़ों की रानी में सड़कों पर थमा ट्रैफिक। हिमाचल प्रदेश के मनाली की खूबसूरत वादियां सैलानियों से गुलजार, रोहतांग के माइनस तापमान में भी मस्ती करते नजर आ रहे पर्यटक, बर्फीले पहाड़ों पर एडवेंचर का भी उठा रहे लुत्फ। राजस्थान में रेतीले तूफान का बवंडर, श्रीगंगानगर में दिन में हुआ अंधेरा, बवंडर के बाद हुई बारिश से तापमान में आई 8 डिग्री की गिरावट।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जो शख्सियत का विस्फोटक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो है तो महज 15 साल का, लेकिन क्रिकेट के मैदान में बल्ले से ऐसे ऐसे कीर्तिमान रच रहा है कि बड़े बड़े सूरमाओं की चमक उसके आगे फीकी पड़ती जा रही है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बीते 27 मई को आईपीएल के एक मुकाबले में बल्ले से विस्फोट की नई इबारत लिखने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी है। जी हां, 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की जो विस्फोटक पारी खेली उसकी धमक में क्रिकेट के कई दिग्गजों के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स दफन हो गए। वैभव ने एक पारी में इतने रिकॉर्ड्स बना दिए कि ये खुद अपने आप में रिकॉर्ड हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वाली पारी। दरअसल पिछले 2 साल से वैभव मैदान में टिककर जिस तरह से आतिशबाजी कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले वर्षों में बल्लेबाजी का कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा ही नहीं जो वैभव के नाम ना हो।
1: क्रिकेट के क्षितिज पर उदित हो चुका है एक ऐसा चमचमाता वैभवशाली सूर्य जिसकी चौंधिया देने वाली चमक में क्रिकेट के आसमान के बड़े बड़े सितारे गुम से हो गए हैं। इस वैभवशाली सूर्य ने आईपीएल की महज एक पारी में इतने कीर्तिमान बना दिए हैं कि रिकॉर्ड बुक के हर सफहे पर एक ही नाम चमक रहा है, वैभव सूर्यवंशी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को हुए एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की ऐसी विस्फोटक पारी खेली कि आईपीएल के 18 साल के इतिहास में बल्ले से बने करीब करीब सारे रिकॉर्ड्स जमींदोज हो गए।
2: वो बच्चा 15 साल का है, इतनी धमाल मचा रखी है। बुमराह को उसने पहली बॉल पे छक्का मारा, हेजलवुड को, हर एक बॉलर को उसने पहली बॉल पे छक्का मारा। ऐसा बल्लेबाज मैंने दुनिया में नहीं देखा। वरिंदर सहवाग भी ऐसी पारी नहीं कभी खेल सका जो वैभव सूर्यवंशी खेलता।
1: वैभव की इस अविस्मरणीय पारी को देखकर ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कहना पड़ गया अभूतपूर्व। बल्ले से वैभव का अतुल्य धमाका पूरी एकाग्रता से देखने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग असाधारण था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पैरों पर फेंकी गई गेंद पर उन्होंने बेहद कुशलता के साथ फ्रंट फुट क्लियर का रूम बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने जहां चाहा गेंद को वहीं पहुंचा दिया। वैभव की ये पारी चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। यूं तो वैभव ने पूरे आईपीएल के दौरान अतुल्य बल्लेबाजी की है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को खेली गई उनकी एक अदद पारी क्रिस गेल, डेविड वार्नर, रिली रूसो, शुभमन गिल और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों की कई कई पारियों पर भारी पड़ गई है। वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की धमाकेदार पारी में 12 छक्के लगाए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वैभव ने आईपीएल 2026 सीजन में 65 छक्के पूरे कर लिए हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्सर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। गेल ने आईपीएल 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे। वैभव के इस रिकॉर्ड के भीतर भी एक रिकॉर्ड छिपा हुआ है। गेल ने 59 सिक्सर के लिए 456 गेंदें खेली थी, जबकि वैभव ने सिर्फ 280 गेंदों पर 65 छक्के अपने नाम कर लिए हैं। 280 गेंदों पर 65 छक्कों का मतलब ये हुआ कि कमोबेश हर चौथी गेंद पर सिक्सर। ये रिकॉर्ड तो गेंदबाजों के लिए डरावने सपने की तरह है।
3: Young man is something else. You know, he can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd. His sixes are generally into the crowd. His sixes are not those that just pop over that boundary arrow, and he just makes it look so ridiculously easy.
1: महज 15 साल के वैभव जिस तरह कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भविष्य में बल्लेबाजी के सारे रिकॉर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट में इनके नाम ही दर्ज मिलेंगे। 27 मई को एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने एचआरएस के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। आईपीएल के नॉकआउट हिस्ट्री में ये संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 है। इससे पहले साल 2014 के क्वालिफायर 2 में सुरेश रैना ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 16 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था। इतना ही नहीं, वैभव की इस पारी में शुरू के 10 छक्के सिर्फ 24 गेंदों पर ही आ गए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 10 छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गेल के 10 छक्के साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 27 गेंदों में आए थे। आईपीएल 2026 के दौरान 27 मई को खेली गई ऐतिहासिक पारी समेत कुल 15 पारियों में वैभव 243 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बना चुके हैं। टी20 के किसी भी टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले साल 2022 में टी20 ब्लास्ट में रिली रूसो ने 192 के स्ट्राइक रेट से 623 रन बनाए थे। वैभव की इस एक पारी में बने रिकॉर्ड्स की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव के कुल 12 में से 8 छक्के पावर प्ले में ही आ गए थे। दिलचस्प तो ये है कि इससे पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा 7 छक्कों का कीर्तिमान भी हिंदुस्तान के इस वैभवशाली खिलाड़ी के नाम ही दर्ज था। वैभव अब आईपीएल में 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियां खेल चुके हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पर कमाल यह है कि वैभव की 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियों में से 3 आईपीएल के मौजूदा सीजन में ही आई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की अपनी पारी में वैभव ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। आईपीएल के इतिहास में 90 प्लस रनों की सभी पारियों में वैभव की पारी सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाली पारी बन गई है। वैभव ने 334.48 की स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड रजत पाटीदार के नाम था, जिन्होंने इसी सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 281.81 की स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पर 93 रन बनाए थे। आपको बता दें कि 27 मई वाली पारी को लेकर वैभव आईपीएल 2026 सीजन में सिर्फ पावर प्ले के दौरान 490 रन बना चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम था, जिन्होंने साल 2016 में पावर प्ले के दौरान 467 रन बनाए थे। ये सारे रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं 15 साल के एक टीनेजर के नाम। सोचिए, 15 साल का ये बच्चा इसी उम्र में अगर क्रिस गेल, डेविड वार्नर, किरोन पोलार्ड और शुमन गिल जैसे महारथियों के रिकॉर्ड्स की कब्रगाह बना चुका है, तो आगे तो वैभव के नाम से ही कीर्तिमान की एक किताब छापनी पड़ जाएगी।
4: बैट्समैन बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में अगर वो अपनी फिटनेस अच्छी मेंटेन करता है तो फिर आने वाला वो फ्यूचर स्टार है इंडिया का।
5: वैभव सूर्यवंशी, उसकी भी बैटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेलता है,
6: बहुत बढ़िया,
5: बहुत नेक्स्ट लेवल बैटिंग है। हम उसकी बैटिंग को नहीं कह सकते, उसकी अब अपनी अलग क्लास है।
7: करदा उड़ा दिया वैभव सूर्यवंशी ने,
1: ऐसा नहीं है कि वैभव का बल्ला सिर्फ आईपीएल में ही चला है। इससे पहले भी बिहार के समस्तीपुर का ये लाल ऐसी ऐसी अद्भुत पारियां खेल चुका है कि क्रिकेट के इतिहास में उसकी कोई सानी देखने को नहीं मिलती। इसी साल 6 फरवरी को जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव ने जो पारी खेली थी, उसे अंडर 19 वर्ल्ड कप के 38 साल के इतिहास की सबसे महान पारी कहा जा रहा है। सबसे महान पारी क्यों कहा जा रहा है, स्टैट देखने से इसका जवाब मिल जाएगा। वैभव ने महज 80 गेंदों पर 175 रन ठोक दिए। वैभव ने इस पारी में 15 छक्के और 15 चौके लगाए, यानी 150 रन सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए अपने खाते में जोड़ लिए। 55 गेंदों पर शतक पूरा किया, बाद के 75 रन सिर्फ 25 गेंदों पर ठोक दिए। महज 71 गेंदों पर 150 रन पूरे कर लिए, जो यूथ वनडे इतिहास का सबसे तेज 150 है। इतना ही नहीं, वैभव ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कुल 30 छक्के लगाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस के नाम था, जिन्होंने 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में 18 छक्के लगाए थे। पूरे टूर्नामेंट में वैभव 439 रन के साथ सेकेंड टॉप स्कोरर भी रहे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहने के साथ वैभव ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप से ठीक पहले अंडर 19 एशिया कप में 12 दिसंबर 2025 को यूएई के खिलाफ वैभव ने 95 गेंदों पर 171 रन कूटकर विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए थे। इस आतिशी पारी में वैभव ने 9 चौके और 14 छक्के लगाए थे। कहने की जरूरत नहीं कि सबसे तेज और सबसे कम उम्र से जुड़े रिकॉर्ड्स के सरताज बन चुके हैं वैभव। 24 दिसंबर 2025 को रांची के जेएससीए ओवल ग्राउंड में वैभव ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कई विश्व कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल के खिलाफ हुए मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 84 गेंदों पर 15 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 190 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी थी। इस मैच में सिर्फ 59 गेंदों पर 150 रन पूरे कर वैभव ने लिस्ट ए मैच में फास्टेस्ट 150 का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 बॉल पर 150 रन बनाए थे। तूफान थोड़ी देर के लिए हो तो राहत, नहीं तो कहर बन जाता है। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान के टिक कर रहने वाले तूफान नहीं बल्कि बवंडर हैं। इसीलिए विरोधियों के लिए कहर नहीं बल्कि महाकहर बन रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैभव 13 साल की उम्र में एक मैच में ट्रिपल सेंचुरी भी लगा चुके हैं। रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में वैभव ने 332 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अभी तो ये यूथ इंडिया की रहनुमाई कर रहे हैं, इंतजार कीजिए इनके टीम इंडिया में शामिल होने का। इसकी पूरी संभावना है कि साल 2027 के वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे और बहुत संभव है कि भारत तब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाएगा।
0: 15 साल के वैभव की कामयाबी क्रिकेट के बड़े बड़े धुरंधरों को भी हैरान करने लगी है। आईपीएल में अपने से दोगुने ढाई गुने उम्र के घातक गेंदबाजों को भी वो न सिर्फ सहजता से खेल रहे हैं बल्कि कायदे से धुलाई भी कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतनी छोटी उम्र में ही वैभव इतने दिग्गज बल्लेबाज कैसे बन गए। दरअसल इसके पीछे कहानी है एक अधूरे सपने की, जो कभी वैभव के पिता ने देखा था। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन हालात की दुश्वारियों की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। पर अपने उसी अधूरे सपने को संजीव ने अपने बेटे वैभव के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया। वैभव के क्रिकेटर बनने की पूरी कहानी आपके दिल को छू लेगी।
1: सर पर कामयाबी के ताज के साथ मन में विनम्रता का संस्कार हिंदुस्तान की संस्कृति का सनातन हिस्सा है। मैच 15 की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी का बेनजीर परचम लहरा चुके वैभव सूर्यवंशी सनातन संस्कार के युगीन संवाहक हैं। जिस मैच में वैभव ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी, उसके प्री मैच शो के दौरान जब उन्होंने सुनील गावस्कर और संजय बांगर को देखा तो दौड़कर उनके पास गए और पूरी विनम्रता के साथ उनके पैर छू लिए। वैभव के संस्कार की निश्चल सादगी देखिए कि गावस्कर और बांगर के साथ मौजूद प्रेजेंटर जतिन सप्रू के भी पैर छूने की उन्होंने पूरी कोशिश की। ये अलग बात है कि जतिन पीछे हट गए।
3: हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है कि हम अपने जो बुजुर्ग है, सीनियर्स है, एल्डर्स है, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, और वही उन्होंने किया। सिर्फ मेरे पास ही नहीं आए थे वो, बस मेरे बाजू में संजय बांगर थे और जतिन सप्रू थे, उनके पास भी आए थे और मुझसे थोड़ा सा रुककर मुझसे कुछ अपेक्षा कर रहे थे कि मैं कुछ उनको बोलूं, शायद अपेक्षा कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूंगा, तो शायद अपेक्षा कर रहे थे। तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा, लगे रहो, क्योंकि जब वो लगे रहेंगे तो फिर वो बल्ला मतलब बल्ला लगता रहेगा और छक्के भी लगते रहेंगे।
1: उम्र के लिहाज से वैभव की बेनजीर कामयाबी इस बात की मुनादी कर रही है कि आने वाले वक्त में कीर्तिमान की किताब के हर सफहे पर बिहार के इस लाल का नाम दर्ज मिलेगा। पर वैभव नाम के इस प्रदीप्त दिए की रोशनी से सराबोर होने वाले लोगों को उस तेल और बाती के बारे में भी जानना चाहिए जो खुद गुमनाम रहकर अपने दिए को जगमग कर रहा है। वैभव की इस बेनजीर कामयाबी के पीछे हाथ है उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का, जो कभी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का ख्वाब सजोए हुए थे, पर खुद की जो हसरत अधूरी रह गई उसे उन्होंने अपने लाल में प्रत्यारोपित कर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक पिता के अनोखे त्याग की खामोश सदाएं समस्तीपुर जिले के जर्रे जर्रे में जज्ब है।
6: वास्तव में एक पिता का जो त्याग था, तपस्या था, जिद था कि हमको किसी भी तरह जो मैं हासिल नहीं कर सका वो मैं अपने बच्चे को उस मुकाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। वो एकाकी भी देखा कि लोगों से मिलना तक लोगों में, क्योंकि जुनून सवार था कि मैं अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाऊं, तो लोगों से मिलना भी बंद किया। उस बीच में कई ऐसी मुसीबतें भी आईं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया।
1: पांच साल के बच्चे को पढ़ाई से दूर कर क्रिकेट के मैदान में पसीना बहाने के लिए खड़ा कर देना किसी भी पिता के लिए आसान फैसला नहीं होगा। पर संजीव सूर्यवंशी ने कलेजे पर पत्थर रख कर ये फैसला लिया। समस्तीपुर जिले के ताजपुर पंचायत में जहां क्रिकेट का कोई नाम लेवा नहीं था, वहां पांच साल के बेटे की प्रैक्टिस के लिए सारी व्यवस्था कर दी। यहां तक कि कुछ हम उम्र और बड़े बच्चों को भी चॉकलेट मिठाई का प्रलोभन देकर साथ जोड़ लिया ताकि वे बॉलिंग करें और वैभव लगातार बैटिंग की प्रैक्टिस करता रहे। पांच साल से सात साल यानी दो साल तक गांव में ही वैभव को दिन रात प्रैक्टिस कराने के बाद एक दिन संजीव सूर्यवंशी को इल्हाम हो गया कि अब अगले लेवल की प्रैक्टिस का वक्त आ गया है, लिहाजा बेटे को लेकर निकल गए ताजपुर से 12 किलोमीटर दूर स्थित पटेल मैदान में, जहां ब्रजेश झा क्रिकेट एकेडमी चलाते थे। क्रिकेटर बनाने का जुनून ऐसा था कि संजीव सूर्यवंशी को जब लगा कि रोजी रोटी के लिए चलने वाला बिजनेस व्यवधान बन रहा है तो बगैर देरी के उसे बंद कर दिया।
8: गार्डियनों का उनका सपोर्ट रहा है कि अपने बच्चे को इतना ज्यादा टाइम किल करते थे, अपने साथ लाना ले जाना, बच्चों के साथ अपना बिजनेस छोड़ के बच्चे के प्रति इतना एक फोकस, गार्जियन का भी कहीं ना कहीं टारगेट था कि हमारा बच्चा ऊपर खेले, और भगवान की दुआ से बच्चा वो मुकाम पर हासिल किया।
1: इसमें कोई संदेह नहीं कि 7-8 साल की छोटी उम्र में ही वैभव अपने पिता की उम्मीदों की कसौटी पर लगातार खरे उतर रहे थे। जब तक सूर्य की रोशनी धरा पर मौजूद रहती, वैभव बल्ले को दामन से दूर नहीं होने देते। पिता और माँ को छोड़कर घर के बाकी सदस्यों को वैभव की आदत कई बार नागवार गुजरती थी। दादी ने तो कई मौकों पर ऊब कर वैभव की पिटाई भी कर दी थी, पर बचपन में वैभव की पिटाई के वो वाकये आज दादी के लिए सुनहरी यादें बन चुकी हैं।
9: डांटते तो थे,
10: अच्छा,
9: कभी कभी उसको मारते थे, दौड़ते थे उस पर, फिर भी कहता था नहीं दादी हमको अच्छा लगता है, हम खेलेंगे। हम कहे ठीक है बाबू तब खेलो। जब धीरे धीरे जब दल सिंह सराय गया, बेनी पट्टी, उसके बाद आपको क्या कहते हैं बेगूसराय, जब हम देखते रहे कि यह अच्छा खेल में उतर रहा, कहता नहीं दादी हमको अच्छा लगता है, हम खेलेंगे। हम कहे ठीक है बाबू तब खेलो। जब धीरे धीरे जब दल सिंह सराय गया, बेनी पट्टी, उसके बाद आपको क्या कहते हैं बेगूसराय, जब हम देखते रहे कि यह अच्छा खेल में उतर रहा, तब से मेरा भी मनोबल और मन ये हुआ कि हाँ यह खेले।
1: बचपन में वैभव की बैटिंग की खटखट से ऊब जाने वाली दादी का हृदय आज इस बात को जानकर गदगद है कि उनका पौत्र क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़कर आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाला खिलाड़ी बन गया है। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि वैभव को पटना के जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में डालने के लिए संजीव सूर्यवंशी को जमीन तक बेचनी पड़ी थी? दरअसल संजीव सूर्यवंशी को जब ये लगने लगा कि उनका बेटा समस्तीपुर स्थित पटेल मैदान के स्टैंडर्ड से आगे निकल चुका है, तो पटना में जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराने का फैसला किया। एकेडमी की फीस और उसके बाद समस्तीपुर से हर रोज पटना आना जाना कॉस्टली अफेयर था, इसीलिए संजीव सूर्यवंशी बेटे वैभव को लेकर हर अल्टरनेट डे पर पटना जाने लगे। जेनेक्स एकेडमी चलाने वाले पूर्व रणजी खिलाड़ी मनीष ओझा भी वैभव के पिता के त्याग और तपस्या को याद कर भावुक हो जाते हैं।
10: माँ का रोल रहता था बच्चे को तैयार करने से लेके उसको, और जब इधर से थक के जाता था तो उसको फिर रिकवरी में, चाहे वो खाने के सेंस में हो, उसको प्यार के सेंस में हो, उसको रेस्ट के सेंस में हो, और पिता का त्याग इस सेंस में था कि अर्ली सारे बोझ को वो अपने कंधे पर उठा रहे थे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और फिर भी वो जो वो अपने हैसियत से ज़्यादा बढ़ के उन्होंने उस बच्चे के लिए किया, और हर एक वो सुविधा उस बच्चे के लिए उन्होंने अरेंज किया खेल के प्रति कि वो आज इस मुकाम को प्राप्त कर सके।
1: पिता ने अपनी हैसियत की हदों को पार कर वैभव के लिए जमीन तैयार की, और वैभव ने भी पिता के इस त्याग की कीमत को शिद्दत से महसूस करते हुए मैदान पर पसीना बहाने में कोई कोताही नहीं की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था और वैभव को पटना ले जाना ले आना संभव नहीं रहा, तो संजीव सूर्यवंशी ने अपने ताजपुर स्थित घर के बाहर ही नेट प्रैक्टिस के लिए पिच बनवा दी ताकि वैभव की प्रैक्टिस खंडित ना हो।
11: लॉकडाउन में एक्चुअली पूरा बिहार बंद था, तो यहाँ पे पिच का जनरेट किया गया भैया के द्वारा, और टर्बिकेट और सीमेंटेड लॉकडाउन में लोग घर से नहीं निकल रहे थे, उस वक्त में भी इसका प्रैक्टिस सेशन लगातार यहाँ पे चलता रहा।
1: बेटे को क्रिकेटर बनाने का ये जुनून अपने आप में अनूठा है, इसका नतीजा सबके सामने है। आज वैभव के बल्ले से बनने वाले विश्व रिकॉर्ड्स संजीव सूर्यवंशी की दुनिया को रंगीन सपनों से भी ज्यादा सुहावन बना रहे हैं। वैभव की विराट बुलंदी का आलम यह है कि पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पर संजीव सूर्यवंशी और उनकी पत्नी से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। देश का गौरव बन चुके तेजस्वी पुत्र का पिता होने के लिए बधाई देते हैं। पिता ने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए त्याग तपस्या की, तो बेटा भी दो कदम आगे बढ़कर अपनी विराट उपलब्धियों से हक अदायगी कर रहा है। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसके 14 साल के बेटे को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को वैभव को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। साफ है कि पिता के संकल्प और बेटे की जीतोड़ मेहनत का पावन संगम क्रिकेट के मैदान पर चमत्कारिक धारा बनकर नमूदार हो रही है।
0: तो बंदे में है दम में आज आपने वैभव सूर्यवंशी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
12: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: और आइए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
15: जिंदगी में खुश रहने के लिए कोई वजह जरूरी नहीं होती। ये नन्हा बच्चा स्टील के बर्तन की थाप पर मासूमियत से झूमता नजर आ रहा है। उसकी मुस्कान और छोटे छोटे कदम दिल को खुशी से भर देते हैं। सच में बचपन की यही सादगी जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। ये महिला नारी शक्ति की सशक्त मिसाल है। एक तरफ भारी कैमरा संभालते हुए वो शादी की फोटोग्राफी कर रही है, तो दूसरी तरफ अपनी छोटी बच्ची का भी ध्यान रख रही है। माँ की ममता से बच्चा परे ना हो, इसलिए ये साहस सिर्फ माँ ही कर सकती है। ये नज़ारा दिखाता है कि महिलाएं जिम्मेदारी के साथ अपने सपनों को भी बखूबी पूरा कर सकती हैं। दोस्ती की ये अनोखी मिसाल दिल को छू लेती है। एक बच्चा अपने खाने को एक तोते के साथ शेयर कर रहा है और दोनों आराम के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ये मासूम दोस्ती इंसानों और प्रकृति के बीच प्यार और अपनापन दिखाती है। चिड़िया हमारी बचपन की साथी हुआ करती थी, लेकिन आज इन्हें देख पाना दुर्लभ हो गया है। ये नज़ारा बचपन की यादें ताज़ा कर देता है, जब हम चिड़ियों को नहाते हुए देखकर मौसम बदलने की उम्मीद करते थे। आज वही मासूम पल बहुत याद आते हैं। ये छोटी बच्ची अपनी मासूमियत और एनर्जी से दिल जीत रही है। दो चोटियों में सजी ये नन्ही परी मस्ती में झूमते हुए अपने हर स्टेप को बेहद क्यूट अंदाज में कर रही है। उसकी खुशी और नटखटपन देखने वालों का मन खुश कर देती है।
13: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
16: शनि देव की कौन सी राशि धन की सबसे बड़ी राशि है? शनि देव की कौन सी राशि के लोग भयंकर लापरवाह होते हैं? और शनि देव की कौन सी राशि बृहस्पति के लिए बड़ी निगेटिव होती है? कौन सी हैं शनि देव की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
17: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
18: IPL का सबसे बड़ा धुरंधर वैभव के बल्ले ने मचाया बवंडर। उम्र 15 साल बना गेंदबाजों का काल। सिक्सर का बेमिसाल बेबी बॉस। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
19: No ticket, no line, just showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
20: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी
13: गुड्डी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: पवित्र चारधाम यात्रा के दौरान हर रोज बन रहे नए रिकॉर्ड। महज 39 दिनों में 10 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में मुस्तैद प्रशासन। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चली तेज हवाओं से गिरा पारा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों का रुख कर रहे लोग। उत्तराखंड के मसूरी में हर रोज बढ़ रही सैलानियों की तादाद, पहाड़ों की रानी में सड़कों पर थमा ट्रैफिक। हिमाचल प्रदेश के मनाली की खूबसूरत वादियां सैलानियों से गुलजार। रोहतांग के माइनस तापमान में भी मस्ती करते नजर आ रहे पर्यटक। बर्फीले पहाड़ों पर एडवेंचर का भी उठा रहे लुत्फ। राजस्थान में रेतीले तूफान का बवंडर। श्रीगंगानगर में दिन में हुआ अंधेरा। बवंडर के बाद हुई बारिश से तापमान में आई 8 डिग्री की गिरावट।
13: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो

0: खुद लिखता है।
1: आज भारत तोप की गोली से लेकर मिसाइल तक और फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट के चुनौतियों के लिए तैयार, हिंदुस्तान बना रहा है स्वदेशी हथियार।
0: जो देश अपने हथियार खुद बनाता है वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है।
1: आज भारत तोप की गोली से लेकर मिसाइल तक और फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट के चुनौतियों के लिए तैयार, हिंदुस्तान बना रहा है स्वदेशी हथियार।
0: जो देश अपने हथियार खुद बनाता है वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है।
1: आज भारत तोप की गोली से लेकर मिसाइल तक और फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक सब कुछ खुद ही तैयार कर रहा है। एक वक्त था जब भारत अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपनी ताकत को समझा, उसे जाना और खुद आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो अपने यहाँ ही बना रहा है। कई देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत ही भारत ने अपने यहाँ ही कई रक्षा उपकरणों को बनाना शुरू किया है। नतीजा ये है कि आज की डेट में भारत न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि दूसरे देशों का निर्यातक भी बन रहा है। डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
0: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है।
1: हर दिन नए हथियारों की चमक दुश्मनों को भयभीत कर रही है। भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जो दुश्मन की नापाक हरकतों का माकूल जवाब दे सके।
0: आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। साथियों, इसका एक और लाभ सीमा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह बहुत ही कठिन है, जटिल है, टफ है। हर जगह सैनिकों की तैनाती करना यह कोई आसान काम नहीं होता, मैं प्रत्यक्ष से महसूस कर रहा हूं। और ऐसे में ऑटोमेटेड निगरानी सिस्टम, रोबोटिक वाहन और सेंसर दिन रात सीमा की निगरानी कर सकते हैं, ऐसा सभी अब स्वीकार करने लगे हैं। इससे सुरक्षा भी बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उन पर दबाव भी कम रहता है।
1: म्यूनिशन और ऑटोमेटेड सिस्टम में भारत अगुआ बनकर उभरे, इसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है।
0: भविष्य के युद्धों में सबसे बड़ा अंतर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पास सैनिकों की संख्या कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन और ऑटोमेशन की दृष्टि से कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ युद्ध की आवश्यकता नहीं बल्कि शांति, विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। रक्षा क्षेत्र में यदि हम अभी तक दूसरों पर निर्भर रहे थे तो यकीन मानिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे डिफेंस सेक्टर और हमारे फाइनेंस सेक्टर को होता। लेकिन अब क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भर भारत बनने की सोची, खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में, तो यही वजह है कि खासतौर पर तकनीक के मामले में और रक्षा तकनीक के मामले में आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है। 23 मई को महाराष्ट्र के शिरडी में एक बेहद आधुनिक गोला बारूद निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया जिसमें सालाना 5,00,000 आर्टिलरी शेल्स तैयार किए जाएंगे। साथ ही भारत के पहले 300 किलोमीटर वाले सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम को भी हरी झंडी दिखाई गई। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दो रेंज वेरिएंट्स में डिजाइन किया गया है। पहला वेरिएंट 150 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों तक हमला कर सकता है और दूसरा लंबी दूरी वाला वेरिएंट 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। भारतीय सेना ने सूर्यास्त की खरीद का ऑर्डर भी दे दिया है।
2: सूर्यास्त भारत की सेनाओं को एक ऐसा जबरदस्त वेपन और फोर्स मल्टीप्लायर मिलने वाला है जो वाकई में दुश्मन की कमर तोड़ने में एक कामयाब होगा, क्योंकि इसका पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता है कि 5 मीटर के अंदर लिखा हो लेकिन 2 मीटर के रिजल्ट दिए गए 300 किलोमीटर दूर। आप समझिए कि जब वो हमला करने में सक्षम है दुनिया के कमांड सेंटर पर जहाँ पर उनके शीर्ष अधिकारी बैठे होते हैं, प्लानिंग चल रही, वहाँ पर हमले के पहले हमारा हमला होता है, उनकी सारी प्लानिंग ध्वस्त हो जाती है। कम्युनिकेशन सिस्टम पर

0: 2024-25 में कुल रक्षा उत्पादन में DPSU यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान करीब 77% रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 23% रहा। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बढ़ी है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 21% थी, वो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23% हो गई।
1: सबसे पहले मैं टच करूंगा पॉजिटिव इंडियनाइजेशन। इसके तहत वो सारी चीजें हैं जो कि डिफेंस में जिसकी रिक्वायरमेंट है और जिसको हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है, चाहे वो PSUs हो, DPSUs हो, प्राइवेट सेक्टर हो। अब हम नेगेटिव लिस्ट की बात करते हैं। टाइम टू टाइम ये लिस्ट रिवाइज की जाती है। नेगेटिव लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें कि उन आइटम को बैन किया गया है जिसका हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ये सारे के सारे आइटम हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लिहाजा ये नेगेटिव लिस्ट में दिन रात इजाफा हो रहा है और इन आइटम को हम अब बाहर से इंपोर्ट करना डिफेंस सेक्टर में बंद करेंगे। सृजन पोर्टल देखिए एक ऐसा पोर्टल है जिसमें तमाम प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक सेक्टर की यूनिट इसमें लॉग इन कर सकते हैं, अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि तमाम आगे आने वाले दिनों में जो हमारे डिफेंस की प्रोक्योरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, किसका टेंडर निकलने वाला है, क्या उसका क्वालिफिकेशन क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों की उसमें लिस्टिंग होती है।
0: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अपने डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा तवज्जो दे रहा है और इसी के तहत देश में डिफेंस कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में सिर्फ दो ही कॉरिडोर हैं। रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
4: Thank God I get to wake
3: and everything else. Hear it all here, commercial free on TuneIn.
5: देव की कौन सी राशि धन की सबसे बड़ी राशि है? शनि देव की कौन सी राशि के लोग भयंकर लापरवाह होते हैं? और शनि देव की कौन सी राशि बृहस्पति के लिए बड़ी निगेटिव होती है? कौन सी हैं शनि देव की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: आईपीएल का सबसे बड़ा धुरंधर वैभव के बल्ले ने मचाया बवंडर, उम्र 15 साल बना गेंदबाजों का काल, सिक्सर का बेमिसाल बेबी बॉस, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
7: लुकिंग फॉर एन ऐप टू हियर ऑल ऑफ योर फेवरेट म्यूजिक, न्यूज, स्पोर्ट्स एंड मोर? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
8: How they looked after game one.
9: I mean, they were frustrated.
7: The Daily.
10: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
7: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
2: Good news today, isliye acha lagta hai, iske andar na उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: पवित्र चारधाम यात्रा के दौरान हर रोज बन रहे नए रिकॉर्ड, महज 39 दिनों में 10 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में मुस्तैद प्रशासन। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चली तेज हवाओं से गिरा पारा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत।
12: न
11: मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों का रुख कर रहे लोग, उत्तराखंड के मसूरी में हर रोज बढ़ रही